मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की 16वीं तिथि, तदनुसार 6 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:55 और 35 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

हर सुबह भगवान का संदेश है, उठो, मुस्कुराओ और अपने सपनों को फिर से आवाज दो। आज का दिन किसी और जैसा नहीं, क्योंकि आज कल से बेहतर बनने का निर्णय जो लेंगे हम,

नमस्ते लखनऊ में, मैं अंजलि श्रीवास्तव भोर की सुहानी बेला में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। समय है समाचारों का। आइए चलते हैं दिल्ली केंद्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी, सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3,567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगिट बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि

वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में

0: और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर-18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। समय है हमारे किसान भाइयों को कृषि से संबंधित जानकारी देने का। आज सुनी धान उत्पादन की उन्नत तकनीक विषय पर डॉक्टर आशुतोष कुमार मिश्र की गई भेंटवार्ता। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां खरीफ के मौसम में धान उत्पादन की योजना बनाए हैं तो इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं संयुक्त कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश डॉक्टर आशुतोष कुमार मिश्रा साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां किसान भाई बहन खरीफ में धान उत्पादन की योजना बनाए हैं तो क्या सलाह है आपकी?
3: सबसे पहले तो हम किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि वह अपने खेत को अच्छी प्रकार से जांच लें, देख लें, मिट्टी की जांच अवश्य करा लें, साथ में देखें कि क्या उनकी स्थानीय परिस्थिति है, जैसे जलवायु, मिट्टी, सिंचाई के साधन, कहीं वहां जल भराव तो नहीं हो रहा है। इस प्रकार की स्थिति देख के ही प्रजातियों का वो चयन करें। जब बीज की बात आती है तो वो निश्चित रूप से प्रमाणित बीज ही अपने पास प्रयोग करें, बीज का शोधन अवश्य करें, मिट्टी की जांच कराने के बाद जो उसमें पोषक तत्व की कमी हो उसका प्रयोग करें।
2: देख, सब प्रजातियों की बात कर लें तो अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग चुनाव है, जैसे कहीं संकर धान लगाना चाहते हैं, कहीं सुगंधित धान है, कहीं समस्याग्रस्त भूमि है, कहीं कम दिन की अवधि की, कहीं मध्यम, कहीं अधिक दिन की, तो क्या प्रजातियों के बारे में?
3: देखिए, ऐसा है, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। किसान भाइयों को हम लोग सलाह भी देते हैं कि सबसे पहले देख लें कि यदि उन्हें सीधी बुआई करनी है तो कुछ हमारे पास अच्छी प्रजातियां हैं, जैसे गोविंद है, नरेंद्र 118 है, नरेंद्र 97 है, शुष्क सम्राट है, मालवी धान 2 है। इस प्रकार की प्रजातियां हैं जिनकी कि किसान भाई सीधी बुआई कर सकते हैं, और यदि उनको असिंचित दशा में भी यानी पानी के सहारे भी इन प्रजातियों से अच्छा उत्पादन प्राप्त हो जाता है। यदि सिंचित दशा की बात हम करें तो हमारे पास अच्छी प्रजातियां आ गई हैं, जैसे इसमें अब आपका MTU 7029 भी है, स्वर्णा सबवन भी है, बासमती का भी आ गया है, अच्छी पूसा बासमती 1 है, 2 है, आपका मालवी सुगंध 105 है, मालवी सुगंध 10-9 है। इस प्रकार की प्रजातियां भी हमारे पास आ गई हैं।
2: और संकर प्रजातियों में?
3: संकर प्रजातियों में देखिए बहुत ज्यादा प्रजातियां इसमें मार्केट में चल रही हैं। उसमें यदि आप देखेंगे तो 64-44 बायर का आ रहा है, 27P73 आ रहा है। और संकर प्रजातियों में हम किसान भाइयों से कहते हैं कि जो भी प्रजातियां उनके पास संकर का लें वह यह देख लें कि वह प्रजाति नोटिफाइड जरूर हो।
2: जी,
3: क्योंकि तमाम किसान भाई हम लोगों के पास आते हैं, कहते हैं साहब हमने बाजार से प्रजाति ले लिया, रिसर्च की वैरायटी ले लिया और उसको लगा दिया, खास रूप से पूर्वांचल के क्षेत्रों में, वहां पे बाद में हल्दिया रोग लग गया।
2: जी,
3: तो हम किसान भाइयों से कहते हैं कि जब भी वो प्रजाति लें, संकर की लें चाहे ओपन पॉलिटेड वैरायटी की लें, यानी बिना संकर वाली लें,
2: और रसीद पुर्जा जरूर,
3: रसीद पुर्जा जरूर लें, और दोनों प्रजातियों को जब भी लें तो वह प्रमाणित बीज हो।
2: डॉक्टर साहब, धान के नर्सरी प्रबंधन के बारे में क्या सलाह देना चाहते हैं? अभी भी नर्सरी डाल सकते हैं?
3: हाँ बिल्कुल, इसमें जो समय चल रहा है किसान भाई नर्सरी डाल सकते हैं। नर्सरी डालने के लिए जैसा आप सब जानते हैं किसान भाई कि जितने क्षेत्र में उनको खेती करनी है, धान की रोपाई करनी है, उसका कम से कम 1/10-12 भाग में वो नर्सरी डाल लें। अर्थात यदि उनको 50 बिस्वे में लगाना है या 4 बीघे में लगाना है तो 10 बिस्वे में नर्सरी अपना डाल लें। नर्सरी के लिए खेत को अच्छी प्रकार से तैयारी कर लें, जिसमें कि 3-4 जुताई करके खरपतवार निकाल लें, निकालने के बाद उसमें अच्छे से थोड़ी सी सड़ी गोबर की खाद मिला लें।

0: ट्राइकोडर्मा भी ला लें
1: जी
0: और उसको अच्छे से मतलब मिट्टी की तैयारी अपनी कर लें। इसके बाद जो हमारे बीज होते हैं, बीज का शोधन जरूर करें। बीज के शोधन के लिए यदि आप प्रमाणित बीज लेते हैं तो बीज हमारा शोधित आता है, नहीं तो कम से कम 2 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से किसान भाई शोधित करें। और धान के बीज के लिए तो होता है भाई कि धान के बीज में जो उनको चाहिए, जैसे 4 बीघे की खेती करना हो और मोटा धान लगाना है उनको, तो करीब 30 किलो, 25 से 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता
1: प्रति हेक्टेयर,
0: प्रति हेक्टेयर, 4 बीघे की बात करता
1: यानी
0: हूँ, तो
1: ढाई
0: प्रति
1: एकड़
0: 2.5 एकड़ जी। तो वह उस बीज को लेके पहले रात भर भिगो दें, भिगोने के बाद फिर उसको पानी से निकाल लें, फिर कम से कम उसको 70-72 घंटे यदि उसको छाए में सुखा दें,
1: ताकि अखुआ निकल जाए।
0: थोड़ा सा अखुआ निकल जाए, तो उससे क्या होता है कि फिर जो जमाव में दिक्कत उनको नहीं आती है और उनको पता भी चल जाता है कि हमारे धान का जमाव प्रतिशत कितना है।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे धान उत्पादन की उन्नत तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 9450-54-67, 9450-54-77। स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से ही खेत के चुनाव के बाद प्रजाति का चुनाव करें, मिट्टी की जांच अवश्य करा लें, भूमि शोधन और बीज शोधन अवश्य करें।
1: डॉक्टर आशुतोष कुमार मिश्रा साहब आज आप कार्यक्रम में आए और धान उत्पादन की उन्नत तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप धान उत्पादन की उन्नत तकनीक विषय पर डॉक्टर आशुतोष कुमार मिश्रा जी से की गई ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंट कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसी के साथ कृषि चर्चा संपन्न हुई। आपने ट्यून किया है मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज और कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ। कठिन परिस्थितियों में कभी कभी एक पंक्ति ही मनोबल को वापस लौटा देती है। आज के सुविचार में सुनी अध्यात्म और पर्यावरण के बारे में, आलेख आशाराम त्रिपाठी का, स्वर सत्यानंद का।
3: आज के युग की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है स्वच्छ पर्यावरण। आज सारा विश्व पर्यावरण प्रदूषण से व्यथित है। ये मान्यता थी कि लोग शिक्षित होकर पर्यावरण के प्रति सजग हो जाएंगे, किंतु ऐसा हो नहीं पा रहा। आज हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, और इसी तरह जल का दोहन भी किया जा रहा है। आज एक यक्ष प्रश्न सबके सामने है। प्रश्न ये है कि हमको और आपको किसने अधिकार दिया कि किसी दूसरे की आकृति बिगाड़ दें, उसका रूप ऐसा विकृत कर दें कि आगे की पीढ़ियां उसे पहचान ही न पाएं। गंगा, यमुना, गोमती आदि नदियों ने हम सबका क्या बिगाड़ा है? सारी गंदगी उन्हीं के नाम? हमें और आपको गंदगी नहीं पसंद है तो नदियों को गंदगी पसंद है क्या? आज गंगा रो रही है। गंगा फूट फूट रोए, निज कृतघ्न संतानों की करनी पर वो रोए। कल कल कल बहती थी गंगा, अविरल अद्भुत तरल तरंगा। झरने गाते गान इसी का, अगजग में सम्मान इसी का। झरने गाते गान इसी का, अगजग में सम्मान इसी का। सुधा धर्मिणी गंगा अब तो मल ही मल ढोए, गंगा फूट फूट रोए। गंगा ही नहीं, आज सभी नदियों का यही हाल है। नदियां तो नाले बनी, सिर धुनि धुनि पछताए, जनता तो रोती फिरे अस्पताल में जाए। हमने और आपने जागरूकता नहीं दिखाई, फलतः भारतीय संस्कृति की पहचान माँ के समान ही नहीं, माँ से भी बड़ी गंगा, यमुना, गोमती आदि नदियां नाले का रूप धारण कर चुकी हैं। इसके लिए सरकार ही उत्तरदायी नहीं है, हम और आप भी उत्तरदायी हैं। चेत जाइए, समय बालू की भांति हाथ से फिसल रहा है। आज नदी, पर्वत, वन, सागर, आकाश, सूर्य, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी सब प्रदूषण से त्रस्त हैं और लोग माया बटोरने में लगे हैं। अरे भाई, भयावह प्रदूषण के कारण आज जब हमारा, आपका, सबका अस्तित्व ही खतरे में है, तब ये विपुल संपदा किस काम की? पृथ्वी

0: अनंत रत्नों की खान है, संतप्त और असहाय को आश्रय देने वाली धन प्रदात्री है। पृथ्वी की कृपा से ही कृषि आदि कार्य संभव हो पाता है। ये ऐश्वर्य और रक्षा प्रदान करती है, मन की व्यथा से हमारी रक्षा करती है। आज इसी पृथ्वी की दुर्दशा देखकर रोना ही आता है, क्योंकि सुनने वाले विरले ही हैं। हमारी तो कामना है हरित वसन धरती रहे, नील वर्ण आकाश, तेज पूर्ण हो सूर्य का अनुपम अमित प्रकाश। जब हमारा मन शिव संकल्पी होगा, तभी हम विश्व भर में शांति स्थापित कर सकेंगे और तभी हम स्वच्छ पर्यावरण को संरक्षित करने में समर्थ होंगे।
1: आज के इस विचार में आप सुन रही थी अध्यात्म और पर्यावरण के बारे में आलेख आशाराम त्रिपाठी का था और स्वर सत्यनंद की। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

मनमोहन का नाम, उनकी मधुर मुस्कान, उनकी बांसुरी की तान और उनकी लीलाएं जीवन को आनंद और शांति से भर देती हैं। संसार की भागदौड़, दुख चिंताओं के बीच कृष्ण का स्मरण ही मन को स्थिरता और सुकून देता है।

ईश्वर अनंत है और सभी प्राणियों की अंतरात्मा उसी का अंश है। हम उस ईश्वर से मिलने से ही तो कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

आप सुन रहे हैं नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम। भक्ति के रस का और आनंद लेने के लिए हम चलते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुनने के लिए। आज आप सुनेंगे भाग संख्या 194।

अयोध्यावासी उनके साथ राम को लौटा लाने के लिए वन जाने को उद्यत हैं। मंत्रियों को आदेश दिया गया है कि वे राजतिलक की सारी सामग्री वन में ले चलें, जहां वशिष्ठ जी श्री राम का राजतिलक करेंगे। सबसे आगे अरुंधति तथा अग्निहोत्र की सामग्री के साथ मुनि वशिष्ठ रथ पर सवार होकर चले। उनके पीछे तेज और तपस्या के धनी ब्राह्मणों के दल अनेक सवारियों पर आसीन हैं। नगर के नर नारियों के सुसज्जित रथों के साथ हैं रानियों की पालकियां। सबको विदा करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई पैदल चल पड़े तो माता कौशल्या ने भरत को बुलाकर उनकी पलैया ली और उनसे रथ पर सवार होने को कहा। दोनों भाइयों ने माता की आज्ञा सिर पर धारण की।

0: अभी आप श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुन रहे थे। गायक कलाकार थे ए हरिहरन और वाणी जयराम। संगीत संयोजन सतीश पाटिया का था।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 6:55 होने को है। आइए सुनते हैं संस्कृत में समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: सुदृढतां प्रकटयति। अथ च क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तान दलयोर्मध्ये स्पर्धा अद्य न्यू चंडीगढ़स्य मुलानपुर स्थिते महाराजा यादवेन्द्र सिंह अंताराष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे आरप्स्यते। अस्यां स्पर्धायां शुभमन गिलः भारतीय दलस्य नेतृत्वं विधास्यति। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं प्रातः 9:30 आरप्स्यते। पुरुषाणां अंडर 18 इति 18 एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 5-3 अंतरालेन पराजितम्। अपरतः महिलानां 18 एशिया कप प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां चीन देशेन भारतीय दलं पराजितम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वे पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। आप सभी श्रोताओं का नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। तनाव छोड़े, मुस्कान अपनाएं, अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए यही सबसे सरल उपाय। स्वास्थ्य अच्छा कार्यक्रम का यही प्रयास कि हमारे श्रोता कैसे स्वस्थ रहे। तो आज सुनिए स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी नमक विषय पर नीना सोनकर की ये जानकारी।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं हमारा आज का विषय है नमक, जो हमारे भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है। नमक हमारे खाने में न केवल स्वाद लाता है बल्कि ये हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व भी है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि नमक हमारी सेहत पर कितना गहरा असर डालता है? आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमक का मुख्य घटक सोडियम क्लोराइड है। इसमें मौजूद सोडियम शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। ये नसों और मांसपेशियों के सही संचालन के साथ साथ शरीर के जल संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। सोडियम की कमी से कमजोरी, थकान और मांसपेशियों में ऐंठन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यही कारण है कि नमक को हमारी दिनचर्या में सही मात्रा में शामिल करना जरूरी है। नमक के कई प्रकार होते हैं और हर प्रकार के अपने लाभ होते हैं। सबसे आम प्रकार है साधारण सफेद नमक, जो हमारे रोजमर्रा के भोजन में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सेंधा नमक, जिसे अक्सर उपवास के दौरान खाया जाता है, अपने शुद्ध खनिज गुणों के लिए जाना जाता है। काला नमक पाचन को बेहतर बनाने और पेट की समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। हाल के वर्षों में हिमालयन पिंक सॉल्ट भी काफी लोकप्रिय हुआ है, जिसमें खनिजों की भरपूर मात्रा होती है। स्वास्थ्य के लिहाज से नमक की मात्रा का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा नमक खाने से उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, जो दिल की बीमारियों और स्ट्रोक का खतरा बढ़ा देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक व्यक्ति को रोजाना 5 ग्राम से अधिक नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। ये मात्रा लगभग 1 चम्मच के बराबर होती है। दूसरी ओर बहुत कम नमक का सेवन भी समस्याएं पैदा कर सकता है, जैसे कमजोरी, पाचन तंत्र की गड़बड़ी और मांसपेशियों की ऐंठन। भारत में आयोडीन युक्त नमक का महत्व भी काफी अधिक है। आयोडीन हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि के सही कार्य के लिए जरूरी है। इसकी कमी से बहुत से रोग होने की संभावना होती है और मानसिक विकास की कमी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। आयोडीन युक्त नमक ने भारत में आयोडीन की कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने आहार में नमक को संतुलित करना आसान है। सबसे पहले प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड का सेवन कम करें, क्योंकि इसमें छुपा हुआ नमक बहुत अधिक मात्रा में होता है। ताजे और घर पर बने खाने को प्राथमिकता दें। खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए नींबू, अदरक और हर्ब्स के साथ अन्य मसालों का इस्तेमाल करें, जो नमक की आवश्यकता को कम कर सकते हैं। सेंधा नमक और काला नमक जैसे पारंपरिक विकल्प भी सेहत के लिए लाभकारी है। सेंधा नमक डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है और पाचन को बेहतर बनाता है। काला नमक, जो आयरन और अन्य खनिजों से भरपूर है, गैस और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है। इसे चाट, दही या फलों के साथ मिलाकर खाने से न केवल स्वाद बढ़ता है बल्कि स्वास्थ्य भी सुधरता है। नमक को लेकर कई मिथक भी प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि बिना नमक के खाना खाना स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। हमारे शरीर को सोडियम की एक निश्चित मात्रा की जरूरत होती है, जो संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। इसके अलावा हिमालयन पिंक सॉल्ट को साधारण नमक से अधिक फायदेमंद माना जाता है, लेकिन

इसका मुख्य लाभ खनिजों की विविधता में है। हर प्रकार के नमक का उपयोग संतुलित मात्रा में करना ही सही तरीका है। नमक का महत्व केवल सेहत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति और परंपराओं का भी हिस्सा है। भारतीय रीति रिवाजों में नमक को शुभता और स्थिरता का प्रतीक माना गया है। पुराने समय में नमक को दोस्ती और रिश्तों की मजबूती का प्रतीक भी माना जाता था। श्रोताओं, नमक हमारे जीवन का

आकाशवाणी लखनऊ आज जिन कार्यक्रमों को आपके लिए ला रहा है उनके बारे में आपको जानकारी दे दी। राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती का प्रसारण होगा रात 9:30 पर। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रसारित होगा रात 10:00। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला प्रसारित होगी रात 11:10 पर। इसमें युवा शक्ति विषय पर सुनिएगा डॉक्टर मनसुख मांडविया केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री जी को। ये सभी कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत रात 8:00 आकाशवाणी के 90 वर्षों की यात्रा पर विशेष कार्यक्रम साहित्यिक समाज और आकाशवाणी, इस विषय पर नवीन जोशी से डॉक्टर नगेन सिंह रघुवंशी की ये भेंटवार्ता आप सुनेंगे। उर्दू कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर समाज फरमाइएगा आकाशवाणी लखनऊ मरकज की पेशकश, सुनिएगा बशीर बद पर खसूसी प्रोग्राम उजाले उनकी यादों की, तहरीर आसिफ इकबाल की और सदाकार हैं आसिफ इकबाल और शमशुल आरफीन। जिले की हलचल कार्यक्रम में सुबह 9:15 पर आज फिरोजाबाद और जौनपुर जिलों की हलचल प्रसारित होगी। सुबह 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में आज का विषय है जल में जीवन है। आपका पसंदीदा कार्यक्रम आज सुबह प्रसारित होगा सुबह 7:31 पर। दिन में 1:15 पर घरांगन कार्यक्रम में फरमाइशी लोक गीतों का कार्यक्रम मन भावन बहने सुनेंगी। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर नए फलदार वृक्ष लगाने की योजना विषय पर डॉक्टर अनिल कुमार दुबे से की गई भेंटवार्ता किसान भाई सुनेंगे। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय। युवा साथी युवा तरंग कार्यक्रम सुनेंगे शाम 5:25 पर। इसमें रमेश चंद की वार्ता होगी समुन्नत विकास में धार्मिक पर्यटन की भूमिका। नई उड़ान कार्यक्रम में शाम 5:45 पर लोक स्वर में सुनिए ओबी पर आधारित कार्यक्रम विलुप्त होती लोक परंपराएं मिट्टी की खोती बकनी। शाम 6:30 पर लोकार्थन कार्यक्रम में राजनारायण वर्मा की वार्ता होगी ग्रामीण उद्गम से आत्मनिर्भर गांव। खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर डॉक्टर लाल पंकज कुमार सिंह से की गई भेंटवार्ता का विषय है धान की फसल में समन्वित खरपतवार प्रबंध। वेट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 7:31 पर विज्ञान जगत कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें डिकोडिंग साइंस आखिर विज्ञान के पीछे का विज्ञान क्या है, इस विषय पर अगम दयाल श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोफेसर से की गई भेंटवार्ता श्रोता सुनेंगे। वेट करता है प्रवीण कुमार। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में सुबह 9:50 पर और लोक माधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर हेमा उप्रेती के गाए अवधि लोकगीत का आप आनंद ले सकते हैं। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात 8:10 पर डॉक्टर शिखा भदौरिया के गाए गीत श्रोता सुनेंगे। श्रोताओं के पतवाई मेल पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत जरूर सुनिएगा सुबह 8:45 पर। फिल्म संगीत का फोन इन इंटरेक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें सुनना न भूलिएगा सुबह 11:00 से। इसके अलावा समय समय पर प्रायोजित कार्यक्रम और चित्रपट से कार्यक्रम का प्रसारण होगा। हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर बता दें उर्दू कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर समाध फरमाइएगा आकाशवाणी लखनऊ मरकज की पेशकश, सुनिएगा बशीर बद पर खसूसी प्रोग्राम उजाले उनकी यादों की, तहरीर आसिफ इकबाल की और सदाकार हैं आसिफ इकबाल और शमशुल आरफीन। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ, कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा।

विविध रंगों को समेटे कार्यक्रम विविधा में मैं अंजलि श्रीवास्तव आपको नमस्कार करती हूँ। कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है जल में जीवन है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एक ऐसा विषय जो केवल प्रकृति की बात नहीं करता, बल्कि हमारे अस्तित्व, हमारी सांसों और आने वाले भविष्य की कहानी कहता है। आज का विषय है जल में जीवन है। यह एक साधारण वाक्य नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का सत्य है, क्योंकि जहाँ जल है वहीं हरियाली है, और वहीं खुशहाली है, वहीं जीवन की धड़कन है।

सो जी, यदि धरती पर जलना होता तो क्या होता? ना नदियां बहती, ना खेतों में फसलें लहलहाती, ना पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई देता और ना ही मनुष्य का जीवन संभव होता। जल प्रकृति का वह अमूल उपहार है जिसे हम हर दिन उपयोग तो करते हैं, लेकिन उसका वास्तविक महत्व अक्सर भूल जाते हैं। साथियों, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका अधिकांश भाग जल से ढका हुआ है। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि इस विशाल जलराशि में पीने योग्य जल बहुत कम है। समुद्रों का पानी खारा है जिसे सीधे उपयोग में नहीं लाया जा सकता। तो मीठा जल हमें नदियों, तालाबों, झीलों और भूजल के रूप में मिलता है। वही हमारे जीवन का आधार है। यही कारण है कि जल का संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमारे जीवन का प्रत्येक कार्य जल से जुड़ा हुआ है। सुबह आँख खुलते ही हम पानी का उपयोग करते हैं। भोजन बनाना हो, सफाई करनी हो, खेती करनी हो या उद्योग चलाने हो, हर क्षेत्र में जल की आवश्यकता पड़ती है। हमारे शरीर का भी अधिकांश भाग जल से बना हुआ है। डॉक्टर कहते हैं स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त पानी पीना आवश्यक है, क्योंकि जल शरीर को ऊर्जा देता है और जीवन की क्रियाओं को संतुलित करता है। जल केवल मनुष्य के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जीव जगत के लिए आवश्यक है। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कीट पतंगे, सभी का जीवन जल पर निर्भर है। वर्षा की पहली बूंद जब धरती पर पड़ती है तब मिट्टी से उठने वाली सौंधी खुशबू हमें प्रकृति के जीवित होने का एहसास कराती है। पेड़ पौधे पानी पाकर हरे भरे हो जाते हैं, नदियाँ कल कल बहने लगती है और किसान के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जल का महत्व और भी अधिक है। हमारे किसान पूरी तरह वर्षा और सिंचाई पर निर्भर रहते हैं। यदि समय पर बारिश ना हो तो फसलें सूख जाती हैं और किसानों की मेहनत पर संकट आ जाता है। इसलिए हमारे यहाँ वर्षा को ईश्वर का आशीर्वाद माना गया है। लेकिन श्रोताओं, आज मानव की लापरवाही ने जल संकट को गंभीर बना दिया है। पहले गाँव में कुएं और तालाब साल भर पानी से भरे रहते थे, लेकिन आज कई जल स्रोत सूखते जा रहे हैं। नदियों में गंदगी और रासायनिक कचरा डाला जा रहा है। उद्योगों का दूषित पानी नदियों को प्रदूषित कर रहा है। प्लास्टिक और कूड़े कचरे ने जल की पवित्रता को नष्ट कर दिया है। आज कई शहर ऐसे हैं जहां लोग पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कहीं टैंकरों से पानी बांटा जा रहा है तो कहीं महिलाएं कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाने को मजबूर हैं। यह स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है कि यदि अभी भी हम

आगे नहीं जागे तो आने वाला समय और भी भयावह हो सकता है। जलवायु परिवर्तन ने भी संकट को और बढ़ा दिया है। मौसम का संतुलन बिगड़ रहा है, कहीं अत्यधिक वर्षा हो रही है तो कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ रहा है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि यदि जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में विश्व युद्ध भी पानी के लिए ही हो सकते हैं। श्रोताओं, जल ये केवल कहने या चिंता के विषय नहीं है बल्कि समाधान खोजने का समय है। जल संरक्षण जन आंदोलन बनना चाहिए। हमें अपने दैनिक जीवन में पानी बचाने की आदत डालनी चाहिए, जैसे दांत साफ करते समय नल बंद रखना, आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग ना करना, वर्षा जल संचयन करना और घरों में पानी की बर्बादी को रोकना। वर्षा जल संचयन अर्थात रेन वाटर हार्वेस्टिंग आज की सबसे उपयोगी तकनीकों में से एक है। यदि हम वर्षा के पानी को बचाकर जमीन के भीतर पहुंचाएं तो भूजल स्तर बढ़ सकता है। गांव में पुराने तालाबों और कुओं को पुनर्जीवित करना भी बहुत आवश्यक है। पेड़ पौधे भी जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां अधिक पेड़ होते हैं वहां वर्षा भी संतुलित होती है और जल स्रोत सुरक्षित रहते हैं। इसलिए हमें अधिक जल से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। वृक्ष केवल छाया नहीं देते बल्कि धरती के जल पर संतुलन बनाए रखते हैं। साथियों, हमारी संस्कृति ने सदैव जल को सम्मान दिया है। भारत में नदियों को माँ कहा जाता है, गंगा को माँ और यमुना को यमुना मैया कहकर पुकारते हैं। यह केवल आस्था नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। पुराने समय में लोग तालाबों और कुओं की पूजा करते थे क्योंकि वे जानते थे कि जल ही जीवन का आधार है। हर बूंद की कीमत हम सब जानते हैं। जब नई पीढ़ी जागरूक होगी तभी समाज में वास्तविक परिवर्तन आएगा। आज विश्व भर में सेव वाटर सेव लाइफ अर्थात जल बचाओ जीवन बचाओ का संदेश दिया जा रहा है। ये केवल नारा नहीं बल्कि मानव सभ्यता को बचाने का मंत्र है। आइए हम सब मिलकर यही संकल्प लें कि हम जल की एक एक बूंद का सम्मान करेंगे, नदियों और तालाबों को स्वच्छ रखेंगे, वर्षा जल संरक्षण करेंगे। इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम समाप्त करने की मैं अंजलि श्रीवास्तव आपसे अनुमति चाहूंगी। नमस्कार।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में

अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है।

0: महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम महाअभियान का किया शुभारंभ। प्रदेश में 2741 करोड़ रुपए की स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना भी हुई शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का किया शुभारंभ। कहा, गन्ना आधारित बायोप्लास्टिक का इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। बलिया का सुरहाताल प्रदेश का 13वां रामसर साइट घोषित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धि पर जताई खुशी। और वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक समाप्त। अंतिम दिन ब्रिक्स सदस्य देशों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को मजबूत बनाने पर दिया जोर। अब समाचार विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कल बड़ी संख्या में पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व बैंक के सहयोग से 2741 करोड़ रुपए की लागत वाली देश की पहली एयर शेड आधारित उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना यूपी कैंप का शुभारम्भ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री की मौजूदगी में विश्व बैंक और प्रदेश सरकार के बीच MOU का हस्तांतरण हुआ। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लखनऊ की कुकरेल रेंज में पौधरोपण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महर्षि चरक औषधि वन की भी स्थापना की। यहां उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 35 करोड़ पौधरोपण लक्ष्य के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम पौधरोपण महाअभियान 2026 की शुरुआत करते हुए इसके लोगों का भी अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें और पेड़ लगाकर प्रकृति का संरक्षण करने का संकल्प लें।
3: 5 संकल्प हम सबको इस अवसर पर लेने होंगे। एक, हर नागरिक एक पेड़ माँ के नाम पर अवश्य लगाएगा, कम से कम एक पेड़, यह हर नागरिक का दायित्व है। दूसरा, पेड़ लगाना ही नहीं, उसकी सुरक्षा का दायित्व भी लेना है, हर एक ओर से उसे बचाना है। तीसरा, जल संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। चौथा संकल्प होना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह रोके, उससे भी हमें पर्यावरण को होने वाले नुकसान के साथ हमें वो करना पड़ेगा। और अंतिम जो संकल्प है वह प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली को अपनाना।
2: इस अवसर पर श्रावस्ती स्थित गुलरा केन नाला को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किए जाने की भी घोषणा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ के अपने 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ किया। यह पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायोप्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में गन्ने के मूल्य में अच्छी बढ़ोतरी की गई है और बायो इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गन्ना आधारित बायोप्लास्टिक के इस्तेमाल से न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण होगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम होगा।
3: यूपी में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना थके डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों के चेहरे पे खुशहाली ला रही है। बहन और बेटियों के स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। व्यापारी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से आज हर जनपद विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बलरामपुर में 294 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश की पहचान निवेश और सुरक्षा के माहौल के लिए हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार हर जनपद के समग्र विकास के लिए काम कर रही है।
1: यूपी में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना थके डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों के चेहरे पे खुशहाली ला रही है। बहन और बेटियों के स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। व्यापारी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से आज हर जनपद विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुराहताल को देश का 100वां रामसर साइट घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्रभूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि भारत ने पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और आर्द्रभूमि सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। श्री योगी ने कहा कि यह उपलब्धि विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुराहताल प्रदेश का 13वां रामसर साइट है। लखनऊ में विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वन राज्य मंत्री डॉ अरुण कुमार सक्सेना ने सुराहताल के रामसर साइट बनने का प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। वाराणसी में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का कल समापन हो गया। आखिरी दिन ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को और मजबूत बनाने पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब समेत 11 देशों ने भाग लिया। संस्कृति मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव अमिता प्रसाद सरभाई ने बताया कि बैठक में भारत की मूल्यवान धरोहरों को वापस लाने पर चर्चा हुई। इस दौरान विकास और संस्कृति के समन्वय के साथ आगे बढ़ने को लेकर भी मंथन हुआ।
2: हमेशा यही कोशिश रही हो सरकार की और स्पेशली संस्कृति मंत्रालय की तो हमारे जो भी स्टोलन आर्टिफैक्ट्स हैं या जो स्मगल करके ले गए जाए गए या उसके पहले कॉलोनियल टाइम्स में ले जाए गए उनको कैसे वापस लाया जाए क्योंकि वो हमारी धरोहर, तो उसी के ऊपर चर्चा हुई है और कैसे डेवलपमेंट और कल्चर साथ साथ हो, विरोधाभास ना हो उसमें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र ने एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर कल से विशेष अभियान की शुरुआत हो गई है। अभियान के तहत प्रदेश में भी 21 जून तक सभी जनपदों के प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधि समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद स्थापित करेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपालों का आयोजन कर जन समस्याओं का निस्तारण करेंगे। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में वृक्षारोपण कर समेकित जन कल्याण और जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है।
3: भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने 5 जून से 21 जून के बीच में कार्यक्रम निर्धारित किया है। एक पेड़ माँ के नाम, यही कहूंगा 12 वर्ष नहीं, इसी तरह 2047 जो उनका सपना है कि 2047 में हमारा विश्व में देश हमारा बहुत आगे रहे, पूरी दुनिया को दिशा दे और आगे बढ़े और गरीबों की सेवा करते रहे।
0: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ में अकादमी सम्मान समारोह में वर्ष 2021 से 2024 तक के लिए चयनित कलाकारों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित इस समारोह में 51 विशिष्ट कलाकारों को संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए यह सम्मान प्रदान किए गए। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज भी पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कुछ जनपदों में तेज हवा और बारिश का अनुमान जताया है। पूर्वी जनपदों में बिजली गिरने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माह के नाम महाभियान का किया शुभारंभ। प्रदेश में 2741 करोड़ रुपए की स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना भी हुई शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बायोयुक्त ग्रीन कमांड 2026 का किया शुभारंभ। कहा, गन्ना आधारित बायोप्लास्टिक का इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। बलिया का सुरहाता, प्रदेश का 13वां रामसर साइट घोषित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धि पर जताई खुशी। और वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक समाप्त। अंतिम दिन ब्रिक्स सदस्य देशों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को मजबूत बनाने पर दिया जोर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

0: मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। आप हमारे कार्यक्रमों को न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी सुन सकते हैं। नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम में मैं अंजलि श्रीवास्तव हाजिर हूँ एक नई ऊर्जा, सकारात्मक सोच, जानकारियों और मनोरंजन से भरा कार्यक्रम आज सुबह के साथ। स्वीकार कीजिए मेरा और निधि का प्यार भरा नमस्कार। नई किरण, नई उम्मीद, हर मन में जगी विश्वास, इसी भाव के संग दोस्तों आज का ये सफर आगे बढ़े, क्यों निधि?
1: बिल्कुल, मैं भी अपने सभी श्रोताओं को बोलना चाहूंगी कि सुप्रभात, नमस्कार, और आज का दिन आप सभी के लिए, हमारे सभी सुनने वालों के लिए शुभ हो, अच्छा हो और बहुत खास हो। अंजलि, क्योंकि हर दिन एक नई शुरुआत होती है, एक नया मौका होता है जीने का, तो इसे पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ शुरू करना चाहिए, क्यों?
0: और शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से।
1: बिल्कुल,
0: तो आज का सुविचार है, आवाज ऊंची होगी तो कुछ लोग ही सुनेंगे, लेकिन अगर बात सच्ची होगी तो बहुत लोग सुनेंगे। तेज आवाज नहीं, ऊंची सोच लोगों का दिल जीतती है, और अगर हम तेज आवाज में बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वह सच्ची हो, लेकिन अगर बात में सच्चाई है तो वही बात धीमी भी असर करती है।
1: क्या बात है अंजलि, बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन यहाँ पर यह कहना बेहद जरूरी है कि आवाज का जो शोर होता है ना, वो कानों तक तो पहुंचता है, पर जो अच्छी बातें होती हैं, सच्ची बातें होती हैं, वो दिलों में उतर जाती हैं। जहां शब्दों में मिठास हो और सुनने वाले खुद ही रुक नहीं पाते उस आवाज को सुनने के लिए।
0: क्यों अंजलि, क्या बात कही। और जानती हो, अब हमारे जो श्रोता हैं, हाँ? अपनी आवाज के माध्यम से ही तो हम इस तक पहुंचते हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन तेज आवाज के साथ नहीं, आकाशवाणी की सच्ची बातों के साथ,
1: मधुर आवाज के साथ।
0: तभी तो अपना प्यार अब वो अपने पत्र के माध्यम से हमें बताते हैं, और ये बताते हैं कि उनका हमसे कितना जुड़ाव है, है ना
1: अंजलि? जिस तरह से पत्र आते हैं, ईमेल्स आते हैं, और जिस तरह से कॉल्स आते हैं, उससे ये लगता है ना कि जो हमारे सुनने वाले हैं उनको कितना अच्छा लग रहा है।
0: बिल्कुल, उनको अच्छा लग रहा है, और जो उन्हें नहीं भी अच्छा लगता है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो पत्र के माध्यम से ही बताते हैं। तो अब हम अपने श्रोताओं को एक गीत सुनवाएं।
1: बिल्कुल,

श्रोताओं, ये जो गीत आप सुन रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म अनुरोध से। आवाज है किशोर कुमार की और ये गीत राग यमन पर आधारित है। राग यमन कल्याण से बना है। इसमें आरोह अवरोह दोनों साथ स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इसमें मध्यम तीव्र लगता है और बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं। मुगल काल में इसका नाम यमन पड़ा। पहले इसे कल्याण के नाम से जानते थे। इसी राग की ये विशेषता है कि जब न लगे मन तो गाइए यमन।

0: आकाश की सीमाएं छोटी पड़ जाती हैं जब मन में विश्वास की ज्योति जग जाती है और जब हमारे सपने जुड़े हों कला संगीत संवेदनशीलता से, तो क्या ही कहने। ऐसा ही एक समायोजन आयोजन होने वाला है कल यानी 7 जून लखनऊ में, जो है चारा साज सीजन 2। इसमें संबंधित बांधवी फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉक्टर सुधा वाजपेयी से रिंकी शर्मा की बातचीत अब हम आपको सुनवाते हैं। प्रस्तुत करता है रमनप्रीत सिंह।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो केवल सपने नहीं देखते बल्कि उन सपनों को साकार करने के लिए लगातार प्रयास भी करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विशेष आयोजन की जो कला संगीत संवेदनशीलता और समावेशन का सुंदर संगम बनने जा रहा है। और ये संगम जब किसी सार्थक उद्देश्य से जुड़ता है तो वो केवल एक कार्यक्रम नहीं रह जाता बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव का माध्यम भी बन जाता है। ऐसा ही एक विशेष आयोजन 7 जून को आयोजित होने जा रहा है, चार साज सीजन 2। इस विशेष कार्यक्रम के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आज हमारे साथ है बांधवी फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉक्टर सुधा वाजपेयी जी। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: सभी को सादर नमस्कार।
1: नमस्कार मैम, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि चार साज सीजन 2 क्या है और इसके पीछे क्या सोच और क्या उद्देश्य है।
2: चारा साज शब्द का अर्थ ही होता है हीलर,

0: किसी को हील करना, इलाज करना, डॉक्टरी करना, जैसे चारासाजी कहते हैं, यानी इलाज करना। तो ये मेरे दिमाग में इसलिए आया कि मैं दिव्यांगों के लिए बहुत वर्षों से कार्य करती थी, उसमें उनके स्पोर्ट्स कराती थी, उनको स्पोर्ट्स के माध्यम से, जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं, वो मानसिक मंदित भी, जो अन्य कई कैटेगरी के विकलांग बच्चे हैं, उनके लिए काम करती थी। लेकिन उसी में कई बच्चे ऐसे आते थे जो खेल के साथ साथ कल्चरली बहुत स्ट्रांग है, जिनमें कोई ना कोई ऐसी कला है, आर्ट फॉर्म है, कुछ उसमें गाते बहुत अच्छा है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे बजाते हैं, कुछ नृत्य बहुत अच्छा करते हैं, कुछ पेंटिंग करते हैं। इस तरह के जो बच्चे थे वो लगातार मुझसे कहते थे कि हम लोगों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा मंच मिले तो वो हम लोग भी एक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो जैसे सामान्य कलाकारों को हम लोग देते हैं, कोई अच्छा आर्टिस्ट है उसको एक बड़ा स्टेज देते हैं, तो वैसे करते करते वो एक होता ना कि कलाकार भी एक, उनका अपना एक सेल्फ सस्टेनेबल एक चीजें होती है कि वो अपना उसे अर्न भी करते हैं, यानी अपनी
1: जी
0: कला तो दिखाते ही हैं, लोग सुनते हैं, आनंदित होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी जीविका भी उससे चलाते हैं। लेकिन जो हमारे दिव्यांग कलाकार हैं उनके लिए ऐसा कोई प्रयास नहीं होता था कि उनको भी उतने बड़े मंच मिले। तो ये वहीं से एक शुरुआत हुई, पिछले वर्ष मैंने इसकी शुरुआत की, चारा साज की, और मुझे लगा कि ऐसा ही कुछ नाम भी रखना चाहिए जो इसको एक दिखाता हो, बताता हो, उसका अर्थ भी हो कुछ ना कुछ ऐसा। तो ये बांधवी फाउंडेशन, साहस स्पोर्ट्स और भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, क्योंकि अगर वो लोग हमारे साथ नहीं होते तो भी थोड़ा सा मुश्किल होता, तो भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय भी इसमें शामिल है। उनके साथ मिल करके हम लोगों ने एक ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष कराने का एक प्रण लिया है।
1: जी, मिलकर चलेंगे तो लंबा सफर भी बहुत आसान और छोटा हो जाएगा। ये जो विशेष आयोजन है, इसमें अभी आपने बताया कि दिव्यांग जनों को भी शामिल कर रहे हैं, तो कौन-कौन से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और इस आयोजन की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
0: इसमें दिव्यांग जो बच्चे हैं या युवा हैं वो तो इसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि चारा सास का मतलब ही होता है हील करने वाला, यानी हम अपनी सोसाइटी को एक ऐसा बनाएं जो एकदम अलग थलग उनको नहीं रखे, केवल दिव्यांग जनों का ना हो कार्यक्रम, बल्कि हमारी सोसाइटी के जितने अन्य लोग हैं वो भी उनके प्रति उतने ही संवेदनशील बने। हम उन पर केवल दया नहीं दिखाएं, हम उनको अपने साथ ले करके चले, कंधे से कंधा मिला करके। तो इसमें हमने सबसे पहले बात की डॉक्टर से, एक डॉक्टर आनंद ओझा हैं, पूर्व निदेशक हैं सिविल हॉस्पिटल के, उनसे मेरी बातचीत हुई और मैंने कहा मैं दिव्यांगों के लिए काम करती हूँ, वो चूंकि लिखते भी बहुत अच्छा है, गाते बहुत अच्छा है, उन्होंने कहा चलिए मिल करके करते हैं हम लोग डॉक्टर्स उसमें साथ देंगे आपका, और आप उन बच्चों को भी आगे बढ़ाइए। तो पिछले वर्ष ये उनसे बातचीत के बाद ये शुरुआत हुई, और उसके बाद लगातार इसमें अनेक डॉक्टर जुड़ते चले गए, जिसमें शहर के कई प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, जैसे डॉक्टर आनंद ओझा जी हैं, डॉक्टर राजेश सिंह जी हैं सिविल हॉस्पिटल से, डॉक्टर आशीष माथुर बहुत फेमस पेडियाट्रिशियन है लखनऊ के, डॉक्टर निधि निरंजन जी हैं, डॉक्टर रेणु जैन गायनकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर आलोक दीक्षित जी हैं, डॉक्टर सचिन ओझा हैं, डॉक्टर समर हैं, इस तरह से बहुत सारे डॉक्टर्स जो आए साथ में कि नहीं हम इन कलाकारों को भी अपने साथ साथ ले करके चलेंगे। और ये डॉक्टर्स भी उतने ही बेहतरीन गायक हैं, अपने इलाज करने के साथ साथ बहुत बेहतरीन गायक हैं ये।
1: बहुत ही सुंदर संगम, एक तरफ डॉक्टर है और एक तरफ दिव्यांगजन है, दोनों ही हमारे समाज का बहुत खास हिस्सा है। तो इस संपूर्ण आयोजन में कौन कौन सी गतिविधियां दर्शकों को देखने को मिलेंगी मंच पर?
0: गायन का ही कार्यक्रम है तो इसमें डॉक्टर्स अपने गीत प्रस्तुत करेंगे, उसके साथ साथ जो हमारे दिव्यांग कलाकार हैं, जिसमें एक स्वरा चंद्रा एक बच्ची है 10 साल की, लेकिन बहुत खूबसूरत वो गाती है। आप उसको जब सुनेंगे, अभी कार्यक्रम में आप लोग आएंगे और उसको सुनेंगे, तो आप देखेंगे कि कितनी बेहतरीन गायिका, यानी एक सामान्य व्यक्ति जैसे गाता है उससे भी कई, मतलब कई गुना वो बेहतरीन गायिका है। तो उसको अगर और थोड़ा रिफॉर्म किया जाए तो वो एक बहुत, मतलब हिंदुस्तान की एक बहुत श्रेष्ठ गायिका के रूप में निकल सकती है। ऐसी एक सबाबली जी है, वो रायबरेली से आ रहे हैं, वो भी एक युवा बच्चा है, गाता है बहुत अच्छा। अनूप चौधरी हैं, दिव्यांशी मिश्रा हैं, सोनल श्रीवास्तव हैं, नमन कुशवाहा हैं, ये बच्चे अभी सीख रहे हैं भातखंडे में, तो इनको भी जब एक मंच मिलेगा तो वो प्रोत्साहन भी इनको मिलेगा कि नहीं हमें इसको और अच्छे से सीखना है।
1: तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि दिव्यांग प्रतिभागियों की प्रतिभाओं और उपलब्धियों को प्रस्तुत करने के लिए इस कार्यक्रम में क्या विशेष पहल की गई है?
0: इसमें यही संगीत का कार्यक्रम है, इनको हम एक मंच देंगे, साथ साथ इन दिव्यांग बच्चों का सम्मान करेंगे, डॉक्टर्स का सम्मान करेंगे, ये सब इसमें जिसका, जिस बच्चे का जो तैयार है, किसी ने अपनी ठुमरी तैयार की है, किसी ने दादरा तैयार किया है, कोई बच्चा अपना फिल्मी बहुत अच्छे गाने प्रस्तुत करना चाहता है, तो तो इसमें अलग अलग प्रस्तुतियां होंगी हर एक व्यक्ति की।
1: तो अगर

0: हमारे श्रोता इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो इसकी तिथि, समय, स्थान और जो भी आवश्यक जानकारी में शामिल होने के लिए जरूरी हो वो आप हमारे श्रोताओं से साझा करें।
1: ये कार्यक्रम 7 जून को शाम 5 बजे रायुमानाथ बली ऑडिटोरियम में है और मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी श्रोतागण मुझे सुन रहे हैं, कि वो सब हमारे इन दिव्यांग बच्चों को भी सुनने के लिए और हमारे विशिष्ट जन डॉक्टर्स को भी सुनने के लिए वहां जरूर आए। इसमें कोई एंट्री फीस नहीं है, कोई टिकट्स नहीं है। हाँ, यदि कोई स्वेच्छा से इनके लिए कुछ वहां करना चाहे तो वो डोनेट कर सकता है, लेकिन सभी लोग इसमें सादर आमंत्रित हैं और मैं चाहती हूँ कि आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आए। एक थोड़ी सी जानकारी मैं और आपको देना चाहती हूँ कि इन दिव्यांग हमारे जो कलाकार हैं उनका ही एक बैंड अनुनाद बनाया है मैंने, कि इसमें हम इन बच्चों को ट्रेनिंग भी देंगे, इन युवाओं को ट्रेनिंग देंगे जो दिव्यांग बच्चे हैं हमारे, और वो सीख करके मंच पर और सुंदर प्रस्तुतियां दे सकें। और वो ट्रेनिंग इन बच्चों की निःशुल्क होगी, उसमें कोई उनका शुल्क नहीं है। तो जो कलाकार बच्चे जुड़ना चाहते हैं, जो इस संगीत को सीखना चाहते हैं, उनके लिए मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको बता देती हूँ कि 9415835522। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और वो सीखें भी, परफॉर्म करें, एक अच्छे कलाकार बने, एक अच्छे मनुष्य बने और हम सब मिल करके अपने जो जितने भी हमारे इस तरीके के, चाहे वो हमारे दिव्यांग स्पेशली एबल्ड कलाकार हों, चाहे महिलाएं हों, स्त्रियां हों, यानी एक समाज का जो एक पूरा है वो हम सबको लेकर कर चलें और अपने देश का विकास करें।
0: बहुत ही अच्छा प्रयास है और उम्मीद है कि ये कार्यक्रम सफल होगा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: बहुत बहुत आभार आपका।
0: डॉक्टर सुधा वाजपेयी जी थी आज हमारे साथ और हमें जानकारी दी 4 साल सीजन 2 के बारे में। निश्चित रूप से ये आयोजन केवल कला और संस्कृति का उत्सव नहीं बल्कि प्रतिभा, संवेदनशीलता, समावेशन और मानवीय मूल्यों को सशक्त करने का एक सुंदर प्रयास है। हम सब आपके साथ हैं और इस आयोजन के लिए पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको शुभेच्छा।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे 4 साल सीजन 2 से संबंधित बांधवी फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुधा वाजपेयी से रिंकी शर्मा की ये बातचीत। बहुत ही अच्छी जानकारी थी सुधा जी ने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने बताया कि 7 जून को राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह में शाम 5 बजे से ये आयोजन आरंभ होगा, तो हमारे सभी श्रोता जो इच्छुक हैं वहाँ जा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमनप्रीत सिंह। निधि, अब हमने श्रोताओं को आज कौन सा विशेष दिन है इसके बारे में जानकारी दे दें।
3: जी,
2: तो आज है विश्व गीत दिवस या वर्ल्ड पीस डे। हर साल इसे 6 जून को मनाया जाता है। सबसे पहले बीजिंग में 6 जून 1917 को ये दिवस मनाया गया था। कीट इंसान और उनके खाद्य पदार्थ या उनसे उनके साथ जो उनमें रहने वाले हानिकारक रूप से जो कीट होते हैं वो फसलों को कैटरपिलर या टिड्डे हानि पहुंचाते हैं। रखे हुए खाद्य पदार्थ जैसे अनाज और खाद्य सामग्री को चूहे, सिल्वर फिश कपड़ों को छेद करती हैं और ये दीमक इमारती लकड़ियों को नुकसान पहुंचाती हैं। इस दिवस का क्या उद्देश्य है? यही है कि लोगों को कीट पतंगों से साफ होने वाली जो बीमारियां हैं और इस रोगों के प्रति जो जागरूकता है उसे फैलाएं। कीटों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है जिनमें कीटनाशक, जैविक नियंत्रण एजेंट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं।
3: क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि किस तरह से लोगों को कीट पतंगों से होने वाले नुकसान से जानकारी पहुंचाई जाए। और इसी के साथ एक और जो महत्वपूर्ण दिवस आज के दिन यानी 6 जून के दिन हम मनाते हैं वो है विश्व हरित छत दिवस।
2: अच्छा,
3: आपने सुना है इसके बारे में?
2: सुना है लेकिन ज्यादा डिटेल नहीं पता है।
3: मैं बताती हूँ कि ये जो विश्व हरित छत दिवस है इसको इसलिए मनाया जाता है जो पर्यावरण और शहरी हरियाली को बढ़ावा देने के लिए इमारतें होती हैं, जो शहरों में इमारतें बनी होती हैं तो हरियाली थोड़ी सी कम होती है ना क्योंकि लोग रहते हैं। तो
2: बिल्कुल आजकल के समय में जब हमारी आबादी इतनी बढ़ गई है, लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं
3: तो उस वैसे में हरियाली थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इमारतों की जो छत है उस पर जो पौधे लगाने का महत्व है उसको उजागर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है कि जो इमारतें हैं तो हरियाली भी कम ना हो और लोगों के जो रहने की जगह है वो भी बनी रहे। तो छत पर पेड़ पौधे लगाएं, प्लांट्स लगाएं जिससे नमी और जो धूप से बचाव है वो होता रहेगा। तो इस उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है।
2: बहुत अच्छी बात बताई तुमने।

तो भाई ये जो खूबसूरत सा गाना था ये गाया था लता मंगेशकर ने और अभिनेत्री फिल्म का ये गीत था। और आपको ये भी बता दें कि ये राग कलावती पर आधारित था। कलावती के बारे में बात करें तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक बहुत ही मधुर और कर्णप्रिय राग है जिसे इसकी सरलता और मनमोहक प्रकृति के लिए जाना जाता है ना अंजलि।

0: तो निधि
1: हम्म,
0: अब हमने हमारे श्रोताओं को मौसम का हाल बताएं।
1: बिल्कुल बता
0: दीजिए। पेड़ों की छाया में बैठा मन कुछ राहत पाता है, ठंडी हवा का झोंका जैसे गीत सुनाता है, आम की खुशबू बगिया में मीठी यादें ले आती हैं, घड़े का ठंडा पानी, ठंडी लस्सी सबको बहुत सुहाते हैं, गर्मी की ये छोटे सुख भी जीवन को महकाते हैं। तो इन गर्मी की बातों के साथ जान लेते हैं आज का मौसम। बता रहे हैं सीनियर साइंटिस्ट IMD मोहम्मद दानिश जी।
2: आज सुबह कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आज मौसम कैसा रहेगा तो हमारे श्रोताओं को बताइए प्लीज।
3: मौसम देखिए आज साफ रहेगा और तापमान में अब धीरे धीरे आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होगी
2: जी।
3: कहीं ना कहीं 3-4 दिनों में तापमान अच्छा बढ़ जाएगा, तो ऐसी कोई अलर्ट ऐसा नहीं है, लेकिन

0: हाँ गर्मी का ऐसा शुरू हो जाएगा।
1: अच्छा, तो ये कितने दिनों तक की, मतलब मौसम अभी
0: अभी
1: इस
0: ये
1: वीक
0: आने
1: पूरा
0: वाले दिनों
1: रहेगा?
0: में इस वीक पूरा अभी यहाँ से एकदम साफ ही है और फिर गर्मी का सबब बना रहेगा।
1: अच्छा, ठीक है दानिश जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: तो निधि,
3: हम्म,
2: अब हम अपने श्रोताओं को कुछ इतिहास की बातें बताएं।
3: चलिए बता देते हैं।
2: आज यानी 6 जून 1990 में भारत सरकार ने पासपोर्ट की वैधता को 10 वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लिया था।
3: अच्छा,
2: और क्या हुआ था आज के दिन? आज 1974 में आज ही के दिन मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। इसके बाद उन्हें छत्रपति की उपाधि से विभूषित किया गया था।
3: यानी कि आज ही के दिन उनको छत्रपति शिवाजी की उपाधि से विभूषित किया गया।
2: हाँ बिल्कुल। और नेहा कक्कड़ का जन्मदिन है ना?
3: उनको कैसे भूल सकते हैं।
2: 6 जून 1988 में पार्श्व गायिका नेहा कक्कड़ का जन्म ऋषिकेश में हुआ
3: और उन्होंने कई सारे जो बॉलीवुड गाने हैं वो गाए। 2006 में कक्कड़ ने भारतीय टेलीविजन शो इंडियन आइडल सीजन 2 में भी हिस्सा लिया था।
2: बिल्कुल।
3: और ये कुछ बहुत जो सुपर डुपर हिट गाने रहे थे उनमें मलाडी टेंस और बहुत से गाने जो थे।
2: हाँ,
3: वो हिट रहे उनके।
2: बिल्कुल। तो अब हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं एक गीत।

ये जो खूबसूरत सा गाना आप सुन रहे हैं, ये फिल्म रोजा से है और आवाज़ है एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की। और इसके साथ ही आपको हम इसके और डिटेल के बारे में बताएंगे। पहले आप सुनते रहिए ये खूबसूरत सा गीत।

और ये जो खूबसूरत सा गीत आपने सुना, ये राग शिवरंजनी पर आधारित है और पहाड़ी राग पर आधारित है, जो दोनों रागों की इसमें मधुर झलक मिलती है, जो पर्वतीय वादियों के अनुकूल और रोमांटिक प्राकृतिक का एहसास देते हैं।

0: निधि क्या बताने जा रही हो?
1: हाँ,
0: जल्दी से बताओ
1: अंजलि, हम जल्दी से आपको बता दें कि बर्थडेज की बात कर लेते हैं तो आज सुनील दत्त विश्व प्रसिद्ध अभिनेता जो रहे हैं जिनका जन्म भी 6 जून 1929 को हुआ और उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की रेडियो सीलोन से अपने करियर की। बस इनकी जानकारी देना बहुत जरूरी था हमें।
0: बहुत अच्छी जानकारी दी। तो साथियों, जून का महीना जीवन का अमृत है। गर्मी सिर्फ मौसम नहीं, ये हमारे धैर्य, करुणा और जिम्मेदारी की परीक्षा है। अगर हम प्रकृति और समाज के प्रति सजग रहे तो हम बेहतर, सुरक्षित और खुशहाल वातावरण बना सकते हैं। इसी के साथ मैं अंजलि श्रीवास्तव
1: और मैं निधि श्रीवास्तव
0: आज सुबह कार्यक्रम से अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: इसी के साथ नमस्कार लखनऊ कार्यक्रम भी समाप्त हो रहा है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
3: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
2: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
4: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूप से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार।

0: मुंबई।
1: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है।

0: अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
1: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
2: With Nepal, we have an expansive agenda.
3: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
2: Partnership that we have with Nepal.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
4: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपने अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
6: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
7: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई।

0: से अमेरिका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की संपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
0: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमेरिका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 और 15 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम नमस्ते बरेली। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम नमस्ते बरेली में हमारे सभी सुनने वालों को बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस प्रोग्राम नमस्ते बरेली में। आज का ये प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त।
1: मंडल रेल प्रबंधक, इज्जत नगर मंडल, पूर्वोत्तर रेलवे, आज आकाशवाणी के माध्यम से ही आकाशवाणी के अधिकारी और कर्मचारीगण को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर सभी को बधाई देती हूं और समाज में आपके योगदान को भी सराहती हूं।
0: जी हां श्रोताओं, 100.4 FM पर आप सुन रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम नमस्ते बरेली। साथियों, कल हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आह्वान किया, एक पेड़ माँ के नाम। आपने कहा कि पेड़ लगाने के साथ साथ पेड़ों को संरक्षित करने के लिए भी जोर दिया, क्योंकि पेड़ है तो जीवन है, ये हमें शुद्ध वायु देते हैं। धरा का श्रृंगार है पेड़, आने वाले कल का आधार है पेड़। आज हमने बातचीत की है इसी विषय पर, तो आइए सुनवाते हैं आपको बातचीत के अंश। प्रोग्राम नमस्ते बरेली में हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइंस पर उपस्थित हैं वन विभाग में वन क्षेत्र अधिकारी के पद पर तैनात श्री वैभव चौधरी जी। वैभव चौधरी जी, प्रोग्राम नमस्ते बरेली में आपका वेलकम है।
2: थैंक यू आपका।
0: कैसे हैं आप?
2: मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप?
0: बस बस, आपका आशीर्वाद है। वैभव जी, कल 5 जून को हम सभी ने, बल्कि हम सभी ने क्या, पूरे विश्व ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। तो हम ये चाहेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हमारे श्रोताओं को आप जानकारी दें और इसके महत्व के बारे में हमारे श्रोताओं को अगर बताएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा।
2: विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत हम लोग हर चीज, जैसे पॉलिथीन यूज नहीं करनी है वो हम सब जानते हैं, मगर एक दिन है जिसमें हम याद कर देते हैं कि ये चीज हमको नहीं करनी है।
0: जी,
2: पेड़ लगाना है, जल बचाना है।
0: बिल्कुल।
2: और ये हर आदमी की जिम्मेदारी है कि जब हम इस देश में या इस संसार में रह रहे हैं तो जो जो चीजें हमें नेचर ने दी हैं उन सबको संचित करें, उन सबको सेव करें।
0: जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि हम जब इस देश में रहते हैं तो उसको संरक्षित करें, उसको संचित करें, चाहे वो जल हो या फिर पेड़ पौधे हों। तो आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के साथ साथ आज प्रदूषण भी बढ़ रहा है, तो पेड़ पौधे किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं या पेड़ पौधों के द्वारा हम इस जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं या प्रदूषण को रोक सकते हैं, इस विषय में भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: जलवायु परिवर्तन जो रोकने की चीज, सबसे बड़ी चीज उसमें महत्वपूर्ण योगदान है वो वृक्षों का ही हमेशा से रहा है।
0: जी,
2: जब वृक्ष होते हैं तो वहां पर आप देखिए एक वृक्ष के नीचे कई मोटरसाइकिल, कई साइकिलें। पुराने परिवेश में हम लोग देखते थे कि एसी नहीं हुआ करते थे,
0: बिल्कुल
2: पेड़ हुआ करते थे। आज उन चीजों की जगह सब एसी, एक ऑफिस के बाहर एक पेड़ लगा होता था, वहाँ सारे अधिकारी सारे लोग वहाँ बैठकर आराम से बात कर सकते थे, पर आज क्योंकि कहीं भी पेड़ कट रहे हैं, बचाना मुश्किल हो रहा है अन्य कारणों से।
0: जी,
2: इंटेंशनली कोई मगर कारण है, उसकी विकास होता है तो पेड़ काटे जाते हैं।
0: जी,
2: पेड़ रहेंगे, पर्यावरण रहेगा, बहुत चीजें सुरक्षित रहेंगी, हम सब सुरक्षित रहेंगे, हमारी सांस सुरक्षित रहेंगी।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जैसे कि पहले के समय में पेड़ पौधे हुआ करते थे, उसके नीचे बैठकर हम बड़ा सुकून महसूस किया करते थे, और आज जैसे कि जैसे परिवर्तन हो रहे हैं तो पेड़ों का कटान हो रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि आज जो पेड़ों का कटान हो रहा है तो उसके साथ साथ हमारे सरकार के द्वारा या हमारे द्वारा जगह जगह वृक्षारोपण भी किया जा रहा है, तो उसमें हम अपनी भूमिका किस तरह की निभा सकते हैं?
2: सरकार बहुत ही बड़े लार्ज स्तर पर हमेशा वृक्षारोपण का कार्यक्रम करती है, मगर ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि पेड़ लगाएं। जैसे मुख्यमंत्री जी ने पुनः एक बार नया दे दिया कि एक पेड़ माँ के नाम, तीसरा साल है ये एक पेड़ माँ के नाम। माँ के नाम से इसलिए जोड़ दिया गया कि माँ हर एक की बहुत

0: प्रिय होती है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, चाहे वो किसी भी देश में हो,
1: जी
0: माँ सबसे प्रिय होती है। तो माँ से इसलिए जोड़ दिया गया कि माँ से अटैच रहेंगे तो लोग उस पेड़ की रक्षा करेंगे जो पेड़ लगाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: सरकार हमेशा वृद्ध स्तर वृक्षारोपण करती है, पब्लिक की जब तक भागीदारी नहीं होगी, सरकार की सफलताएं होंगी मगर उतनी नहीं होंगी जितनी सरकार की इच्छाएं हैं या जितनी उसकी आकांक्षाएं हैं।
1: बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि मतलब सरकार तो अपना दायित्व निभा ही रही है, लेकिन साथ साथ हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी पेड़ों को संरक्षित करने में अपना योगदान दें। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी, और चलते चलते हम यही चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिससे कि
0: इस बार पानी का सीजन आने वाला है, जुलाई आ रही है, तो मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सबका आह्वान है कि एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं। हर आदमी एक पेड़ जरूर लगाए, और जो भी पेड़ लगाए उसकी रक्षा जरूर करे, उसको पानी टाइम से दे, उसका ध्यान रखे। इनकेस कोई पेड़ सूख भी जाता है, मैं ये नहीं कहता कि 100% पेड़ जिंदा रह जाते, तो उनको बदल दें
1: जी।
0: उनको जुलाई में हम लोग निःशुल्क पौधारोपण करते हैं, जिसको भी पेड़ चाहिए तो वो वन विभाग से पेड़ ले सकता है जुलाई के महीने में।
1: जी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हमारे श्रोताओं को आपने दिया कि वर्षा ऋतु आने वाली है, और कोशिश करें कि हम एक पेड़ जरूर लगाएं,
0: एक पेड़ जरूर लगाएं,
1: जिससे कि हमारा पर्यावरण संरक्षित रह सके। और कहते हैं ना कि आज लगाया हुआ हमारा एक पेड़ हमारा कल बेहतर कर सकता है, या हमारी आने वाली पीढ़ी जो है जो उसको भी सुरक्षित रख सकता है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। वैभव चौधरी जी, आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत आभार कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आप सारे श्रोताओं से शेयर करेंगे, और उन सबसे मेरा फिर से एक आह्वान है कि वो एक पेड़ जरूर लगा। जय हिंद।
1: जय हिंद।

0: ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: शुद्ध 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नमस्ते बरेली। श्रोताओं, आकाशवाणी के फेसबुक पेज पर आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं। जी हाँ साथियों, वो ऐसा कौन सा पौधा है जो दिन के साथ साथ रात में भी हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है? जितने भी हमारे श्रोता इसका जवाब देंगे, प्रोग्राम के अंत में हम उनके नाम शामिल करेंगे अपने इस प्रोग्राम नमस्ते बरेली। साथियों, कल विश्व पर्यावरण के दिवस के अवसर पर आकाशवाणी बरेली के परिसर में केंद्राध्यक्ष मिथिलेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में पौधारोपण और पौधे वितरित करने का अभियान चलाया गया, जिसमें बहुत सारे श्रोताओं को पौधे वितरित किए गए और इस अभियान में शामिल रहे संदेश सक्सेना जी, वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक श्री अतुल सक्सेना जी भी उपस्थित रहे। और साथियों, आज भी ये अभियान चलाया जाएगा। जो भी श्रोता आप पौधे लेना चाहें वो आकाशवाणी प्रांगण में आ सकते हैं।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: जी हां श्रोताओं, 100.4 FM पर आकाशवाणी की बरेली केंद्र से आप सुन रहे प्रोग्राम नमस्ते बरेली। बरेली से होकर गुजरात के बलसाड के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने गर्मी में यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तराखंड के लालकुआं से गुजरात के बलसाड के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। श्रोताओं, ये ट्रेन बरेली सिटी स्टेशन से होकर जाएगी, हालांकि इसका ठहराव बरेली जंक्शन पर नहीं होगा। पूर्वोत्तर रेल के PRO ने बताया कि 05344 05343 लालकुआं बलसाड लालकुआं समर स्पेशल ट्रेन का संचालन लालकुआं से 11 जून से 9 जुलाई तक प्रत्येक गुरुवार को और बलसाड से 12 जून से 10 जुलाई तक प्रत्येक शुक्रवार को 5 फेरों के लिए किया जाएगा।

0: आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: और सुनो एक नज़र बरेली की खबरों पर। मॉडल टाउन स्थित श्री हरि मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय श्री राम कथा के चौथे दिन कथाभ्यास पंडित ब्रजेश पाठक ने कहा, मान सम्मान को प्रभु का प्रसाद मानकर ग्रहण करें। लंबी कतारों से मरीजों का बढ़ रहा दर्द, जिला अस्पताल में शुक्रवार को 2200 मरीज परामर्श के लिए पहुंचे, 35 बच्चे भर्ती। GST पंजीकरण से मिलेगा योजनाओं का लाभ। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएगा बरेली कॉलेज। और साथ ही सिपाही भर्ती परीक्षा में आएंगे 52,500 अभ्यर्थी। रोयलखंड विश्वविद्यालय में सीनियर छात्रों को दी विदाई। NC कैडेट्स को दिया CPR प्रशिक्षण। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बना रहा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। साथियों 9 सड़कों के लिए शासन से 6,42,00,000 रुपए आवंटित। 1 पेड़ माँ के नाम अभियान में रोपे गए 7,80,000 पौधे। केंद्रीय विद्यालय रेलवे ग्राउंड में पौधारोपण कर दिलाई पर्यावरण संरक्षण की शपथ, अतिथियों को भेंट की पौधे। पर्यावरण संरक्षण को निगम व BDA ने लगाए पौधे। शहर के विकास को गति देने को 8 जून को बुलाई बैठक। और साथ ही लाल फाटक अंडरपास के दोनों तरफ बनेगा नाला। साथियों मॉडल टाउन स्थित श्री हरि मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय श्री राम कथा के चौथे दिन कथाव्यास पंडित ब्रजेश पाठक ने भक्तों को विनम्रता और प्रभु भक्ति का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में मिलने वाले मान सम्मान को अपनी उपलब्धि न मानकर प्रभु का प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामान्य व्यक्ति जब सम्मान प्राप्त करता है तो उसे अपनी योग्यता का परिणाम मान लेता है और धीरे धीरे उसमें अहंकार का भाव उत्पन्न होने लगता है। यही अहंकार उसके पतन का कारण बनता है। उन्होंने भक्त और भगवान के संबंध का उदाहरण देते हुए कहा कि सच्चा भक्त सम्मान का श्रेय स्वयं न लेकर भगवान को देता है। कथाव्यास ने गोस्वामी तुलसीदास के जीवन का प्रसंग सुनाते हुए बताया कि उन्होंने अपने अभावों में जीवन बिताया, लेकिन जब उन्हें सम्मान मिला तो उन्होंने उसे प्रभु कृपा का परिणाम माना। कार्यक्रम में मंदिर प्रबंधक समिति के अध्यक्ष, सचिव और सभी लोग उपस्थित रहे।

श्रोताओं, मैं वीना सिन्हा, मंडल रेल प्रबंधक, इज्जत नगर मंडल पूर्वोत्तर रेलवे, आपका स्वागत करती हूँ। इज्जत नगर मंडल द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 9 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय संपार जागरूकता दिवस अपने यात्रियों एवं सड़क उपभोक्ताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संपार जागरूकता दिवस विश्व के सभी देशों में रेलवे संपारों पर सुरक्षित आवागमन के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। रेलवे संपारों पर होने वाली दुर्घटनाओं का संबंध कहीं न कहीं मानवीय लापरवाही है। आप सभी से अनुरोध है कि बंद फाटक को खोलने हेतु कभी भी गेटमैन पर अनाधिकृत दबाव न डालें। बंद फाटक से नीचे से कभी भी निकलने का प्रयास न करें और न ही अपने वाहन को निकालें। अगर संपार का फाटक बंद है तो ट्रेन के निकलने एवं फाटक खुलने के बाद ही संपार पार करें। संपार के पास हेडफोन या मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। संपार के आसपास मवेशी ना चराएं तथा रेलवे की पटरी पर ना बैठें। संपारों पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने हेतु रेल प्रशासन प्रतिबद्ध एवं निरंतर प्रयासरत है। आप सभी आमजन से यह अनुरोध है कि नियमों का पालन करें और संपारों पर संरक्षा सुनिश्चित करने में हमारी मदद करें ताकि संपारों पर होने वाली घटनाओं को रोका जा सके।

श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था कि वो कौन सा पौधा है जो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। जी हाँ श्रोताओं, एक बहुत ही मशहूर पौधा है जिसका नाम है स्नेक प्लांट या सेंसिबेरिया। इसे अंग्रेजी में मदर इन लॉग टंग भी कहते हैं। जी हाँ, मदर इन लॉज टंग भी कहते हैं। ये रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है और घर के अंदर रखने के लिए काफ़ी अच्छा और कम देखभाल वाला पौधा है। तो श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने घर में पौधारोपण करेंगे और साथ साथ ऑक्सीजन युक्त इस पौधे को जरूर लगाएंगे। आज

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते बरेली। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम। ये पहला लोकगीत अंशवाना सक्सेना के स्वर में।

शुभम 100.4 एफएम पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम। श्रोताओं, फोन इन कार्यक्रम हेलो बरेली की हम रिकॉर्डिंग करेंगे अब से कुछ ही देर में प्रातः 9 बजे से। हमारा फोन नंबर है 0581251720। जी हाँ श्रोताओं, आप हमें फोन कीजिएगा और इसका प्रसारण होगा शाम 5:30 पर। समय याद रखिएगा, सुबह 9 बजे आपका अपना फोन इन कार्यक्रम हेलो बरेली। ये लोकगीत है गीता पंत के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। श्रोताओं, सुबह के 9 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में। लीजिए सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में सुपर 30 फिल्म का गाना। अमिताभ भट्टाचार्य हैं गीतकार और संगीतकार हैं अजय अतुल।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमा।

0: के साथ जो कर दिखाया उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इनके नाम और इनके कार्यों की चर्चा करके आज इनको पूरे विश्व के पटल पे स्थापित किया, जिसकी प्रशंसा बस्ती ही नहीं पूरे देश में की जा रही है। आकाश गुप्ता जी जो बस्ती जनपद के लजघटा गांव के निवासी हैं और ये छात्र हैं, इनके साथ जितने भी लोग उस अभियान में लगे हुए हैं सभी किसी न किसी विद्यालय में 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं के छात्र हैं। आकाश गुप्ता जी आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मनोरमा नदी सफाई अभियान को कब आपने शुरू किया और कहाँ से प्रेरणा मिली आपको?
1: हमने अपनी मनोरमा नदी की सफाई का अभियान 67 दिन पहले शुरू किया। जब हमने ये शुरू किया तो हमारी नदी इतनी गंदी थी कि उसमें कचड़ा और उसके बाद ढेर सारी पूजा की सामग्रियां उसमें पड़ी हुई। किसी के यहाँ पे कार्यक्रम होता था तो वे लोग आकर अपना जो भी बाद का सामान होता था उसमें लाके नदी में फेंक देते थे, जिस वजह से हमारी नदी का स्थिति ऐसा हो गया था कि उसमें कोई भी जानवर पानी पीता नहीं था क्योंकि उसकी हालात ही ऐसी थी और कोई भी आदमी उस वहां पर नहाता भी नहीं था। तो हमने सोचा कि आज से 10 साल पहले जब हमारी नदी इतनी साफ थी, जहां पर सब लोग नहाते थे, जानवर पानी पीते थे, आखिर आज के टाइम पे वो हाल क्यों नहीं? तो हम लोगों ने सोचा कि अगर ये हमारी नदी है तो इसे साफ करने का कर्तव्य भी हमारा है। तो हम लोगों ने 6 से 7 लोगों की टीम बनाई और अपनी नदी सफाई का अभियान शुरू किया। पहले दिन हमें नहीं लगा था कि हम लोग इस नदी को इतना आगे साफ कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी नदी का अभियान का सफाई जारी रखा और आज हमारी नदी कुछ ऐसी दिखने लगी है जहां पर जानवर आकर इसमें पानी भी पीते हैं और यहां पर लोग आकर नहाते भी हैं और हमारी बहुत प्रशंसाएं भी करते हैं।
0: आकाश जी, यह अभियान शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि इतने गंदी नदी है, आप कैसे इसको साफ करोगे, या आपका मनोबल भी एक बार कमजोर हुआ होगा कि मैं जो है कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसी प्रेरणा आपको आई कहां से और गांव के लोगों का क्या सहयोग और सपोर्ट रहा आपके साथ?
1: जब हम लोगों ने ये कार्य स्टार्ट किया था तो हमारे गांव के जो लोग थे उन्होंने कहा ये साफ तुम लोग नहीं कर पाएगे क्योंकि ये नदी बहुत गंदी है, इसको साफ करने के लिए सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा ही साफ करेंगे लेकिन हर एक दिन काम करेंगे। और हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना हम लोग नदी अपना साफ कर लेंगे और लोगों का भी सपोर्ट नहीं रहता था क्योंकि गांव का कोई भी हमें सपोर्ट करने नहीं आता था, कोई भी नहीं कहने आता था कि हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे और तुम्हारी मदद करके नदी की सफाई को आगे जारी रखेंगे।
0: आप जब उस समय नदी की स्थिति उसकी हालात देखे तो कैसा लगा?
1: पहले के टाइम पे नदी की स्थिति बहुत ही खराब थी, तो हम लोग आते थे बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे हम सभी लोग, तो हम सोचते थे कि अगर हमारी नदी इतनी गंदी, हम लोग अगर यहाँ बैठते हैं यहाँ बदबू आ रही है तो इसको साफ करके हम लोग यहाँ पर सुकून से बैठेंगे। तो हम लोगों ने इसकी सफाई का काम शुरू किया और इसको साफ किया।
0: करीब 2 महीने चले इस अभियान में, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या मिली?
1: सबसे बड़ी चुनौती ये रही हमारी नदी में कि हम लोगों ने इसको साफ पूरा किया, 30 से 40 दिन तक हमने इसको लगातार साफ किया, लेकिन फिर 10 दिनों के अंदर इसके अंदर काइया जमा होने लगी और वो काइया धीरे धीरे सड़ने लगी और जिससे बहुत ज्यादा समस्या हमें होने लगी। फिर उसको साफ किया हम लोगों ने और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे कि आकर वो पूजा की सामग्रियां वापस में डाल रहे थे। उसके बाद इसके अंदर से बहुत सारी कांच की बोतल्स और वो भी टूटे फूटे हालात में मिले। बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स का हाथ कट गया, पैर कट गया और यही सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि लोग आते हैं कचरा फेंक जाते हैं, उसके बाद सहयोग भी नहीं करते, उसको साफ भी नहीं करते।
0: इस अभियान में गाँव के लोग और भी लोगों का क्या सहयोग रहा?
1: गाँव के लोग आते थे, हमें कहते थे कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक कोई भी गाँव वाला हमारे साथ नदी में नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कहने की बात अलग होती है करने की बात अलग होती है। अगर आप हमारे साथ में चलकर नदी की सफाई करते हैं तब तो हम मानेंगे आप हमारे साथ जुड़े हुए, क्योंकि हम साथ ही लोग जब से शुरू किए हैं तब से अभी तक काम कर रहे हैं।
0: क्या इस अभियान में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का कोई सहयोग आपके साथ रहा?
1: हमने एक वीडियो बनाई थी योगी जी को लेकर कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया जिस वजह से हमारी एक दिन में वीडियोस 1 करोड़ लोगों ने देख लिया और योगी जी ने उसको वीडियो देखा भी। और योगी जी से पहले मोदी जी ने मन की बात में हमारी जिक्र किया कि मैं और मेरे 7 लोगों की टीम ने मिलकर अपनी मनोरमा नदी की सफाई का पहल किया है।
0: सफाई अभियान के बाद अब तक मनोरमा नदी को आप देखते हैं तो क्या लगता है?
1: सफाई के बाद मनोरमा नदी हमारी इतनी साफ लगती है कि ये तो एक जैसे लगता है कि चमत्कार टाइप का, लेकिन ये चमत्कार नहीं, ये हमारी 67 से 68 दिनों की मेहनत है जो कि हमने लगातार की है।
0: आपको अभी क्या लगता है इसमें और कुछ करने की जरूरत है?
1: जी, अभी हमारा काम तो जारी रहेगा जब तक कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी का पूरा गांव का हिस्सा जब तक साफ नहीं कर लेते तब तक तो हमारा काम जारी रहेगा, उसके आगे भी सोचेंगे। लेकिन हम चाहेंगे इसमें हमारी सरकार भी मदद करे क्योंकि हम कुछ युवाओं के बस का ये पूरा नदी साफ करना नहीं है।
0: जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में आपका नाम लिए तो आपको कैसा महसूस हुआ?
1: हम लोग उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के छोटे से गांव लजघटा में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक पटल पे हम लोगों की बात की, हमारे नाम का जिक्र किया, हमारी टीम का जिक्र किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारी सफाई का अभियान भी अब लोग देख रहे हैं।
0: इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा सराहना मिलने

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं अमित कुमार सिंह।
2: बस्ती के आकाश गुप्ता आज मेरे साथ हैं। इन्होंने अपने साथ साथ

0: के बाद आप पर, आपकी टीम पर क्या प्रभाव पड़ा? ऐसा भी आपको लगता है कि ये जिम्मेदारियां और बढ़ गई?
1: हाँ, जिम्मेदारियां अब बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अब जो हम लोग सफाई का काम करते थे 2 से 3 घंटा, अब हम लोगों ने ट्राई किया कि उसको और बढ़ाने का, और हम लोग अब धीरे धीरे और नदी को और आगे बढ़ते हुए साफ कर रहे हैं। और लक्ष्य तो यही है कि जितना हो सके हम लोग नदी को साफ रखें, जिससे कि जानवरों को और आम आदमी को परेशानी ना हो।
0: आज देश में पर्यावरण संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर काम करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: हम यही कहना चाहेंगे, जो भी नेचर ने हमें दिया है वैसे ही हमको उसको संतुलित रखना है, कि चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे नहर हो, चाहे झरना हो। आप लोग उसको ऐसे सुरक्षित रखिए कि उसमें गंदगी ना फैले, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे तकलीफ ना हो।
0: आकाश जी, आपने जिस तरह से साबित किया कि बदलाव के लिए बड़े पद या बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं बल्कि इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यह कहानी अपने गांव, शहर, पर्यावरण के लिए कुछ सकारात्मक करने की प्रेरणा देगी।
1: अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको बड़ी मशीन या फिर कोई बड़े यंत्र की जरूरत नहीं है। आप अपने हाथों से पहले ट्राई कीजिए उसको साफ करने का। जब आप अपने हाथों से साफ करेंगे, थोड़ा बहुत हिस्सा साफ होगा, फिर आपका मन करेगा कुछ और ट्राई किया जाए। धीरे धीरे आप लोग और आगे तक सफाई करें। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ हाथ और पैर थे, हम लोगों ने उसी से स्टार्ट किया है। उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया उसमें नाव बनाने का, जिसमें हम लोग थोड़ा नाव बना भी गए थे लेकिन बीच में टूट गया। ऐसे ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को ट्राई किया, तब जाके हमारी नदी इतनी साफ हो पाई। क्योंकि आप लोग जब किसी चीज को स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे उसकी आगे की रास्ताएं खुलते जाएंगी।
0: क्या ये आपको उपकरण से, जिसकी चर्चा मन की बात में मोदी जी ने किया, ये युवा जो है पर्यावरण या जल संरक्षण को लेकर के जागरूक है, इनके पास फावड़ा और जाल और ये ग्लव्स लेकर के ये नदी के सफाई अभियान को कर रहे हैं, क्या इस सफाई अभियान में आपको किसी ने कोई किसी तरह का सहयोग किया उसमें?
1: हम लोग जब वीडियो डालते गए उसके बाद लोगों ने इतना सपोर्ट किया, हमने उसमें अपना QR डाला जिसमें लोगों ने काफी सपोर्ट दिया, जिससे हम लोगों ने बूट्स मंगाए, ग्लव्स मंगाए और बहुत सारी चीजों को मंगाए। और बहुत सारे लोग हमारे एड्रेस पे कुछ सामान भी भेज देते हैं, जिससे हमारी मदद हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा काम चलता रहा।
0: आपने कहा कि जब से हमने इस अभियान को शुरू किया तब से हम लोगों ने YouTube, Instagram और Facebook के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़ा और इस अभियान को और सफल बनाने के लिए, नदी के सफाई के लिए हमने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े। कितने लोग इससे प्रेरित हुए?
1: जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे तो 0 फॉलोअर थे, लेकिन अभी के टाइम पे अगर बात की जाए तो हमारे इंस्टाग्राम पे 63,000 फॉलोअर हो चुके हैं, फेसबुक पे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और यूट्यूब पे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट हमारे साथ रहा, लोगों ने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया, जिससे हम लोग आज इतना ज्यादा सफल हो पाए।
0: आप जिस तरह यह कार्य करके यह साबित किए बदलाव के लिए बड़े इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। आकाश जी, इसके बाद आपका क्या मिशन होगा?
1: अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम लोग नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बरसात का मौसम आने वाला है तो नदी का पानी काफी ज्यादा रहेगा, जिसके अंदर हल्के उसको सफाई नहीं की जा सकेगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे नदी के किनारे का जितना भी फील्ड है उसको हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, जितना हो सके पीपल, बरगद, पाकड़, जामुन, ये सब पेड़ बैठाएंगे।
0: इंस्टाग्राम और फेसबुक के तहत लोगों को जोड़ करके क्या लगता है आपको कि क्या इससे लोग आपसे जुड़ रहे हैं? क्या इससे आगे और भी आपको काम करने के लिए और भी लोगों का साथ मिलेगा?
1: निश्चित सी बात है, सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा। और जब तक ये नदी सफाई नहीं होगी पूरी, तब तक ये काम चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वृक्षारोपण भी होगा, हमारी नदी का भी घाट भी बनना है, हमारी नदी पर अभी जहाँ बरगद का पेड़ है वहाँ चबूतरा भी बनना है। और जब तक ये बन नहीं जाएगा तब तक ये कार्य चलता रहेगा। जब हमने इसको पहले दिन से स्टार्ट किया था तब से लेकर अभी तक हमें काफी ज्यादा लोग जाने लगे हैं, जैसे कि अभी विधायक जी ने कल परसों में आकर हमारे साथ मिलकर नदी की सफाई किया, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अब ये अभियान जो है हमारा बहुत आगे तक जाने वाला है और साफ सफाई का काम तो चलता रहेगा।
0: समाज में कुछ नया करने का आपने एक प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे अमित कुमार सिंह। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:20 हुए हैं। एक बार पुनः आपको जोड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा से, जिन्हें हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे भैया जी सुपरहिट इस फिल्म का गाना। यसिर देसाई और पवनी पांडे की आवाज़ों में अमजद नदीम थे गीतकार और संगीतकार भी। लीजिए अब सुनिए आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। जावेद अली और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में कौसर मुनीर हैं गीतकार और संगीतकार हैं साजिद वाजिद और फिल्म का नाम है दावत-ए-इश्क़।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104 FM पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। सुबह के 9:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है।
1: लीजिए प्रस्तुत है

0: आयोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है। जान है तो जहान है कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र कुमार मिश्र का सप्रेम नमस्कार। जान है तो जहान है कार्यक्रम में उपस्थित हैं बरेली के फोकस पैथ लैब, फोकस एमआरआई एंड डायग्नोस्टिक के निदेशक डॉक्टर मोहित अग्रवाल एमबीबीएस एमडी। आज वार्ता का विषय है हेल्दी दिखना और हेल्दी होना, क्या दोनों एक ही बात है?
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहित अग्रवाल और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी 100.4। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हेल्दी दिखना और हेल्दी होना दोनों के एक ही बात है? आज का जमाना अपीयरेंस का जमाना है, सुंदर सुंदर दिखो, बढ़िया बढ़िया दिखो, फेस से लोग जज करते हैं, वेट से जज करते हैं, आप मोटे नहीं हैं तो आप हेल्दी हैं, सोशल मीडिया की फोटो से जज करते हैं कि आप हेल्दी हैं अनहेल्दी हैं, लेकिन मेडिसिन हमें एक अलग चीज दिखाती है, सच्चाई दिखाती है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो भी चीज चमक रही है जरूरी नहीं वो सोना है, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। वैसे ही हर चीज जो स्लिम ट्रिम है और सुंदर सुंदर दिख रही है वो हेल्दी नहीं है। आजकल लोग वेलनेस को एस्थेटिक समझने लग गए हैं, स्लिम बॉडी हेल्दी बॉडी, जिम फोटो हेल्दी बॉडी, यंग एज हेल्दी बॉडी। लेकिन एज अ डॉक्टर मैं आपको एक बात कॉन्फिडेंटली बता सकता हूं, सम ऑफ द सिकेस्ट बॉडी लुक परफेक्टली नॉर्मल व्हेन दे कम टू अस। डिजीज चीज को आप आंखों से मत तोलिए कि यार सबको सही लग रहा है, ठीक है, बॉडी के अंदर की केमिस्ट्री अलग होती है, वैसे ही असली हेल्थ डिसाइड नहीं होती। द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम वेल्थ कलेक्ट करने में लगे हुए हैं, बिजी हैं, आज कितने गल्ला बना कितना नहीं बना ये नहीं देख रहे हैं कि हमारी हेल्थ कितनी लूज हो रही है। उसके लिए हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, वो इमीडिएट कोलैप्स नहीं होती, वो एकदम रिएक्ट नहीं करती कुछ भी गलत होता है तो, वो मौका देती है बॉडी को रिपेयर करने का, बॉडी को संभलने का, कुछ सिग्नल्स देती है, पहले अपने आप को अडेप्ट करती है। अगर हमारी शुगर बढ़ती है तो बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश करती है, अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो बॉडी थोड़ा बहुत टॉलरेट करती है, हमारा अगर स्ट्रेस बढ़ रहा है बॉडी का तो बॉडी उसको सप्रेस करती है, उसको कम करती है। इन्हीं सभी वजहों से हमारी डिजीज़ जो हैं, जो बीमारियां हैं, वो साइलेंटली ग्रो करती हैं, हल्के हल्के ग्रो करती हैं, धीरे धीरे ग्रो करती हैं, हमें पता नहीं लगता है। कभी कभी वो थोड़ा थोड़ा सिग्नल देती है लेकिन आखिर हम उसको अगर पकड़ नहीं पाते, हमारा अगर एंटीना ठीक नहीं है तो हम नहीं पकड़ पाएंगे, हमें ध्यान देना है उस पर। द एबसेंस ऑफ सिम्टम्स डज नॉट मीन द एबसेंस ऑफ डिजीज, मतलब अगर कोई हमें खांसी जुकाम या कोई भी सिम्टम्स नहीं है, कमजोरी वाला सिम्टम नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बीमारी नहीं है। बीमारी का पता जांच से ही पता लग सकता है। मेडिसिन में एक डेंजरस फेज है, बहुत खतरनाक फेज है, आई फील फाइन, मैं बिल्कुल अच्छा महसूस करता हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं हो सकती, इतना कॉन्फिडेंस। कई हार्ट पेशेंट्स बहुत ज्यादा नॉर्मल से फील करते हैं, लेकिन और बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट भी बहुत अच्छा फील करते हैं, उन्हें इंसिडेंटली अचानक से या कोई चेकअप कराने के दौरान पता लगता है कि भाई उनको डायबिटीज है या उनको दिल की बीमारी है, और उनका यही डायलॉग होता है, मैं कैसे बीमार हो सकता हूं, मैं तो सारे काम करता हूं, मैं तो रोज ऑफिस जाता हूं। आज का इंसान फिजिकली कम, मेंटली ज्यादा एग्जॉस्टेड है, मेंटली एग्जॉस्टेड है, वो बिजी इतना है, कुछ काम नहीं कर रहा है तो फोन में बिजी है, कोई काम नहीं कर रहा तो पड़ोसी में बिजी है कि पड़ोसी की लाइफ में क्या चल रहा है। हम कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड है किसी ना किसी से, हमारे पास सब चीजों का टाइम है अपने आप के लिए टाइम देने के अलावा। जब हम खाली बैठे हैं तो मोबाइल में कुछ ना कुछ देख रहे हैं, या तो रील देख रहे हैं, या कुछ व्हाट्सएप देख रहे हैं, या कुछ फेसबुक पे रिप्लाई कर रहे हैं, या किसी और का रिप्लाई किसी और का देख रहे हैं, हम अपने लिए टाइम नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए थोड़ा बहुत बोर होना चाहिए आदमी को, बोर मतलब खाली बैठना चाहिए, खाली बैठे रहो तभी तो मन में थॉट्स आएंगे, जो पीछे पड़े हुए हैं वो आगे आएंगे, फिर वो निकलेंगे, फिर कुछ आप थॉट्स के बारे में सोचोगे कि भाई मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, अरे ये काम तो पेंडिंग रह गया मेरा, मैं इसको पूरा कर लेता हूं, है ना। इसको ये अगर आप आंखें बंद करके बैठोगे 10 मिनट तो इसको मेडिटेशन बोला जाता है, इसी को अकेले बैठोगे तो इसको चिंतन बोला जाता है, कुछ लोग इसको इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, अलग अलग वर्ड्स हैं। अपने आप को टाइम देना बहुत जरूरी है, या मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ बोर होना बहुत जरूरी है, बोर होना, खाली बैठो कम से कम 10 मिनट तो बैठो खाली दिन में। लेट नाइट हम स्क्रॉल कर रहे हैं, जब तक आंखें बंद बिल्कुल नहीं होगी, शटर बंद नहीं होगी आंखों का, हम व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, है ना, सो ही नहीं पा रहे हैं, फिर कह रहे हैं हमें नींद नहीं आती पूरी, गद्दा खराब है, एसी खराब है, हम प्रोसेस फूड खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, चाय के साथ ही सिर्फ खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, अरे आज फला की नमकीन लेके आना, आज फला वाले ये समोसा लेके आना, उसकी चटनी बढ़िया होती है ना, ये खस्ता खाऊंगा मैं, मतलब इसी में लगा हुआ आदमी और फिर कंपैरिजन कर रहा है, इसका समोसा अच्छा नहीं है,

0: ज्यादा अच्छा है, कल इसका खाएंगे। तो इससे बॉडी की बायोलॉजी को अफेक्ट कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पार्टी मत करिए या कुछ, थोड़ा बहुत फ्राइड फूड खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लिमिटेड खाइए, बहुत ज्यादा नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना, खाने के लिए मत जीजिए, जीने के लिए खाइए। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट्स द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। ये बहुत मैंने पहले भी बोला है बहुत बार, एक जिम रोहन जी है, उन्होंने बोला था कि टेक केयर ऑफ योर बॉडी इज द ओनली प्लेस वेयर यू लिव। अपने घर में नहीं रह रहे हो, आप अपनी बॉडी में रहते हो, उसका ख्याल बहुत रखिए। बॉडी पनिशमेंट टॉलरेट करती रहती है, पिसती रहती है, झिक मारती रहती है, लेकिन वो कोई लिमिट तो होगी उसकी। जब लिमिट होती है, पार हो जाती है, तभी बीमार होती है। आपने देखा होगा, आप और आपके समझिए परिवार वाले या आपके कोई मित्र होंगे, या आप स्कूल जाते होंगे या कॉलेज जाते होंगे या ऑफिस जाते होंगे, सेम इन्वायरमेंट है सबका। कुछ लोग बीमार हो जा रहे हैं, कुछ लोग नहीं हो रहे हैं, कुछ लोग सेम खाना खा रहे हैं और वो बीमार हो गया, वो नहीं हुआ, ये तो आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? किसी की बॉडी ज्यादा टॉलरेट करती है, किसी कम कर पाती है। तो बॉडी की टॉलरेट करने की क्षमता है हर एक की। इसका मतलब ये नहीं है जिसकी टॉयलेट कर रही है उसकी बॉडी उसको वाहवा कर रही है उस एनवायरनमेंट में, वो भी उससे नाराज है, लेकिन वो उसकी लिमिट ज्यादा है बाय चांस, तो वो बाद में बीमार पड़ेगी। तो इसलिए अगर हम कम सो रहे हैं या खान पान का ध्यान नहीं रख रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो चाहे फिजिकल स्ट्रेस हो, तो हमें कहीं ना कहीं हमारी बॉडी हमें परेशान करेगी लॉन्ग टर्म में। डायबिटीज बहुत कॉमन हो गई है, हर घर में कोई ना कोई डायबिटिक मिलेगा आपको, ब्लड प्रेशर वाला मिलेगा, मतलब इतना ज्यादा हो गया डॉक्टर भी सबसे पहले आदमी से ही पूछता है आपको डायबिटीज तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, सबसे पहले ये डायलॉग बन गया। तो इसका मतलब क्या है? आधे ज्यादा लोगों को डायबिटीज है। आप जिस बेल्ट में रह रहे हैं हम लोग नॉर्थ इंडिया में, ये तो मतलब एक हब है डायबिटीज का। क्यों है भाई? हमने कौन से पाप करे हैं ऐसे कि हमको डायबिटीज हो रही है, हमारे लोगों को हो रही है? क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है जिसको कोई टोकने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है कि आप गलत कर रहे हो, इसलिए हो रहा है ऐसा। अरे भैया, हम लोग भी तो काम कर रहे हैं, हम लोग भी भगवान को मानते हैं, तो हम लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? हमें डायबिटीज क्यों हो रही है? सबको क्यों हो रही है? हमारे यहाँ साउथ में तो कम है डायबिटीज कंपेरेटिवली, यहाँ पे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, फैटी लिवर बहुत कॉमन हो गया है। आप कभी अल्ट्रासाउंड कराने जाइए, किसी की रिपोर्ट होगी, बहुत कम लोगों की नॉर्मल आती है, हर एक को फैटी लिवर ग्रेड मिल रहा है वन, क्यों मिल रहा है भाई? अब लोग कुछ कहते हैं फैटी लिवर ग्रेड वन ही नॉर्मल होता है। अरे भैया, नॉर्मल नहीं होता है, मैक्स बहुत लोगों को आ रहा है, इसलिए आप नॉर्मल कह रहे हो, लेकिन नॉर्मल नहीं है वो चीज। हमारी बॉडी और माइंड अलग समझते हैं, हम माइंड और बॉडी को अलग अलग समझते हैं, ऐसा नहीं है। माइंड और बॉडी काफी कुछ कनेक्टेड है।
1: आज इस कार्यक्रम में मेहमान हैं बरेली के फोकस पैथलैब, फोकस एमआरआई एंड डायग्नोस्टिक के निदेशक डॉक्टर मोहित अग्रवाल एमबीबीएस एमडी, और मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र कुमार मिश्र।
0: हम जब स्ट्रेस लेते हैं तो हमें हॉर्मोन्स अफेक्ट करते हैं, शुगर अफेक्ट करती है, इम्यूनिटी अफेक्ट करती है, स्लीप अफेक्ट करती है। हमारी द बॉडी कीप्स द स्कोर, क्या कहते हैं, बॉडी कीप्स द स्कोर। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं या बैडमिंटन खेल रहे हैं तो एक स्कोरिंग चलती रहती है ना साइड में, आप कहीं स्कोर नंबर देखिए, लेकिन स्कोर तो चल ही रहा है ना कि आपकी कितनी, आपने कितने सिक्स मारे, कितने फोर मारे, कितने सिंगल लिए, कितने आउट करे, कितने कैच आउट करे, स्कोर तो चल ही रहा है ना, चाहे आप देखें ना देखें। वैसे बॉडी का स्कोर चलता रहता है कि आपने क्या काम किया सही, क्या काम गलत किया, स्कोर दिखता नहीं है बस आपको। स्कोर बस आपको सिम्टम्स के फॉर्म में या किसी अलार्म के फॉर्म में या किसी सिग्नल के फॉर्म में आपको देती है वो हल्के से, स्कोर आपको नहीं दिखता, तो आपको लगता है कि हम सब कुछ सही चल रहा है। कई लोग टेस्ट कराने से डरते हैं, क्या कहते हैं, अरे डॉक्टर साहब अगर टेस्ट करा लिया मैंने और उसमें कुछ आ गया तो क्या होगा,
2: बहम में पड़ जाएंगे।
0: हम बहम में पड़ जाएंगे, बिल्कुल सही बोला आपने। मैंने कहा भैया, अगर नहीं कराओगे और कभी बीमार पड़ गए तब क्या होगा, है ना। आपको इस चीज से अगर आप टेस्ट करा रहे हो नॉर्मल आ रहा है तो खुशी की बात है ना, और अगर कुछ आ गया उसमें गलती से तब भी अच्छी बात है कि आपको समय से पहले पता लग गया कि भाई कुछ गड़बड़ है,
2: इलाज हो जाएगा,
0: इलाज हो जाएगा उसका टाइम रहते हैं, जितनी जल्दी इलाज करेंगे उतना अच्छा है ना, है ना। आप गाड़ी की भी सर्विस तो हर छह महीने में कराते हैं या इतने किलोमीटर में कराते हैं, वैसे आपको बॉडी की सर्विस करानी चाहिए। डिजीजेस डिस्कवर होना डेंजरस नहीं है, ये अच्छी बात है। जो डिस्कवर नहीं हो रही है डिजीज, जिनके बारे में पता नहीं लग रहा है, वो डेंजरस है। कितने छुपा रुस्तम ज्यादा बदमाश है, हाँ, जो सामने से अटैक कर रहा है उसको तो आप कुछ ना कुछ कर लोगे। कोई सामने से अटैक कर रहा है तो वो हो सकता है उसके पास कोई भी बड़ा हथियार हो तो आप बच सकते हो, या हो सकता है आपके पास हथियार हो आप भी उसको उसके लिए डिफेंस कर सकते हो, लेकिन जो अंदर अंदर अंदर अंदर कर रहा है उसको कैसे, उससे कैसे आप बचोगे या उससे कैसे अपने आप प्रोटेक्ट करोगे। तो इसलिए जो चीजें साइलेंटली चल रही है वो बहुत खतरनाक है, इसलिए टाइमली डायग्नोसिस करना को आप गलत मत मानो, उसको फियर मत करो, उसके

0: घबराओ मत, आपको रेगुलर टेस्ट कराने चाहिए, एक साल में एक बार कराओ। तो हेल्दी होने का एक्चुअल मतलब क्या है? सिक्स पैक होना नहीं है, एब्स बनी है, सिक्स पैक है, जॉनी ब्राइन दिख रहे हैं, फेयर स्किन है, बहुत गोरे चिट्टे हैं, या हम यंग दिखते हैं। ये दिस इज नॉट ओनली कि आप हेल्दी हैं। हेल्दी होने का असली मतलब क्या है? कि हमारी स्टेबल एनर्जी है, हमें अच्छी नींद आती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारा पेट खराब नहीं होता, हमारी हम इमोशनली बैलेंस है। ये नहीं कि हम अचानक, कुछ लोग होते हैं ना कि अचानक रोने लगते हैं या होते हैं, वैसे नहीं है, या बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेते, हमारी क्लियर थिंकिंग है कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना। हमारी रिपोर्ट्स भी हैं जो हेल्दी आती हैं, और अगर हम कभी बीमार पड़ जाते हैं तो कंपेटिवली जल्दी रिकवर कर जाते हैं। हेल्थ इज नॉट वैल्यूड टिल सिकनेस कम, है ना। हेल्थ को वैल्यू मत करिए कि भैया कि अब मैं बीमार नहीं हो रहा हूं तो मैं हेल्दी हूं। मेडिसिन का फ्यूचर भी मैं आपको बताऊं, मेरे हिसाब से तो यही है भाई, मेडिसिन का फ्यूचर ट्रीटमेंट नहीं है। मेरे हिसाब से मेडिसिन का फ्यूचर प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम बीमारी ना पड़े, हम बीमार क्यों पड़े यार, मैं तो ये कहता हूं आपसे।
1: कार्यक्रम मतलब यही है।
0: हम बीमार क्यों पड़े हैं?
1: जी सर।
0: हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हम बीमारी को खाएंगे अपने पास से, आएगी नहीं पास में, है ना। हमारा मतलब यही, हमारा इस प्रोग्राम का मतलब जो मेन मोटो है, हमारे जो भी श्रोता है वो बीमार ना पड़े, हमें तभी तसल्ली है। आदमी बीमार नहीं पड़े, हम बीमार के बाद होने के बाद ट्रीटमेंट हमें नहीं लेना है, हमें बीमार पड़ना ही नहीं है, उससे पहले हम इंतजाम करके रखेंगे। बॉडी के सिग्नल्स को समझिए कि अगर आपको बहुत ज्यादा थकान हो रही है, या आपको नींद पूरी नहीं होती है, या आपका वजन बढ़ रहा है, या बहुत ज्यादा घट रहा है, दोनों केसेस में, या आपका लो स्टेमिना है, आपको एसिडिटी रहती है, कब्ज रहता है, पेट साफ नहीं होता है, तो बॉडी हल्के हल्के बता रही है कि भैया कुछ गड़बड़ है इंजन में, इसको ठीक करा लो रहते, मतलब कभी बंद पड़ जाऊंगी अचानक तो ज्यादा दिक्कत में फंस जाओगे। तो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये छोटे छोटे सिग्नल से, ऐसे सिग्नल तो देगी वो आपको। तो देखिए, बूढ़ा होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक को बूढ़ा होना है ना। बूढ़ा होना मतलब क्या है? कि आपको एक साल का और एक्सपीरियंस हो गया जिंदगी का,
1: क्या बात
0: है ना, ये कोई बुरी बात नहीं है। और क्या, ये आपके कंट्रोल में भी नहीं है, तो इसमें टेंशन मत लीजिए, आप बिंदास रहिए और बिंदास रहिए, तो है ना, एक शान से, शौकत से आप बूढ़े हुए। ये सुनना है कि बूढ़ा तो सबको होना है, तो हेल्दी रहेंगे, अपने हाथ से ग्लास का पानी उठा के पियेंगे, या थोड़ा टहलने जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ का मतलब सिर्फ ज्यादा जीना नहीं है, है ना, बेटर जीना है, सक्षम होकर जीना है। हमें किसी से ग्लास का पानी उठा के ना, किसी को बोले ना ना पड़े कि भाई ग्लास पानी देना, हम खुद जाके ग्लास का पानी पी सके, तब तो बात है। हमें छड़ी इस्तेमाल ना करना पड़े। हेल्दी दिखना अच्छा है, और हेल्दी तो दिखना ही चाहिए आदमी को, है ना। लेकिन हेल्दी होना एक विजडम की तरह है, आपको समझना पड़ेगा कि मुझे हेल्दी होने के लिए क्या करना है। मिरर, आपका जो शीशा है, वो सिर्फ आपको आपकी अपीयरेंस बताता है कि आप दिखते कैसे हैं, कदकाठी कैसी है, चेहरा कैसा है, आंखें बराबर हैं क्या नहीं है। लेकिन बॉडी का सच आपकी हैबिट्स में छुपा है, आपके लाइफस्टाइल में छुपा है, आपकी नींद में छुपा है, आपके स्ट्रेस में छुपा है, और आपकी रिपोर्ट्स में छुपा है कि रिपोर्ट्स कैसी आ रही है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अपनी बॉडी को इग्नोर मत करिए, क्योंकि बॉडी पहले सिग्नल देती है, उसको पकड़ना जरूरी है, फिर कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, फिर बीमारी आती है। तो दोस्तों, मैं आपसे आखिरी में यही कहूंगा, जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी बड़ी होनी चाहिए।
2: डॉक्टर मोहित अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे श्रोताओं के लिए इतना समय निकाला। और अब श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, और अब रविंद्र कुमार मिश्र को दीजिए अनुमति। श्रोताओं नमस्कार। जान है तो जहान है कार्यक्रम आप सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार और प्रत्येक शनिवार को सुबह 9:30 पर रविंद्र मिश्र के साथ।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो चाहन है। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: 1940 के मध्य में राजेंद्र कृष्ण मुंबई आ गए। फिल्मों की दुनिया में बतौर लेखक और गीतकार अपनी प्रतिभा को आजमाने। संघर्ष की जंजीरें टूटी 1947 में, जब फिल्म जंजीर के लिए उन्होंने लिखा अपना पहला गीत। 1947 में राजेंद्र कृष्ण ने लिखी फिल्म जनता की स्क्रिप्ट, लेकिन कामयाबी मिली 1948 में बनी फिल्म आज की रात से।

निराशा भरी रातें ढल चुकी थीं और राजेंद्र कृष्ण लगातार काम पाने लगे। 1949 में श्याम सुंदर के संगीत से सजी फिल्म लाहौर में उनके गीतों को बहुत लोकप्रियता मिली। उन्हीं में से एक था ये गीत।

लगभग तभी एक और फिल्म आई, बड़ी बहन, जिसके संगीतकार थे हुस्नलाल भगतराम। राजेंद्र कृष्ण के गीत एक बार फिर संगीत रसिकों के होठों पर थे।

तमिल के जानकार राजेंद्र कृष्ण उन दिनों के मद्रास के मशहूर बैनर एवीएम की पहली पसंद बन गए। वहां के अन्य निर्माताओं ने भी राजेंद्र कृष्ण की रचनात्मक प्रतिभा की कद्र की। एवीएम की लगभग सभी हिंदी फिल्मों की स्क्रिप्ट के अलावा उनके गीत लिखे राजेंद्र कृष्ण ने।

राजेंद्र कृष्ण ने अपने समकालीन लगभग सभी नामचीन संगीतकारों के लिए गीतों की रचना की। राजेंद्र कृष्ण ने करीब 100 फिल्मों की पटकथाएं लिखी और कोई 300 फिल्मों के लिए लिखे अपने अनूठे अलबेले गीत। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड बहुत देर बाद मिला 1965 में फिल्म खानदान के इस गीत के लिए।

सन 1988 में शब्दों का ये चितेरा हमारे होठों पर अपने गीतों की गुनगुनाहट छोड़कर शब्द ब्रह्म में ही विलीन हो गया।

0: अब अपने दोस्त कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
4: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104 FM पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने। शुभकामना संदेश दे रहे हैं लाल मोहम्मद अंसारी।
1: मैं लाल मोहम्मद अंसारी

0: जी ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से रेडियो लिसनर, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे जीवन के कार्यकाल में आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूरे कर रहा है। इस अवसर पर मैं सभी सुनने वालों को और सभी आकाशवाणी के जो कार्यकर्ता हैं सभी को दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूं। आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है, मनोरंजन के साथ साथ जानकारियाँ भी बहुत सारी मिलती हैं, और अगर किसी व्यक्ति को रेडियो का जब जुनून चढ़ गया, रेडियो उसने सुनना प्रारंभ कर दिया, तो शायद एक आधी व्यक्ति ऐसा होगा जिसने रेडियो को छोड़ा होगा, वरना ये एक शौक ऐसा है आकाशवाणी सुनने का कि ये किसी भी व्यक्ति से छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि इसमें जो जानकारियाँ मिल जाती हैं विभिन्न प्रकार की, चाहे वो जीवन से जुड़ी हुई हों, चाहे वो रसोई से जुड़ी हुई हों, चाहे वो बाजार से जुड़ी हुई हों, चाहे वो बच्चों के पालन पोषण के विषय में जानकारियाँ जुड़ी हुई हों, बहुत सारी जानकारियां आकाशवाणी से हम लोगों को प्राप्त होती हैं, और हम उनको ना के सुनते हैं बल्कि आकाशवाणी की जो जानकारियां हैं वो अपने जीवन में उतारते हैं। आकाशवाणी ने विभिन्न प्रकार के, बल्कि यूँ कहिए कि हर वर्ग के लोगों के लिए कार्यक्रमों को प्रसारित किया। बच्चों के लिए कार्यक्रम प्रसारित करता है, उसमें बहुत सारी जानकारियां स्कूल से जुड़ी और उनके जीवन से जुड़ी खेल खाल और कहानियों के साथ साथ उनका मनोरंजन किया जाता है। महिलाओं के कार्यक्रम में भी महिलाओं को आधा जीवन आधी दुनिया कहा जाता है, तो उनको जीने का, उनको संवरने का, उनको जो बाज़ार में ख़रीदारी करने का, वो सारा जानकारी के साथ महिलाओं तक ही जानकारी पहुंचाई जाती है। बुज़ुर्गों के लिए भी आकाशवाणी ने बहुत सारे कार्यक्रमों को प्रसारित किया, युवाओं के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम हर केंद्र से प्रसारित किए जाते हैं, उनके लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाती है, उनके लिए रोज़गार के अवसर दिए जाते हैं, उनको कैरियर की जानकारी दी जाती है। युवाणी कार्यक्रम भी एक बेहतरीन कार्यक्रम है, और किसानों के लिए तो बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। किसान साथी जब अपना खेती बाड़ी आकाशवाणी से सुन करके करते हैं तो उनको काफ़ी लाभ होता है, काफ़ी फ़ायदा होता है, और वैज्ञानिक विधि से जब खेती की जाती है तो उसमें उन्नति ज़्यादा होती है, पैदावार भी ज़्यादा होती है, और किसी चीज़ की जब पैदावार ज़्यादा होती है तो उसको अधिक लाभ होता है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं जाता है, बहुत सारे सपने जो अधूरे होते हैं उनको वो पूरा कर लेता है, तो ये भी एक आकाशवाणी की देन रहती है। आकाशवाणी के जो मनोरंजन किया, आकाशवाणी ने जो गीत बजाए, आकाशवाणी ने जो मनोरंजन के साथ साथ लोगों को थिरकने का, झूमने का मौका दिया, वहीं अगर कोई व्यक्ति गम में है, किसी परेशानी में है, तो उसका भी साथ आकाशवाणी ने दिया, गीतों के माध्यम से उसको हौसला दिया, गीतों के माध्यम से उसका मनोबल बढ़ाया। इसी तरीके से और भी बहुत सारे काम हैं, रोज़गार के काम हैं, या कोई दिवस है, बहुत सारे दिवस साल में होते हैं, हमें कभी कभी दिवसों के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो आकाशवाणी से जब हम कार्यक्रमों को सुनते हैं तो हमें ये नॉलेज हो जाती है, हमें ये पता चल जाता है कि आज किसकी जयंती है, किसकी पुण्यतिथि है, आज क्या खास है, बहुत सारी बातें इस विषय पर आकाशवाणी से प्रसारित होती हैं और हम लोग उनको सुनते हैं और उनसे अपने जीवन में उतारते हैं उसको, तो ये भी हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि हर चीज़ को हम किताबों में नहीं लिख सकते, किताबों में उसको नहीं खोज सकते, लेकिन हाँ रेडियो पे सुन करके हम अपने जहन में वो बातें ला सकते हैं, हम अपने जहन में वो बातें बिठाल सकते हैं जो कि हम सुनते हैं, और सुनने से हमारे जहन में बैठ जाती है, वो हमेशा हमेशा के लिए याद रहती है। बस चलते चलते यही कहना चाहूँगा कि बचपन से रेडियो का छाया है हर्ष, बचपन से ही रेडियो सुनने का हुआ है हमें हर्ष, आकाशवाणी पूरे कर रहा है अपने 90 वर्ष। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एक विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी के दीवाने, और शुभकामना संदेश दे रहे थे लाल मोहम्मद अंसारी। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:05 और 10 सेकंड हुए हैं और ये समय है कार्यक्रम आपकी पसंद का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। दीवाने हैं तेरे।

जिसको आवाज दी है किशोर कुमार ने। गीत है अनजान का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, और अनुरोध करता फरमाइश करता आप सभी श्रोताओं आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंगेल और नंदनी जंगेल, दमदा ग्राम सुगरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरोशी ओशिका, आदित्य और अंजलि जंगेल, आप हैं बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान, सोफिया खान, ये कमेंट हमें किया जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तनवीर, लक्ष्य, सोनी, रितिका, मोहनी, ऋतिक, बलबीर सिंह और इनके सभी परिवार के लोग। आप हैं कस्बा बाराडा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल और इनके परिवार के सभी लोग। चंदोसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से मुकेश गौतम, सुनील गौतम, अमन गौतम, बुधनगर खंडवा से नदीम भाई, बैजोई से राजू भाई और इनके परिवार के सभी लोग। आप हैं मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी अलोट जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, साथ में युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़ और परिवार के लोग। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करोला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान और परिवार के सभी लोग। उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से बेरूलाल बख्तारिया धाकड़, भोला बख्तारिया, प्रवीण रेहांश और प्रतीक बख्तारिया। आप हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर और परिवार के सभी लोग। ग्राम बपोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुख नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद अदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान और इनके सभी मित्रगण। विनेश कुमार, रागनी और मुस्कान निकट बैंक सेंटर चनेटी बरेली से। आप हैं कस्बा मीरगंज बिजलीघर से आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, ओमेंद्र पुरी भाई, कल्लू मिस्त्री और परिवार के सभी लोग। पुराना तलाव डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, आसमानाज अंसारी, शबनम बानो, जेल रोड बक्सर से राज एसडी अंसारी, फातमानाज चमन पार्क दिल्ली से सोनम और अदीबा। आप हैं पटेल नगर मलोट से रमेश कुमार जजोरिया, गीतारानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू जजोरिया, गुड्डू और इनके परिवार के सभी लोग। ये कमेंट हमारे पास आया है। आप हैं नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू ज्योति ठाकुर, ग्राम चरौदा पार, नवापारा जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से। आप हैं हमारे श्रोता कदमा जमशेदपुर से चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश महतो और इनके परिवार के सभी लोग। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुतासु, अर्णब आनंद, सत्यम आनंद, बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत और परिवारीजन। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और साथ में हैं बब्बू डब्बू। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी और इनके परिवार के लोग। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना और परिजन। ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से सुमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनिता, सुनीता, सूरजश्री और यादव परिवार के सभी लोग। आप हैं हमारे श्रोता दही गांव नांदुरा धोंडू भातुरकर से मंगुला भातुरकर, विवेक कुमार भारती, प्रतीक्षा कोमल और समाधान भातुरकर। संत नगरी शेगांव से शुभम राउत, कुमार रुद्र राउत और इनके परिवार के लोग। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा, इनके परिवार के सभी लोग। आप हैं हमारे श्रोता रामपुर लिसनर क्लब नाला पार बाग छोटे साहब रामपुर से नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन, सादिया, अक्सा और हम्माद। नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार अंसारी, बेटी नुजत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, इस्लामुद्दीन उर्फ बन्ने भाई और पप्पू भाई अंसारी। ग्राम बीरपुर पोस्ट बिलसर तहसील अलीगंज एटा से बिपिन कुमार शाख, सपना शाख, रविन्द्र शाख, राजेश रमेश चंद्र शाख, राजीव, प्रदीप, रंजीत, सिद्धार्थ शाख, कुमारी सुजाता शाख, कुमारी संगमित्रा शाख, कुमारी प्रज्ञा शाख, प्रतिज्ञा शाख और इनके मम्मी पापा व समस्त शाख परिवार। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और सभी परिवजन। आपने पसंद किया है राजकमल रेडियो श्रोता आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, सैयद नोयान, धोता जोड़ा आष्टी से दशरथ सागुते, अनुष्का सागुते।

0: आप हैं जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। आप हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग, तनुजा देवांगन, ईशा देवांगन, पलारी छत्तीसगढ़ से आपने हमें कमेंट किया है। आप हैं हमारे श्रोता कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से, योगेश गुजराती, रेखा गुजराती, ठाकुर भवानी सिंह बैस, अभय गुजराती और इनके सभी परिवारीजन, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदारानी हिना कौसर, बहड़ी से अंजुम भाई, खालिदा बेगम और इनके परिवार के सभी लोग। आप हैं कलानौर हरियाणा से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, नागपुर महाराष्ट्र से कमल सुहाने, अफजाल मलिक, संदीप मक्कड़, रामगढ़ कैंट झारखंड से निपी सुहाने और इनके परिवारीजन। आपने ये कमेंट हमें किया है मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत और साथ में सादिया, दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से ये कमेंट हमारे पास आया है। मलोट पंजाब से आप हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, मैंडी शर्मा, आदर्श नगर मलोट पंजाब से आपने हमें ये कमेंट भेजा है। अलीगंज जिला एटा उत्तर प्रदेश से दीपक शाक, ज्योति शाक, सक्षम शाक। तो आइए सुनते हैं फिल्म डॉन का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे

0: है तार टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोताओं, 100.4 FM पर आकाशवाणी की बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद। अगली पसंद के लिए ये कमेंट हमें किया है सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ ने। आपने सुना चाहे फिल्म निकाह का ये गीत महेंद्र कपूर और सलमा आगा की आवाज में। इसी गीत को सुनने के लिए ये कमेंट हमें किया है गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा। आप हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, इसरार और नरगिस खातून। गंजडंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जाहिरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी। एयरपोर्ट रोड बंदना नगर इंदौर से नारायण भाऊ खट से, ललिता आशा रानी खट से, संजना परी खट से, आराध्या वैष्णवी कार्तिक और साथ में स्वाति प्रज्ञा चौधरी और इनके परिवार के सभी लोग। आप हैं तलिताल नैनीताल इंदिरा कॉटेज से मोहन सिंह रावत, ममता रावत और बानिया। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज और परिवार के सभी लोग। नावा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरब, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और साथ में मनु। आप हैं हमारे श्रोता अक्षय कॉलोनी गोंदूर रोड धुलिया महाराष्ट्र से मनोहर मगर, यामिनी मगर, उदयन और अर्पिता। आप हैं गांव बांडीवाला फजलिका पंजाब से ओम बगाड़िया, क्रियांश बगाड़िया, योगेश बगाड़िया, रजत और बेबी करीमा बगाड़िया। ये कमेंट हमारे पास आया है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा का और साथ में है करुणा वर्मा। आप हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश और इनके परिवार के सभी लोग। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और परिजन। गांव नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा, राहुल शर्मा और इनके सभी परिवारजन। आप हैं होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल और परिवारजन। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद, अब्बासी निगत, परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। गाड़ी खाना चाईबासा झारखंड से जीवन विश्वकर्मा, मंजू विश्वकर्मा, नितिन सावन, सचिन और शक्ति। हजारीबाग झारखंड से बीरेंद्र भगत, मालती भगत, राहुल और ऋषि। आप हैं हमारे श्रोता गणेशपुर गंजडंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शमा परवीन शेख, साइमा, सरफराज, गुलफराज, बेबी मुस्कान और इनके परिवार के सभी लोग। गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन, अक्षा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब। गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन नादरे, मारोत राव पांचाल और इनके परिवार के लोग। मालागढ़ नई बस्ती भोजीपुरा जिला बरेली से तरन्नुम अंसारी, तराना अंसारी, भाई अजहरुद्दीन, मोहम्मद हसन अंसारी और इनके परिवार के सभी लोग। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, पता लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। आप हैं हमारे श्रोता पारसमढ़ी रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक बाड़ में राजस्थान से बबलीश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबू राम जयपाल, खलीफों की बाबड़ी से खुदाबश खलीफा और इनके सभी मित्रगण।

बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान। आप हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा और परिवार के लोग। गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश प्रतीक्षा, स्वप्निल रक्षता और इनके सभी परिवारीजन। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। आप हैं गांव कवनूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से रेवड़ अनीता और राहुल। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इस्लाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण, जहनुल हुदा। आप हैं हमारे श्रोता। जिला खरगोन सनाबद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा, राजकुमार बुड़ाना और सुधामानगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और इनके परिवारीजन। उदयपुर राजस्थान से बाबू भाई, भारती देवी, रमेश और परिजन। भीष्म राज बुलंदशहर से आपने ये कमेंट किया है। आप हैं ग्राम नगर नागर कोहरा, जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी आराध्या और इनके परिवार के सभी लोग। गणेश प्रसाद हुजदार और हीरा देवी हुजदार काठमांडू से। मुतला महाराज से विजय सुरलकर, रतनमाला ओम सुरलकर, अंबागढ़ी चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबिया, अनस और रेहान। आप हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेगा मस्कीन। आप हैं ग्राम ढकिया केसरपुर जिला पीलीभीत से ए के राजपूत, अनिल कुमार राजपूत, कैलाश, भगवान दास, सत्यपाल, रवि कुमार, प्रिया, खुशी, संतोषी और चंचल। पारवाला बित्रोई जिला बदायूं से सुपाली सिंह राजपूत, महीपाल, शिवम, लेखराज, रिंकू, निर्मल वर्मा और कुमारी रानी वर्मा। मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। आप हैं कस्बा उगैती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज कुमार गुप्ता, प्रिंस कुमार, प्रशांत कुमार, कार्तिक गुप्ता, निर्भय गुप्ता और गुप्ता परिवार के सभी लोग। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना कांट रोड लदावली से। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर, सुलटी छाबड़ा और इनके परिवार के लोग। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा। आप हैं हमारे श्रोता। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, कटराचंद खां। पुराने शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि मौर्य, मानवी मौर्य। आप हैं पंचकुला सेक्टर 9 से आशुचुग, अश्वनी चुग, गोविंद, टोनी, लब्धिमान, राधे ढींगरा और इनके सभी परिजन। राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोडाने, अर्चना ताई, हिरामण शेंडे, प्रलय और प्रतिभा। ग्राम लसूडिया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला रामगढ़ राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, सुमन कोमल, कृतिका और रमेश चंद डांगी। कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार नामदेव, द्रौपदी देवी नामदेव। ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से साथ में हैं ब्रजेश कुमारी, अखिलेश कुमारी, लखनलाल नामदेव, चाहना नामदेव, आकाश, रानी परी, सुरभी नामदेव, पायल और इनके मम्मी पापा। आप हैं हमारे श्रोता। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़, रामचंद्र मखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सबीता मखीजा, बेबी स्वाति मखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही, पूजा, छुटकी, शरद कुमार डोडवानी एवं पूरा मखीजा कुटुंब। ये कमेंट हमारे पास आया है राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाडे, ज्योति नरवाडे, आकांक्षा नरवाडे, आकाश कुमार। आइए सुनते हैं निकाह फिल्म का ये गीत महेंद्र कुमार, महेंद्र कपूर और सलमा आखिर।

0: 2022 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: श्रोताओं, 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे कार्यक्रम आपकी पसंद। सब्जी मंडी कस्बा उसावा वार्ड नंबर 1 जिला बदायूं से धर्मवीर कश्यप, उषा कश्यप, ध्यानपाल कश्यप, संजय कश्यप, अनमोल कश्यप, अंश कश्यप, कुमारी करिश्मा कश्यप और कुमारी मुस्कान कश्यप। आपने सुनना चाहे फिल्म पत्थर के सनम में ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। इसी गीत को सुनने के लिए पसंद किया है हमारे श्रोता हैं निकट बिजली घर कस्बा मीरगंज बरेली यूपी से भाई कल्लू मिस्त्री, मोहम्मद नईम, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद नसीम, अनाविया फातिमा, बाबर अजीम, हमजा, इनके साथ में हैं आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, यश दिवाकर, ओमिंदरपुरी गोस्वामी, मुकेश गिरी, राजीवपुरी गोस्वामी, रामपुरा किसानान मजरा सिमरिया, तहसील मीरगंज बरेली यूपी से राम कुमार वर्मा, भगवान दास वर्मा, रविंद्र वर्मा, तेज प्रकाश वर्मा, सोमपाल वर्मा, शशि कुमार वर्मा, नथुलाल वर्मा, ननकी सिंह वर्मा, एच एल वर्मा, छोटे से विवेक और हिमांशी वर्मा। और ये कमेंट हमारे पास भेजने वाले हमारे श्रोता हैं

बहुत सारे कमेंट हमारे पास आए हुए हैं और आप हमारे श्रोता हैं। राजेंद्र, कृष्ण और इनके सभी साथी, इन्होंने अपना पता नहीं भेजा। आप हैं मनकारा मंदिर बीडी कॉलोनी करगना बरेली से, बिनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्य भारती, रचना भारती, ओमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, आदिति वर्मा, शिवांश वर्मा और प्रताप सिंह और इनके परिवार के सभी लोग। आप हैं हमारे श्रोता, ये कमेंट हमारे पास आया है। अक्षय कॉलोनी गोंदूर से मनोहर यमिनी और इनके परिवार के लोग। आप हैं

संजीव वर्मा, अरुण कन्नौजिया, पवन यादव, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अनिल तामरकर, अमर, शिवाजी चौक कटनी से। साथ में हैं लालू, सोना, मोना, हनी, यश और इनके मम्मी पापा। आपने ये कमेंट हमें किया है, भेजने वाले हमारे श्रोता हैं।

अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक गौहर, तन्वी गौहर, जयपाल यादव और परिवार के लोग अलकनाथ मंदिर के सामने गंगवार बैगलाइन, बरेली से बेचेलाल गंगवार, गुड्डी देवी, प्रशांत देव, ज्ञानेंद्र देव, इला देवी, बर्फा देवी, सुनील यादव, संजय अग्रवाल, अश्वनी कुमार मौर्य, विनोद दीक्षित, राज महावीर, कश्यप, रमेश चंद सैनी और रोबिन भाई। आप हैं नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू, रुद्राश प्रताप साहू, छत्तीसगढ़ सूरी से आप हैं रमेश साहू, तारा विद्या साहू, जितेंद्र कुमार, किशन कुमार, सुनीता देवी और इनके साथ में है रणजीत सिंह, त्रिलोक कुमार। मधुबनी बिहार से नवनीत सिंह, ज्योति सिंह, गांव चांदुर बिस्वा, जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से किशोर वानखेड़े, उषा वानखेड़े, विशाल वानखेड़े, ग्राम राजपुर तहसील मोताला महाराष्ट्र से राज गवई, राजवीर गवई और इनके परिवार के लोग। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। गांव हीरा वाली फजलिका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा और इनके

परिवार के लोग। आप हैं आरवी सिंह, अरजीत यादव, प्रशांत यादव, उदित यादव, अभय यादव, दीक्षा यादव, थाने के सामने अल्लाहगंज जनपद शाहजहांपुर से। श्रोताओं, आपसे अनुरोध है, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जब भी हमें कमेंट भेजें तो अपना पता भेजें और साथ में नाम लिख करके भेजें। आप बहुत सारी प्रतिक्रियाएं उसमें लिख देते हैं जिससे हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आगे से जब भी आप कमेंट करें तो सिर्फ अपना पता और नाम ही लिख करके भेजें, जिससे कि आपके कमेंट्स को पढ़ने में आसानी रहे। आइए सुनते हैं पत्थर के सनम फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

0: आपकी चाय।
1: EMI किराया कैसे मैनेज करूं?
2: एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा।
1: कैसे?
2: अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा।
1: इतना इजी?
0: काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है।
1: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
0: ना भाई ना।
2: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, अपार डिंगिया। आप हैं मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक,

और इनके परिवार के सभी लोग कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, आप हैं जमनिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति जायसवाल और इनके परिवार के सभी लोग, आप हैं संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से वारिस अली खान, इस्लामुन निशा, शकील अहमद, शाहनवाज खान और दानिश, मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुल निशा, शविस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक, लुबना और यश मंसूरी, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिवार, आप हैं जयश्री महत्रे, संगीत अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय, पीबी कुलथे, बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, मारहरा दरवाजा से नबी हसन अब्बासी, शाहनवाजा, नवैद हसन, अनम, यशव, सुहेल और रसीद पारसी, गीसू दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ, कुणाल, राजपुर मध्य प्रदेश से, मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, भंडिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग, आप हैं जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी और इनके परिवार के लोग, शाही मार्केट शिवहरा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, अरफा चौधरी, अदीब चौधरी और कदीर चौधरी, बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन से मध्य प्रदेश से विनोद मूलत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूलत, चेतन नहाटा और इनके परिवार के लोग, पटिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी टॉमस, आरती अरोड़ा और इनके परिवार के लोग, लक्ष्मणपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निमी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, सेक्टर 5 सूरी नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और हिमाश, पश्चिम बिहार दिल्ली से नीरज अग्रवाल, सचिन अग्रवाल, डीके अलवी, आइए सुनते हैं सरस्वती चंद्र का ये गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं सुरीले संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद में ओनली ऑन 100.4 एफएम आकाशवाणी बरेली पर। अगला गीत जिसकी पसंद के लिए कमेंट हमें भेजा है, फिल्म का नाम है ही रांझा, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, गीत है कैफी आज़मी का, संगीत मदन मोहन का, और पसंद किया है गांव लोहड्डा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनीश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी करावल, दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी प्रजापति और इनके परिवार के सभी लोग। आप हैं अंजार कच्छ से धीरज भाई, जगदीश भाई, मेहुल भाई, सीमा दुबी, भरत भाई, ग्राम पंचायत बठेना पाठन जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश धनेश्वरी वर्मा और इनके परिजन, मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, जीवम जैन और जैन परिवार के सभी लोग। अब हैं मनोज जीतवा, हर्ष जीतवा, बोरकावी नगर श्रीरामपुर से, और शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, आदिम बाकी और इनके परिवारजन, गुजरात गांधी ग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और जगदीश सोनी। आप हैं अड़ार नंदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी वर्मा। अब हैं चौकड़ा धाम कॉलोनी सनाबत जिला खरगोन मध्य प्रदेश से कृष्णपाल सिंह चौहान, तारा देवी, नव उदित सिंह चौहान, वैभव पाल सिंह चौहान, धुरबी प्रद्युम सिंह चौहान। आप हैं गंजुंडवारा से शमशुर कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान। बड़ी गेबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय, सरिता मालवीय। आप हैं हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार बरखा और इनके परिवार के लोग। गांव जलालपुरा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम आर्यन, लवेश, मुनेश देवी और इनके परिवार के लोग। ग्राम मेघोनिया जिला बदायूं से अमरपाल, किरण, लता और समस्त परिवार। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा। अब हैं सनावत से शेख मूसा मोहसिन और राम कुमार बोड़ाना। मलुकपुर जुगन गली शेर खान मस्जिद के पास से बेबी हानिया, तायबा नूर, तमन्ना, जारा और इनके परिवार के लोग। कमर कॉलोनी बड़वाहा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, प्रदीप सालूजा, संगीता सालूजा, जनकपुरी नई दिल्ली से। आप हैं हमारे श्रोता विराटनगर नेपाल से अरुण चंद शर्मा, रेणुका शर्मा और इनके साथी गुरमीन सिंह मीता, साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से। ग्राम मझुआ गंगापुर भोजपुरा बरेली से हसमुख जी, हसान, समस, इनाया और साथ में हैं शानूर, फलकनूर, ताज और मोहम्मद अबानूर। रामपुर

रोड किला छावनी बरेली से प्रदीप कुमार पाल, नमन संध्या प्रिया सिंह और रवि चंद मिश्रा और इनके परिवार के लोग, नई बस्ती गंजुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम आप हैं, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से श्यामो सुनील रंजीत और इनके सभी मित्रगण। तो आइए सुनते हैं हीरा राजा फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम की ये अंतिम फरमाइश ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज बरगुजर कैलाश मिस्त्री गोर्धन धरा दखन श्याम भार्गव बाबू गौरी हसन सिक्का आपने सुनना चाहा है। ये गीत फिल्म का नाम है ऊंचे लोग, किशोर कुमार सलमा का व साथियों की आवाज में। आप हैं डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद कुमार गौरव मंदुरकर, गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, बिमला देवी अमरजीत सुंदरलाल योगेश कुमार दीपक कुमार कुमारी पूजा खटक। आप हैं गंडुंडवार उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज बेगम इमरान नवाजिद शेख दानिश शेख अमन आफरीदी हरदेव मीका बलविंदर बिरक जितेक बिरक मीका बिरक गांधी चौक रोपड़ पंजाब से आकोट से विनायक बेंडे श्रीमती मंगला बेंडे विजय शुभम बेंडे पवन जी के परमार गांधीनगर गुजरात से आप जनकपुरी महाराष्ट्र जॉन डिकास्ट्रो रोजी डिकास्ट्रो पर्ल और बिलिस्ट डिकास्ट्रो। आप हैं श्रीगंगानगर से कुलदीप सिंह राजविंदर कौर संदीप जिसकरण हरदीप मनराज निर्मल सिंह और इनके सभी साथी। छत्रपति सामाजी नगर सूर्यवाड़ी से प्रकाश बोरगांवकर सुषमा प्रांजलि सोहम सदानंद विराज स्वीट अंजुमन बेबी ओबी और उनके परिवारीजन। आप हैं नेपाल से अरुण कुमार शर्मा रेणु देवी शर्मा राहुल कुमार शर्मा वंदना कुमारी शर्मा प्रियंका शर्मा।

ओखला संगम बिहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता। आप हैं मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चंदनी कुमारी, नंदनी कुमारी और परिवारीजन। गावना थाना पंजाब से हरजिंदर, छिंदा, जसबीर, जस्सी, सीता और गीता। आप हैं हमारे श्रोता। महाराष्ट्र से बाला प्रसाद जी करवा, गीतांजलि करवा, आकाश करवा और आकांक्षा करवा। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, प्रीति सिंह, ऋतु सिंह, संकल्प, प्यारी गुड़ी, वेदा। आप हैं कस्बा अग्रवाल मंडी बागपत यूपी से आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ, सारिक अली खान, सादिक अली खान। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजूलता राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत कुशवाहा, रामानंद कुशवाहा और साथी। तो आइए सुनते हैं फिल्म ऊंचे लोग का ये गीत।

मैं वीना सिन्हा, मंडल रेल प्रबंधक, इज्जत नगर मंडल पूर्वोत्तर रेलवे। आज आकाशवाणी के माध्यम से ही आकाशवाणी के अधिकारी और कर्मचारीगण को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर सभी को बधाई देती हूँ और समाज में आपके योगदान को भी सराहती हूँ।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद 100.4 FM पर। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सबरंग। सबरंग में ये गीत बाबा साहकल के स्वर में।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: श्रोताओ 100.4 एफएम पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरंग। आइए सुनते हैं ये गजल जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में।

श्रोताओं, ये अवधि गीत इसमें आवाज दी है मालिनी अवस्थी ने।

और ब्याह के बाद गौना भी हो गया, लेकिन लोकगीतों की एक खासियत है, लोकगीत वही कहते हैं जो आम आदमी सोचता है, जो भोले आदमी सोचते हैं।

0: प्रिय श्रोताओं, मैं वीना सिन्हा, मंडल रेल प्रबंधक, इज्जतनगर मंडल पूर्वोत्तर रेलवे, आपका स्वागत करती हूँ। इज्जतनगर मंडल द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 9 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय संपार जागरूकता दिवस अपने यात्रियों एवं सड़क उपभोक्ताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संपार जागरूकता दिवस विश्व के सभी देशों में रेलवे संपारों पर सुरक्षित आवागमन के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। रेलवे संपारों पर होने वाली दुर्घटनाओं का संबंध कहीं न कहीं मानवीय लापरवाही है। आप सभी से अनुरोध है कि बंद फाटक को खोलने हेतु कभी भी गेटमैन पर अनाधिकृत दबाव न डालें। बंद फाटक से नीचे से कभी भी निकलने का प्रयास न करें और न ही अपने वाहन को निकालें। अगर संपार का फाटक बंद है तो ट्रेन के निकलने एवं फाटक खुलने के बाद ही संपार पार करें। संपार के पास हेडफोन या मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। संपार के आसपास मवेशी ना चराएं तथा रेलवे की पटरी पर ना बैठें। संपारों पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने हेतु रेल प्रशासन प्रतिबद्ध एवं निरंतर प्रयासरत है। आप सभी आमजन से यह अनुरोध है कि नियमों का पालन करें और संपारों पर संरक्षा सुनिश्चित करने में हमारी मदद करें ताकि संपारों पर होने वाली घटनाओं को रोका जा सके।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम सबरम के अंत में आइए सुनते हैं यह गजल चित्रा सिंह की आवाज में। कलाम है बशीर बद्र का और संगीत दिया है जगजीत सिंह ने।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे सबरंग। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम। ये पहला लोकगीत बीना की आवाज़ में।

श्रोताओं, 100.4 FM पर आकाशवाणी की बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम। आइए सुनते हैं राम गोपाल सत्यार्थी के स्वर में ये लोकगीत।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, दोपहर के 12 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे FM रेनबो आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़

0: बनाने में सहायक होगी। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन में हिस्सा लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए सत्र आयोजित होंगे। आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए लिंगमनेनी रमेश को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी के आधिकारिक बयान में यह घोषणा की गई। लिंगमनेनी रमेश आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
1: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: भारत अमेरिका सेना ने अधिकारियों की वार्ता का 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीति लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमान जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वेवन ने की। चर्चा में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने, अंतर संचालनीयता बढ़ाने, पेशेवर आदान प्रदान का विस्तार करने और साझा सुरक्षा हितों के समर्थन में सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों देशों ने सहभागिता के बढ़ते दायरे की सराहना की और भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा या दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। स्थानीय नागरिकों और व्यवसाय करने वाले या छात्र परमिट धारक विदेशी नागरिकों को देश में प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि यदि उन्होंने पिछले 3 हफ्तों में इन देशों में से किसी का भी दौरा किया है तो उन्हें 21 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भोजनावकाश तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से राजस्थान के ऑलराउंडर मानव सुथार टेस्ट क्रिकेट में पहली बार खेल रहे हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के
2: कॉलेज में करते हैं, लेकिन लेकिन जो फन हम अपनी फैमिली के साथ करते हैं ना दोस्तों, उसकी बात ही कुछ और होती है। वो दिल से जुड़ा होता है, एहसास से जुड़ा होता है, प्यार से जुड़ा होता है ना। तो बस सैटरडे को हम करने आते हैं आपके साथ यही फैमिली वाला फन। तो तैयार हो जाइए। कैसे होगा फन? हमारे साथ बने रहना होगा, अपनी फैमिली के साथ ज्वाइन करना होगा आपको 100.7 FM रेनबो, और साथ में इतने प्यारे से ट्रैक कि आपको थिरकने पर मजबूर कर देंगे। और क्या क्या होंगी बातें बताएंगे जरूर इस गाने के बाद, लेकिन तब तक की पूरी फैमिली को रेडी कर लीजिए, फन के लिए तैयार कर लीजिए।

और इसी प्यार के साथ शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की, जिसमें करने वाले हैं हम ढेर सारा फन। तो बताइए, सभी लोग एक साथ हो गए? अरे हाँ, थोड़ा सा मुश्किल होता है एक साथ होना, क्योंकि सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना दोस्तों, सब साथ होते हुए भी अलग अलग लगते हैं। कोई किसी चीज में बिजी है तो कोई किसी चीज में। हाँ, होता एक चीज है हाथ में, हमारा स्मार्टफोन है ना। और जब गैदरिंग होती है ना, अब कहते हैं ना कि पिक्चर नहीं दिखाई जा सकती, कैसे दिखाई जाए, लेकिन जो बात हम कह रहे हैं उसको आप महसूस कर सकते हैं। चाहे पार्टी में हो, चाहे कहीं पर भी जगह में आप बैठे हो, लोग घूमने जाते हैं लेकिन जैसे ही मोबाइल ऑन करते हैं बस उसी में लग जाते हैं, तो पास रहते हुए भी पास नहीं होते हैं। तो घर में आज आप अपने काम में लगे रहिए, लेकिन दिल एक दूसरे से कनेक्ट करिए। और जरा सोचिए कि लास्ट टाइम कौन सी ऐसी बात आपकी थी जो किसी के दिल को छू गई थी, यानी कि दिल में चुभ गई थी। क्या ऐसा कहा था आपने? अगर वो आपको याद आ रहा है ना, तो बिना किसी झिझक के अंदर की आत्मा को मजबूत करके उस इंसान से आप आज सॉरी बोल दीजिए। जी हाँ, प्यार से बोलिए, देखिए कितना बदलाव आप खुद में महसूस करेंगे।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: हमारी जनगणना हमारा विकास।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: सात रंग का इंद्रधनुष है,
6: सात सुरों की सरगम है,
7: सात जन्म है सात समंदर,
5: सात हमारा हरदम है,
7: जिंदगी के सतरंगी रंग
6: FM रेनबो के संग।

दोस्तों, जब हम एक दूसरे से दिल से मिलते हैं ना, तो जो खुशी होती है उसका एहसास तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो आज हम फैमिली के साथ हैं, फन के साथ हैं, और आज का जो फन है वो थोड़ा सा अलग है। जी हाँ, आज का जो फन है वो हम दिल से अपने प्यार की बातें एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, है ना। काम चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, हैं घर के ही अंदर, और कुछ देर के लिए मोबाइल फोन को आप अपने से दूर कर दें। अब ये आप कहेंगे कि कैसे कर दें, उसी से तो हम एफएम रेनबो सुन रहे हैं, तो वॉल्यूम तेज करिए और उसको हाथ से दूर करिए। कई बार होता है कि एक साथ हम कई सारे काम कर रहे होते हैं, जो दूसरा कुछ हमसे कह रहा होता है उससे बोलते हैं हाँ हाँ बोलो मैं सुन रहा हूँ या मैं सुन रही हूँ, और अपने काम में लगे रहते हैं। और जब कोई चुप हो जाता है अचानक, तब फिर से याद आती, अच्छा हाँ बताया नहीं अपनी बात, जबकि अगला पूरी बात कह चुका है। तो इस तरह का जो काम हम करते हैं ना, नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए। जब कोई बात आपसे कर रहा है, अपनी बात बता रहा है, तो उसे पूरा अटेंशन दें और पूरी तरह से उस बात को सुने। उतनी देर में कुछ देर नहीं हो जा रही है ना। तो बस परिवार की बात है, परिवार के साथ रहना है, परिवार में हंसी खुशी आपके हाथ में है, क्योंकि एक एक इंसान बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और कहते ना कि पूरा शरीर हमारा एक है, उसी तरह से परिवार एक है। शरीर में कहीं पर भी अगर जरा सी भी चोट है ना, तो पूरे शरीर को तकलीफ होती है। ठीक वैसे ही परिवार में भी होता है हर इंसान का खुश रहना।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों

0: की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

इसी तरह से आप भी किसी से कह सकते हैं ना, जैसे कहा ना, कभी तू भी तो मेरे संग टोल। घर पे कई बार ऐसा होता है कि एक साथ रहकर भी हम कई दिनों तक एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, उसका हाल चाल नहीं ले पाते, और हाँ, लेकिन स्टेटस जरूर लगा लेते हैं, है ना, कि आज उसका बर्थडे है, आज उसकी एनिवर्सरी है, आज ये है, आज वो है। यहाँ तक कि नाराजगी को भी हम जाहिर कर देते हैं, हम दुखी हैं ये भी कर देते हैं। जितना समय हम इस काम में लगा रहे हैं ना दोस्तों, रियल में उस इंसान से बात करने में लगाए ना, तो जितनी परेशानी है ना, सब एकदम फुर हो जाएगी। जी हाँ, चाहे किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, किसी भी चीज को आप विश करना चाहते हैं, तो उस इंसान से एक बार जरूर कुछ मिनट क्या, कुछ सेकंड निकाल कर कॉल करके उसे मिल के उसे बधाई जरूर दें। आज ये काम कर लें, अपने परिवार का ही कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह से, अरे कुछ नहीं तो हैप्पी सैटरडे बोल दीजिए भाई, कि सैटरडे है, खुश रहो। और क्या हो रहा है, क्या एक कप चाय पर एक दूसरे के साथ हो जाएं।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
3: नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम,
4: RHL गोल्ड टीम टीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: मुस्कुराइए।

12:54 और 50 सेकंड का वक्त हो चला है और ये वक्त कह रहा है कि शालिनी प्रोग्राम शत्रुपा को करना होगा यहीं पर फाइंड अप। और इसी के साथ बस आपसे ये कहना है कि थैंक यू जरूर बोले आज एक दूसरे से, किसी भी छोटी चीज या बड़ी चीज पर।

0: नमस्कार, दोपहर के 1 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में 516 करोड़ रुपए की लागत वाली 262 परियोजना।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104 FM पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे FM रेनबो आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। दोपहर का 1 बज चुका है और आइए अब सुनते हैं आपके खतों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत।
2: मंडल रेल प्रबंधक इज्जत नगर मंडल पूर्वोत्तर रेलवे, आज आकाशवाणी के माध्यम से ही आकाशवाणी के अधिकारी और कर्मचारीगण को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर सभी को बधाई देती हूं और समाज में आपके योगदान को भी सराहती हूं।
1: श्रोताओं, अनुरोध गीत में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारे खत हैं और उन खतों में है आपके पसंद का गीत। आइए शुरुआत करते हैं इस पहले खत से। छावनी अशरफ खां पानी की टंकी के पास होली चौक बरेली यूपी से आप हैं राम प्रसाद शर्मा, जय श्री देवी वंदना शर्मा, मनोरमा देवी, अजय शर्मा और फजलुद्दीन भाई। आपने सुनना चाहा है फिल्म एक दूजे के लिए का ये गीत लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। गीत है आनंद बख्शी का और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा आप हैं हमारे श्रोता। कटर चंद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखी लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, अरोही मौर्य, स्वाति मौर्य। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और साइना शर्मा। ये खत हमें भेजा है बहेड़ी से अंजुम भाई, खालिदा बेगम, कैकशा, दानिश, आदिल, शपक और इनके परिवार के सभी लोग। ग्राम पजौनिया, तहसील कोच, जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र चंसौलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक, आराध्या चंसौलिया, रमेश चंद्र यादव, मुस्कान यादव, सुशीला यादव, कुंज प्रिया, बरेली पवन बिहार से आप हैं लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा और इनके परिजन। बिलराम गेट कासगंज से MSLM सैफी, जैबुन्निशा बेगम, अकरम सैफी, आवाद खान। तो आइए सुनते हैं फिल्म एक दूजे के लिए का ये गीत लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में।

गांव चौरेदा बागपत से संजय डिंगिया, नमन मुस्कान और कुणाल और इनके परिवार के सभी सदस्य, आप हैं हमारे श्रोता। निकट बिजलीगर कस्बा मीरगंज बरेली से कल्लू भाई मिस्त्री, मोहम्मद नईम, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद नसीम, अनाविया फातिमा, बाबर अजीम, हमजा, आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, यश दिवाकर, उमिंदरपुरी, मुकेश गिरी, राजीव पुरी गोस्वामी, रामपुरा किसानान मजरा सिमरिया तहसील मीरगंज बरेली से राम कुमार वर्मा, भगवान दास वर्मा, रविंद्र वर्मा, तेज प्रकाश वर्मा, सोमपाल वर्मा, शशि कुमार वर्मा, नथुलाल वर्मा, ननकी सिंह वर्मा, एच एल वर्मा, छोटे से विवेक और हिमांशी वर्मा का ये खत हमारे पास आया है। आप हैं रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी और गोस्वामी परिवार के सभी लोग। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय। आप हैं प्रहलाद भाई, सलीम भाई और ये खत इन्होंने भेजा है राजेंद्र नगर निकट तालाब के पास डीला पीर रोड जिला बरेली से। और ये खत हमारे पास आया है शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवि श्रीवास्तव। बेडी से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची और तनु करमकर। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली और नदीम अली। आइए सुनते हैं आप सभी के अनुरोध पर फिल्म गंगा जमुना सरस्वती का ये गीत साधना सरगम की आवाज़ में। गीत है इंदिवर का, संगीत अनु मलिक का।

आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत 100.4 एफएम आकाशवाणी बरेली से। और अगला ये खत हमें भेजा है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन निसार, मस्तान बाबा और इनके परिवार के सभी लोग। हिना फिल्म का ये गीत मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में गीत है, रविंद्र जैन का, संगीत भी रविंद्र जैन का। और मनकार मंदिर बीडी कॉलोनी करघना बरेली से पन्नीलाल सागर, बेनी सिंह मासूम, धर्मवीर मनमौजी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश उर्फ बंटी, रूबी भारती, रचना भारती, एकता भारती, दिव्य भारती, ममता चौधरी, ओमपती भारती, बेटी खनक, नकुल नैन्सी और सारांश। आप हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, गंगवार रेडी श्रोता संघ ग्राम दलपतपुर पोस्ट चटिया जिला बरेली से ओमपाल गंगवार, अनिता गंगवार और उनके मम्मी पापा, ग्राम पिपरिया पोस्ट नगरिया सोबरनी जिला बरेली से अमन गंगवार, आशा गंगवार, संध्या गंगवार, छोटे लाल गंगवार। आप हैं गड़ैया बरेली मस्जिद के पास से मोहम्मद कैसर शमशी, मोहम्मद अजीम शमशी, मोहम्मद सलीम शमशी, मोहम्मद नवैद शमशी, रजिया शमशी और बेबी शमशी, शमशी परिवार के सभी लोग। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रेहान, माहिरा नूर। आप हैं इंदिरा बिहार रायगढ़ से वसीम अकरम नूर जहां, डब्लू अकरम नूर जहां, वली अकरम नूर जहां, उल्ला अकरम नूर जहां, राजनाथ गांव से याकूब आसमा, यूसुफ इमरान और इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, अदीबा तिवारी और इनके परिवार के सभी लोग। ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर। बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा, प्रमिलागंज अलोट जिला रतलाम से। आप हैं गांव लोहड्डा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, मास्टर अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन। शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरीसी, नाजरा इदरीसी, नईम इदरीसी, नईम इदरीसी और साथ में नदीम इदरीसी। ये खत हमारे पास आया है गांव हीरावाली फजले का पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा और इनके परिवार के सभी लोग। आप हैं अल्लागंज जनपद शाहजहांपुर से आरबी सिंह, अर्जित यादव, प्रशांत यादव, उदित यादव, अभय यादव, दीक्षा यादव और इनके परिवार के सभी लोग। विशाल वारासा, विकास वारासा, रोशनी वारासा, शगुन वारासा, विनोद वारासा। आप हैं खोखरा वाली से और ये खत हमें भेजा है मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। आप हैं जमनिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल और ऐशबाग संजय नगर।

लखनऊ से एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुन निशा शकील अहमद, शाहनवाज खान और दानिश, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार, आप हैं जयश्री महत्रे, अंजलि करवा, बाला साहब करवा, राम निवास अग्रवाल, नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, बीड शहर महाराष्ट्र से, साथ में पी वी कुलथे, आप हैं हमारे श्रोता मनोज भाई सेन सिटी सेंटर खंडवा से, साथ में पूनम सेन, दीपक सेन, सौम्य सेन, भव्य सेन, कार्तिक सेन, विनायक सेन और इनके परिवार के सभी लोग, मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नबैद हसन अब्बासी, अनम यशव, सुहेल हसन, रसीद बारसी और परिवार के ही सभी लोग, मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, बठिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग, आप हैं हमारे श्रोता बोरखेड़े पितरामल जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक महंक मूड़त, चेतन नाहटा और परिवार के सभी लोग, बड़नखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी टॉमस, लवली आरती अरोड़ा और परिवार के लोग, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवक लाल साहू, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश और इनके परिवार के सभी लोग, आप हैं हमारे श्रोता पश्चिम बिहार दिल्ली से नीरज अग्रवाल, सचिन अग्रवाल और साथ में डी के अलवी। तो आइए सुनते हैं हिना फिल्म का ये गीत मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: बरेली जंक्शन से गरीब भाई, नासिर भाई, सादिक भाई, बिक्की भारद्वाज, अमान जैद, इसरार भाई, पदम भारद्वाज, सुंदर भाई, प्रदीप पाल, नमन और उमा शंकर, आप हैं हमारे श्रोता। मोहल्ला तलैया उल्ला जागीर से फजलुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई, रामप्रसाद शर्मा, पीर बहोड़ा बरेली से आज़ाद खान, दिलशाद खान, मुस्तकीम और तबस्सुम, आप हैं सेक्टर 67 मोहाली, चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज, मसरूर खान, अमन अब्बासी, सुहेल अंसारी, भरत यादव, अमन मंसूरी, आबाद खान, रेखा कश्यप और इनके सभी मित्रगण, नखासा रोड उसैद बदायूं से, ऊंची मस्जिद उसैद से चांद मियाँ, तबस्सुम बेगम, असद सत्तार, शाहजहाँ, अली बाबा, मरजीना अलबख्श, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एमएच लल्ला, एनबी मिर्ज़ा, मुनव्वर हुसैन, नसरीन बेगम, कैकशा बेगम, अनवार मियाँ, गुमनाम शाह, बेनाम शाह, नामालूम शाह, आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति पवनीत और विक्रमजीत ग्रोवर, शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी और इनके सभी साथी, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और जगदीश जौहरी, आप हैं हमारे श्रोता। माखनलाल वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी वर्मा, आड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से, और ये खत हमें भेजा है कृष्णपाल सिंह चौहान, तारा देवी, उदित सिंह चौहान, वैभव पाल सिंह चौहान, दुर्वी एवं प्रद्युम्न सिंह चौहान, जिला खरगोन मध्य प्रदेश से, आप हैं बड़ी गवी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय, सरिता मालवीय और परिवार के सभी सदस्य, आप हैं हमारे श्रोता। ये खत हमारे पास आया है ग्राम मिघोनिया जिला बदायूं से अमरपाल, किरण लता और इनके परिवार के सभी लोग, मलुकपुर जुकन गली शेर खान मस्जिद के पास से बेबी हानिया, तैवा नूर, तमन्ना, जारा और इनके सभी परिवारीजन, आप हैं हमारे श्रोता। अरुण चंद्र शर्मा, रेणुका शर्मा और उनके साथी, विराट नगर नेपाल से, गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से, ग्राम मजुआ गंगापुर भोजीपुरा बरेली से हसमुख जी, हसान, समस, इनाया और शानूर, फलकनूर, ताज और मोहम्मद अबानूर और गुप्ता जी, इनके परिवार के सभी लोग, नई बस्ती गंजडुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, तैमूर हाशमी, कलीम अंसारी और परिवारीजन, आप हैं हमारे श्रोता। ये खत हमारे पास आया है गांव जाखोद राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक और इनके सभी परिवारीजन, मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान अनाज, नवाज़ शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, गंजडुंडवारा उत्तर प्रदेश से। तो आइए सुनते हैं हिम्मत वाला फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

सिद्धार्थ नगर दरिया पर बावली से, और आप हैं हमारे श्रोता गुजरात पाटन से धीरज बी रवारी और इनके परिवार के सभी लोग, मधुबनी बिहार से नवीन सिंह ज्योति सिंह और परिवारीजन, आप हैं हमारे श्रोता मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शविस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। तो आइए सुनते हैं कुर्बान फिल्म का ये गीत अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाज़ में। गीत है समीर का, संगीत आनंद मिलित का।

श्रोताओं, फिल्म का नाम है चाहत आवाज़, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की। गीत है समीर का, संगीत आनंद मिलित का, और अनुरोध किया है आप सभी ने। वजीरगंज जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से प्रेम कमल बाजने, सुशीला कमल प्रभात, अमरीश सरोनी, सचिन नीरू, देविका कार्तिक, वेदरिचा और ऐश्वर्य कमल बाजने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक। आप हैं यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार। शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से सुमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद अमन, अंकिता, सुनीता, सूरजश्री, अनिता, विनीता, सुनीता, सोनी, सनोज और पुष्पेंद्र यादव। आप हैं गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरान इदरीसी, कस्बा शीशगढ़, मोहल्ला गौड़ी से त्रिलोक चंद वर्मा, शीतल, रेडियो श्रोता संघ, ग्राम बहरामपुर टेमा, जिला खरगोन मध्य प्रदेश से भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समरराज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, ईशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा, विशनदत्त भारद्वाज, शिवदत्त भारद्वाज, फूलबाग किला छावनी बरेली से गंगादत्त भारद्वाज, बिक्की भारद्वाज, वर्षा, कविता, कल्पना, ईशु, भावना, आदित्य, देव की देवी भारद्वाज, शिप्रा, नीलम भारद्वाज, मुन्नी देवी भारद्वाज, श्रीराम राठौर। आप हैं औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश। पंडित नंगला बाईपास मुरादाबाद से अख्तर हुसैन, असलम हुसैन। बीबीपुर से महमूद हुसैन, बैटला सिरसी से मकसूद हसन और इनके सभी साथी। निकट मोती मस्जिद कस्बा नवाबगंज जिला बरेली से नसीम अहमद, मेराज भी, मुस्कान भी, मोहम्मद रेहान, अलशिफा भी, मन्नत भी। आप हैं बुड़गहन छत्तीसगढ़ से रामदुलारी प्रजापति, रामचरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकांता प्रजापति और इनके सभी परिवारीजन। नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, उत्कर्ष नेताम, ग्राम पगबुड़वा पथरिया से, कस्बा बिलसी मोहल्ला वार्ड नंबर 5 से ठेकेदार रहमान अलवी, अनोखी बेगम अलवी, फिरासत अलवी, गुलशन बेगम अलवी, जानवी अलवी, हानिया अलवी, नज़ाकत अलवी, शाहीन अलवी, आहिल बाबू अलवी, आदिल अलवी और अलवी परिवार के सभी लोग। कस्बा केरोड़िया नवाबगंज जिला बरेली उत्तर प्रदेश से राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल, धर्मवीर, सचिन, अनुज, अनमोल, कमलेश, तुलाराम, अंकुश, राजू, राजचंद्रपाल, उल्पत शर्मा, बबलू गंगवार, बेतपाल गंगवार, राजीव गंगवार और इनके परिवार के सभी लोग। ग्राम पंचायत बाकरगंज, तहसील फरीदपुर, पानी की टंकी के पास से मास्टर सुनील बाबू, शिवम सिंह, अभयजीत, भगवान देई, स्वाति सिंह, तान्या एवं उनके सभी मित्रगण। आप हैं प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, कंवर कॉलोनी बड़वाहा, जिला खरगोन मध्य प्रदेश से। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रजिता खुराना, केशु रिधान खुराना, तुलसी मस्कीन और परिवारजन। तहसील रोड गंडुंडवारा से के एच राही, गुड़िया बेगम, वकील प्रेमी, हम्माद जमील और परिवार के लोग। आप हैं तेलंगाना निजामाबाद।

शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख और इनके परिवार के सभी लोग। तो आइए सुनते हैं फिल्म चाहत का ये गीत उदित नारायण की और साथ में अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये अंतिम नगमा, फिल्म का नाम है बॉर्डर, आवाज रूप कुमार राठौर, गीत है जावेद अख्तर का, संगीत अनु मलिक का, और अनुरोध किया है आप सभी ने विमल ठाकुर, सरिता ठाकुर, शुभ, लव, गुनगुन, अमर सिंह, नीलू, रीना, नीरज, बक्सीना, दादागंज बदायूं से, टिंकू भाई उर्फ भास्कर भाई, शुभम कुमार, मोहित कुमार, योगेंद्र माथुर, कुमार पाल माथुर, रुपेंद्र माथुर, रितू शर्मा, के शर्मा, शोभ सिंह शाक, आशय शाक, रमेश शाक, मोनिका माथुर, अनिष्का माथुर, ग्राम बुडला, दौलत पोस्ट।

उजानी जिला बदायूं से। आप हैं द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा, छत्तीसगढ़ भाटापारा तत्रेंगी से, गणेश शर्मा, शगुन शर्मा, कार्तिक शर्मा, पवन शर्मा, युवराज शर्मा, इशिता शर्मा, पंकज शर्मा, वीर शर्मा, संदीप, चंचल शर्मा, चिंकी शर्मा, सूरज शर्मा, अबरार अंसारी, पुराना होली चौक ग्राम करगना बरेली से, रजत कुमार भूड़ बरेली से। आप हैं जाफराबाद जिला जालना हुन से, सुधाकर राजे यादव, प्रशांत जागुताय, संचित प्रथमेश, सोम प्रणाली और सानवी। जिला बदायूं ग्राम दूने नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठहरिया, मनोज कुमार कठहरिया, सत्येंद्र कुमार कठहरिया, गुड्डू विशाल, संगम विभू, आदर्श, आदित्य, अमित, रेणु, कुमकुम, निव्या, सरिता और अंतिमा। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा, आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा, मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से मुन्ना भाई सोलकार, पिंकी सोलकार, रितेश कृष्णा और पीहू सोलकार। कनेरा मोहल्ला पटियाला से आप हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू निहारिका और वंश बत्ता। परी महल कासगंज से आबाद खान, नवील खान, असलम सैफी, ए खान। गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही, जाहिद अली। मेहरनगर उमरखेड़ महाराज से अभिजीत गुहाड़कर राही, सरिता गुहाड़कर, सिद्धांत प्रिंस, एकांश गुहाड़कर। विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गुहाड़कर, वैशाली गुहाड़कर, श्वेता, सुमित गुहाड़कर, ध्वनी गुहाड़कर, परी। आप हैं बढ़ेना से बालकरण, अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा। चटौदा सारा गांव से आप हैं सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। ये खत हमारे पास आया है फजलिका पंजाब से, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, ट्वांसी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, आरबी खेड़ा, लाडी खेड़ा, जीवन सिंह। आप हैं नाना डोंगर दिवे, सेमिनरी हिल्स, नागपुर से रमताई, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई, राहुल डोंगर दिवे। और ये खत हमें भेजा है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी, अल्ताफ अंसारी, डुमराव बिहार से डब्लू अंसारी, सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, सलीमपुर बक्सर से आसमा खातून अंसारी, राज एचडी अंसारी, मेहताब अंसारी, आफ्ताब अंसारी और मेराज अंसारी। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलठाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े, आकाश कुमार। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी नगमा बॉर्डर फिल्म से, आवाज़ है रूप कुमार राठौर की।

0: अभी आप सुन रहे थे अनुरोध गीत, आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। दिन के 2 बजे हैं और अब हम लेकर हाजिर हुए हैं जनमंच।
1: नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश योगेंद्र, और जैसा कि आपको पता है कार्यक्रम जनमंच में हम आपके बीच से ही किसी न किसी को आमंत्रित करते हैं अपने स्टूडियो में और एक खास विषय पर बातचीत करते हैं। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे शिक्षा की। समाज में शिक्षा का क्या महत्व है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके बिना समाज कैसे अधूरा है, और इसके चलते अगर यह शिक्षा अच्छे से मिले सबको तो कैसे हमारा समाज विकास के पथ पर आगे बढ़ता जाएगा, इसी पे बातचीत करेंगे। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में आधी आबादी है, जी हाँ, महिला शक्ति है, नारी शक्ति है। इस वक्त इस समय हमारे इस स्टूडियो में 3 लोग मौजूद हैं, नारी शक्तियां हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग अपना परिचय स्वयं ही दें। सबसे पहले आप
0: जी। मेरा नाम है आरजू जैदी।
1: जी आरजू जी, आप क्या करती हैं?
0: जी मैं, मेरा बीए थर्ड ईयर है।
1: बीए थर्ड ईयर जी। क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके?
0: मैं इसी के साथ एजुकेशन है, सोशियोलॉजी और हिंदी इंग्लिश।
1: अच्छा, थर्ड ईयर में तो 2 सब्जेक्ट रहे होंगे।
0: जी जी जी, एजुकेशन और सोशियोलॉजी है।
1: एजुकेशन सोशियोलॉजी, चलिए, तो हमारा विषय भी जो है समाज से संबंधित है
0: जी,
1: और आपने भी सोशियोलॉजी चुना हुआ है
0: जी।
1: और पढ़ाती हैं आप
0: जी?
1: तो कौन से लेवल के बच्चों को पढ़ाती
0: जी? मैं NC KG और सेकेंड को पढ़ाती हूँ।
1: अच्छा
0: जी, ऑल सब्जेक्ट्स।
1: चलिए पहले परिचय हो जाए बाकी लोगों से तो फिर बात करते हैं। आप बताइए।
2: जी मेरा नाम किसारिजवी है।
1: किसारिजवी साहिब, आप क्या करती?
2: मैंने अभी बीए कंप्लीट कर लिया है। अच्छा। और मैं जॉब कर रही हूँ, टीचर की।
1: टीचर की जॉब कर रही हैं। तो इस समय हमारे इस स्टूडियो में 2 युवा नारियां हैं, और तीसरी आप भी अपना परिचय बता दीजिए।
3: मेरा नाम नाजिया मेहंदी है और मैं भी पेशे से एक टीचर हूँ। मैं 12th स्टैंडर्ड तक बच्चों को मैथ और साइंस की कोचिंग देती हूँ।
1: अच्छा
3: जी, मैंने BSc MSc फिजिक्स मैथ से कंप्लीट किया है। मैंने BA DEMET सब करा है।
1: अच्छा
3: जी,
1: क्या बात है। तो सब शुरुआत आप ही से करते हैं क्योंकि आप बड़े बच्चों को पढ़ा रही हैं और आपने इतनी सारी डिग्रियां भी ली हुई हैं।
3: जी,
1: बीएड भी किया, एमएड भी किया है।
3: जी जी।
1: तो सबसे पहले अपनी शिक्षा के बारे में बताइए, बात हो रही है शिक्षा की, तो बीएड के बाद एमएड की आवश्यकता या उपयोगिता क्या है?
3: देखिए, किसी भी चीज में स्पेशलाइजेशन के लिए बीएड जैसे होता है, बीएड में हमारे

0: काफी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन एमएड जो होता है उसमें हमारा एक स्पेशल विषय होता है। तो किसी भी चीज़ के स्पेशल ट्रेनिंग के लिए जो है वो हमें एमएड वगैरह कराया जाता है।
1: कराया जाता है।
0: जी,
1: तो शिक्षा
0: तो
1: ही क्यों, आपने ये क्षेत्र क्यों चुना करियर के लिए?
0: क्योंकि मैं शुरू से ही एजुकेशन में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे मार्क्स से, ग्रेड से पास होती थी,
1: अच्छा,
0: और पढ़ने लिखने का
1: टॉपर
0: मुझे
1: टॉपर रहती हैं, है?
0: बहुत,
1: अच्छे मार्क्स आते
0: टॉपर
1: हैं,
0: तो नहीं सर, हाँ
1: फिर भी फर्स्ट डिवीजन।
0: फर्स्ट डिवीजन थी
1: जी
0: मैं।
1: जी जी
0: और मेरे लिए शिक्षा एक ये नहीं है कि एक पैसा कमाने का जरिया है, मुझे बड़ा मजा आता है बच्चों को पढ़ाने में।
1: अच्छा अच्छा
0: मैं कोचिंग भी लगाती हूँ, वहां पर छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। आगे की मेरी रणनीति ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक इस तरीके का स्कूल खोल सकूँ जहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे जो शायद पैसा देकर अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, मैं उन बच्चों को पढ़ा सकूँ। कुछ बच्चे होते हैं मेरी नज़र में, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कहते हैं ना कीचड़ में कंवल होता है सर, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत गट्स होते हैं, टैलेंट होता है, काबिलियत होती है पढ़ने लिखने की, लेकिन शायद उनको मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, उनको ऐसे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं कि वो कुछ आगे चलकर कर सकें। तो
1: बिल्कुल
0: मेरा बड़ा दिल रहता है सर, मेरे लिए शिक्षा एक, मेरे लिए मेरा वर्क, जो मैं बोलती हूँ कि वर्क इज वर्शिप,
1: वर्क
0: वो
1: इज
0: मेरे
1: वर्शिप।
0: लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे लिए मेरा काम और मेरे बच्चे सबसे इम्पॉर्टेंट रहते हैं। मेरा ऐसा नहीं है कि आप पौन घंटे पढ़ा रहे हैं, आजकल टीचर्स मैं देखती हूँ कि पौन घंटे पढ़ाते हैं, 1 घंटे पढ़ा, नहीं, मेरे लिए अगर मेरा बच्चा ग्रो कर रहा है, मैं अपने हर बच्चे पर इतना टाइम स्पेंड करती हूँ कि अगर उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं तो वो निखर के आ सकें, उसके
1: बिल्कुल
0: अंदर एक इम्प्रूवमेंट हो सके। और काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मेरे पास आकर सुधरे भी, करके भी दिखाया, और सर इसके लिए हमें दुआएं मिलती हैं और दुआएं बहुत काम आती हैं।
1: बिल्कुल, दुआएं बहुत काम आती हैं, वही जिंदगी में तरक्की का रास्ता
0: जी बिल्कुल
1: प्रशस्त
0: सर,
1: करती हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस्सा जी,
0: जी
1: आप भी शिक्षा के क्षेत्र में
0: जी जी
1: हैं,
0: जी
1: पढ़ाती हैं
0: बिल्कुल,
1: आप
0: जी
1: भी,
0: जी जी पढ़ाती हूँ
1: तो शिक्षा ही क्यों चुना आपने, क्यों अच्छा लगता है आपको,
0: सर, क्योंकि शिक्षा ही समाज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है
1: कैसे कैसे?
0: सर। समाज में जो हम आजकल के समाज में आप देख रहे हैं, शिक्षित व्यक्ति समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता है।
1: शिक्षित कर सकता है या फिर जो वाकई पैसे कमा सकता
0: नहीं नहीं सर, पैसे कमाना भी एक जरिया है,
1: है,
0: लेकिन मेरे
1: क्या
0: हिसाब
1: शिक्षित
0: से
1: होने के बाद पैसा कमाया सकता है
0: जी जी
1: या बिना
0: बिल्कुल
1: शिक्षा के भी पैसा?
0: नहीं, बिना शिक्षा के पैसा बिल्कुल नहीं कमाया जाता है। शिक्षित व्यक्ति ही आजकल नौकरी मिल सकती है शिक्षित व्यक्ति को, समाज के लिए
1: और
0: शिक्षित
1: अब
0: व्यक्ति
1: इसमें बात आती है शिक्षित होना,
0: जी जी
1: शिक्षा का मतलब क्या क्या है? डिग्री है, MBA या MEd है या फिर
0: जी
1: PhD
0: जी
1: है,
0: जी
1: और भी बहुत सारी डिग्रियां
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: क्या डिग्री
0: शिक्षा
1: है या फिर कुछ और मतलब?
0: जी शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं है, उसके लिए आप परिवार के लिए अनुभव भी है बहुत ज़रूरी है, अनुभव से भी बहुत ज्ञान मिलता है हमें। शिक्षा से, डिग्री से तो मिलता ही है, डिग्री एक नौकरी के लिए ज़रूरी हो सकती है, लेकिन
1: हाँ,
0: अनुभव बहुत ज़रूरी है।
1: अनुभव बहुत
0: जी
1: जरूरी
0: जी
1: है।
0: शिक्षा के लिए अनुभव ज़्यादा
1: जी,
0: ज़रूरी है।
1: आप क्या मानती हैं आजू जी, शिक्षा का मतलब आपके लिए क्या है?
0: मैं ये मानती हूँ कि शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। बिना शिक्षा के मैं ये मानती हूँ कि कोई भी हो, लेडीज़ हो जेंट्स हो, कोई अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, अगर हमारे पास एजुकेशन है, अगर हमारे पास शिक्षा है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आजकल का माहौल आप देखें कि जिन लड़कियों को ससुराल से धोखा मिल रहा है, या वो कहीं से भी उनका हार्ट ब्रेक ब्रेक इन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उनको लास्ट में एक ही ऑप्शन मिल रहा है, क्या? एजुकेशन। अगर उनके पास एजुकेशन है तो वो कुछ भी कर सकती हैं आगे जाके, टीचिंग हो, डॉक्टरी लाइन
1: मतलब एक
0: हो,
1: ताकत है।
0: एक ताकत है उनके पास,
1: हाँ
0: एक शक्ति है कि हम एजुकेटेड हैं। और इसी जगह अगर कोई अशिक्षित है कोई व्यक्ति, तो वो फिर कुछ नहीं कर पाता है, वो फिर अपने माँ बाप पे निर्भर रह जाता है कि यही हमारे लिए कुछ करें। और अगर हम शिक्षित हैं तो हम किसी और को भी शिक्षा दे सकते हैं। और ये शिक्षा खाली टीचिंग लाइन से ही नहीं, ये इसका अनुभव हम कहीं बाहर निकल के भी हमें अनुभव मिलता है, दोस्तों के साथ बैठे हैं तो भी हमें अनुभव मिलता है, बहुत सी हम अच्छी बातें सीखते हैं, किसी बड़े से मिल रहे हैं, कहीं ऑफिस में बैठे हैं, हर चीज में हमें शिक्षा का अनुभव कहीं ना कहीं जरूर मिलता है। हम कोई ना कोई नई चीज जरूर सीखते हैं अपने जीवन में।
1: शिक्षा से नई चीज सीखते हैं और आत्मनिर्भर बनते हैं,
0: जी
1: आपका क्या
0: बिल्कुल,
1: मानना है?
0: जी बिल्कुल सर, मेरा मानना भी यही
1: जी
0: है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए सब

0: सबसे पहले शिक्षा जरूरी है।
1: क्या जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं नहीं पढ़ पाते हैं, वो भी छोटे छोटे व्यवसाय कर लेते हैं, आत्मनिर्भर तो वो भी हो जाते हैं।
0: जी जी सर,
1: जी
0: लेकिन शिक्षा जो होती है ना वो हमें सही मार्गदर्शन देती है किसी भी इन चीज़ को करने के लिए, सोचने समझने के लिए। देखिए, शिक्षित व्यक्ति जो होता है, अगर एक अशिक्षित व्यक्ति के पास एक सीधा सीधा काम है

0: के पास एक सीधा सीधा काम है कि उसका एक व्यवसाय है कि वो सुबह उठा, उसने अपनी दुकान खोली और ये, लेकिन जो शिक्षित व्यक्ति होता है उसके पास 10 लाइन होती हैं, वो 10 तरीके से सोच सकता है, अपनी ग्रोथ कर सकता है, उसे पता है कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ तो इसमें मशीन्स का भी यूज़ हो सकता है, मेरा काम इस तरीके से आगे बढ़। तो मेरा मानना सर ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप शिक्षा
1: मतलब एक
0: ले रहे
1: दिशा
0: हैं,
1: दिशा मिलती है
0: दिशा
1: शिक्षा से।
0: मिलती है, दिशा
1: आप कोई
0: देती
1: भी
0: है
1: काम कर
0: हमें।
1: रहे हो, अगर शिक्षा आपके पास रहेगी, सही दिशा आपको
0: जी
1: मिलती
0: जी
1: रहेगी।
0: सर, बिल्कुल सर,
1: आपका क्या मानना है किसा जी?
0: सर मेरा मानना भी बिल्कुल यही है, दिशा मिलती है सही।
1: हाँ
0: जब इंसान शिक्षित होता है तो ही उसको पता चलता है कि मुझे क्या सही है क्या गलत है।
1: क्या सही है क्या
0: जी,
1: गलत है।
0: शिक्षित व्यक्ति को ज़्यादा अच्छे से समाज का दर्पण दिखता है, एक शिक्षित व्यक्ति दर्पण ही होता है समाज का।
1: और अब बात आती है कि जो शिक्षा, जैसे आप बीए कर चुकी
0: जी
1: हैं,
0: जी जी
1: तो आप लोगों के सामने चुनौतियां भी बहुत सारी होती हैं, खासतौर पे हमारे समाज में महिलाओं को। एक वक्त था
0: जी जी
1: पुराने
0: बिल्कुल
1: समय में, महिलाओं को ज़्यादा पढ़ने लिखने से रोका जाता था। धीरे धीरे समाज बदला और अब महिलाएं भी PhD कर रही हैं, बाकी जो भी उच्च शिक्षा है वो पूरी कर रही हैं, बाहर भी जा रही
0: जी
1: हैं।
0: जी बिल्कुल
1: तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या चुनौतियां अभी भी हैं महिलाओं के लिए शिक्षा में,
0: सर, महिलाओं के लिए मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती उनकी फैमिली होती है,
1: फैमिली
0: परिवार।
1: होती है?
0: उनके परिवार उनका साथ देता है तो
1: हाँ,
0: फिर वो सब कुछ कर सकती
1: जैसे
0: है।
1: अब
0: जी
1: आपकी बात की जाए,
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: व्यक्तिगत ना
0: जी
1: करते हुए फिर
0: जी
1: भी, कि आपको जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है, आगे भी पढ़ाई के लिए आपको इजाजत है?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: अच्छा,
0: मेरा
1: पक्का?
0: परिवार मेरे साथ है हमेशा, वो हमेशा मुझसे यही कहता है कि आगे जो भी करना है तो
1: हाँ,
0: आप कर सकती
1: कर
0: हैं।
1: सकते हैं।
0: जी, मैं आगे चल के भी मैं एक डिप्लोमा करना चाहती हूँ अर्ली चाइल्डहुड में।
1: अर्ली चाइल्डहुड में,
0: जी जी जी
1: ये
0: एक
1: किस तरह का
0: डिप्लोमा
1: डिप्लोमा
0: है
1: है?
0: इसमें बच्चों
1: बहुत
0: के
1: सारे
0: बारे में।
1: श्रोता
0: जी
1: मैंने
0: जी
1: नहीं
0: जी
1: जानते
0: बच्चों के
1: होंगे।
0: लिए जैसे बच्चों की कैसे देखभाल कर सकते हैं हम,
1: अच्छा,
0: उनकी शिक्षा में कैसे हम
1: तो
0: ग्रोथ
1: इसकी
0: कर सकते
1: उपयोगिता क्या
0: हैं।
1: है? मान लीजिए किसी ने कर लिया,
0: जी
1: आपने मान
0: जी
1: एक साल का है,
0: जी नहीं, 3 इयर्स का है ये।
1: थ्री
0: जी
1: इयर्स
0: जी
1: का डिप्लोमा
0: जी
1: है,
0: जी
1: मतलब
0: जी 3 इयर्स का।
1: ग्रेजुएशन के लगभग
0: हाँ
1: बराबर समय लेगा,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: उसके बाद फिर क्या उसकी उपयोगिता है? क्योंकि हर किसी को आज के समय में जॉब
0: हाँ
1: की जरूरत होती
0: जी जी
1: है।
0: बिल्कुल
1: तो हमारे जो सुनने वाले हैं वो तो सोचेंगे, भाई ये डिप्लोमा कर लेंगे तो क्या जॉब मिलेगी,
0: जी
1: कुछ पैसे कमाने का जरिया खुलेगा, तो उसमें है क्या कुछ,
0: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: कैसे?
0: जॉब भी मिल सकती है आपको, जैसे खुद का भी आप एक इंस्टीट्यूट खोल
1: स्कूल
0: सकते
1: वगैरह
0: हैं। जी,
1: खोल
0: स्कूल
1: सकते
0: खोल
1: हैं?
0: सकते हैं इसमें,
1: अच्छा,
0: इसमें काफ़ी ज़्यादी वैकेंसी आ जाती हैं, डिप्लोमा की वैकेंसी भी बहुत
1: वैकेंसीज
0: हैं।
1: आती
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: हाँ,
0: काफ़ी हैं। और
1: मतलब कहीं
0: आप
1: टीचिंग वगैरह की जॉब में
0: जी
1: ये
0: जी
1: मांगा
0: जी
1: जाता
0: जी जी
1: है,
0: जी
1: आजकल
0: जी
1: मांगा जा रहा
0: जी
1: है।
0: जी बिल्कुल,
1: अच्छा, आपका क्या कहना है आरजू?
0: मैं भी यही मानती हूँ, इन दोनों की बातों से सहमत हूँ कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है और
1: हाँ,
0: शिक्षित व्यक्ति ही मतलब सही रास्ते चुन सकता है।
1: सही रास्ते चुन सकता है।
0: जी
1: अब जैसे इनसे आप, मैंने सवाल किया कि उनके सामने चुनौतियां नहीं है, फैमिली इनके पूरे सपोर्ट में है,
0: जी
1: आपका भी ऐसे ही है कुछ है?
0: जी मैं भी यही मानती हूँ, लेकिन ये मानती भी हूँ नहीं भी मानती हूँ कि
1: अच्छा,
0: एक तरफ तो ये है कि परिवार का साथ भी ज़रूरी है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अगर बहुत सी जगह ऐसा होता है परिवार भी साथ नहीं देते हैं तो इंसान खुद अपने पैरों पे
1: एक बात
0: खड़ा
1: मुझे होती
0: होता
1: है,
0: है।
1: आमतौर पे लड़कियों का ये होता है कि परिवार में ये सोच होती है, एक उम्र के बाद अब इनकी शादी,
0: जी
1: ज्यादा पढ़ लिख के क्या करना है,
0: जी
1: ससुराल जाके वही चूल्हे चौके करना है, तो
0: जी
1: इतना ज्यादा क्यों पढ़ाई लिखाएं? तो आप क्या मानती हैं, चुनौती ये आपके आसपास भी है, आपके परिवार में, आपके आसपास समाज
0: जी
1: में
0: बिल्कुल
1: है,
0: है। हर मैं मानती हूँ कि ये सोच आजकल सब जगह है, जो
1: सब
0: पढ़े
1: जगह
0: लिखे
1: है?
0: हैं
1: पहले
0: वो
1: ज्यादा
0: भी,
1: थी, अब
0: पहले
1: थोड़ी।
0: ज्यादा थी लेकिन अब कम है, लेकिन
1: हाँ,
0: है ये चीज़ अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुई है।
1: तो इसको कैसे, इससे जो समस्या है,
0: ये समस्या भी शिक्षित होके ही खत्म हो सकती है जब तक
1: हाँ
0: हम बिल्कुल पूरी तरीके से
1: हाँ ये हो सकता है कि
0: लड़।
1: मान
0: जी
1: लीजिए आपके जो पेरेंट्स हैं, या मतलब आपका एग्जाम्पल
0: जी
1: है,
0: जी
1: वो जो चुनौती पे सामने रखें आपके, आप अपने बच्चों के सामने नहीं रखेंगी,
0: जी
1: या ना
0: बिल्कुल
1: उनको पूरा पूरी आज़ादी
0: जी
1: देंगी, और ये कैसे आएगी? तो शिक्षा से ही आएगी,
0: जी
1: क्योंकि
0: बिल्कुल
1: आप समझेंगे कि इस एजुकेशन का
0: जी
1: महत्व क्या है।
0: जी बिल्कुल
1: तो आप क्या मानती हैं
0: सर, मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं
1: चुनौतियां खासतौर पे?
0: चुनौतियां,
1: जी
0: तो
1: जी
0: मैं अगर मानूं तो मैंने जो पंख मिले हैं वो उड़ने के लिए, वो एक्चुअली शादी के बाद में ही मिले हैं।
1: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात
0: शादी से
1: है।
0: पहले भी मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी थी, BSc MSc वगैरह था मेरा, लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियां हैं और फिर ये कि पेरेंट्स को उनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बड़े पजेसिव होते हैं अपनी लड़कियों के लिए, बहुत ज्यादा सेफ्टी की

0: सोचती है, तो इसलिए बहुत कुछ नहीं कर पाई थी। फिर मेरी शादी हुई, शादी के बाद में मेरे हस्बैंड ने, मेरे ससुराल वालों ने मुझे मतलब किसी भी तरीके की कोई पाबंदी नहीं लगाई। उन्होंने कहा तुम्हें जो करना है वो तुम करो, और एजुकेशन का मतलब ही ये होता है आत्मनिर्भर बनना। तो सर मेरी एजुकेशन मेरे लिए तो अच्छी है ही, मेरे सुधार के लिए, मेरी लाइफ के लिए, मेरे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी ही, लेकिन मैंने उससे दूसरों का भी बहुत भला करा है, उससे दूसरों को भी बहुत फायदा पहुंचा है मेरी एजुकेशन से। तो सर चुनौतियां तो हर इंसान की ज़िंदगी में होती हैं, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, लेकिन शिक्षित व्यक्ति जो है वो उनका बहुत अच्छी तरीके से सामना भी कर सकता है। अभी ये नहीं है कि
1: वो एक
0: हमारी
1: ताकत है, शिक्षा में
0: ताकत,
1: ताकत बन जाती
0: जी,
1: है,
0: और विमेन एम्पावरमेंट ये बड़ी ज़रूरी
1: खास
0: चीज़
1: तौर पे
0: है
1: महिलाओं के लिए।
0: महिलाओं के लिए
1: जी जी
0: सर, हमारे आत्मसम्मान के लिए। और देखिए ना, अब शिक्षित व्यक्ति होता है उसको समाज इज्जत देता है, और अशिक्षित व्यक्ति चाहे कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है समाज में। तो सर शिक्षा बहुत
1: जरूरी है
0: ज़रूरी है।
1: वाकई। तो इस समय बहुत सारे श्रोता जो है हमसे जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग जो देर से रेडियो जिन्होंने ट्यून किया है उनके लिए हम बता दें कि कार्यक्रम चल रहा है जनमंच। मैं हूँ मिथिलेश योगेंद्र, और हमारे बीच तीन महिलाएं हैं, तीन नारी शक्तियां हैं कहें तो ज़्यादा अच्छा है। और विषय है जो है वो है कि समाज में शिक्षा का महत्व और आवश्यकता क्या है, उपयोगिता क्या है, क्यों जरूरी है समाज की तरक्की के लिए, इसी पे बातचीत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हम बात करते हैं आरजू से। तो आपने बताया कि हाँ चुनौतियां हैं, भविष्य कैसा है महिलाओं का इस समय जो शिक्षा की स्थिति चल रही है?
2: अब मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अब मेरे काम क्या चीज़ आई, कोई मेरे रिश्तेदार नहीं आए, या पेरेंट्स काम आए और मेरी एजुकेशन काम आई। मैंने अपनी फिर से जॉब करी, मैं
1: अच्छा,
2: अपनी बेटी को भी पाल रही हूँ, वो मेरे ही साथ स्कूल जाती है।
1: क्या बात है,
2: तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई साथ नहीं देता है तो
1: बिल्कुल
2: एजुकेशन साथ
1: एजुकेशन
2: देती
1: साथ देता,
2: है।
1: बिल्कुल। आपने पढ़ाई की थी
2: जी
1: तो आप अपने पैरों पे खड़ी
2: जी
1: हैं इस वक्त बिना किसी सपोर्ट के, और
2: बिल्कुल
1: ना ही खुद खड़ी हैं बल्कि बेटी की भी परवरिश
2: जी,
1: कर रही
2: बेटी की भी
1: हैं।
2: परवरिश कर रही हूँ। और अगर
1: अच्छा,
2: इसी जगह मैं
1: कौन सी क्लास में
2: एजुकेटेड,
1: है?
2: वो एनसी में है सर,
1: एनसी में।
2: फोर इयर्स
1: अच्छा
2: ओल्ड
1: अच्छा
2: है।
1: अच्छा खास तौर पे अगर बात किया एनसी, या मतलब मान लीजिए एनसी है उसके आगे भी जो केजी है या
2: जी
1: क्लास फर्स्ट तक,
2: जी
1: तो इन सब बच्चों को जो शिक्षा देने में क्या मुश्किलें आती हैं?
2: सबसे बड़ी मुश्किलात तो सर यही आती है कि ये बच्चे इतने छोटे होते हैं कि ये
1: हाँ,
2: कंसंट्रेट नहीं करते हैं किसी भी
1: कंसंट्रेट
2: चीज
1: नहीं कर
2: पे,
1: पाते
2: बस
1: हैं।
2: इन लोगों को ये रहता है कि मम्मा खेल ले, मम्मा खेल ले।
1: अच्छा,
2: इन उम्र वाले बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, जो
1: बिल्कुल।
2: टीचर भी बहुत मुश्किल से
1: तो
2: ये
1: कैसे
2: सब
1: आप
2: करती।
1: टैकल करती हैं उनको?
2: तो बस यही करती हूँ कि सर स्कूल में तो जो पढ़ाई होती है
1: हाँ,
2: लेकिन घर पे आके उन्हें
1: नहीं
2: एक
1: घर पे तो आप
2: सेपरेट।
1: अपनी बच्ची को करती हैं,
2: जी जी
1: स्कूल में तो कई सारे बच्चे होते
2: जी जी
1: होंगे,
2: स्कूल में
1: तो
2: तो
1: कैसे टैकल
2: मैं
1: करती
2: स्कूल
1: हैं?
2: में मैं अपनी बेटी पर सर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि उस
1: हाँ
2: वक्त वो मेरे लिए मेरी बेटी नहीं होती
1: हाँ
2: है,
1: वो तो एक
2: उस
1: स्टूडेंट
2: वक्त मेरे
1: होती
2: लिए वो सिर्फ सब बच्चों के बराबर होती है। तो मैं सिर्फ अपने क्लास के बच्चों पर ध्यान देती हूँ,
1: है।
2: कि ये
1: अच्छा,
2: नहीं कि सिर्फ अपनी मैं बेटी पे ही ध्यान दे रही हूँ कि वो क्या पढ़ रही है,
1: ठीक
2: क्योंकि
1: ठीक
2: मेरे लिए दूसरे बच्चे भी बराबर हैं।
1: तो कैसे फिर ध्यान देने में, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे बीच में कहते हैं हमको ये नहीं पढ़ना, हमको खेलना है, सबसे पहली चीज
2: जी
1: तो छोटे बच्चों का ये रहता है खेलना है,
2: जी
1: तो कैसे उनको?
2: सर, इस उम्र के जो बच्चे होते हैं प्री एनसी एनसी केजी वाले, खास तौर से प्री प्राइमरी जो होते हैं, तो इनके साथ टीचर बन के नहीं पढ़ाया जाता है, इनके साथ बच्चा बनना पड़ता है,
1: बच्चा बनना
2: बच्चों
1: पड़ता
2: के साथ बच्चा बन के ही पढ़ाया जाता है। हम चाहे कि उन्हें मार पीट के पढ़ा लें
1: है।
2: तो ऐसे बच्चे कभी नहीं पढ़ते हैं, उनके साथ बच्चों की तरह अगर आप पढ़ाएंगे हंस बोल के तो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और टीचर को भी पसंद करेंगे। लेकिन इसी जगह अगर आप डांटेंगे, आंखें दिखाएंगे, मारपीट करेंगे, तो बच्चे कभी भी पसंद नहीं करेंगे, ना आपको और ना आपको इज्जत देंगे,
1: तो उस
2: पढ़ेंगे भी नहीं।
1: अपना बचपन याद आ जाता होगा फिर,
2: जी जी जी बिल्कुल
1: तो बचपन में भी आप ऐसे ही नटखट रही होंगी
2: जी, मैं
1: उन्हीं
2: बहुत
1: बच्चों की
2: जी
1: तरह।
2: मैं बिल्कुल नटखट थी, और इन लोगों को पढ़ाते पढ़ाते
1: हाँ,
2: मुझे अपना
1: बचपन
2: अपनी
1: याद
2: बातें याद
1: आएगा।
2: आ जाती हैं कि मैं भी यही सब करती थी, कि नहीं पढ़ना है, खेलना है, यहाँ जाना है,
1: हाँ
2: दोस्तों के साथ जाना है।
1: हाँ नाजिया जी,
2: लेकिन
1: आपका क्या अनुभव रहा है?
0: सर मेरा भी अनुभव,
1: आपके खैर
0: मैं
1: स्टूडेंट्स बड़े हैं फिर
0: जी,
1: भी।
0: लेकिन मैं इनकी बात से आरजू की काफी सहमत ली। छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल
1: आपने भी
0: काम
1: पढ़ाया
0: है।
1: होगा
0: जी
1: कभी?
0: जी जी
1: जी,
0: सर, तो उनके उनके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। अभी उनका मूड है पढ़ने का, अभी नहीं है उनका मूड पढ़ने का, तो उनका एक मूड हमें चेंज करना पड़ता है, उनको किस तरीके से हमें पढ़ाने के मूड में लाना है। मेरा खुद का 3 साल का बेटा है और मैं उसको पढ़ाती हूँ तो ज्यादातर तो बच्चों का नो ही रहता है, लेकिन

0: क्या है, हमें उनको डेली इस चीज़ के लिए तैयार करना है कि हमें पढ़ा, आपका एक रूटीन होना चाहिए कि आपको पढ़ना है,
1: पढ़ना
0: टाइम
1: है।
0: टेबल, एक टाइम से आपको पढ़ाई करनी है।
1: लेकिन
0: जी,
1: आप कैसे हैं, सख्त हैं या नरम दिल हैं
0: नहीं
1: थोड़ा?
0: सर, मैं बहुत नरम
1: अच्छा,
0: वाली
1: तो
0: हूँ, मैं सख्त
1: छोटे बच्चों
0: नहीं।
1: को पढ़ाती हैं
0: जी
1: आप?
0: जी जी मैं
1: अच्छा,
0: छोटे
1: छोटे बच्चे
0: बच्चों,
1: वाले थोड़ा सा
0: जी
1: नरम
0: जी
1: हो
0: जी
1: जाते हैं,
0: जी जी बनना
1: बनना
0: पड़ता है
1: पड़ता है। तो
0: सर।
1: आपका क्या अनुभव है, कैसे ये टैकल करती हैं जो
0: सर
1: उनके
0: मैं,
1: बनना
0: मुझे भी उन्हीं की तरह बनना पड़ता है। जी
1: पड़ता
0: जी
1: है?
0: उनकी तरह ही उनको हैंडल करना पड़ता है। अगर हम स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो वो लोग तो बिल्कुल भी पसंद भी नहीं करेंगे हमें, और ना ही हमारे साथ पढ़ेंगे वो। तो मुझे उन्हीं की तरह खेल के कूद के उनको मतलब समझाना पड़ता है,
1: तो
0: पढ़ाना पड़ता
1: उनको
0: है।
1: उनमें कौन सी बात ऐसी आप एक तरह से प्रत्यारोपित करना चाहती हैं उनके दिमाग में शिक्षा के, कि हाँ उनमें एक कुछ बातें ऐसी बैठा दी हैं दिमाग में जो आगे चल के उनको काम आए, कौन सी ऐसी चीज होती है
0: सर शिक्षा के लिए यही
1: शिक्षा के
0: चीज़,
1: लिए,
0: जी जी
1: मतलब
0: यही,
1: सीरियसनेस है ना कि
0: जी जी
1: हाँ भाई
0: सीरियस
1: जैसे
0: हो,
1: आपको कुछ देर पढ़ना ही पढ़ना है।
0: जी बिल्कुल वही उनको एग्जाम्पल ही दिया जाता है आगे चल के कि देखो ये देखो ऐसा हो गया है, इसने शिक्षा नहीं ली तो आपको ऐसा नहीं होना है, आपको बहुत बेहतर बनना है, इसलिए आपको शिक्षा जरूर प्राप्त करनी है, उनको एग्जाम्पल ही दिया जाता है।
1: तो आप भी
0: जी
1: एक समाजशास्त्री ही
0: जी
1: हैं, तो एक समाजशास्त्री की नज़र से आप क्या किस तरह से देखती हैं शिक्षा को? क्योंकि इस समय क्या है, अब इस समय की हम बात करें, आजकल का दौर जो चल रहा है सोशल मीडिया का है,
0: जी
1: बहुत सारे हम देख रहे हैं कम पढ़ाई करके भी सोशल मीडिया पे मिलियंस में फॉलोअर्स हो जा रहे
0: जी
1: हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना, रील्स बना लेते हैं,
0: जी
1: उसके बाद उनके पास अर्निंग भी होने लगती है, फिर वो पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। ये तो हुई एक बात सोशल मीडिया की। सेकेंड, जो बहुत सारे वर्चुअल मनी का जो चल रहा है, शेयर मार्केट के अलावा भी जो चल रहे हैं बहुत सारे, उनका हम नाम नहीं ले सकते हैं, तो वर्चुअल मनी का जो चल रहा है उसमें ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड। तो कम पढ़ाई की, मैट्रिक किया उसके बाद वो उसमें लग जाते हैं, उसमें लाखों कमाने लगते
0: जी
1: हैं। तो ऐसे में एक समाज शास्त्री के रूप में बताइएगा कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है,
0: देखिए,
1: खासतौर पर
0: मैं
1: शिक्षा।
0: अगर इसके सोशियोलॉजी के जरिए से बताऊं, समाज के जरिए से, तो मेरी नज़र के हिसाब से ये देखिए गलत है। जो चीज़ हम शुरू से शिक्षा एजुकेशन से जो हम पालेंगे वो हम इन चीज़ों से नहीं पा सकते।
1: इन चीजों से क्विक मनी तो आ सकता
0: जी हाँ, क्विक मनी आ सकता है बिल्कुल,
1: है।
0: लेकिन एक शिक्षा जो हमारे दिमाग में शुरू से चलती आ रही है, जो हम पढ़ लिख के जो हम बन जाएंगे, वो हम मिलियन फॉलोअर बना गया शेयर मार्केट से, ये तो सिर्फ देखिए पैसे।
1: यूं आया यूं
0: जी
1: गया,
0: हाँ, यूं
1: आपका
0: आए
1: क्या
0: और
1: कहना
0: यूं
1: है?
0: सर,
1: मैं हूं,
0: स्थायित्व, स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, मुझे
1: जी
0: लगता है।
1: वो
0: शिक्षा के
1: गाना चल
0: तो अगर
1: रहा
0: आप
1: है,
0: कोई काम करते हैं तो वो आपके जीवन भर आपके साथ
1: सपोर्ट
0: रहेगा,
1: करता है
0: सपोर्ट करेगा।
1: ताकत के रूप में।
0: जी
1: बिल्कुल
0: सर,
1: जी, और कहीं
0: और
1: ना कहीं सुकून भी छिन जाता
0: सुकून भी छिन जाता है सर, जब तक उनका ट्रेंड है, जब तक वो कमा रहे हैं, उसके बाद में सर एक टाइम के बाद, कुछ समय के बाद सब बोर हो जाते हैं। तो फिर उनको देखना, आप देखिए ना सर, एक टीवी सीरियल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग रहता है, फिर वो उस टाइम के बाद में बेकार हो जाता है, फिर लोगों को उन्हीं टीवी सीरियल्स वालों को जॉब भी नहीं मिलते हैं, तो वो
1: लास्ट में उनमें कई सारे एकदम डिप्रेशन के शिकार भी हो
0: जी
1: जाते
0: जी
1: हैं,
0: सर,
1: बिल्कुल
0: तो स्टेबिलिटी तो
1: स्टेबिलिटी
0: नहीं
1: नहीं
0: होती है।
1: होती।
0: कुछ वक्त का आकर्षण कह लीजिए और कुछ वक्त का मनी, ये समझ लीजिए कि पैसा आ जाता है काफी इंसान के पास, बाकी सर स्टेबिलिटी तो नहीं होती है इस वक्त।
1: पैसा हो सकता है एक साधन है, लेकिन हमारे लिए वो एक साधन के रूप में ही होना चाहिए। आजकल के लोग उसी को साध्य मान लेते, किसी भी तरह
0: नहीं
1: पैसा
0: नहीं सर
1: कमाना है।
0: जी नहीं, किसी भी तरह पैसा, यही सबसे बड़ी गलत चीज है जो आज के युवाओं को सर गलत रास्ते पे ले जा रही है। उनके मोबाइल्स, उनके एक्सपेंसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिसे कहते हैं मतलब उन्हें कहीं से भी पैसा चाहिए है अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए, और जब वो पैसा उनके पास मतलब इतना आ जाता है तो फिर वो उसे मिस यूज भी करते हैं। तो पैसा इतना ही बच्चों के पास युवावस्था तक इतना ही रहना चाहिए कि जितना उनको लगे कि हाँ हमारा इसमें खर्च निकल रहा है। पेरेंट्स को भी इतना पैसा नहीं देना
1: नहीं
0: चाहिए
1: देना
0: अपने
1: चाहिए, एक
0: बच्चों
1: कंट्रोल
0: को।
1: होना चाहिए,
0: जी
1: और दूसरे क्या सही है क्या गलत है ये पता होना
0: पता
1: चाहिए,
0: होना
1: और
0: चाहिए
1: ये
0: सर,
1: पता केवल शिक्षा से
0: सिर्फ
1: ही है।
0: शिक्षा के
1: आपका क्या
0: जरिए।
1: कहना है इस पे?
0: जी बिल्कुल, मेरा भी यही कहना है कि शिक्षा व्यक्ति ही पता कर सकता है कि मुझे क्या सही
1: क्या सही है
0: है
1: क्या
0: क्या
1: गलत
0: गलत
1: है,
0: है।
1: आपका भी यही कहना
0: मैं भी
1: है?
0: यही मानती हूँ जी
1: जी
0: सर।
1: जी अच्छा, अब शिक्षा में कई सारे पड़ाव आते हैं, एक सबसे अहम पड़ाव होता है 12th का, कई सारे रास्ते होते हैं कि आप किधर जाए, तो
0: जी
1: आप क्या मानती हैं कैसे चुनना चाहिए?
0: मैं तो सर यही मानती हूँ कि जो ऐसे चुनना चाहिए कि पहली बात तो जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो,
1: इंटरेस्ट,
0: हमें उधर ही जाना चाहिए
1: वही इंटरेस्ट ही तो पता नहीं लगता है,
0: बस। हाँ, इंटरेस्ट पता नहीं
1: क्योंकि
0: लगता है
1: इस समय
0: क्योंकि
1: हम
0: जी
1: ज्यादातर समस्या तो यही है, हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते।
0: हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, और जो ये टीनेज के लोग हैं 12th के बाद

0: ये सोचते हैं कि जो हमारे दोस्त लेंगे हम भी वही ले
1: वही
0: लेंगे।
1: ले लेंगे।
0: हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते कि हमें किस चीज में इंटरेस्ट है। हम ये देखते हैं कि हमारा साथ वाला क्या चीज ले रहा है, वो फिजिक्स पीसीबी ले रहा है, पीसीएम ले रहा है, ये कर रहा है कि बीए कर रहा है हमें, तो हम भी उसी लाइन में चल पड़ते हैं। हम अपने आप को नहीं देखते हैं
1: तो
0: कि
1: पहले
0: हमें
1: अपने आप
0: किस
1: को
0: चीज में,
1: देखें।
0: पहले हमें अपने आप को देखें कि हमें किस चीज में इंटरेस्ट है, हम क्या आगे बन सकते हैं। पूरा अपना एक पैटर्न लेके चले, दूसरे पे ध्यान ना दें, हमें अपने ऊपर ही ध्यान देना
1: और
0: चाहिए।
1: अपने परिस्थितियां भी देखें,
0: जी अपनी
1: जैसे
0: परिस्थितियां
1: बहुत
0: देखें।
1: सारे ऐसे लोग होते हैं कि हाँ मुझे 12th के बाद IAS बनना है और कोचिंग में एडमिशन लेंगे,
0: जी
1: मतलब ग्रेजुएशन कहीं से करेंगे
0: जी
1: और IAS बनना है और 10 साल तक कोचिंग ही किए जा रहे हैं,
0: जी
1: जबकि फैमिली सपोर्ट करने लायक नहीं है,
0: नहीं है,
1: तो एक तरह से बोझ बन जाते हैं।
0: बिल्कुल
1: बोझ
0: बन
1: बन जाते
0: जाते
1: हैं। तो ये भी
0: हैं, बिल्कुल
1: देखें हैं
0: ये भी
1: आप।
0: देखें।
1: जी
0: जी
1: जी
0: बिल्कुल
1: आप क्या कहेंगे कि सर
0: जी जी सर मुझे भी यही लगता है, परिवार को लेके चलना
1: परिवार को
0: ही ज्यादा
1: लेके और
0: जरूरी
1: खुद को
0: है।
1: समझना
0: जी जी
1: चाहिए।
0: खुद को समझना चाहिए, परिवार की स्थिति देख के ही हमें देखना चाहिए हमें इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है और हम किस सब्जेक्ट के हम ग्रोथ कर सकते
1: ग्रोथ
0: हैं।
1: कर सकते हैं आप।
0: जी
1: नाजिया जी क्या
0: सर मेरा मानना भी यही है कि बच्चे को जिस चीज में इंटरेस्ट हो उसी में वो अपना 100% दे सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, और पारिवारिक स्थिति तो मेन है।
1: मेन है। एक बात आती है दूर जाके पढ़ाई करने वाली, कई बार बहुत सारे लोग नहीं हमको दूर जाना है, बरेली में रह रहे
0: जी
1: हैं, नहीं हमको दिल्ली जाके पढ़ाई करनी है,
0: जी
1: और कोई दिल्ली वाला है वो कहे नहीं मुंबई जाना है, मुंबई वाला कहे मुझे
0: बैंगलोर
1: लंदन जाना है, हाँ बैंगलोर,
0: बैंगलोर
1: हाँ ये भी हो सकता है। तो इसमें क्या आप लोगों की राय है? आप पहले
0: मेरी राय तो देखिए सर ये है कि ये आजकल ये टीनेज में ये वायरस मैं कहूंगी एक तरीके से बहुत फैला हुआ है कि हमें
1: हाँ
0: बाहर जाना है, हमें बाहर
1: बाहर
0: जाना
1: जाना,
0: है। लेकिन मेरा मानना
1: ये
0: ये
1: कहीं
0: है
1: ना कहीं
0: कि
1: मुक्ति वाली सोच है
0: जी
1: क्या
0: कि
1: कि
0: हाँ
1: घर के
0: आजादी,
1: लोग आजादी
0: हमें ये
1: चाहिए,
0: लोग ये
1: हमें चाहिए
0: सोचते
1: आजादी
0: हैं
1: क्या?
0: आजकल बच्चे कि हमें आजादी मिल जाती है, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों। लेकिन मैं नहीं मानती कि ऐसा कुछ है। जो पढ़ने वाला बच्चा है वो देखिए कहीं भी रह के पढ़ सकता है,
1: कहीं भी रह के पढ़
0: उसके लिए
1: सकता है।
0: ये कोई नहीं है चॉइस कि हम बाहर ही जाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे, मुंबई बैंगलोर जाएंगे, तो हम तभी कुछ पढ़ के बन के निकलेंगे। अगर आप पढ़ने वाले हैं, वाकई सीरियस वाले हैं आप पढ़ाई लिखाई में, तो आप बरेली में भी रह के पढ़ सकते हैं। आप यहाँ भी बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं, बहुत डेवलप हो गया है हमारा बरेली, तो हम यहाँ रह के भी पढ़ सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन आजकल ये बहुत है बच्चों में कि हमें बाहर
1: आप
0: रहना
1: क्या
0: है।
1: कहेंगे?
0: सर मेरा भी यही
1: आप
0: कहना
1: क्या
0: है,
1: कहेंगे?
0: बच्चों को जो है फ्रीडम चाहिए होती है
1: फ्रीडम चाहिए होती
0: जी,
1: है।
0: फैमिली से उनको फैमिली में रह के उनके हिसाब से चलना पड़ता है, टाइमिंग पे घर आनी है, टाइमिंग पे बाहर जाना है।
1: अब कड़क माँ से पूछते हैं, आपका बेटा अगर कहे नहीं मम्मी मुझे बाहर जाके पढ़ाई करनी है,
0: सर
1: क्या
0: देखिए बच्चों को जब तक कंट्रोल कर सकते हैं तब तक तो कर रहे हैं, लेकिन देखिए एक चीज ये होती है कि ये डिसाइड हो जाता है 12th स्टैंडर्ड तक। आपका बच्चा 1st to 12th क्या ग्रेड से पास हुआ है, वो क्या कर सकता है, ये पेरेंट्स से अच्छा कोई नहीं समझ सकता सर। ये उसके ग्रेड्स, ये उसका रिजल्ट सब बता देगा, उसकी पेरेंट्स मीटिंग सब बता देंगी। तो ये पेरेंट्स का ही काम है सर अपने बच्चे को देख पाना, और क्या कर सकते हैं, आजकल के बच्चे भी तो देखिए कितने वॉयलेंट हैं सर। और दुआ कर सकते हैं कि सर अच्छे रहें, क्योंकि बाहर जाने के बाद में कोई
1: बिल्कुल
0: कोई गारंटी नहीं है कि
1: कोई
0: आपका
1: गारंटी नहीं।
0: बच्चा अच्छा रहे।
1: और ये भी तभी जो सही शिक्षा मिलेगी
0: जी
1: तो
0: सर
1: वही सही निर्णय ले पाएंगे
0: सही
1: बच्चे।
0: निर्णय ले पाएंगे, और बच्चे के अंदर इतना हार्ड वर्किंग और इतना उसके माइंड में इतना होना चाहिए कि मैं किस काम के लिए आया हूँ। मुझे लगता है 80 to 90% तो बच्चे इस चीज को समझ ही नहीं पाते होंगे कि शिक्षा को सीरियसली ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं।
1: बिल्कुल नहीं, कई बार ऐसा होता है और आजकल जो वक्त है जमाना है
0: जी
1: यहाँ
0: सर
1: उसको समझ शिक्षा को एक पैसे कमाने का जरिया समझते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिक्षा जो हम लोगों की बातचीत से जो परिचर्चा से निकल के आया वो ये कि शिक्षा एक ताकत है, खासतौर पर महिलाओं के लिए और एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। दूसरा आत्मनिर्भर बनने का साधन है, और तीसरा आपको बताता है कि क्या सही है क्या गलत है,
0: बिल्कुल
1: सही रास्ता दिखाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें सुनने वाले इस परिचर्चा से जरूर लाभान्वित हुए होंगे, आनंद भी आया होगा, कुछ जानकारी भी मिली होगी, और आप तीनों नारी शक्तियों के कुछ अनुभवों से भी आपने जो सीखना होगा वो भी सीखे होंगे, और कुछ जो कुछ विचारों में तरोताजगी आई होगी वो भी आई होगी। तो आप तीनों का यहाँ स्टूडियो में आने के लिए और अपने परिचर्चा में भाग लेने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो
2: थैंक
0: मच।
2: यू। अभी आप सुन रहे थे जनमंच, आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर।
3: हमारे प्रिय श्रोताओं, मैं वीना सिन्हा, मंडल रेल प्रबंधक, इज्जतनगर मंडल पूर्वोत्तर रेलवे, आपका स्वागत करती हूँ। इज्जतनगर मंडल द्वारा हर वर्ष की

0: शांति इस वर्ष भी दिनांक 9 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय संपार जागरूकता दिवस अपने यात्रियों एवं सड़क उपभोक्ताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संपार जागरूकता दिवस विश्व के सभी देशों में रेलवे संपारों पर सुरक्षित आवागमन के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। रेलवे संपारों पर होने वाली दुर्घटनाओं का संबंध कहीं न कहीं मानवीय लापरवाही है। आप सभी से अनुरोध है कि बंद फाटक को खोलने हेतु कभी भी गेटमैन पर अनाधिकृत दबाव न डालें। बंद फाटक से नीचे से कभी भी निकलने का प्रयास न करें और न ही अपने वाहन को निकालें। अगर संपार का फाटक बंद है तो ट्रेन के निकलने एवं फाटक खुलने के बाद ही संपार पार करें। संपार के पास हेडफोन या मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। संपार के आसपास मवेशी ना चराएं तथा रेलवे की पटरी पर ना बैठें। संपारों पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने हेतु रेल प्रशासन प्रतिबद्ध एवं निरंतर प्रयासरत है। आप सभी आमजन से यह अनुरोध है कि नियमों का पालन करें और संपारों पर संरक्षा सुनिश्चित करने में हमारी मदद करें ताकि संपारों पर होने वाली घटनाओं को रोका जा सके।
1: 100.4 FM पर यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों के लिए। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ, आवाज लता मंगेशकर की, और ये फिल्म है बारिश।

कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है चंगेज खां, आवाज लता मंगेशकर की, गीत के बोल कमर जलालाबादी ने लिखे हैं और धुन बनाई है हंसराज बहल ने।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था चंगेज खां। आइए सुनते हैं एस एन त्रिपाठी के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास के बोल। आवाजें हैं गीता दत्त और मन्नाटे की। फिल्म का नाम है जन्म जन्म के फेरे।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्टकार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: खत लिख दे, दिल उनको दे आए।
3: यह आवाज आशा भोंसले की और फिल्म का नाम है मेरा सलाम। शिवान रिज्वी की रचना है और हाफिज खान का संगीत।
1: दे

किशोर कुमार की आवाज में हम आपको फिल्म पेइंग गेस्ट का गीत सुनवा रहे हैं। शब्दकार मशरूह सुल्तानपुरी हैं और संगीतकार सचिन देव बर्मन हैं।

0: तुम्हारा नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा।
1: और आइए अब सुनते हैं दत्ताराम का संगीत, हजरत जयपुरी की रचना, लता मंगेशकर और मन्ना डे की युगल स्वर। फिल्म का नाम है कैदी नंबर 911।

लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है हिल स्टेशन, गायिका हैं लता मंगेशकर, बोल हैं SH बिहारी के और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: मन चाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हमें खत लिखा है, आप हैं अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर और तन्वी गौहर। ये खत हमें मिला है अमरावती कल्याण नगर से रमेश किल्लेकर, शकुंतला किल्लेकर, आराध्या किल्लेकर और माही किल्लेकर का। और ये खत हरियाणा से सेक्टर 18 जगाधरी से लिखा है विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी ने। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म महबूब की मेहंदी का गीत, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा। ये खत हमें मिला है ऑक्सीजन ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय प्रसिद्धि प्रतिभा गोंडाने का, और कोटवा नारायणपुर से आप हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत। किशोर कुमार की आवाज है, फिल्म का नाम है अभिमान, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत एसडी बर्मन का।

आशा भोंसले, गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीत दिया है सी रामचंद्र ने। सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम, सावित्री साहू ने, और दत्तरेंगी भाटापारा से ये हैं हीरामणि वर्मा। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये दो गाना।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं आप सबकी पसंद पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत। आइए सुनते हैं अगला गाना। फिल्म का नाम है अमरदीप। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी और

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे हैं। वरुण जौलका से महेंद्र सरकते, विजया सरकते, मिलिंद सरकते, और ये खत है, आपने लिखा है गुजरात से नूर मोहम्मद लखाणी, जुबैदा खातून लखाणी, विहान लखाणी ने। भामेश्वर से सुनना चाहते हैं सिराज, हिना, रुबीना और इनके परिवार वाले। इसी गाने को सुनना चाहते हैं महेंद्र सरकटे और उनके परिवार वाले। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कटी पतंग का गीत। गीत रचना आनंद बख्शी की है और तर्ज राहुल देव बर्मन की।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था कटी पतंग। और अब आप सुनना चाहते हैं रवि के संगीत निर्देशन में हसन कमाल का लिखा गीत, आवाज सलमा आगा की और फिल्म का नाम निकाहा। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे हैं। ककराला बदायूं से डॉक्टर मसरूर खान, मुसर्रफ राज खान, अमजद अंसारी, दीपक वाल्मीकि और इनके परिवार वाले इसी गाने को सुनना चाहते हैं। शेगांव बुलडाणा महाराष्ट्र से संतोष एस काले, तेजस एस काले, लोकेश एस काले और इनके परिवार वाले। ये खत हमें मिला है अंबेडकर सागर मध्य प्रदेश से राम सखी परमानंद, सौरभ गौरव, किशोरी बोस, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू, टुनटुन और इनके परिवार वालों का। और आप हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफाबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव,

संचित वायाल, मोताला से कुमार प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, कलड़ा रिसोर्ट से आपने सानवी सरवत और इनके परिवार वाले, आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत, आवाज सलमा आगा की, और ये फिल्म है निकाह।

रवि के संगीत निर्देशन में अभी आपने हसल कमाल का लिखा ये गीत सुना। आवाज सलमा आगा की थी और फिल्म का नाम था निकाह। इस गाने के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है। मनचाहे।

0: रहेगी।
1: मन चाहेगी,
0: मन चाहेगी,
1: और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियां। लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब। आज आप इस नाटक का पहला भाग सुनेंगे।
1: शहजादियों से भलाई कैसे हो सकता है कि ये आज लाल किले के इस भरे दरबार में नाचे।
2: अब दिल्ली के तख्त पर मेरा कब्जा है, बादशाह मैं हूँ। तुम सब मुगल शहजादियों और बेगमात को आज मेरे सामने भरे दरबार में नाचना होगा।
3: रोहेला का मुगल शहजादियों और बेगमात पर जुल्म है। आलम शाह सानी ने इन्हें पाला पोसा और ये उसी की आंखें फोड़कर आज हरम की बेगमात को दरबार में नचा रहा है।
4: ये सब मंसूर अली की तगा और अंग्रेजों की साजिश से हुआ है।
3: अंग्रेज जब हिंदुस्तान को हड़पना चाहते हैं,
4: नहीं, जब तक हिंदू मुस्लिम सिख और मराठे बादशाह के साथ हैं ऐसा नहीं होगा।
3: तुम ठीक कहते हो, आज ये सब गुलाब की ऐसी पंखुड़ियां हैं जो गुलाब के इस फूल की हिफाजत के लिए मैदान जंग में आ गए हैं।
4: हाँ, ये गुलाब की पंखुड़ियां नहीं बल्कि तलवार की धार है जो विदेशी ताकत को काट कर रख देंगी।

0: यही नहीं शुजा, इनके मंसूबे तो पूरे हिंद को हड़प लेने के मालूम होते हैं, लेकिन लेकिन हम इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी फौज में गोसाई हिम्मत बहादुर और उमराव गोसाई तो हैं ही, इनायत खान रोहिला भी शामिल हो गया है, मीर कासिम मई सिपाही आन पहुंचा है।
1: जी हां चाहपना, और बनारस के राजा बलवंत सिंह भी मैं अपनी पलटन के हमारी इमदाद के लिए आ गए हैं। जर्मन कप्तान सैमरे भी अपने तोपखाने को एकदम मुस्तैदी से तैयार कर रहा है।
0: नवाब
1: चाहपना,
0: अगरचे शिकस्त दर शिकस्त होती रही है, ताहम हमारे फर्माबरदार सिपहदारान का अभी भी हौसला बुलंद है। हमारी सिपह वाकई दुनिया के लिए एक मिसाल है। देखो देखो, जिस तरह ये गुलाब का फूल पंखुड़ियों की वजह से इतना दिलकश बना है, उसी तरह हमारी फौजों में भी हर कौम और मजहब के बहादुर मिलकर एक कुल की शक्ल में काम करते हैं। इसी पर हिंदुस्तान को फख्र है।
1: जी हां आली मकाम, इसमें कोई शक नहीं है।
0: पंखुड़ियां गिरती हैं, मुरझाती हैं, लेकिन नए गुल और भी खूबसूरती से जहूर में आते हैं। चंद गद्दार मुरझाई पंखुड़ियों की तरह भटक जाते हैं, यही बदनसीबी है। इसके बावजूद कई राजा नवाब और अमीर नई पंखुड़ियों की तरह हमारी इमदाद के लिए आन पहुंचे हैं। इस दफा अंग्रेजों पर पूरी ताकत से हमला करना है, ताकि हिंदुस्तान से इनका नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाए।
1: जी हां आलमपना, हुजूर के इकबाल से इस दफा हमारे जासूस भी बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। नवाब मुनरुद्दौला का जासूसी दस्ता खबर लाया है कि मेजर हेक्टर मुनरो की फौज में कुल 6-7 हजार सिपाही हैं और सिर्फ 20 तोपें।
0: फिर तो हमारी इतनी बड़ी फौज और 100 से ज्यादा तोपों के मुकाबले में उनका ठहर पाना नामुमकिन है। हम जल्द से जल्द इन सरकशों को सबक सिखाना चाहते हैं, हिंदुस्तान से इनका नामो निशान मिटाना चाहते हैं।
1: जी आली कद्र, हमें कप्तान सैमरे ने बताया है कि हमारी 133 तोपें बिल्कुल सही हालत में हैं, और उधर मीर कासिम और उमराव गोसाई के जासूसों ने भी काबिले तारीफ इंतजाम किया है। उन्होंने अंग्रेजी फौज में कुछ ऐसे लोग छोड़ रखे हैं जो ऐन वक्त पर वहां के अफसरों और सिपाहियों को हमारी तरफ मिल जाने को उकसा रहे हैं।
0: वाह, बहुत खूब, कुछ कामयाबी हासिल हुई।
1: जी हां सरकार, हमें पुख्ता खबर मिली है कि करीब 70-80 छोटे बड़े अफसर और नायक और करीब 1000 सिपाहियों की पलटन ऐन वक्त पर हमसे आन मिलेंगी।
0: वाह वाह, ये तो अहम खुशखबरी है। अब हम शर्तिया फतेयाब होंगे, इन 7 अंग्रेजों को मुल्क से निकाल बाहर करेंगे।
1: बेशक आलमपना, बेशक इस बार हम यकीनन कामयाब होंगे और इन 7 अंग्रेजों को मुल्क से बाहर निकाल देंगे। लेकिन जहांपना, अगर इजाजत हो तो एक अहम मामला और हुजूर के इल्म में।
0: जरूर नवाब, बोलो बोलो।
1: अली कद्र, वो अंग्रेज लड़की जिसको हुजूर ने पनाह दी थी, उसका रवैया इन दिनों कुछ अजीब सा नजर आ रहा है।
0: तुम्हारा मतलब एमिली से है, क्या हुआ?
1: हुजूर, वो शुरू के कुछ महीनों में तो काफी संजीदगी और बुर्दवारी से,
0: और अब क्या हुआ उसको?
1: हुजूर आला, पिछले 1 माह से उसकी हरकतें काफी हैरत अंगेज हो चली है। वो शाही फौज के खेमों में मुख्तलिफ सिपादारान हुक्काम वगैरह से अक्सर बड़ी बेतकल्लुफी से मिलती रहती है।
0: नवाब शुजा, वो भोली लड़की जरा चुलबुली जरूर है, फिर इन अंग्रेजों की तहजीब में औरतों को काफी आजादी है।
1: वो तो वजह है जहां पना, लेकिन हाल ही में मेरे कुछ खास हरकारों ने खबर दी है कि ये खेमों से दूर जाकर अंग्रेज घुड़सवारों से भी गुफ्तगू करने लगी है।
0: ओह, ये तो बहुत संगीन मामला है।
1: जी हां अली मकाम, जब से हम लोग बक्सर के नजदीक पहुंचे हैं, उसके

0: सरगर्मियां और भी बढ़ गई हैं।
1: इस वक्त वो कहां है?
0: वो इस वक्त शाही हरम के खेमे में है, यहां से तकरीबन 4-5 कोस।
1: उफ, नवाब शुजा, इधर सामने मेजर मुनरो अंग्रेजी सिपाही के साथ आगे बढ़ रहा है, उधर ये लड़की न जाने क्या क्या गुल खिला रही होगी।
0: आलम बना, मैंने ख्वाजा सराओं और कुछ चुनिंदा नायकों को ताकीद कर दी है कि उस लड़की पे कड़ी नजर रखें, मगर हुजूर पता नहीं कि इससे पेशतर क्या किया हो उसने।
1: मगर हमें इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी गई?
0: जब तक कुछ पुख्ता सबूत न मिले, आलम पनाह को जहमत देना मुनासिब न होता। और इसके अलावा हुजूर इस जगह के लिए कुछ भी कर चुके थे।
1: शुजा, ऐसे मशकूक शख्स को फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, बाद तफ्तीश असलियत का पता लग जाता।
0: हुजूर, मैंने आपके खौफ के मारे ये जुर्रत करना मुनासिब न समझा।
2: हुजूर, बेगम साहिबा बारियाबी की इजाजत चाहती हैं।
1: कौन? सकीना बेगम? यहां? फौरन भेजो।
2: जी जहां पना।
3: आलम पना, गुस्ताखी मुआफ फरमाए।
1: हाँ हाँ, बोलो बेगम, यहां क्यों कर आना हुआ हरम से मैदान जंग में?
3: आलीजा, मैंने एमिली को गिरफ्तार करने की जुर्रत की है। वो कुछ गोरे घुड़सवारों से गुफ्तगू कर रही थी, कुछ कागजात भी।
1: उफ सकीना, घुड़सवारों को भी गिरफ्तार कराया नहीं?
3: पहले सिर्फ दो थे, भागते भागते एक को गिरफ्तार कर लिया, दूसरा कुछ कागजात लेकर भाग रहा था तो हमारे जवानों ने उसका पीछा किया, मगर आगे जाकर 20-25 गोरे सवार और मिले और बंदूकों के फायर करते हुए सब भाग निकले। वक्त की नजाकत देखकर मैं खुद चली आई।
1: दूसरा सवार पकड़ा नहीं जा सका?
3: जी नहीं आलमपना।
1: वो कमीनी कहाँ है?
3: जी, बराबर वाले खेमे में ख्वाजा सरा मंजूर अली की हिरासत में है।
1: नवाब शुजाउद्दौला को बुलाओ।
0: जहां पना ने याद फरमाया।
1: हाँ नवाब शुजा, तुम्हारा शुबा ठीक मालूम होता है। उस बदजात को सकीना बेगम ने गिरफ्तार तो कर लिया है, एक आध कागज भी बरामद हुआ है, मगर दो में से एक घुड़सवार भाग निकला, कुछ कागजात भी ले भागा। अब उस सराम खोर एमिली को कोड़े मार मार कर कुल तफसील मालूम करो और हमें बताओ। बराबर के खेमे में है वो बदसात।
0: जी अलीजा, हुक्म की तामील होगी।
1: बेगम, तुम बहुत थक गई हो, आराम कर लो। इस मामले की तहकीकात हो जाए तो अपने खेमे की तरफ वापस चली जाना, यहां ठहरना खतरे से खाली नहीं।
3: जी नहीं आलमपना, मुझे आराम की कतई जरूरत नहीं। फिर जहां हुजूर का कयाम हो वहां मुझे भला क्या खतरा हो सकता है?
1: नहीं बेगम, तुम्हारी जल्द से जल्द वापसी ही लाजिम है।
3: जैसी आलमपना की मर्जी।
0: आलमपना, मैंने तहकीकात कर ली है, अफसोस है कि बहुत खौफनाक सूरत बन गई है। एमिली ने बामुश्किल तमाम कबूल किया कि वो अंग्रेजी जासूस है। उस कागज में अंग्रेजी सिपाही के कुछ लोगों के नाम हैं जो हमसे मिल जाने के लिए तैयार थे, मगर इससे पेशतर वो हजारों नामों की फहरिश्त मेजर मुनरो को भेज चुकी है। कोड़ों के मार से वो लहूलुहान हो गई, तब कहीं उसने जाकर।
1: उस कमबख्त कमीनी को हाथियों से कुचलवा दो। शुजा, ये हाँ। ये क्या है?
0: ओह, जहां बना, ये तो अंग्रेजों की तोपें हैं। पता नहीं एक एक धमाके में कितने लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा होगा।
1: उफ नवाब, तो क्या हमारे जासूसों की कुल मेहनत बेकार गई? क्या वो हजारों को मार डालेंगे?
0: हुजूर, मालूम तो ऐसा ही होता है, धमाके पे धमाके हो रहे हैं, हजारों की मौत के पैगाम हैं ये धमाके। हुजूर, हमारे सिपाह में न जाने कौन कौन गद्दारी पे आमादा होगा।
1: शुजा, फिर भी हमें पस्त हिम्मत नहीं होना चाहिए। सकीना बेगम की वापसी का इंतजाम कर दो और फौरन जंग के लिए कूच का ऐलान किया जाए, और उससे पेशतर उस अंग्रेज जादी को हाथियों से कुचलवा दिया जाए।

0: नवाब मुनीरुद्दौला, समझ में नहीं आता कि अभी भी हमारी गर्दिश और दुश्वारियों का दौर क्यों खत्म नहीं होता।
1: आलमपना, वक्त सबका बदलता है।
0: बक्सर की शिकस्त का कुछ और जायजा मिला?
1: जी हाँ, वही तफसील अर्ज करना चाहता था। आलमपना, हमारे करीब 2000 बहादुर मारे गए। हमारी तमाम तोपों पर मुनरों ने कब्जा कर लिया। सिपाहियों में मुर्तजा खान, मियाँ ईसा, यासीन वगैरह मारे गए।
0: ओह, ये मैं क्या सुन रहा हूं।
1: नवाब शुजाउद्दौला पूरे खानदान के साथ बरेली की तरफ चले गए हैं और नवाब मीर कासिम रोहेलखंड, हमारी बहुत सी सिपाह घायल हो गई है और बाकी भाग निकली है।
0: नवाब मुनीर, इस बक्सर की जंग ने तो हमारे हौसले पस्त कर दिए। अब कोई सूरत नहीं अंग्रेजों से लोहा लेने की। इतनी मुकम्मल तैयारी के बाद ऐसी शिकस्त फाश। सुना है कप्तान सेमरे भी बरेली की तरफ भाग गया है।
1: जी हाँ अली मकाम, सबको अपनी अपनी जान की पड़ी है। अवध का इंतजाम तो अंग्रेज कप्तानों ने संभाल लिया है, वो भी बड़ा जुल्म ढा रहे हैं रियाया पर।
0: तो फिर हमारी हालत बहुत ही नाजुक है इस वक्त। ताहम ये समझ में नहीं आता कि जनरल कार्निक ने हमसे मुलाकात की दरख्वास्त क्यों की है। अंग्रेज कंपनी का गवर्नर हमसे सुलह चाहता है। हमने उसे मुलाकात के लिए इजाजत का परवाना भिजवा दिया है।
1: सुना है हुजूरे वाला, ये अंग्रेज नवाब शुजाउद्दौला से भी सुलह की कोशिश कर रहा है।
0: अंग्रेजों की चालबाजियां समझ में नहीं आती नवाब मुनीर।
1: बेशक आलीजा,

0: जयपना, मुझे आपकी राया इंग्लिश कंपनी का गवर्नर क्लाइव साहब ने आपके हुजूर में पेश होने का हुक्म दिया है। हम आपसे सुलह करना चाहते हैं, ये नजर कबूल करें।
1: शुक्रिया। अंग्रेज कंपनी क्या उम्मीद रखती है हमसे?
0: उम्मीद? नहीं, सिर्फ हुजूर को इलाहाबाद और खोड़ा के जिले देना चाहती है। जयपनाह का हिफाजत करना हमारा काम होगा और आपकी वफादार अंग्रेजिया की तरफ से एक अफसर आपके पास रहेगा।
1: अफसर? वो अफसर क्या करेगा?
0: वो आपका खिदमत करेगा। अगर कोई दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाएगा तो अंग्रेजी फौज बुला लेगा और योर मैजेस्टी का मदद करेगा।
1: अच्छा अच्छा, इसके बदले में हमारी वफादार रियाया अंग्रेज कंपनी क्या चाहती है?
0: योर मैजेस्टी कुछ नहीं, बस एक फरमान, ओनली वन शाही फरमान।
1: फरमान? कैसा फरमान?
0: जापना, बंगाल की दीवानी का फरमान।
1: बंगाल की दीवानी का फरमान? लेकिन बंगाल में तो तुमने मीर जाफर को नवाब बनाया है, फिर हमारे फरमान से क्या मकसद है?
0: योर मैजेस्टी, नवाब और शहंशाह में जमीन आसमान का फर्क होता है। सारा मुल्क का असली मालिक तो आप ही है। आपका फरमान हमारे लिए बहुत इज्जत का बायस होगा। इसके लिए हुजूर का रियाया कंपनी हुजूर को 26 लाख रुपया सालाना खिराज अदा करती रहेगी।
1: लेकिन अंग्रेज कंपनी हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में भी मदद करेगी या नहीं?
0: जरूर योर मैजेस्टी, लॉर्ड क्लाइव साहब ने भी यही कहला के भेजा है, वो जरूर मदद करेंगे।
1: ठीक है ठीक है, हमें मंजूर है। तुम अपनी तरफ से दस्तावेज तैयार कर लो, हम भी दीवानी का फरमान बहुत जल्द जारी कर देंगे।
0: शुक्रिया योर मैजेस्टी, कुल हमको इजाजत बख्शे।
1: इजाजत दी जाती है।

0: लो नवाब मुनीर, ये क्लाइव का जवाब भी आ गया। वो हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में मदद करने के वायदे से फिर गया है। यही तो एक अहम शर्त थी सुलह की, आज 5 साल बाद भी पूरी नहीं हुई।
1: जी आलमपना, इधर इस अंग्रेज कमांडर बारकर के दिनों दिन दिमाग बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे मुलाजिमों से बदसलूकी से पेश आता है, कहता है हम तुम्हारे बादशाह को 26 लाख रुपए वजीफा देते हैं।
0: अच्छा कमांडर तैनात किया हमारी हिफाजत को, एहसान फरामोशों ने 26 लाख सालाना देकर हमें खरीद लिया है। बंगाल की दीवानी से करोड़ों रुपए हासिल कर रहे हैं, उसका कोई एहसान नहीं।
1: हुजूर, वो कहता है कि हमारी इजाजत के बगैर कोई शाही मुलाजिम इलाहाबाद से बाहर नहीं जाएगा।
0: गोया हम शहनशाह नहीं, इस कमीने कमांडर के कैदी हो गए।
1: लेकिन जब आलम पना के हुजूर में पेश होता है तो वो मेमना बन जाता है, जमी बोस करेगा, योर मैजेस्ट्री की रट लगाया जाता है।
0: मगर ये कमबख्त मेमने की खाल में भेड़िया है, भेड़िया।
1: अलीजा, अब तो मराठों के जवाब का इंतजार है। सैफुद्दीन खां को कई महीने हो गए माधोजी सिंधिया के पास गए हुए।
0: देखो क्या होता है, अब तो हमें जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचने की तमन्ना है। साबता खां किले पर काबिज है और उसका रवैया दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है।
1: जी आली कदर, वो
2: आलम पना, सैफुद्दीन ने पैगाम भिजवाया है कि मराठों ने हुजूर के शरीक दौलत होकर मदद की रजामंदी दे दी है। सिंधिया की फौजें रवाना हो चुकी हैं और यहां पहुंचने ही वाली हैं। उन्हीं की मदद से सैफुद्दीन मोहम्मद खान ने दिल्ली पहुंचकर जामा मस्जिद से हुजूर के शहंशाह होने का ऐलान भी कर दिया है।
0: वाह वाह वाह, ये तो अहम खुशखबरी है। मंजूर, सब सरदारान और उमरा से कह दो कि कूच की तैयारी करें।

0: जहां पना अब दिल्ली दूर नहीं।
1: ये कौन सा मुकाम है मंजूर?
0: आलम पना, ये मौजा धनौली है। यहां से शाहदरा करीब 4 मील है।
1: ओहो, तब तो दिल्ली आन पहुंचे। अरे, ये इतनी शान और शौकत से किसका जुलूस चला आता है? मंजूर, जरा पता लगाओ।
0: आलम पना, ये आली जाह वली अहद शाहजादे और बुजुर्ग बेगमे हुजूर के इस्तकबाल को आते हैं। जाब्ता खान हुजूर के खौफ से किला छोड़कर भाग गया है और उसकी सिपह भी सिर पर पैर रखकर भाग रही है।
1: वाह वाह, बहुत खूब।
0: और आलम पना, सारा इंतजाम मुकम्मल है। अब हुजूर का जुलूस शाहदरा से दिल्ली दरवाजे होकर लाल किले में दाखिल होगा।
1: लगता है मंजूर, आज हमारी मुरादें पूरी हुई और उम्मीदें भर आई।
0: हुजूर, वली अहद ने बताया है कि जाब्ता खां फौजें जमा कर रहा है।
1: वो है कहां? कहां तैयारी कर रहा है?
0: जी, वो नजीबाबाद है।

ठीक है। दिल्ली में तख्त नशीनी के फौरन बाद हम उस पर चढ़ाई करेंगे और बगावत की सजा देंगे। हमने माधोजी सिंधिया से भी मशवरा कर लिया है, वो भी हमें पूरी इमदाद देने को रजामंद है।

गुलाब की पंखुड़ियां। अभी आप सुरेंद्र कांत के लिखे इस नाटक का पहला भाग सुन रहे थे। निर्देशक मुमताज शकेब। आपको बता दें कि इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। शाम के 4 बजे हैं और हम लेकर हाजिर हुए हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के लिए उपलक्ष में विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने। और हमारे आज के आकाशवाणी के दीवाने हैं आनंद गौतम।
1: आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने पर मैं समस्त आकाशवाणी परिवार को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। 9 दशकों से आकाशवाणी ने अपनी विश्वसनीय, निष्पक्ष और जनोन्मुखी प्रसारण सेवा के माध्यम से देश की एकता, संस्कृति, साहित्य, संगीत और जन जागरण को सशक्त बनाने में अद्वितीय योगदान दिया है। यह केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं, आशाओं और विश्वास की आवाज रही है। आकाशवाणी बरेली से प्रिय श्री मिथिलेश श्रीवास्तव जी ने 90 वर्ष पूरे होने पर मुझे अपने उद्गार व्यक्त करने का अवसर दिया, मैं आभारी हूँ। इसी तारतम्य में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं आकाशवाणी से वर्ष 1986 से जुड़ा रहा हूँ। आकाशवाणी के प्रति मेरा समर्पण ऐसा है कि आज भी मैं नियमित श्रोता के साथ साथ आकाशवाणी में काव्य पाठ के लिए जाता हूँ। अपने प्रदेश की बरेली, रामपुर, नजीमाबाद, प्रयागराज, फैजाबाद के अतिरिक्त देवभूमि उत्तराखंड की आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से काव्य पाठ करने का मुझे सौभाग्य मिला है। आकाशवाणी रामपुर से मेरा पहला काव्य पाठ 25 फरवरी 1986 को हुआ था। मुझे स्मरण है कि मैंने पेन शीर्षक से एक हास्य व्यंग की कविता प्रस्तुत की थी जो कि मंच पर मील का पत्थर साबित हुई। अंत में इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि आने वाले वर्षों में आकाशवाणी अपनी समृद्ध परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए नवीन तकनीकों और जनसेवा के उच्च आदर्शों के साथ सफलता के नए आयाम स्थापित करे। पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। आनंद गौतम।

0: वीना सिन्हा, मंडल रेल प्रबंधक, इज्जत नगर मंडल पूर्वोत्तर रेलवे। आज आकाशवाणी के माध्यम से ही आकाशवाणी के अधिकारी और कर्मचारीगण को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर सभी को बधाई देती हूं और समाज में आपके योगदान को भी सराहती हूं।
1: आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 एफएम पर। आपको याद दिला दें, आपसे कुछ ही देर में यानी कि 4:05 पर हम लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ।

0: अभी भी आप कार्यक्रम में मैसेजेस के माध्यम से शामिल हो सकते हैं। फेसबुक पर आकाशवाणी बरेली पेज को फॉलो कीजिए और लिख भेजिए आज के प्रश्न से जुड़े अपने विचारों को। आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। शाम के 4:05 हो गए हैं और हम रोज की तरह लेकर हाजिर हो गए हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। आपको पुनः बताते चलते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए हम आपकी फोन कॉल्स को रिकॉर्ड करते हैं दिन में 2:30 पर। आप हमें इस समय पर फोन कर सकते हैं, नंबर है 0581251700। इस कार्यक्रम में अपने कमेंट्स के माध्यम से भी आप अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं फेसबुक पर जाकर। फेसबुक पर हमारे आकाशवाणी बरेली पेज को सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए और लिख भेजिए आज के प्रश्न को लेकर आपकी जो राय है हमसे साझा करिए। फिलहाल देखते हैं दिन में हमें जो फोन कॉल्स प्राप्त हुई उनको हमने रिकॉर्ड किया और उसके आधार पर पहले हमारे श्रोता कौन है। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है।
1: जी मैम, कैसे हैं आप और आकाशवाणी परिवार में तुम लोग कैसे?
0: बिल्कुल, हम सभी स्वस्थ हैं और आपकी आवाज सुनकर लगता है कि आप भी पूरी तरह से स्वस्थ तंदुरुस्त मस्त हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: आज जो है पहले ये बताइए कि आपके घर पे पेड़ पौधे हैं?
1: जी, पेड़ पौधे लगे हैं घर पे हमारे। प्लाट खाली पड़ा था, उसमें लगा रखे हमने। सरसों का है, बकेन का है,
0: अच्छा
1: तुलसी का है।
0: बिल्कुल, तो उनकी देखभाल कैसे करते हैं?
1: उनका देखभाल के लिए मैम सुबह को हम डालते हैं पानी और शाम को डालते हैं पानी 5 बजे के बाद।
0: अच्छा,
1: और दिन में उनको पानी नहीं देते हैं क्योंकि धूप बहुत तेज होती है।
0: बिल्कुल। अच्छा, उनके धूप से बचाने के लिए कोई उपाय करते हैं?
1: मैम धूप से तो खैर बच नहीं पाते क्योंकि खुले में लगे हुए हैं, बाकी वो खुद नहीं धूप को रोक के हम लोग छाया देते हैं।
0: नहीं, जैसे बहुत जब तेज धूप होती है तो जो छोटे पौधे होते हैं उनसे थोड़ा बचाव भी रखना होता है।
1: वो तो गमला है तो उठा ले जाओ, कहीं ना कहीं दो उठा के, लेकिन जब जमीन में लगे हुए हैं तो वही रखे रहेंगे वो।
0: बिल्कुल
1: जी। और बाकी यहाँ उनके लिए जैसे कि खाद पानी है और कोई बीमारी लग जाती है तो किसान बाड़ी में कॉल करके पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब से।
0: अच्छा।
1: बता देते हैं वो किसने ये दवा लगाई है वो लगाई है।
0: बिल्कुल, तो इस तरह से तो किसान बाड़ी जो कार्यक्रम है आपके लिए बड़ा ही उपयोगी हो गया है ना?
1: जी बिल्कुल, उसमें भी कॉल करते हैं तो वहाँ से भी जानकारी मिल जाती है इस बारे में हमें।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपके विचार जानकर। आज बता दीजिए गीत कौन सा सुनेंगे?
1: मैम कोई भी भोजपुरी सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा, मेहरबानी होगी।
0: बिल्कुल, हम आपको सुनवाते हैं ये भोजपुरी गीत।

0: तो कार्यक्रम के हमारे पहले श्रोता की फरमाइश पर आप सुन रहे थे ये भोजपुरी गीत। सुनकर तो भाई वाह, है ना। चलिए अगला गीत हमारे कौन से श्रोता की पसंद पर है और कौन है जानते हैं। हेलो।
1: हेलो।
0: नाम बताइए, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है।
1: मौलागढ़ नई बस्ती भोजपुरा जिला बरेली से तराना अंसारी बोल रही हूं।
0: तराना अंसारी जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। तराना, ये बताइए आपके घर में कौन कौन से पौधे हैं?
1: मैम, मेरे घर में एक आड़ू का पेड़ है, सदाबहार के पेड़ है, और एलोवेरा है, पथरी चटा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है पेड़ पौधों की देखभाल करना। मैं सुबह में पानी लगाती हूँ, शाम को भी लगाती हूँ।
0: अच्छा, तो आड़ू के पौधे पे फल आते हैं, आड़ू आते हैं?
1: मैम अभी नहीं आ रहे हैं, एक साल हुई है अब आड़ू के पेड़ को।
0: अच्छा, तो उसकी कैसे देखभाल करती हैं आप पौधों की?
1: मैम मैं पेड़ पौधों में सुबह में पानी लगाती हूँ और खाद भी डालती हूँ और समय समय पे उन्हें नराती भी रहती हूँ।
0: अच्छा, अगर उन पे कोई बीमारी लग जाती है तो क्या करती हैं फिर?
1: तो मैम उन पे बीमारी लग जाती है तो दवा लगाते हैं और सही हो जाते हैं सभी।
0: अच्छा, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। पेड़ पौधे अगर जहाँ होते हैं वहाँ खुद ही हरियाली महसूस होती है और हवा भी शुद्ध हो जाती है।
1: मुझे बहुत शौक है पेड़ पौधे लगाने का और मेरे घर है भी।
0: बिल्कुल, तो आज गीत कौन सा सुनेंगी तराना?
1: मैम फिल्म का नाम है अंदाज़, गाने के बोल हैं, मैंने लाख मनाया माने ना, मैंने फिर समझाया माने ना।
0: हम सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

तो श्रोताओ, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है और आपने ट्यून किया हुआ है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। भाई, ऐसे अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपको और कहाँ मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ यही मिलेंगे। तो देखते हैं और हमारे कौन से श्रोता हैं जो आज के

0: विषय को लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो
1: हेलो,
0: जी
1: आपकी बात आकाशवाणी के साथ।
0: बिल्कुल, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, आप अपना नाम बताइए।
1: हम जिला बधाई हूँ, ग्राम से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया बोल रहे हैं।
0: मुन्ना सिंह कठेरिया जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये बताइए मुन्ना सिंह जी, आपके घर में किस किस चीज के पौधे लगे हुए हैं?
1: हमारे से बाग लगा हुआ आ रही।
0: अच्छा, बाग किस चीज का है?
1: बाग लगा, उसके उपरांत भी हम दो चार पौधे बस लगाते हैं। इसी साल हमें दो पौधे देख के और एक आम का लगा, अब इस साल भी लगाएंगे।
0: अच्छा, तो अगर उन पौधों की फिर देखरेख कैसे करते हैं, क्या उपाय अपनाते हैं उनको, पौधों को स्वस्थ रखने के लिए?
1: उनकी देखभाल करते हैं, जंगली जानवर ने कोई हानि पहुँचाए, क्या पौधे कहीं सूख तो नहीं रहे हैं, क्या पौधों में कोई दीमक तो नहीं लग रही है, रोग तो नहीं लग रहा, ये देखभाल करते हैं।
0: बिल्कुल, और अगर आप ये देखभाल करते हैं तो फिर उसके लिए दवाई का भी उपयोग करते होंगे, समय समय पर छिड़काव।
1: लगता है कि उसमें दवाई इसलिए कभी कर।
0: अच्छा, इन दिनों में धूप जो है बहुत तेज पड़ रही है, तो ऐसे में जो बहुत छोटे पौधे होते हैं ना, तो उनको थोड़ा हल्की धूप की जरूरत होती है, तो तेज धूप से उन्हें कैसे बचाते हैं?
1: उनके लिए यही करते हैं कि शाम के समय सिंचाई हम कर देते हैं और पानी छिड़क देते हैं छोटे छोटे पौधों पर, ज्यादातर पत्तियां आराम से वो हरी भरी रहे, गमले में लगे हुए हम उठा कर।
0: अच्छा, वो गमले में लगे हैं उन्हें आप उठा के रख देते हैं, बहुत अच्छी बात। तो आज गीत कौन सा सुनेंगे?
1: गीत सुनेंगे प्रेम अमानत, बोल है मतलब निकल गया है तो पहचान।
0: बिल्कुल, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये।
2: मतलब निकल गया है तो

0: हेलो,
1: हाँ जी मैडम जी, नमस्ते। जी
0: नमस्ते। अपना नाम बताइए।
1: मैं जावेद अख्तर बोल रहा हूँ, रेशमी नगरी मुबारकपुर डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ से।
0: बिल्कुल, रेशमी नगरी आजमगढ़ से हैं जावेद अख्तर जी। जावेद
1: जी
0: जी, इससे पहले कब आपने कार्यक्रम में फोन किया था?
1: नहीं मैडम जी, देखिए इससे पहले तो मेरी आपसे बात नहीं हो पाई थी। दरअसल मेरी आपसे ये पहली बार मेरी बात हो रही है।
0: बिल्कुल, हमारे नए नए ये श्रोता बने हैं जो पहली बार फोन कॉल से जुड़े हैं हमारे साथ। तो
1: जी
0: जावेद जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। हमें बताइए कि आप अपने पेड़ पौधों की देखभाल कैसे करते हैं?
1: देखिए मैडम जी, पेड़ पौधों को लेकर अगर हम बात करें तो उनका, जैसे हम अपने परिवार के लिए जिस तरीके से हम अपने परिवार का देखभाल करते हैं, उसी तरीके से हम पेड़ पौधों की भी देखभाल करते हैं।
0: जी, बहुत अच्छी बात।
1: जैसे जैसे कि गमले में जो हम पेड़ लगाते हैं या जो भी फूल लगाते हैं, उनमें मिट्टियों का बदलाव करना और वक्त से उसकी देखभाल करना, उसमें पानी देना।
0: बिल्कुल
1: और दूसरी वजह ये बता रहे हैं हम मैडम जी कि जैसे जो भी मतलब जो बाग होता है जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं और उसमें बहुत सारे पेड़ को लगाया भी जाता है, तो ये जब भी ये पेड़ लगाने का यानी जो मौसम आता है, यानी
0: हाँ
1: कि बरसात का जो मौसम आता है या इसी टाइम कह लीजिए कि यही मौसम है पेड़ लगाने का,
0: बिल्कुल
1: इस टाइम में हम बागों में भी पेड़ को लगाते हैं। और एक नीम का पेड़ हमने 2 साल पहले इसी बाग में, जिस बाग मैं बात कर रहा हूँ आपसे मैडम जी,
0: जी
1: इसी बाग में एक नीम का पेड़ हमने लगाया था और उसकी देखभाल करते करते वो बड़ा भी हो गया है। और
0: बिल्कुल,
1: माशाल्लाह
0: आपके जो पीछे से है मुझे पंछियों की आवाजें आ रही हैं। आप बड़े अच्छे माहौल में इस समय बैठे हुए हैं।
1: जी मैं बताइए ना मैडम जी कि मैं जिस बाग में मैं पेड़ लगाया था उसी बाग के अंदर से मैं बात कर रहा हूँ, और पंछी चिड़िया जो भी हैं बहुत ही यहाँ खिलखिला रही हैं, और इस टाइम यहाँ पे आंधी और बारिश भी हुई है।
0: अच्छा, वही वाह, बड़ा अच्छा वातावरण वहाँ का हो रहा होगा। और मेरे साथ
1: बिल्कुल
0: साथ जो सुनने वाले हमारे श्रोता हैं वो भी शायद इस चीज को महसूस कर रहे होंगे। तो जावेद
1: क्या
0: जी, आज का गीत कौन सा रहेगा?
1: जी मैडम जी, गीत है वो सनम बेवफा फिल्म का है, वो कोई भी गीत है वो सुना दीजिए हमको।
0: बिल्कुल, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी शुक्रिया।
0: शुक्रिया।

0: आप सुन रहे हैं 100.4 FM आपकी बात आकाशवाणी के साथ। हेलो,
1: जी मैम नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: यूपी बनारस से मौसी मंसारी बात कर रहा हूँ।
0: भाई, बनारसी साड़ियों के लिए फेमस रहे बनारस से हमारे ये श्रोता हैं मौसम अंसारी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: स्वागत तो मैम आपका भी है, पहली बार आपसे बात हो रही है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, और बिल्कुल आपकी आवाज से ना आपकी खुशी झलक रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मैम काशी का नजारा तो आप जानती हैं कि

0: काशी से हम लोग का काशी फेमस है, तो और बनारसी साड़ी फेमस है, और यहाँ की कचौड़ी जलेबी भी फेमस है मैम।
1: अच्छा, वहाँ अगर हरियाली की बात करें तो कैसा है? मतलब पेड़ पौधे हैं खूब वहाँ पर?
0: मैम मैं जहाँ पे रहता हूँ तो मेरे यहाँ खेत खलियान है, तो यहाँ पे काफी पेड़ है, और
1: अच्छा,
0: इस काफी पेड़ को आनंद में हम लेते हैं रात में और सुबह के टाइम,
1: बिल्कुल, तब तो बहुत
0: और
1: अच्छा
0: थोड़ा
1: रहता
0: सा
1: होगा।
0: हाँ बहुत अच्छा पेड़ लगा हुआ है,
1: अच्छा,
0: और
1: आपने
0: सभी
1: अपने
0: श्रोताओं से यही कहेंगे कि जो भी अपने घर पे गमले वगैरह लगा रहे हैं सभी लोग और लगाएं और घर को खूबसूरत बनाएं और पेड़ पौधा को और बढ़ाएं,
1: अच्छा, आपने अपने
0: क्यों
1: घर में लगाए हुए हैं पेड़ पौधे?
0: जी तो 3 गमला है ना मैम, तो
1: बिल्कुल, तो उनकी
0: लगाएं अभी और
1: देखभाल,
0: बढ़ाएंगे।
1: हाँ, उनकी देखभाल कैसे करते हैं फिर ये बताइए हमें।
0: सुबह शाम मैम उनको पानी देना पड़ता है, जब तक पानी नहीं देंगे उनको चारा नहीं देंगे तब तक पेड़ बढ़ेगा ही नहीं, तो
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए
1: और
0: उनको ध्यान देते हैं, उससे घर का खूबसूरती भी बढ़ जाता है मैम गमले से।
1: बिल्कुल, और खाद वगैरह उसमें देते रहते हैं समय समय पर?
0: जी, खाद तो देना जरूरी है मैम, नहीं देंगे ना तो उससे पेड़ चुरा जाता है।
1: अच्छा, खाद किस तरह की खाद देते हैं आप उनमें? घर की देसी खाद या बाहर से खरीदी हुई?
0: नहीं बाहर से मैम, घर के बगल में एक है ना तो उनके यहाँ खाद रहता है, तो हम लोग उन्हीं से ले लेते हैं,
1: अच्छा,
0: तो उसमें दे देते हैं, तो हम लोगों का पेड़ अभी अच्छा है, धूप लगे या छांव लगे पेड़ सुरक्षित है,
1: बिल्कुल,
0: और
1: बहुत
0: बहुत
1: अच्छे,
0: खूबसूरत खूबसूरत पेड़ है, और गुलाब के भी है, चमेली भी है,
1: बिल्कुल,
0: सभी
1: बहुत
0: तरह का
1: अच्छी
0: है।
1: बात है। और जैसे आप कह रहे हैं ना, पौधों का जो आपके आसपास का नजारा है, मैं इमेजिन कर रही हूँ कि कितना अच्छा लगता होगा। फिलहाल अब
0: जी
1: ये
0: मैं
1: बताइए मौसम जी कि आज गीत कौन सा सुनेंगे?
0: मैम गीत रफी साहब की आवाज में सुनना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत है तो 2 कड़ी गुनगुना दूँ, मैं गुनगुनाता
1: बिल्कुल
0: तो हूँ।
1: बिल्कुल, गुनगुनाइए।
0: रुख से जरा नकाब उठा दो
1: बहुत सुंदर,
0: मेरे हुजूर,
1: बिल्कुल
0: जलवा
1: बिल्कुल,
0: देखते मैम।
1: पहुंचा रहे हैं आप तक आपकी पसंद का ये गीत।

आपकी बात आकाशवाणी के साथ। आप इस कार्यक्रम में अभी तक तो सुन रहे थे जो फोन कॉल्स हमें दिन में मिली उनकी रिकॉर्डिंग, और अब लाइव आपसे जुड़ रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, क्योंकि फेसबुक पर आपके जो कमेंट्स हमें मिले हैं अब हम उन्हें शामिल करेंगे। तो इस कार्यक्रम के लिए सबसे पहला जो कमेंट हमने शामिल किया है, आप हैं सादुल शहर राजस्थान से, राम कुमार रेवार, चंद्रकला रेवार। आप लिखते हैं, हम प्रतिवर्ष बारिश के मौसम में सावन के महीने में हम कुछ दोस्त मिलकर वृक्षारोपण करते हैं, उसके बाद प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग में घुमाई होती है, यानी कि घूमने जाते हैं, साथ ही में उनकी देखभाल भी करते हैं। उसके बाद सप्ताह में एक दिन सभी साथी मिलकर उन पेड़ पौधों की रक्षा और देखभाल करते हैं। ये कार्य हम काफी वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं।

राधा नामदेव जी क्या कहते हैं, लिखते हैं अपनी किचन वेस्ट को खाद के रूप में प्रयोग करती हूँ। फिलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण 2 बार वाटरिंग करनी पड़ती है। टाइम टाइम पर कटाई छटाई बहुत ज़रूरी है। एक्स्ट्रा रूप में सरसों की खली, प्याज के छिलके को एक रात पानी में भिगोकर सुबह पौधों में छिड़काव करती हूँ और टाइम मिलने पर उनसे अकेले में बातें करना मेरा शौक है। और मेरा मानना है कि पौधे हमें सुनते हैं और हमसे प्यार की उम्मीद रखते हैं। और कुछ पौधे मेरे यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनसे विश मांगने पर पूरी भी होती है। मैं अपने पौधों से बहुत प्यार करती हूँ, अपने बच्चों से ज़्यादा इन्हें प्राथमिकता देती हूँ। लिखती हैं, मेरे पौधे मेरी जान। इसी क्रम में गंगा सिंह रावत रामपुर रोड हल्द्वानी से हैं। पेड़ पौधों को लगाना अच्छी बात है, मगर उनकी देखभाल करना और भी बड़ी बात है। मेरे घर के आसपास ज्यादा पेड़ नहीं है, लेकिन घर में गमलों में फूल वाले पेड़ लगे हैं जिन्हें मैं सुबह शाम पानी देता हूँ। मिट्टी और खाद का विशेष ध्यान रखता हूँ। जब उन पौधों में फूल आते हैं तो मन खिल उठता है उन्हें देखकर।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: आप सुन रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। कार्यक्रम है आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और इस कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं फेसबुक पर मिले आपके कमेंट्स को। हमारा आज का विषय, आप अपने पेड़ पौधों की देखभाल कैसे करते हैं? तो सुल्तान रजा बता रहे हैं, जो कि कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से हैं, कि कैसे ये अपने पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। लिखते हैं, आज का विषय वाकई में अच्छा है। हम पेड़ पौधों की देखभाल अच्छी तरह से करते हैं, जैसे कि सुबह को पानी देना, शाम को पानी देना, और हम दिन में पानी नहीं देते क्योंकि धूप बहुत तेज होती है। हमारे घर में शहतूत का पेड़ लगा हुआ है। जब इस पेड़ में कोई रोग लग जाता है तो उसके लिए हम किसानवाड़ी कार्यक्रम में कॉल करके पूछ लेते हैं, और जो उसमें जो है हम अच्छी दवा लगा कर उसको सही कर लेते हैं। हमारे घर में बहुत अच्छी छांव होती है, जिसकी छांव में बैठकर हम खाना खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आपके साथ हैं इकबाल रजा, जीशान रजा, अफजल रजा, मोनिश सादिक और इनके मम्मी पापा। तिगड़ी कस्बा शीशगढ़ से हैं शाहरुख खान, हाशिम खान, अरहम बाबू और किशवानूर।

देखते हैं, आज का विषय बहुत अच्छा है। मैं तो अपनी शॉप पर ही रहता हूँ, लेकिन मेरे पास में 30 से 40 पौधे हैं। बहुत अच्छा कलेक्शन है। गुलाब के पौधे हैं, चंपा का पौधा है, लिली है, नींबू है, मौसमी का पौधा है, कुछ सजावटी पौधे भी हैं मेरे पास। सब मैं गमले में है और बेस्ट से बेस्ट लगाया है। मैं उनकी अधिक देखभाल करता हूँ, सुबह और शाम में काफ़ी अच्छा लगता है, आनंद आता है। आप सभी पौधे लगाएं, पर्यावरण बचाएं, ऑक्सीजन ये प्रदान करते हैं। पौधे हमें, हम तो पौधों से बात करते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि वो हमसे कुछ कह रहे हैं। खिले हुए फूल जैसे मुस्कुरा कर कुछ हमसे कह रहे हैं। सुबह और शाम पानी देता हूँ, हल्की फुल्की खाद भी देता हूँ। अनोखे लाल जी क्या लिखते हैं, आज का विषय बहुत अच्छा है। हम मॉर्निंग में उठते हैं, हमारे घर में गमले हैं और मॉर्निंग में पानी लगाते हैं, जो पत्तियां पीली हो जाती हैं उनको हटा देते हैं और हर पेड़ बहुत ही अच्छे से उसकी देखभाल रखते हैं, लगाते हैं। हमारे घर में गुलाब का पेड़ है और गुलहड़ का पेड़ है, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये पौधे। मैं अनोखे लाल मौर्य कटरा चांद खा मौर्य मंदिर बरेली से हूँ। इसके बाद बारी है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी की। इनके साथ हैं लालू अंसारी और ये लिखते हैं, आज का विषय, आप अपने पौधों की देखभाल कैसे करते हैं। हम आपको बता दें, हमारे घर पर कोई पेड़ नहीं है, मगर हाँ, जब भी कोई व्यक्ति कहीं पौधों से कोई छेड़छाड़ करता है या पौधों को परेशान करता है, तो हम उसको डांट देते हैं और समझा देते हैं कि पौधों को परेशान ना करें। हालांकि आपके घर में पौधे नहीं हैं, लेकिन आप एक बहुत अच्छी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं अंसारी जी, बहुत अच्छा काम। जी के परमार लिखते हैं, समय पर पानी देते हैं। आप गांधीनगर गुजरात से हैं। राज कक्कर फरीदपुर के गांव से हैं। ये लिखते हैं, हम बड़े अच्छे से अपने घर के पेड़ पौधों का ख्याल रखते हैं और एक खास बात, हम अपने कार्यक्रम को बहुत, आप अपने कार्यक्रम को बहुत अच्छे से पेश करते हैं, थैंक यू। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने ध्यान पूर्वक हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। इसके बाद ये हमारे श्रोता हैं वारिश अली खान, संजय नगर यशवाक लखनऊ से। मैं लखनऊ में रहता हूँ, पौधा रोपण के लिए हमारे यहाँ पर्याप्त जगह नहीं है, इसीलिए मैंने छत पर गमले और जो है पौधे लगाए हुए हैं। गमले में मैंने फूल फल और सब्जी के पौधे लगाए हैं। सुबह उठकर सबसे पहले मैं पौधों को पानी देता हूँ। खाद की अगर जरूरत पड़ती है तो इसके लिए मेरे यहाँ एक माली है जो इस काम में मेरी मदद करता है। तो जो हमारे और भी अन्य सुनने वाले श्रोता हैं, उन तक भी आज का जो संदेश है वो सहज ही पहुंच रहा है कि पेड़ पौधों की देखरेख करनी है, उनका ध्यान रखना है। हमारे बहुत से श्रोताओं ने कहा कि वो अपने बच्चों की तरह अपने पेड़ पौधों का ध्यान रखते हैं। आप भी ऐसा कुछ करके देखिए, यकीन मानिए बहुत अच्छा लगेगा। सुबह शाम जब आप उनकी छांव में बैठेंगे ना और बैठकर चाय का आनंद लेंगे, फिर तो कहने ही क्या। और अगर जब उन पर चिड़ियां आके अपनी सुरीली धुन बिखेरें, तितलियां उन पर घूमें, फिर तो नजारे ही क्या। फिलहाल अब हम सुनवा देते हैं अपने श्रोताओं को कार्यक्रम का ये गीत।

0: आपके पास दो माध्यम है भाई, पत्रों के माध्यम से भी भेज सकते हैं। पता है आपका पत्र मिला द्वारा के निदेशक आकाशवाणी बरेली का, बरेली का पिन नंबर 243001। ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं, आपका पत्र मिला bareilly@gmail.com। तो देखिए दोनों माध्यम हमने आपको बता दिए हैं, आप बस जल्दी से अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेज दीजिए, क्योंकि हमें भी है बेसब्री से इंतजार आपकी प्रतिक्रियाओं का। और अब घड़ी की ओर जरा देखिए, बिल्कुल समय नहीं रहा कि हम आपसे और बातें करें, वैसे मन नहीं मान रहा, लेकिन क्या करें, अब जो निश्चित समय सीमा है वो हमें एक निश्चित समय के लिए विवश कर देती है, और उसी विवशता के चलते अब हम अपने कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं। अभी आप सुन रहे थे आपकी बात आकाशवाणी के साथ, 100.4 एफएम पर आपने ट्यून किया है 100.4 एफएम आकाशवाणी बरेली। और अब एक संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से आज की शेष और कल की सभा में प्रसारित बरेली होने वाले कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर में 5:10 पर सुनेंगे आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम। 5:30 पर होगा फोन इन कार्यक्रम हेलो बरेली। 6:00 युवाणी में होगा आज का सवाल और बहुत कुछ खास, किसानवाड़ी लेकर आएंगे। 6:30 पर होगा आज की बात आकाशवाणी गांव में किसान के साथ होगा ये कार्यक्रम, होगा बाजार भाव, मौसम और कृषि समाचार। वहीं ग्राम जगत में खाद्य सुरक्षा के महत्व पर चर्चा की जाएगी, होगा क्षेत्र संकलित कार्यक्रम और समय याद रखिएगा 7:00 का। आपके स्वास्थ्य से जुड़ा कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन लेकर आएंगे 7:31 पर। और कल होगा रविवार, और रविवार का दिन रहता है सुबह 8:15 का अंकुर का, तो सुनना मत भूलेगा कल सुबह 8:15 पर बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम अंकुर, जिसमें होगी ज्ञान की बात और बहुत सारे बाल गीत और बहुत कुछ मनोरंजन। प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ बचपन लेकर आएंगे 9:00। 10:05 पर सोशल मीडिया पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन सकेंगे। 11:00 का समय रहेगा आपका पत्र मिला कार्यक्रम का, अनुरोध गीत आपके पत्रों पर आधारित इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं दिन में 1:00। शाम 4:05 का समय रहेगा आपकी बात आकाशवाणी के साथ का, भजन संध्या होगी कल शाम 5:05 पर। 5:30 पर सुनना न भूले मन भावन कार्यक्रम, श्रोता मंच 5:45 पर। युवाणी का समय हमेशा की तरह 6:00 का रहेगा, जिसमें होगा आज का सवाल और बहुत कुछ खास। ग्राम जगत में कल चर्चा की जाएगी ऊर्जा संरक्षण का महत्व विषय पर, साथ ही श्रीमती पूनम से की गई भेंटवार्ता आपको सुनवाएंगे, विषय रहेगा घर की जिम्मेदारी के साथ खेती एवं पशुपालन। समय याद रखिएगा 6:30 पर। 7:00 होगी कानूनी सलाह, कल 7:31 का समय रहेगा जनमंच का। रात्रि 8:00 होगा मुझे याद है जरा जरा, तो ये तो थी रूपरेखा और एक संक्षिप्त जानकारी हमारे केंद्र से आज के शेष और कल की सभा के प्रसारित बरेली होने वाले कार्यक्रमों की। आप इस समय सुन रहे हैं 100.4 एफएम आकाशवाणी बरेली।
1: मैं वीना सिन्हा, मंडल रेल प्रबंधक, इज्जत नगर मंडल, पूर्वोत्तर रेलवे, आज आकाशवाणी के माध्यम से ही आकाशवाणी के अधिकारी और कर्मचारीगण को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर सभी को बधाई देती हूं और समाज में आपके योगदान को भी सराहती हूं।

आप सुन रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। शाम के 5:05 बस होने ही वाले हैं और इसी के साथ हम लेकर हाजिर हुए हैं भजन संध्या। भजन संध्या में सुनवाते हैं आपको लखवीर सिंह लखा की आवाज में ये गीत, बजरंगी की पूजा से सब काम होते हैं।

श्रोता अभी भजन संध्या को देते हैं विराम, क्योंकि अब एक कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रकृति की बात।

0: है। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरढ़ी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार। ग्रामीण विकास, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। आपको बता दें, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में जशपुर जिले की सरढ़ी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। आज हमारे साथ हैं श्री रामजी भगत, जो कि सरपंच हैं सरढ़ी ग्राम पंचायत के। भगत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: थैंक यू सर, धन्यवाद आपको।
1: भगत जी, राष्ट्रीय स्तर पर आपको एक पुरस्कार मिला है, जिसकी उपलब्धि आपकी पंचायत को देश भर में एक अलग पहचान दिलाती है। तो जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई थी, तब आपके मन में किस तरह की भावनाएं थी, कैसा महसूस हुआ आपको?
2: मैं तो सरपंच हूँ, लेकिन मेरे ग्रामवासी और जितने भी हमारे जन प्रतिनिधि हैं, वो भी खुशी के झूम उठे। और मेरे जनपद के अधिकारी, जिले के अधिकारी ने भी इस राष्ट्रीय लेवल का तृतीय स्थान, जो कि हम छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान ग्राम पंचायत सरडी विकासखंड बगीचा जिला जशपुर को मिला, उसके लिए पूरा अधिकारी भी झूम उठे और ग्रामवासी भी और क्षेत्र के समस्त अधिकारी कर्मचारी और जन प्रतिनिधि सभी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस मुकाम पे पहुँचे उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आने वाला समय में जो हम लोग का बचा खुचा है, आने वाला फर्स्ट प्राइज का अवार्ड हमको मिले, उस आधार से हम जो बचा खुचा काम है या हम लोग नहीं पहुंच पाए, उसके लिए भी हम लोग काम करना चाहते हैं।
1: सरपंच जी, जब आपने इस काम को करना शुरू किया, तो वहां पर किस तरह की परिस्थितियां थी, और फिर आपने स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के लिए किस तरह की गतिविधियों को संचालित किया? और ये भी जानना चाहूंगा कि वित्तीय संसाधन या फिर जागरूकता या फिर तकनीकी स्तर पर किस तरह की बातें आपके सामने आ रही थी, कोई कठिनाई थी या सब कुछ सामान्य था?
2: बहुत सारा कठिनाई था, कठिनाई को झेलते हुए। हम लोग के आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ी कुरवा लोग रहते हैं हमारे पास, हमारे गांव में, और जंगल है, पहाड़ है, फिर भी हम लोग जैसे साथ में समूह को मिलाकर, हम लोग का जन प्रतिनिधि और महिला समूह सब साथ मिलके मेरा सपोर्ट किए और उनका मैं सपोर्ट लिया, और हर मोहल्ला में लोककर सभा किए, बैठे चर्चा किए कि हमको कचरा का भी प्रबंध करना है, मतलब कचरा के इकट्ठा करना है, कहीं नहीं फेंकना है, और कचरा का कलेक्शन के लिए हम लोग महिला स्वर समूह को दिए, और समूह द्वारा प्रत्येक शनिवार को महीने में चार बार, और हम लोग पूरे गाँव जनभागी के द्वारा सहयोग, पूरे गाँव के हम लोग साफ सफाई करते हैं। और ये चुनौती बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमारे सपोर्ट में जन प्रतिनिधि और पूरे जनता भाई मेरे को साथ दिए, इसलिए इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हैं।
1: यानी कचरा प्रबंधन पर आपने काफी बड़े स्तर पर काम किया, लोगों का सहयोग लिया और लोगों ने बढ़ चढ़कर
2: मेरा सहयोग दिए।
1: अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जो खुले में शौच से मुक्ति वाली बात है, तो शत प्रतिशत सफलता आपने हासिल की है, इसके लिए आपने किस तरह से काम किया, कौन सी चुनौती आपके सामने थी?
2: मेरे पास बहुत चुनौती थी, आदिवासी क्षेत्र है, कोई नहीं मान रहे थे कि ये शौचालय क्या चीज को बोलते हैं, शौचालय के बारे में उनको पता नहीं था, काहे कि हम लोग आदिवासी ट्रेवल क्षेत्र के हैं, पहाड़ी कुरवा लोग निवास करते हैं, और धीरे धीरे हम लोग लोककर सभा, जैसे हम लोग बोलते हैं छोटा छोटा बैठक, हर मोहल्ला में समूह के माध्यम से, अब हम लोग पंच के माध्यम से, अब मैं पिछले बार भी जनपद सदस्य था, तो मेरे को इसके बारे में कुछ जानकारी था कि हमको आगे कैसे बढ़ाना है और शौचालय शौच मुक्त कराना है, उस आधार से हम लोग बहुत मेहनत किए, लगन किए, तभी हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं।
1: जल संरक्षण के लिए आपने कौन कौन से काम किए हैं?
2: जल संरक्षण के लिए केरड़ा विभाग मेरा सहयोग किए, पिछले बार 5 साल जनपद सदस्य था, उस समय मैंने केरड़ा विभाग से 109 पंप लगवाया, इस हिसाब से पानी उपलब्ध हो पाया, इसलिए रबी के फसल और खरीफ का फसल दोनों फसल ले सकते हैं।
1: अच्छा, जल संरक्षण के क्षेत्र में आपने तालाबों के पुनर्जीवन पर काम किया, भूजल पुनर्भरण पर काम किया, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की हम बात करते हैं, उस पर भी आपने काम किया, तो इस तरह के जो कदम आपने उठाए हैं, इनमें भी कुछ चुनौतियां आपके सामने आई थी, आपने उनको हल किया?
2: सर, बहुत सारा चुनौती है, जैसे पानी की कमी के कारण ही तो मैं, जैसे हम लोग पहले हैंडपंप लगवाए, उसके बाद पानी की जहाँ कमी रहती है, इसकी हम लोग पानी का बचत करने के चक्कर में उसमें हम लोग ड्रिप सिस्टम टपका विधि से हम लोग खेती करना शुरू किए, और पिछले 5-10 साल टपका विधि से खेती हो रहा है ड्रिप के माध्यम से, तो उसमें पानी की बचत हो रही है, और पानी का बचत के लिए और अभी हम लोग ये दूसरा प्लान किए हैं, एक सोखता गड्ढा जो बोलते हैं, अभी घर घर हर घर हर परिवार में एक गड्ढा खोद रहे हैं, 2.5 मीटर का, 2 मीटर का, 1 मीटर का, उसमें हम लोग जितना बरसात का पानी चाहिए, अभी वाला जो हम लोग बर्तन उर्तन धोते हैं, नहाते धोते हैं, उस पानी को इकट्ठा सीधा गड्ढा में जा रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग का जल स्तर जो है, जो घटने के बजाय बढ़ रहा है।
1: तो मतलब ये जो पानी का दोबारा

0: इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सोच आपके अंदर कैसे आई कि इस तरह से पानी का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है?
1: सर, मैं पहले माइक्रो वाटर सेट में काम किया था, जल ग्रहण समय में माइक्रो वाटर सेट में काम किया। माइक्रो वाटर सेट कर ही मतलब है कि तो वाटर वाटर पानी को इकट्ठा करना, और पानी को इकट्ठा जब मतलब कि गांव का पानी को गांव में ही मतलब कि उसको इकट्ठा करके नीचे करेंगे, उसमें क्या है कि पानी का पर्कुलेशन नीचे जाएगा, तो वही पानी हम लोग को मतलब कि उसमें कुआ है, तालाब है, डबरी है, चाहे नलकूप है, चाहे हैंडपंप है, उसमें पानी वही पानी आता है, बरसात का पानी।
0: अच्छा सरपंच जी, एक बात ये कही जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाना बनाने का काम है वो लकड़ियों पर किया जाता है, चूल्हे पर खाना बनाया जाता है, आपने इस दिशा में भी काम किया है गैस कनेक्शन के लिए?
1: सर, पहले हम लोग के यहाँ भी लकड़ी से खाना बना रहे थे, क्या है कि पुरवा लोग कहाँ से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, वो जंगल में रहते हैं। हम लोग जन आंदोलन चलाया कि लकड़ी हमको बचाना है, आने वाला पीढ़ी के लिए, हम जब लकड़ी नहीं बचाएंगे तो सांस कहाँ से लेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे। हम उस हिसाब से हमने उनको भी हम लोग बैठक करके बताए, और हम लोग उस स्थिति में भी अभी हम लोग लगभग 453 परिवार के पास गैस कनेक्शन है।
0: और भगत जी, पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण का एक बड़ा योगदान रहता है, मैंने ये भी सुना है कि आपको वृक्षारोपण से बड़ा लगाव है, तो आपने किस तरह से वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया है अपनी पंचायत में?
1: सर देखिए, मैं जनपद सदस्य ही था उस समय, हम लोग पहले जैसे माइक्रो वाटर सेट में काम किया था उस समय भी प्लांटेशन हमने लगाया था, उसके बाद में जनपद सदस्य से पिछले पहले वर्ष था उस समय भी हम लोग प्लांटेशन लगाए, उनमें से हमको जिला प्रशासन की सहयोग से पैसा दिए, और जनपद से भी कुछ पैसा, और अपने तरफ जो मनरेगा उसके माध्यम से हम लोग वृक्षारोपण लगाए।
0: कुछ इलाकों में बंजर जमीन जैसी समस्याएं आती है, उनके लिए आपकी क्या योजना है, उन पर आप कैसे काम करेंगे?
1: सर, आपने बहुत सवाल मेरे से अच्छा किए। अगर बंजर भूमि मेरे को अगर मिल जाता आने वाला समय में, वो बंजर भूमि में उसको हम लोग वृक्षारोपण आने वाला समय में लगाएंगे,
0: मतलब उसके लिए भी आपने कार्य योजना
1: तैयार कर रहे हैं।
0: और सरपंच जी, एकल उपयोग प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो भी एक बड़ी समस्या माना जाता है, इस पर आपने काम किया है, तो किस तरह से गतिविधियों को संचालित किया, कैसे लोगों को मोटिवेट किया कि इन चीजों से हमें बचना चाहिए?
1: प्लास्टिक तो हम एकदम मुक्त नहीं कर सकते हैं, कहा कि उसको हम लोग बनाते नहीं है, उसको हम खुद नहीं बनाते हैं, तो हमको उसको मुक्त नहीं करा सकते हैं, लेकिन हम प्रयास किए और प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग प्लास्टिक इकट्ठा करें, कुछ मिनी बैंक के माध्यम से हम लोग को इकट्ठा हर चौराहे पर, हर कहीं दुकान है, किराना दुकान है, वहाँ पर लगा दिए हैं। वहाँ हम लोग का मतलब कि गांव में कोई प्लास्टिक मुक्त है, वास्तव में है, बाकी पंचायत में है नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है, हमारे पंचायत में है।
0: इस तरह की जो गतिविधियां, खासतौर पे ये कचरा प्रबंधन की जहाँ पर बात है, साफ सफाई की बात है, तो इसमें ग्रामीण लोग जो है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी भूमिका किस तरह है, वो लोग किस तरह से आपका सहयोग करते हैं?
1: उसमें भी हम लोग समूह को लिए जिम्मेदारी दिए हैं, स्वर सहायता समूह को, उसमें 11-12 जन उसमें कचरा कनेक्शन सप्ताह में करते हैं, और कचरा कनेक्शन करके उनको महीने का 30 रुपया देते हैं हर परिवार, और उनका निजी जिंदगी थोड़ा बेहतर हो रहा है,
0: अच्छे रिजल्ट वहाँ से सामने आ रहे हैं।
1: और सप्ते में जैसे हम लोग पूरे गांव वासी मिल के और बाकी गली का सफाई करते हैं, रोड का सफाई करते हैं।
0: सरपंच जी, आपने हरित अधोसंरचना यानी कि ग्रीनरी को तो बढ़ावा दिया ही, साथ में सौर ऊर्जा पर भी आपका काफी फोकस रहा है, इसके बारे में हमें बताएं।
1: सर, केडा के माध्यम से जो भारत सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो केडा का पूरे राज्य में उसका किसानों के फायदे के लिए सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन दे रहा है
0: जी,
1: और दिया है, मैं तहे दिल से श्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों के लिए उतना बड़ा सोच रखते हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि किसानों के हित में काम कर रहे हैं और किसानों को लाभ मिल रहे हैं।
0: सिंचाई पंप की क्या योजना रही आपके लिए
1: विगत आने वाला समय में, और अगर किसान जो छूटे हुए हैं उनके लिए और अगर सिंचाई पंप मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता,
0: यानी प्रयास आपके जारी है। अच्छा, ग्रामीणों ने आपकी काफी मदद की होगी तब जाकर के आपको ये सफलता प्राप्त हुई है, तो उनकी किस तरह की उपलब्धियां रही, कैसे लोगों ने आपको बढ़ चढ़ करके सपोर्ट किया कि आपको लगा कि हाँ, इनके साथ मिलकर अब हम ये काम और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर कर सकते हैं?
1: सर, उनको तो मैं जितना मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ग्रामवासियों के लिए और जनप्रतिनिधियों को, और मेरे जनपद के शासन प्रशासन और जिले के सभी टीमों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरा सहयोग जनपद से और जिले से सहयोग जो मिला उसके लिए भी सभी समस्त अधिकारी कर्मचारी और पंचगण या आम जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।
0: आपकी पंचायत के जो भी लोग हैं, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ समस्याएं हर किसी के सामने आ ही जाती हैं, तो वो अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आते हैं या किसी भी तरीके से आप तक अपनी समस्याएं पहुंचाते हैं, तो उसमें किस तरह से आप एक्शन लेते हैं, कैसे लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं?
1: सर, हमारे पास बहुत सारा समस्या है, काहे कि हमारे आदिवासी क्षेत्र है, मेरे पास सुबह टाका लग जाता है एकदम, सुबह जब मैं सो के नहीं उठता हूँ 5 बजे आदमी आ जाते हैं और सारा समस्या का हल मैं इस मिनट से उठता हूँ बैठने के लिए उनको बोल देता हूँ बैठिए मैं आ रहा हूँ, उसके बाद उनका समस्या को देता हूँ क्या कौन सा समस्या है क्या है, तो मैं इस मिनट से उनका समस्या को हल करने का कोशिश करता हूँ।

0: से नहीं बनता है, जो ऊपर स्तर से चाहे ब्लॉक स्तर से चाहे जिला स्तर, मैं उनका काम को करने के लिए प्रयास करता हूँ।
1: तो कोई खास दिन निर्धारित कर रखा है उनसे मिलने के लिए, या प्रत्येक दिन सभी लोग आते हैं जहाँ पर अपनी समस्याएं वो आपके सामने रखते हैं?
0: हमारे यहाँ प्रत्येक शुक्रवार को भी है, जो लगता है सचिवालय उस दिन अलग है, वो तो सरकारी क्रम शासन का काम है। मेरा सोमवार मंगल बुध भी, फिर मेरा 3 दिन लगातार बैठक हूँ, अपने घरे में बैठता हूँ और तीनों दिन घर में बैठता हूँ और 3 दिन पंचायत भवन में बैठता हूँ, और तीनों दिन मेरा काम हो जाता है।
1: यानी लगातार व्यस्त रहते हैं?
0: मतलब हमेशा व्यस्त रहता हूँ, किसी पब्लिक को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है।
1: यही कारण है कि आपके पंचायत को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
0: जी सर।
1: अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आपको क्या लगता है कि जो भी बुनियादी ढांचा आप लगातार बना रहे हैं, उससे वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह का परिवर्तन देखने मिल रहा है? खासतौर पर जब गांव में सड़कों की बात करते हैं, स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं, या मुख्य सड़क से कनेक्टिविटी की बात होती है, आते जाते हैं कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, उसके लिए किस तरह के प्रबंध है?
0: सर, उसके लिए अभी हम लोग और प्रयास कर रहे हैं, कुछ बहुत काम बचा है, उस काम को भी हम लोग प्लान बना के उसको शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे, जो बचा कुचा है उस काम को आगे बढ़ाएंगे और आने वाला समय जहां हम लोग का कार्य जो बचा है उसको पूर्ण कर सके।
1: तो सरपंच जी, आपने ये जो सफलता हासिल की है, इस उपलब्धि तक आप पहुंचे हैं, तो इसमें आपकी सबसे बड़ी कार्य योजना क्या रही, आपका माइंडसेट क्या था, कैसा आपने सोचा कि इस योजना पे मुझे चलना चाहिए, इससे मुझे काफी कुछ प्राप्त हो सकता है?
0: सर, हम लोग के यहाँ जैसे सबसे पिछड़ा पहाड़ी कोरवा लोग रहते हैं, ना आदिवासी लोग रहते हैं, ना उनको समझाना तो बड़ी मुश्किल था, फिर भी हम लोग सोचे कि पूरे गांव के बैठक करके सोचे और शासन से सहयोग लिए, जिला प्रशासन ने हमको सहयोग दिया, जनपद ने भी मुझे सहयोग दिया, उसी कारण से ODF मतलब पंचायत बना, जैसे शौचालय मुक्त है ना, उसमें 453 हम लोग शौचालय बनाए।
1: सरकार के सहयोग की जब बात आती है तो आजकल सरकार डिजिटल होने पर ज्यादा ध्यान दे रही है, लगातार फोकस कर रही है कि हर एक चीज पर डिजिटल तरीके से काम होना चाहिए, आपको इससे कितना फायदा और आपने अब तक कितना इसे अपनाया है?
0: सर, डिजिटल एक आज के आधुनिक जमाना में बहुत ही अच्छा है, हम बैठे बैठे अपने कार्य को जिला का हुआ चाहे राज्य, हम अपने बैठे बैठे अपने आम जनता को फैसिलिटी दे सकते हैं
1: जी,
0: चाहे जिसे का महिला KYC वगैरह कराते हैं, चाहे और बैंक जाना पड़ता है, बैंक वाला जितना काम धाम होता है उसको हम लोग अपने पंचायत में बैठ के उसका काम को निपटा सकते हैं। और हमारे यहाँ भी आने वाला समय में उसको प्रस्ताव मैंने भेज चुका है कि अटल डिजिटल सेवा केंद्र का स्थापना होने वाला है, मतलब का उसके लिए मकान बनने वाला है।
1: तो सरपंच जी, सरकारी योजनाओं का लाभ आपके गांव के हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए कोई खास व्यवस्था की आपने?
0: जिन्होंने मतलब के जागरूक नहीं तो उसको मैंने उनको जगाया, ग्राम सभा में बुला के सब भाइयों को आप लोगों का क्या कमी है, सरकार के एक एक जो भी योजना है उसको सारा योजना का लाभ मैंने उनको बताया कि इस योजना में ये चीज करना है, उस योजना में जो भी लाभ है उस योजना को लाभ आप लोग लीजिए, शासन आपको दे रहा है, उस योजना को कभी भी इधर उधर मत कीजिए, उसका फायदा उठाए, उसका लाभ उठाए।
1: भगत जी, अब आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं या लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई, या दोनों चीजें बढ़ गई हैं?
0: सर, राष्ट्रीय स्तर से मेरे को पुरस्कार मिला है तो मेरा भी जिम्मेदारी बनता है और जनता का भी जिम्मेदारी बनता है और शासन का भी जिम्मेदारी बनता है। जो मेरा जब मैं कुछ मेरा जिस लेवल तक नहीं पहुंचा उस लेवल तक मेरे को भी पहुंचना है और जनता को भी पहुंचना है, पर शासन प्रशासन को भी ध्यान देना है कि मेरा कहीं कमी बेसी है उसमें फोकस ज्यादा दे तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊँ।
1: आपने एक ऐसा काम किया है जो मतलब देश की अन्य पंचायतों के लिए एक तरह से आदर्श बन सकता है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे देश की जो अन्य पंचायतें हैं उनके लिए भी अपना संदेश दें कि आप भी इस तरह से काम कर सकते हैं।
0: मैं तो पूरा भारत के सभी पंचायत चाहे देशवासियों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि अपने भी पंचायत के बारे में जन प्रतिनिधि हैं या जनता आपको वहां तक पहुंचाया है तो गांव का समस्या के बारे में उन लोग भी सोचे जैसे मैंने सोचा, उनको और मेरे से बेहतर सोचना चाहिए और उनको भी ऐसा करना चाहिए।
1: तो भगत जी, आपने तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, काफी बातें हुई आपसे, तो हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार सर।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरडी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।

आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 एफएम पर। समय मिला ये 5:25 हुए हैं। अब भजन संध्या जो कि हमने बीच में विराम कर दिया था उसको सुचारू करते हैं लकीर सिंह लखा की आवाज में इस भजन के साथ। काम होगा वही जिसे राम जी चाहेंगे।

0: आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। समय मिलाइए शाम के 5:30 और 22 सेकंड हुए हैं। डीजे अब लेकर हाजिर हैं हेलो बरेली।
1: श्रोताओं, प्रोग्राम हेलो बरेली में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 0581 2517 200। देखते हैं कि हमारे आज के पहले खुशनसीब कॉलर कौन हैं। हेलो।
2: हाँ जी सर, नमस्कार सर।
1: नमस्कार, प्रोग्राम हेलो बरेली में आपका स्वागत है। कौन साहब बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
2: सर जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। सर
1: क्या बात है, कैसा मौसम है इस वक्त उज्जैन में?
2: बिल्कुल सर जी, मौसम तो बिल्कुल स्वस्थ और मस्त बना हुआ है। बिल्कुल कल सुबह थोड़ी हल्की बारिश हुई थी, उससे थोड़ा मौसम सुहाना हो गया है, थोड़ा गर्मी से राहत मिली है।
1: क्या बात है।
2: और उम्मीद लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश भी होगी।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि 15 जून से बारिश का आगाज हो जाता है, लेकिन
2: जी सर
1: ये तो मौसम है साहब।
2: जी सर, और ये सब बारिश का जो मौसम अब आने वाला है, इसके समय में आप अधिक से अधिक पौधे लगाएं और पेड़ लगाएं, जो भी आपके आसपास गार्डन हो, घर के आसपास जो बगीचा रहता है
1: जी,
2: उसकी देखरेख भी करें, ताकि आने वाले भविष्य में जो ये ग्लोबल वार्मिंग का जो परिवर्तन आ रहा है, इससे निपटा जा सके, इससे लड़ा जा सके।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही। और कल विश्व पर्यावरण दिवस भी था।
2: हाँ, 5 जून को हमने विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया है सर जी। और सभी देशवासियों को इसमें सहयोग भी करना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा भारत देश है, इसमें सभी मिलजुल कर इस पर्यावरण के जो आने वाला जो भविष्य है आने वाली पीढ़ियों के लिए, उससे लड़ना है। क्योंकि धीरे धीरे ये ओजोन परत है, ये जो प्रदूषण हो रहा है
1: जी,
2: इससे ओजोन परत को भी काफी नुकसान हो रहा है। उसके कारण ही ये गर्मी दिन प्रतिदिन का तापमान जो 40-45 के लगभग बढ़ता जा रहा है। पुराने दौर में आज से 20 साल आप पीछे जाएंगे तो इतना तापमान कभी हुआ नहीं था, करीब 35-40 तक ही रहता था, उससे ज्यादा कभी देखा ही नहीं हमने भविष्य में।
1: जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। कहीं ना कहीं जो आज मौसम परिवर्तित हो रहे हैं, तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि प्रकृति के साथ जब भी हमने खिलवाड़ किया है तो उसका खामियाजा इसी तरीके से हमें भुगतने को मिला है। तो
2: जी,
1: हर किसी व्यक्ति को ये चाहिए कि वे पेड़ पौधे लगाए और पर्यावरण प्रदूषण जो है उसको रोकने में अपना योगदान दे। जी बहुत खूबसूरत संदेश आपने दिया लोकेंद्र वर्मा जी। कौन सा गीत सुनेंगे आज आप इस प्रोग्राम के बाद?
2: सर ये गुलामी फिल्म का गीत है, पुराना गीत है, इसमें एक गाना है लता मंगेशकर जी की आवाज में है, मेरे पी को पवन किस गली ले चले। ऐसा गीत
1: सुनवाते हैं।
2: धन्यवाद, बहुत बहुत।

0: बरेली
1: हेलो बरेली
0: जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी। नमस्कार सर
0: नमस्कार।
1: जी, मैं जिला बरेली थाना अमीरगंज ग्राम रसूलपुर हमबारे के पास से अल्ताफ हुसैन अंसारी बात कर रहा हूँ।
0: बहुत स्वागत आपका प्रोग्राम हेलो बरेली में। कैसे हैं आप?
1: बस एकदम ठीक है। आप कैसे हैं? आकाशवाणी परिवार के लोग कैसे हैं?
0: सब अच्छे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे। आपके यहाँ इस
1: जी
0: वक्त मौसम कैसा है?
1: बस आज तो बहुत अच्छा है, धूप खिली हुई है। कल सिर्फ बादल था, कल मौसम बारिश का हो रहा था, आज तो बहुत अच्छा मौसम है, तेज धूप है, हवाएं भी चल रही हैं।
0: जी, कौन सा गीत सुनेंगे आज आप हेलो बरेली के माध्यम से?
1: जी आज मैं हेलो बरेली में हम मूवी फिल्म का गाना सुनूंगा, कागज कलम दबा दला लिख दूं दिल तेरे नाम करूं।
0: सुनवाते हैं आपको ये।

0: हेलो बरेली
1: हेलो बरेली।
0: जी, प्रोग्राम में आपका फोन लग गया। कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ सर। बढ़िया
0: कैसे हैं सुनील जी?
1: एकदम। आप लोग कैसे हैं?
0: सब बढ़िया। क्या करते हैं सुनील कुमार जी आप?
1: बस सर घर पे रहते, प्रोग्राम सुनते हो गया सर जी का, इसलिए।
0: अच्छा, कैसे लगते हैं आपको हमारे केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम?
1: सभी कार्यक्रम बढ़िया हैं। बस सर एक काम हो जाए, सुबह 7:30 बजे सदाबहार शुरू हो जाए
0: जी।
1: और आपके प्रोग्राम शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा रहे
0: जी बिल्कुल, हम उच्च अधिकारियों तक आपकी बात को पहुंचा देंगे और कोशिश रहेगी कि आपकी सुनवाई की जाए। कल विश्व पर्यावरण दिवस था, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर हमारे श्रोताओं को?
1: पर्यावरण दिवस पर यही श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि अगर हम आप 2 से 3 किलोमीटर जा रहे हैं तो साइकिल का यूज करें, मोटरसाइकिल या स्कूटी का बिल्कुल यूज ना करें, और पेड़ लगाएं और पेड़ को संरक्षण भी दें, मतलब उसको देखें, पानी लगाएं और ऐसा पेड़ लगाएं जो ऑक्सीजन बढ़ाए।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही कि कोशिश करें कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और ऐसे पेड़ होना चाहिए जिससे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती हो, है ना?
1: जैसे बरगद है, पीपल है, नीम है, ऐसे पेड़ होना चाहिए और उसकी सिंचाई भी करें
0: और साथ साथ उसकी पूरी देखभाल करें जब तक वो पौधे से वृक्ष ना बन जाए, है ना? क्योंकि देखभाल कहते नहीं है कि एक जो पौधा होता है जमीन को फाड़ कर जब निकलता है तो वो एक पौधे का रूप लेता है और वो छोटे बच्चे की तरह होता है। उसको अगर हम उसकी देखभाल करते हैं, उसको संरक्षित करते हैं तो आगे चलकर वो हमें छांव भी देता है, फल भी देता है, फूल भी देता है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल सर
0: जी, बहुत धन्यवाद आपका। कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: रंग फिल्म का कोई सा भी सुना देना सर।
0: सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: हेलो बरेली
1: जी सर नमस्ते।
0: नमस्कार, कौन श्रोता बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी प्रेम से सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: क्या बात है, बड़ी दूर से आपने फोन किया है, बड़ा
1: जी हाँ,
0: मशक्कत
1: माँ
0: करना पड़ी
1: सरिता
0: होगी।
1: बाबा की नगरी में आपका स्वागत है।
0: जी बिल्कुल, आपका भी हमारा बरेली शहर में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच सर। मोबाइल ऐप पे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं आपके।
0: मोबाइल ऐप पर आपको हमारे प्रोग्राम बिल्कुल साफ सुनाई देते हैं?
1: हाँ जी बिल्कुल, स्पष्ट रूप से प्रसारण आता है आपके, बड़ी अच्छी आवाज में मतलब कार्यक्रम सुनने को मिलते हैं।
0: कौन कौन से प्रोग्राम?

0: हम हमारे आकाशवाणी केंद्र के आप सुनते हैं
1: जी, जैसे कि एक तो ये फोन इन प्रोग्राम हुआ, इसके अलावा जो दिन में आता ना 4 बजे,
0: जी,
1: उसमें मतलब विषय के बारे में बातचीत होती है।
0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ।
1: हाँ, आपकी बात आकाशवाणी के साथ, उसमें विषय भी बताते हैं, वो विषय के बारे में हमें बातें करनी होती है, वो बड़ी जानकारी अच्छी सी मिलती है उस कार्यक्रम से, जो हमें वो कार्यक्रम भी सुनता हूँ मैं।
0: और इसके अलावा
1: इसके अलावा ज्यादातर मैं फोन इन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता हूँ, और आपको बताऊँ मैं कम से कम 30 आकाशवाणी से जुड़ता हूँ,
0: जी
1: और मैंने एक रजिस्टर भी बना रखा है अपना, जिस भी आकाशवाणी में मेरा कॉल रिकॉर्ड होता है या लाइव फोन इन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता हूँ तो उसको मतलब मैं देख के रखता हूँ। अभी 1 जनवरी 2026 से मैंने ये स्टार्ट किया है, तो अभी मेरे 650 कॉल हो चुके हैं।
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात है आपकी मेमोरी के लिए, और हम तो यही चाहेंगे कि आप हमारे केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम सुनते रहें और साथ साथ आप अपनी प्रतिक्रियाएं भी हमें दें, खत के
1: जी
0: माध्यम
1: बिल्कुल,
0: से या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं, है ना?
1: तो मैं खेती किसानी का काम करता हूँ, उसके साथ में मोबाइल के द्वारा जब कार्यक्रम सुनता हूँ ना, जब खेत में जाते हैं काम करने के लिए और जो मोबाइल पे प्रसारण मिलता है तो मतलब हम भी सुनते हैं, और साथ में जब मजदूर हमारे काम करते हैं ना वो
0: जी
1: लोग भी सुनते हैं।
0: चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कौन सा गीत सुनेंगे आज आप प्रेम सिंह सिसोदिया जी?
1: जी, फिल्म का नाम रहेगा बोल रहा था बोल, इसका टाइटल सुनना चाहूंगा सर।
0: सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: हेलो बरेली,
1: हाँ हेलो बरेली,
0: कौन श्रोता बोल रहे हैं हमारे?
1: मैं मोहल्ला तलैया उड़ोला जागीर से फरीदी भाई बात कर रहा था।
0: फजलुद्दीन भाई, आपका बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, और आप हमारे प्रोग्रामों के बहुत पुराने श्रोता हैं, है ना?
1: जी,
0: रंग बिरंगे खत टीकी लगे हुए हमारे केंद्र पर भेजते हैं आप। कैसे लगते हैं आपको हमारे केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम?
1: आप आपके प्रोग्राम तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। अब तो और 1 घंटे का ये टाइम बढ़िया है, इसमें और ज्यादा मजा आ रहा है कि पहले लेटर आते शामिल, अब तो बहुत सभी लोगों शामिल हो रहे हैं, सब बहुत बहुत दूर से लेटर आ रहे हैं और आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है साहब।
0: चलिए साहब, ये आपकी जरूर नवाजी है कि आपको हमारे केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, और हम तो यही कोशिश करेंगे कि आप हमारे केंद्र से इसी तरह जुड़े रहें और
1: जी जुड़े
0: अपनी
1: हुए हैं, जुड़े रहेंगे। जी
0: जी जी बिल्कुल जुड़े रहिए, और साथ साथ अपनी प्रतिक्रियाएं भी हम तक पहुंचाते रहिए।
1: जी जी एक तो बात, जहाँ हम पढ़े हुए नहीं ना अखबार में लिख के भेजे, मजबूर तो यही पढ़े हुए ना हुए।
0: चलिए कोई बात नहीं, कौन सा गीत सुनेंगे आज आप इस प्रोग्राम के माध्यम से?
1: आन फिल्म का कोई सा भी गीत सुनवा दीजिए।
0: सुनवाते हैं फजरुद्दीन भाई, आप
1: और तो नाम बोलना चाहता हूँ, नरियावल से चौपाई नंबर अंधारी और नाजमा अंधारी
0: सुनवाते हैं आपको ये?

0: हेलो श्रोताओं, ये था आज का हमारा फोन इन कार्यक्रम हेलो बरेली। आपको कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर पहुंचाइएगा। हमारा पता है, कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बरेली, पिन कोड है 243001। और इसी के साथ मुझे यानी परवेश को दीजिए प्रोग्राम हेलो बरेली से इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे हेलो बरेली। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। शाम के 6 बजे हैं और इसी समय के साथ आविदा स्टूडियो में

हेलो हाय गुड इवनिंग नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपना खूब खूब ख्याल भी रख रहे होंगे। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त, आपकी रेडियो हम सफर आबिदा फातिमा लेकर आ चुकी हूँ आपका और मेरा फेवरेट प्रोग्राम युववाणी, जिसमें हम करते हैं आपसे ढेर सारी गुफ्तगू और सुनवाते हैं कुछ खूबसूरत नगमे भी। तो नगमों की अगर बात आ ही गई है तो आइए क्यों ना अपने प्रोग्राम की शुरुआत इस खूबसूरत से नगमे के साथ कर दें। एंजॉय कीजिए।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आप बने हुए अपने दोस्त एंड होस्ट साबिदा फातिमा के साथ और सुन रहे हैं प्रोग्राम युववाणी। और आज हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं वो है असम के महान स्वतंत्रता सेनानी, दूरदर्शी नेता और भारत रत्न से सम्मानित गोपीनाथ, जिन्हें प्यार और सम्मान से लोकप्रिय गोपीनाथ कहा जाता है। 6 जून यानी कि आज ही को दिन 1890 को असम के नगांव जिले में जन्मे गोपीनाथ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा असम में प्राप्त की और बाद में कानून की पढ़ाई भी की। वो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने कई आंदोलनों में भाग लिया और इसके लिए उन्हें लड़ाई करके जेल भी जाना पड़ा। गोपीनाथ का सबसे बड़ा जो योगदान था वो था असम और पूर्वोत्तर भारत के हितों की रक्षा करना। देश के विभाजन के समय उन्होंने ऐसे प्रयास किए जिनसे असम भारत का अभिन्न हिस्सा बना रहे। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने न केवल असम बल्कि पूरे क्षेत्र के भविष्य को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के बाद वे असम के पहले मुख्यमंत्री बने। उन्होंने शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और जन कल्याण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा और उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए भी उन्होंने विशेष प्रयास किए और उनकी यही ईमानदारी, सादगी और जनता के प्रति समर्पण के कारण लोग उन्हें लोकप्रिय कहकर पुकारने लगे। आज भी असम में उनका नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। सदियों देश के प्रति उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1999 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। 5 अगस्त 1950 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी जो विरासत है वो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। लोकप्रिय केवल एक नेता नहीं थे बल्कि वो राष्ट्र निर्माण की उस सोच का प्रतीक थे जिसने भारत की एक तौर विविधता को मजबूत किया। फिलहाल ये जानकारी रही महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में और अब एंजॉय कीजिए इस सॉन्ग को।

0: है द टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आप बने हुए अपने दोस्त एंड होस्ट आबिदा फातिमा के साथ और सुन रहे हैं प्रोग्राम युववाणी। और साथियों, अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो, तो हमारा मन जो होता है वो सबसे पहले डांस करने लगता है। और ऐसे ही अगर हम कहीं मतलब बहुत ज़्यादा खुश हों या कहीं जा रहे हों तो भी सॉन्ग सुनने को मन करने लगता है। लेकिन एक जो डांस वाले सॉन्ग होते हैं ना, तो एक मस्ती, ये अलग ही इसमें मज़ा आता है। तो अगर आप भी इस मस्ती को, इसको एंजॉय करना चाहते हैं मोमेंट को, तो जल्दी से आप 100.4 FM लगाइए और हमारा प्रोग्राम युववाणी चल रहा है उसे सुनिए, क्योंकि अब हमारा सेगमेंट डांस बरेली डांस शुरू हो रहा है। तो आइए डांस बरेली डांस सेगमेंट में सुनते हैं ये डांस वाला सॉन्ग।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में, और आप बने हुए अपने दोस्त एंड होस्ट आबिदा फातिमा के साथ। और सेगमेंट चल रहा है डांस बरेली डांस। तो आइए डांस बरेली डांस में सुनते हैं ये डांस वाला एक और सॉन्ग।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: सदियों इस मौसम में प्यास लगने का इंतजार मत करिए। हर आधे घंटे में पानी पीते रहिए। और हाँ, सिर्फ सादा पानी बोरिंग अगर लगता है तो घर में नींबू पानी, छाछ, लस्सी या ORS का घोल बनाकर रखिए। ये आपके दिमाग को ठंडा रखेगा और सिर दर्द को भी छू मंतर कर देगा। फिलहाल इन दिनों हैवी और तला भुना जो भोजन है उसे खाने से बचिए, क्योंकि वो पेट में जाकर और गर्मी पैदा करता है। अपनी डाइट में खीरा, ककड़ी, तरबूज और खरबूजा शामिल करिए। इसमें पानी बहुत ज्यादा होता है जो बॉडी को अंदर से एयर कंडीशनर जैसा फील देता है। फिलहाल अभी हम आपको एक और सॉन्ग सुनवा के बहुत अच्छा सा फील देने वाले हैं, सुनिए।

साथी हूँ मुसाफिर तो जाने वाले हैं क्योंकि उन्हें फिर से वापस आना है। फिलहाल आज का हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा अपने प्यारे प्यारे पत्रों के माध्यम से। हमारा बताइए वाणी विभाग द्वारा के निदेशक आकाशवाणी बरेली, हमारा पिन कोड नंबर है 243001। और अब दीजिए अपनी दोस्त आबिदा फातिमा को इजाजत, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। समय मिला ये श्रोताओं, शाम के 6:30 और 15 सेकंड हुए हैं और ये समय हाजिर है लेकर कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: कार्यक्रम किसानवाणी सुन रहे सभी किसान भैया और बहनों, आप सभी को आपके भैया धारा
2: और आपके भैया हरदेवलाल वर्मा की ओर से राम राम।
1: स्वागत करते हैं भैया बहनों हम आप सभी का आपके पसंद का कार्यक्रम किसान वाणी में। भैया बहनों आज दिन है शनिवार को और आज के दिन आप लोग इंतजार करते हो कि हम लोग आपके गांव पहुंचेंगे आकाशवाणी आपके गांव कार्यक्रम के लिए। तो आज भी हम आपके गांव में पहुंचेंगे। लेकिन हरदौरीलाल भैया ये तो बताओ कि हमारे कार्यक्रम की जो एक परंपरा पड़ी हुई है कि हम सबसे पहले जो सवाल पूछते हैं, तो आज का सवाल अपने किसान भैया बहनों से क्या पूछ रहे हैं आप?
2: अरे भैया बिल्कुल नेकी और पूछ। आज को जो सवाल है, धान की रोपाई वाली नर्सरी कितने दिनों के बाद खेत में उसकी गड़ाई कर देना चाहिए?
1: जी हाँ, तो इस सवाल का जवाब हम आपको कार्यक्रम समाप्ति से पहले जरूर बताएंगे। फिलहाल देखिए समय ये हुआ है कि हम आपके गांव की रुख करें और आप लोगों से बातचीत करें कि कैसी आपकी खेतीबाड़ी है, किस तरीके से आप अपने खेतों में फसलें कर रहे हैं, कैसे पशुपालन कर रहे हैं, ये जानकारी जुटाने के लिए हम आपके गांव पहुंच रहे हैं।

0: साथियों, आकाशवाणी बरेली की स्टूडियो से निकलकर हम पहुंचे हैं मीरगंज, और मीरगंज से हमने रुक किया है ग्राम गुला, विकास खंड मीरगंज, तहसील मीरगंज, जनपद बरेली के गांव पहुंचे। और हम इस गांव में जब पहुंचे, चारों तरफ हरियाली, लोगों ने अधिक से अधिक पेड़ लगा रखे हैं और पर्यावरण को पूरा संरक्षित करने में अपनी गाथा लिख रहे हैं। हम जब पहुंचे तो तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं, तो सब भैयों को हमारी ओर से राम राम। एक साथी बैठे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है?
1: राजेश चौहान।
0: राजेश चौहान जी, ये बताइए कि आपकी उम्र क्या होगी?
1: 42।
0: अच्छा, हम आज आपसे बात करेंगे, जो हमारे भाई अंधाधुंध खादों का प्रयोग कर रहे हैं और रासायनिक खाद लगा रहे हैं, बिना मिट्टी की जांच कराए अनाप शनाप खेतों में पेले पड़े, तो ये बताइए, खेत हमारे जो बंजर होते जा रहे हैं और जो उत्पादन हम सोचते हैं हमारी फसल से मिले, वो नहीं मिल पा रहा है, आप क्या मानते हैं?
1: देखिए, इसका जो मुख्य कारण है, देखो, प्राचीन काल में जब हमारे यहाँ परंपरागत जो कृषि होती थी, उसको जब हरित क्रांति 1966-67 में मतलब इंडिया में आई, तो तब से रासायनिक खादों का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ने लगा। और आज आधुनिक युग में रासायनिक खादों का यूज़ किसान इतना अधिक कर रहा है कि अधिकतर भूमि जो है बंजर हो चुकी है। तो इसी उद्देश्य को देखते हुए कि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, मानव स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहे, इसी की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी जो योजनाएं चलाई हैं कि खेती बचाओ, उसी के उद्देश्य यही है कि हमारी खेती भी सुरक्षित रहे और मानव का स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहे। ये मुख्य कारण है कि वो अधिक से अधिक यूज़ करता है, उससे थोड़ा बचा जाए। भारत सरकार द्वारा एक जो प्राकृतिक खेती का जो कार्यक्रम है और जो जैविक खेती के कार्यक्रम है, वो चलाए गए हैं। तो मुख्य कारण यही है कि किसान जागरूक नहीं है, जिस वजह से वो अधिक से अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहा है। और दूसरा मुख्य कारण प्रतिस्पर्धा, किसान आपस में बहुत प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिस वजह से वो देखता है कि मेरे पास वाला किसान इतना यूरिया डाल रहा है तो मैं इतना डालूंगा, तब मेरी फसल इतनी होगी। तो ये कारण है कि जिनकी वजह से किसान बहुत अधिक रासायनिक खादों का यूज़ कर रहे हैं और अपनी स्वास्थ्य और खेती का और हमारे पर्यावरण का स्वास्थ्य उससे बिगड़ा है।
0: जी, क्या हमारे किसान भाई मिट्टी की जांच कराएं तो उससे बंजर होने से उनकी भूमि बच सकती है?
1: जी बिल्कुल, ये सबसे पहला, जो किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले वो चेक करता है कि भाई क्या बीमारी है क्या, लेकिन ये किसान हमारे जो प्रगतिशील किसान होते हैं वो मिट्टी चेक करा लेते हैं,

0: लेकिन जो प्रगतिशील नहीं होते वो अंधाधुंध यूज़ करते हैं। लेकिन मिट्टी चेक कराने से हमें पता लग जाता है कि भाई हमारी मिट्टी में क्या नाइट्रोजन की, फास्फोरस, पोटास जो सूक्ष्म तत्व हैं, ये जो फिर माइक्रो तत्व हैं, जो हमारा कार्बन, जो मिट्टी का मुख्य जो बिंदु है वो कार्बन अंश है, वो कितना है। तो इसी के आधार पर फिर खेत में मतलब उर्वरक जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज़ है वो उसी लिमिट मात्रा में किया जाएगा, जिससे मतलब हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरता बनी रहे।
1: जी, तो किसान भाई रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं जैसा कि आपने बताया, क्या हमारे किसान भाइयों को इससे कोई और भी हानि हो सकती है? जैसे मान लीजिए लागत में की बात करें या समय की बात करें।
0: नहीं, रासायनिक उर्वरक को प्रयोग से तो किसान को हमेशा हानि होती है, क्योंकि आजकल मतलब जो भी केमिकल जो बाज़ार में उपलब्ध हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और किसान अगर यूज़ करेगा तो मिट्टी की भी अक्षमता होती है, वो बार बार अगर कम केमिकल यूज़ करेंगे और फिर बढ़ाते जाएंगे तो उसकी भी अक्षमता बढ़ती जाएगी। तो किसान अपनी जो प्रति हेक्टर है या प्रति बीघा जो भी है उसमें लागत अधिक आएगी, और उसका जो उत्पादन है, प्रोडक्शन, एक लिमिट के बाद फिर वो घटता जाएगा। तो रासायनिक जो प्रयोग है किसान जो करते हैं वो एक लिमिट के बाद में किसान को हानि होने की आशंका बहुत अधिक हो गई है। और इसके अलावा जो प्राकृतिक खेती है उसमें किसान जो रासायनिक उर्वरकों के मुकाबले बहुत कम उसे अपनी लागत करनी होगी, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो मतलब गायें, देसी गायें, उस पर आधारित जो प्राकृतिक खेती है उसमें गौमूत्र से जो उत्पाद बनते हैं, जैसे बीजामर्त, जीवामर्त, घन जीवामर्त, इस तरह के उत्पाद मतलब मिट्टी में अपनी जो ये रासायनिक उर्वरकों से बिगड़ी जो व्यवस्था है इसको सुधार करने के लिए ये यूज़ किए जाएंगे, जिससे हमारी मिट्टी की जो स्वास्थ्य है वो सही रहे।
1: जिस प्रकार से आपने बंजर होने के बारे में विस्तार से बताया, वहीं हमारे किसान भाइयों के पैसे की फिजूल बर्बादी होती है और समय की भी बर्बादी होती है। तो हमारे किसान भाई अधिक से अधिक देसी खाद का प्रयोग करें, मिट्टी की जांच कराएं, हरी खादों का प्रयोग करें ताकि उनकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे। आपने राजेश चौहान जी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों के बीच में एक बैठी है महिला, उनसे आइए पूछते हैं। जी, आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम है राजकुमारी चौहान।
1: जी, आपकी उम्र की बात करें तो क्या उम्र होगी आपकी?
2: मेरी उम्र 75 साल की है।
1: 75 साल आपकी उम्र? लेकिन सेहत का क्या राज है?
2: सेहत का राज है अपने घर में घी दूध मठा खाना
1: जी,
2: और अपनी भूमि को अपने हिसाब से रखना।
1: अच्छा, तो ये सेहत का राज है। अच्छा, ये बताइए कि मिट्टी बचाओ, खेत बचाओ, जल बचाओ, इन तमाम चीज़ों को लेके हम बात कर रहे हैं, खेती बचाओ, इसमें महिलाओं की कितनी भूमिका है, कितनी सहभागिता है?
2: इसमें महिलाओं की कम से कम आप समझ लीजिए कि 50% से ज़्यादा भागीदारी है,
1: जी,
2: क्योंकि मिट्टी के साथ महिलाएं शुरू से लेकर और अब तक
1: जी,
2: उनके साथ जुड़ी रहती हैं। अब आप पूछेंगे कैसे जुड़ी रहती हैं,
1: बताइए।
2: तो देखिए, पहले हम लोग चूल्हों के साथ मिट्टी से ही चूल्हे बनाते थे, नदी या नालों के बीच में जाते थे तो मिट्टी को हटाकर पानी को इकट्ठा करते थे, तालाब में जाते थे तब मतलब मिट्टी के साथ। कहने का मतलब है कि मिट्टी, माटी ही हमारे देश और महिला की शान है,
1: जी,
2: क्योंकि बिना माटी के कोई भी आदमी आगे बढ़ नहीं सकता।
1: क्या बात है।
2: और माटी से जो प्रेम करते हैं, देश प्रेम, वो माटी ही उनके लिए सर्वोच्च है, क्योंकि माटी में आएंगे माटी में मिल जाएंगे।
1: बिल्कुल।
2: तो इसलिए अगर महिलाएं चाहें तो मिट्टी का भी काफी लगाव कर सकती हैं। कहो कैसे कर सकती हैं? जैसे मान लीजिए आजकल हमारी भूमि बंजर क्यों हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है? जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, मैं ये सोचती हूँ कि हमने जो अपने गाय भैंस से दूरी बना ली है
1: जी,
2: और जो हमने जैविकीय जो हमारे पास पहले गोबर की खाद थी उससे भी दूरी बनाई है, उससे उसके साथ अगर हम लोग लग जाते तो मिट्टी की जो गुणवत्ता थी इतनी कम नहीं होती। अब हमारी भूमि बंजर भूमि हो रही है। बंजर भूमि का मतलब जिसमें कोई चीज़ ऐसी पैदा होती ही नहीं है जो हम चाह रहे हैं। आप ये देखिए, प्रकृति के गोद में जब हम पहाड़ों पे जाते हैं वहाँ की मिट्टी कैसी होती है, उसमें तो किसी प्रकार का कुछ डाला नहीं जाता है, लेकिन वहाँ पेड़ सुरक्षित होते हैं
1: जी।
2: और वो पत्थरों पे पेड़ लगते हैं, वहाँ

0: में मतलब फूल भी आते हैं, वहाँ पे नदियों के साथ उनका संपर्क भी होता है। जितने मतलब आप आर्टिफिशियल ज़िंदगी, मतलब हम अपने अपने को जितना आर्टिफिशियल ज़िंदगी के साथ जिएंगे, उतना ही हम अपनी मिट्टी से दूर हो जाएंगे।
1: बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात कही। हम समझते हैं आपकी बात सुनकर हमारे भाई ज़रूर जहन में डालेंगे। वहीं बात करें हम राजकुमारी चौहान जी, दिन प्रतिदिन हमारे जो किसान भाई हैं अंधाधुंध रासायनिक खादों का जो प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है, तो इसके हमारे भाई मिट्टी बंजर ना हो, इसके लिए क्या करें हमारे भाई?
0: देखिए, पहले तो हर हर घर में जानवरों का स्थिति अच्छी होनी चाहिए, और विशेष रूप से हर घर में गाय होना ज़रूरी है
1: जी।
0: क्योंकि गाय किसे हम नहीं कहते, ये हमारे बहुत से प्राचीन काल से ही चला आया है कि गौ हमारी माता है। और जिस समय हम इस धरती पे कोई भी बच्चा जन्म लेता है, आजकल तो लोग हॉस्पिटल में हो रहे हैं, लेकिन 75 साल पहले नहीं, सबसे 75 साल पहले जैसे घरों में बच्चे पैदा होते थे तो गाय के गोबर से लीप कर उन बच्चों को उस पर लाया जाता था, और अगर किसी की मृत्यु भी होती है तब भी गाय के गोबर से लेकर उसको नीचे लिटाला जाता है। तो मिट्टी का और गोबर का संबंध बहुत पुराना है
1: जी जी।
0: तो आज अगर हम चाहें अपने को बचाने के लिए, तो हमें मिट्टी की गुणवत्ता के लिए गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, तब हम अपनी बंजर भूमि को बचा सकते हैं
1: जी जी।
0: अन्यथा हम अभी कम दुखी हैं, लेकिन आगे भविष्य में हमारी जनरेशन, मतलब जो कहना चाहिए कि जो हमारी विरासत है, वो इससे ज़्यादा परेशान होगी। अब आप देखिए, प्रकृति का प्रकोप जो बढ़ रहा है, उसमें हम और आप ही भागीदार हैं। पेड़ों को काटना
1: जी जी,
0: जब हम पेड़ों को काटते हैं नदियों में, मतलब हमने अपने अपने स्वार्थ के लिए फैक्ट्रियों का जल नदियों के साथ कर दिया
1: जी जी।
0: हालांकि सरकार उसके लिए बहुत, लेकिन सरकार जिम्मेदार नहीं है, सरकार को चलाने वाली जनता होती है, और जनता अगर जिस बात को समझ ले तो वो आगे बढ़कर सरकार का हाथ तो वो बटा सकती है
1: जी जी।
0: लेकिन सरकार से ये उम्मीद रखे वो सब कुछ करे, तो ये तो असंभव है।
1: जैसे आपने बताया कि जो नदियां सीमित होती जा रही हैं, पेड़ों का कटान होता जा रहा है, तो इससे क्या बंजर भूमि से क्या मतलब है?
0: देखिए, बंजर भूमि से ये कि कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो नीचे से पानी को खींचते हैं
1: जी,
0: और हमारी जैसे मान लीजिए कुछ पेड़ ऐसे हैं, जैसे आपका सबसे ज्यादा बट, जैसे आपका पीपल, इस प्रकार के जो पेड़ हैं वो नीचे से शक्ति को पानी की खींचते हैं और वातावरण को और अच्छा बनाते हैं
1: जी जी।
0: लेकिन ये वातावरण जब कम हो जाता है, और हम लोगों ने अपने स्वार्थ बस, यानी स्वार्थ बस हमने आपने ही पेड़ों को काटा है, और जब पेड़ों को काटा है तो उन पेड़ों को काटने से हमारी जो अंदर की शक्ति थी वो कमज़ोर हुई। जब कमज़ोर हुई तो आप देखिए, आंधी पानी तूफान पहले भी आते थे, लेकिन पेड़ जड़ों से कम गिरा करते थे
1: जी जी।
0: अब तो ज़रा ज़रा से पेड़ लगाइए वो गिर जाते हैं। तो इसमें दोष किसका है? इसमें सबसे बड़ा दोष है हमारा, मानवता का। हम ये समझते नहीं है कि मिट्टी से प्यार करने वाले ही आगे जी सकते हैं
1: जी जी।
0: और जहाँ तक किसान का सवाल आप करते हैं, हालांकि बहुत सी सरकार ने योजना चलाई हैं और आगे भी चलाने की बात है, लेकिन कानून कितना भी अच्छा हो, अगर उस पर अमल ना किया जाए तो वो कानून केवल किताबों में लिख कर रह जाता है
1: जी जी। अच्छा, एक बात हमारे जहन में और आ रही है,
0: हाँ।
1: खेत बचाओ या पर्यावरण बचाओ या जल बचाओ, खास तौर पर जो महिलाएं हैं वो कैसे सजग होंगी?
0: देखिए, जहाँ खेती का सवाल है उसमें महिलाएं शुरू से खेतों में काम करती हैं, और महिलाएं ही ज़्यादातर गुड़ाई नराई, जैसे मिर्च की तुड़ाई या जिससे भी संबंधित है उसमें महिलाएं हैं। अगर महिलाएं ही इस बात पर ध्यान दें कि हम सबसे ज़्यादा है जो हम अपनी खेती में जो कहना चाहिए कि यूरिया वगैरह लगाते हैं, उसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक खेत में जो लग रहा है एक कट्टा, तो दूसरा व्यक्ति उसको दो कट्टे लगाने की कोशिश करता है, जबकि ज़रूरत नहीं। इसके लिए हमको इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि भूमि में किस चीज़ की कमी है। जैसे कोई शरीर में कमी हो जाती है तो डॉक्टर हमें बता देता है कि आप में कैल्शियम की कमी है, आप में पोटेशियम की कमी है, आप में पानी की कमी है, तो उसी ढंग से वो दवाइयों का पोषण देते हैं। उसी प्रकार से हम मिट्टी को चयन करना चाहिए, और आजकल तो सरकार ने इतनी सुविधाएँ दे रखी हैं कि ब्लॉक के अंतर्गत ही कि मिट्टी को आप जाइए और उसको चेक कराइए, मतलब जाँच

0: आइए और उसमें जो कमी हो वो उसमें पूर्ति कर दीजिए और अपनी मिट्टी में जान डाल दीजिए। दूसरा कारण है कि अब सरकार ने, अब सखियां तो बहुत हैं पर कृषि सखी को भी सरकार ने चयनित कर दिया है। तो कृषि सखी का मतलब है कि वो सखी जो घर घर में महिलाओं को जाके, ऐसा नहीं कि महिलाओं को समझाएं, वो किसान को भी जाके समझाती है, लेकिन महिलाओं के बीच में महिलाएं बैठकर बात कर सकती हैं। ये कृषि सखी की सबसे बड़ी भूमिका होती है और इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें बहुत ट्रेनिंग दी जाती है और विशेष रूप से उन जो कृषि सखी हैं उनसे ये आवेदन करने से पहले ये उन्हें समझाया जाता है कि आपको केवल करना क्या है, आपको प्राकृतिक खेती में केवल गोबर की खाद को ही डालना है जिससे हमारी भूमि बंजर ना हो।
1: श्रीमती राजकुमारी चौहान जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, यहाँ पर हमने तमाम भाइयों से बातचीत की है और एक युवा हैं, एक उनके सर पर टोपी लगी हुई है, चश्मा पहने हुए हैं और दाढ़ी भी है उनकी और बड़ा मंद मंद मुस्कान है, इनकी मुस्कान बहुत अच्छी लग रही है हमें। आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी, आपका क्या नाम है?
2: मेरा नाम डॉक्टर सैयद मोहम्मद उवैस।
1: उवैस जी, ये बताइए पढ़ाई लिखाई कहाँ से की?
2: पढ़ाई लिखाई साहब मैंने धामपुर से BSc AG किया।
1: अच्छा।
2: उसके बाद मैंने नैनी इंस्टीट्यूट इलाहाबाद से MSc एग्रीकल्चर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में
1: अच्छा
2: कृषि पर स्नातक किया।
1: अच्छा, तो आपने पढ़ाई लिखाई तो अच्छी खासी कर रखी है, तो खेती बाड़ी में आप मन लगा के काम कर रहे हैं?
2: खेती पूरी मन लगा करते हैं और पूरी टेक्निकल तरीके से करते हैं।
1: अरे वाह, तो कैसा उत्पादन मिलता है?
2: उत्पादन साहब हमें बहुत बढ़िया मिलता है और यहाँ की जो फर्टिलिटी है उसको बचाने के लिए हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि जैसा कि हम लोग यूज़ करते हैं धरी खाद, ढैंचे की खाद और आपका साल में एक बार जो आपका गोबर की खाद होती है उसको ज़रूर डालना चाहिए।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है कि आप हरी खाद, देसी खाद ये डालते हैं, तो अच्छा मुनाफा मिलता होगा?
2: बहुत अच्छा मुनाफा मिलता है।
1: अच्छा।
2: और इससे हमारी जो कॉस्ट है DAP की जो कॉस्ट आ रही है, गवर्नमेंट को भी इसमें आपको सब्सिडी देना पड़ता है
1: जी,
2: उसके लिए भी हम चाहते हैं, दोनों तरफ से सरकार की भी फायदा है और किसान के लिए भी फायदा है कि वो कम से कम फर्टिलाइजर यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो हरी खाद है, गोबर की खाद है और हमारे केमिकल फर्टिलाइजर को ना यूज़ करते हुए जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स वगैरह हैं और जो हमारे कल्चर आते हैं जो गोबर की खाद में मिला के हम यूज़ करते हैं, वो कल्चर यूज़ कर जाए ताकि उससे कि हमें अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो।
1: जी जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये बताइए उवैस जी, जैसा कि आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, बहुत ही टेक्निकल तरीके से कर रहे हैं, तो अच्छा मुनाफा आप ले रहे हैं, इस समय हमारी आपकी बात को बहुत सारे किसान भाई सुन रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे?
2: उनके लिए हम ये कहना चाहेंगे, देखिए आगामी धान की रोपाई स्टार्ट होने वाली है और मानसून सत्र स्टार्ट होने वाला है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप धान की रोपाई हरी खाद ढैंचे को पलटने के बाद अगर आप धान की रोपाई करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा आपकी कम हो जाएगी
1: जी,
2: और उसमें आपका प्रोडक्शन भी लगभग 20% बढ़ जाएगा और एक तरीके से आपकी जो मृदा में जो फिक्सेशन हो रहा है, जो केमिकल फर्टिलाइजर से सॉइल की फर्टिलिटी गड़बड़ हो रही है, जो उसका ह्रास हो रहा है, वो उसको बचाने के लिए हम लोग ये हमने तो प्रण ले रखा है, आप लोग प्रण लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हरी खाद और गोबर की खाद और फसल चक्र अपनाइए।
1: अच्छा अच्छा, ये बताइए कि हमारे किसान भाइयों को कोई फसल लेने से पहले क्या मिट्टी की जांच कराना जरूरी?
2: बिल्कुल जांच कराना चाहिए। जैसे कि हम लोग बीमार होते हैं, किसी को टाइफाइड बुखार आ गया तो डॉक्टर पहले बोलता है भाई आप ब्लड की जांच सैंपल कराइए, ब्लड की जांच कराइए, तो इसीलिए मिट्टी की जांच, खेती हम करेंगे तो बेस हमारा मिट्टी है
1: जी,
2: मिट्टी की जांच कराएंगे तभी हम खेती सही कर पाएंगे उसकी।
1: इससे हमारे किसान भाइयों को जैसे उर्वरा शक्ति या खेत बचाओ में कितना लाभ मिलेगा?
2: आने वाला टाइम जो है फर्टिलाइजर सब्सिडी गवर्नमेंट बंद करने वाली है, आपको सिर्फ उतना ही फर्टिलाइजर मिलेगा जितना कि हमारा सॉइल टेस्टिंग कार्ड बता रहा है
1: जी,
2: बाकी आपको फर्टिलाइजर फुल रेट में लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देगी।
1: अच्छा, हमारे जो मिट्टी बचाओ, उर्वरा शक्ति बचाओ, खेत बचाओ के तहत ये प्राकृतिक खेती आखिर है क्या और हमारे भाई करना चाहें तो कैसे करेंगे?
2: देखिए प्राकृतिक खेती का ये है, अभी गवर्नमेंट की स्कीम भी चल रही है, प्राकृतिक खेती योजना चल रही है जो
1: जी,
2: जो कि ज़्यादातर अभी जो भी नदी के किनारे पे खेत हैं, नदी के आसपास
1: जी,
2: गंगा नदी के आसपास जो खेत वो सेलेक्ट किए गए हैं, तो उसमें हम लोग तो गोले में आते हैं तो हमारा भी खेत इधर है थोड़ा सा, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसमें प्राकृतिक खेती का बेस है वो पूर्णतः प्राकृतिक तरीके से है, जैसे कि गोबर की खाद, गाय से बना हुआ गोबर उसका जो बनता है गौमूत्र से बनता है, प्रोडक्ट बनते हैं वो यूज़ करें हम, फर्टिलाइज़र बिल्कुल उसमें नाम मात्र को दिए जाते हैं
1: जी,
2: और बाकी जितना भी हम चाहें तो ज़्यादा हमें चाहना है कि हमें केमिकल या फर्टिलाइज़र, वो दूर रहना है उनसे, और प्राकृतिक तरीके से

0: भी चीज़ प्राप्त हुई, हरी खाद है, गोबर की खाद है, गौमूत्र है, गौ से आधारित जो खेती है उसको प्राकृतिक खेती के रूप में देखा जाता है।
1: जी जी, सरकार इस ओर प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ावा दे रही है, तो क्या सरकार से भी कुछ प्राकृतिक खेती करने के लिए मिलता है?
0: बिल्कुल मिलता है सरकार से। सरकार से आपको गौमूत्र वगैरह के बनाने के लिए भी पैसा मिलता है, लेकिन उसमें अभी समय समय पर योजनाएं चलती रहती हैं, उसका आपको जो जानकारी मिलेगी वो SDO ऑफिस मीरगंज से प्राप्त हो सकती है।
1: जी जी, जो भी है संबंधित हमारे जो किसान भाई हैं तो उनकी जहाँ भी निकटवर्ती कृषि प्रसार भवन है, कृषि केंद्र बने, वो वहाँ संपर्क
0: कर सकते।
1: अच्छा अच्छा, मोहम्मद ओवैस जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, एक और साथी बैठे हैं, उनका नाम है श्यामवीर सिंह जी और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, आइए उनसे पूछते हैं। ये बताइए श्यामवीर जी, खेत बचाओ अभियान ये आखिर है क्या?
2: खेत बचाओ अभियान ऐसा है कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारा खेत बंजर होते जा रहे हैं।
1: जी जी,
2: और रासायनिक उर्वरक हो गए, कीटनाशक हो गया, इनकी मतलब कोई एक अनुपात नहीं है, इतनी अधिकता होती जा रही है कि जो है खेत हमारे बंजर हो रहे हैं, और इसीलिए एक अभियान चलाया जा रहा है कि खेत बचाओ अभियान, उनको उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए, उनको उर्वरक बनाने के लिए।
1: जी जी,
2: इसलिए
1: देख रहे हैं कि रासायनिक खादों का लोग अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, इसके पीछे किसका दोष मानेंगे आप?
2: इसमें दोष तो देखिए हम ही लोगों का है
1: जी,
2: क्योंकि हम जहाँ खाद लगनी चाहिए कोई एक अनुपात नहीं है, कोई एक निश्चित मात्रा नहीं है। अगर हमें ज़रूरत है जैसे कि 45 किलो लगनी चाहिए एक एकड़ में, वहाँ लगा रहे हैं हम जो ऐसा यूरिया के दो दो कट्टे, तीन कट्टे, तो उसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव हमारी ज़मीन को मिल रहा है, और उसका जो हमें या हमारी आने वाली पीढ़ी को उसको भोगना पड़ेगा कि ज़मीन बंजर हो जाएगी तो हम उससे क्या उत्पादन लेंगे।
1: जी जी,
2: तो इसीलिए खेत बचाओ अभियान, अपनी ज़मीन को कैसे बचा सकते हैं।
1: जैसे कि आपने बताया कि खेत तो बंजर होते जा रहे हैं, इसके लिए हमारे किसान भाई क्या करें जो बंजर होने से भूमि को बचा सकें?
2: इसमें हम सबसे पहले तो अपनी ज़मीन को, उसमें कार्बनिक मात्रा जो होनी चाहिए वो घटती जा रही है, इस वजह से ही बंजर हो रहे हैं। तो उसमें हम जो है जैसे बर्मी कंपोस्ट हो गया, गोबर की खाद हो गई और कंपोस्ट हो गए, इन चीज़ों का हम प्रयोग करेंगे तो हमें हमारी ज़मीन में जो है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी। और जैसे गर्मी की जुताई हो गई, उसमें ढैंचे का प्रयोग, ढैंचे का हो गया
1: जी,
2: हाँ, तो ये सब चाहे ये क्रियाएं करेंगे, और रासायनिक खादों का कम से कम करेंगे, जैविक जो है खाद है उनका प्रयोग करेंगे
1: जी,
2: तो हम अपनी ज़मीन को बचा सकते हैं। हम लोग जानकारी अगर रखेंगे कि निश्चित मात्रा में कितनी ज़रूरत है, और दूसरा है कि मृदा की जांच कराएं हम, उसमें जिस चीज़ की कमी हो उसका उसी मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में प्रयोग करें,
1: बिना मिट्टी की जांच कराए अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग कर दें।
2: बिल्कुल सही बात है।
1: किसान भाइयों की जो भूमि बंजर हो रही है, और भी कारण हो सकते हैं आपके जहन में आता हो?
2: बस यही है कि किसान जो है अपना एक तो मेन तो कारण यही हो गया जो रासायनिक उर्वरकों का हम प्रयोग कर रहे हैं
1: जी जी,
2: दूसरा फसल एक ही फसल लगातार बोना, इसका भी एक कारण है,
1: फसल चक्र अपना है। ठीक है श्यामवीर सिंह जी, आपने हमारे सुनने वालों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, किसान वाणी गाँव में किसानों के साथ का सम्पन्न अब होता है ग्राम गूला विकास खंड व तहसील मीरगंज जनपद बरेली में सम्पन्न। अब हम रुख करते हैं आकाशवाणी बरेली की ओर, सब भैयन को हमारी ओर से राम राम।

भैया बहनों, अभी आपने सुना ये क्षेत्र संकलित कार्यक्रम आकाशवाणी गांव में किसानों के साथ। आज हमारे भैया हरद्वारी लाल वर्मा पहुंचे ग्राम गुला विकासखंड व तहसील मीरगंज जिला बरेली के गांव में, और कार्यक्रम में प्रतिभाग किया राजेश चौहान, सांबीर सिंह, चंद्रसेन, मोहम्मद अवैस और श्रीमती राजकुमारी चौहान ने। आज के इस कार्यक्रम की सुंदर सी प्रस्तुति रही मिथिलेश श्रीवास्तव जी की। भैया बहनों, अगर इस कार्यक्रम को सुनकर आप लोग अपने गाँव हमें बुलाना चाह रहे हो और खासकर हमारी आकाशवाणी की टीम को, तो फिर देर ना करते हुए हमारे कार्यक्रम में आप लोगों को पत्र लिख भेजिए या फिर सोशल मीडिया पर कमेंट करके हमें अपने गांव का स्पष्ट पता लिख दीजिए, और साथ ही साथ एक फोन नंबर और आने जाने का मार्ग भी हमें बता दीजिएगा, तो हम आपके गांव

0: अवश्य पहुंचेंगे। और हरिद्वारी लाल भैया, देखिए कार्यक्रम की समय सीमा में हम लोग बंधे रहते हैं, धीरे धीरे समय समाप्ति की ओर है। हमने अपने भैया बहनों से ये वादा किया था कि जो सवाल हम पूछ रहे हैं उसका जवाब भी हम आपको जरूर बताएंगे।
1: बिल्कुल भैया,
0: सवाल पूछा था आपने, धान की रोपाई वाली नर्सरी कितने दिनों की होने के बाद खेत में रोपी जाए? तो बहुत से भैया बहनों ने इसका जवाब दे दिया है
1: जी जी
0: सोशल मीडिया पर कमेंट के माध्यम से। हम मिलान करा देते हैं कि देखिए, धान की जो नर्सरी है वो लगभग 20 से 25 दिन की हो जाए तब हमें उखाड़ करके उसे दूसरे खेत में रोपना चाहिए, और अच्छी मोटाई अच्छी जड़ वाली नर्सरी हम खेत में रोपेंगे तो हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम इस पौध को शोधित करके बोएंगे तो और अच्छा उत्पादन हमारे किसान भाइयों को मिल सकता है। और अब चलते चलते ये और कहेंगे हम अपने भैया बहनों से
1: जी
0: कि हम जी तोड़ मेहनत करते हैं अपने खेतों में, पैदावार लेने का हर संभव प्रयास करते हैं, जिसके लिए हम समय से खाद पानी जुताई बीज सब कुछ देते हैं, लेकिन उत्पादन हमें पूरा नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं कमी हमारी छूट जाती है जो हमें पूरे साल भर खलती रहती है।
1: बिल्कुल भैया,
0: तो इसके लिए ये जरूरी है कि हम अपने खेतों की मिट्टी की जांच कराएं, और आज की नसीहत के तौर पर भी हम अपने भैया बहनों से यही कहेंगे कि खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए हरी खाद देसी खाद का प्रयोग करें।
1: धारा सिंह भैया, अब समय ना है अपने भैया से और बातचीत करें। दीवार में लगी घड़ी बार बार इशारा कर रही है, तो यहीं पर अपने भैया से लेते हैं विदा। अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने भैया हरदोई लाल वर्मा,
0: और धारा सिंह को दीजिए अनुमति। भैया बहनों,
1: यानो राम
0: राम।
1: राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। हरद्वारे लाल भैया, जैसे कि हम अपने
1: जी
0: भैया बहनों को कार्यक्रम ग्राम जगत के माध्यम से भी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाते रहते हैं, और कार्यक्रम में अनुभवी किसानों, कृषि व्यवसायी और पशुपालकों को भी शामिल करते हैं।
1: बिल्कुल धारा सिंह भैया। और भैया सुनवाते हैं अपने भैयन को एक मधुर लोकगीत।
0: तो लोकगीत की बात आपने कही है, बिल्कुल सुनवाएंगे। फिलहाल तो हम एक महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहेंगे अपने भैया बहनों से कि खाद्य सुरक्षा के बारे में सब लोग कहते हैं, जानते हैं, हम आपको बताते चलें कि खाद्य सुरक्षा हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, पोषण सुनिश्चित करने के लिए, आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए खाद्य सुरक्षा का पूरा पूरा महत्व है। बहुत अधिक बात ना करते हुए आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि स्वास्थ्य की रक्षा के मद्देनजर दूषित भोजन से फूड पॉइजनिंग, दस्त, टाइफाइड, हैजा और अन्य गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। सुरक्षित भोजन हम लोगों को स्वस्थ रखने में पूरा मदद करता है। सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन से हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति मिलती है। तो हमें खाद्य सुरक्षा का महत्व जान करके खाद्य पदार्थों का अच्छी तरह से सेवन करना चाहिए, उनका अच्छी तरह से रख रखाव करना चाहिए। कार्यक्रम में एक क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता है। एक प्रगतिशील कृषक मोहन स्वरूप से हरद्वारी लाल वर्मा भैया ने बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं।
2: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल।

0: मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: आज मोटे अनाज की खेती के बारे में श्री मोहन स्वरूप जी से, जो ग्राम बरीपुरा जनपद बरेली में निवास करते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मोहन स्वरूप जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी उम्र क्या है।
3: हमारी डेट ऑफ बर्थ 68 होने जा रही है, 5/8/1958 है।
2: जी जी। अच्छा, हमने सुना कि आप किसी पद से रिटायर हुए हैं।
3: हाँ, हम सिंचाई विभाग में ऑपरेटर थे, नलकू, राजकीय नलकूप विभाग में।
2: अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि रिटायर होने के बाद इस समय क्या कर रहे हो आप?
3: इस समय हम खेती पर ध्यान दे रहे हैं विशेष रूप से।
2: अच्छा, खेती की जब आपने बात की तो नर्सरी लगा दी है।
3: हाँ, नर्सरी लगा दी है और हम मोटे अनाज में मड़ुआ बोएंगे अब।
2: अच्छा अच्छा, ये बताइए कि इस समय गर्मी भीषण पड़ रही है, तो खेतों की जुताई, खेतों अगली फसल की तैयारी आप कर रहे हैं?
3: खेत हमने जोत के डाल दिए, उससे खरपतवार नष्ट हो गए हैं।
2: अच्छा अच्छा।
3: और उसमें जीवांश भी और अधिक बढ़ जाते हैं और उसमें हम उड़द बोएंगे एक खेत में।
2: अच्छा, ये बताइए, आपने खेत की जो जुताई कर दी, इससे फायदे क्या हैं?
3: इससे फायदा ये है कि जो हानिकारक जो जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं।
2: अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा हाँ। आप देसी खाद का प्रयोग करते हैं?
3: हाँ, देसी खाद।
2: हम देख रहे हैं ये सामने, ये क्या आपने हरी खाद के रूप में क्या बोया है?
3: अभी ढांचा बोया है हमने 1 एकड़ में।
2: इससे क्या फायदा है?
3: इससे ये है कि ढांचा बोने से नत्रजन और पोटास की मात्रा बढ़ जाती है।
2: अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, आजकल लोग रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। हाँ। तो लेकिन आप देसी खाद और हरी खाद दोनों का प्रयोग करते हैं?
3: हाँ।
2: अच्छा, मिट्टी की जांच कराते हैं?
3: हाँ, मिट्टी जांच कराते हैं, तभी तो हमें मालूम हुआ कि पोटास कम है।
2: अच्छा।
3: हाँ, कराई थी हमने।
2: अच्छा, ये बताइए कि अगली फसल आप क्या लगाएंगे?
3: अब अगली फसल जो है खरीफ में, हम उड़द बोएंगे और मड़ुआ बोएंगे।
2: अच्छा, यानी मोटे अनाज की आप खेती करेंगे?
3: जी।
2: तो
3: लागत कम है उसमें।
2: अच्छा, लागत कम है
3: जी।
2: तो उर्द कौन सी प्रजाति का आप बोएंगे?
3: ये हम जानकारी लेंगे, अभी हमने ऑनलाइन करा रहे हैं कृषि विभाग में, उन्होंने कहा कि नकल लाओ जमीन की और उस पर हम दे देंगे बीज, कितना चाहिए, कितना मिल जाएगा और कौन सा बोना चाहिए।
2: अच्छा, मोटे अनाज में जैसे बाजरा है, ज्वार है, मड़ुआ है, कुकनी है, समा है, ये तमाम तरह की इनकी खेती हमारे भाई उगाते हैं और हमारे देश और प्रदेश की सरकार भी मोटे अनाज उगाने के लिए प्रोत्साहन कर रही है। आपने किस उद्देश्य से ये ठाना कि हम मोटे अनाज की खेती करें?
3: मोटे अनाज में एक तो दवाइयों का प्रयोग कम है
2: जी,
3: खाद भी कम लगती है
2: जी जी,
3: और जो घर के धान है या गेहूं है या जैसे और जो फसल करते हैं, जैसे सब्जी ले लो, इनमें दवाइयों का इतना प्रयोग है
2: जी
3: कि उससे बहुत बड़ी हानि घर के शरीर में हो रही है
2: जी जी।
3: और जब मैं सिंचाई विभाग में था, हमारे विभाग 11 विभाग जब उसमें पंचायत में दिए गए थे, तो वहाँ पर हमें एग्रीकल्चर के SDO ने हमसे ये पूछा
2: जी जी,
3: मीटिंग में बोले अगर आपको बाजार भेजा जाए और ये कहा जाए कि सब्जी लेके आओ तो आप कैसी सब्जी लाएंगे? तो सब लोग इस पे खामोश हुए और ये सोचते रहे कि हर कोई कहेगा कि देख के चिकनी सब्जी लाओ, लेकिन चिकनी को तो ये भी जानते हैं जो पूछ रहे हैं, तो ये पूछ क्यों रहे हैं हमसे? तो सब लोग खामोश हो गए और जवाब नहीं दिया ब्लॉक की मीटिंग में। तो SDO साहब ने बाद में ये कहा कि जब बाजार जाओ तो कानी कुबड़ी सब्जी लाओ। तो सब लोग बोले साहब ऐसा क्यों है? बोले ऐसा इसलिए है कि जो कानी कुबड़ी सब्जी है उसमें दवा का प्रयोग या तो बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है।
2: अच्छा,
3: इसकी वजह से उसमें कीड़ा लग गया। तो आप जब कानी कुबड़ी सब्जी लाओगे तो वो कानी कुबड़ी आधे पैसों मिलेगी
2: जी जी,
3: लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं है, आप आधी काट के फेंक दो खराब खराब, अच्छी अच्छी खा लियो,
2: तो इसी
3: तो आपको रोग नहीं फैलेंगे आपके शरीर में, निरोग रहोगे, ऐसी चीज खाओ।
2: तो इसी उद्देश्य से आप मोटे अनाज को प्राथमिकता दे रहे हैं?
3: हाँ, मोटे अनाज की ओर अग्रसर यही सोच के हो रहे हैं।
2: अच्छा, आपने बताया कि हम मड़ुआ बोएंगे, इसके अलावा और जो प्रजाति होती है, और जो फसल उगाते हैं, और भी फसल की जा सकती है जैसे
3: मूंग, हाँ मूंग कर सकते हैं
4: जी,
3: सोयाबीन भी कर सकते हैं
4: जी जी,
3: लेकिन मूंग की फली तोड़ना पड़ती है
4: जी जी, ये तो सब दलहनी फसल में आती है, लेकिन हाँ, मोटे अनाज में कुछ
3: मक्का

0: और फसल आती है।
1: हाँ, मक्का है
0: जी।
1: मक्का की पैदावार हमारे साथी हैं यहाँ सहासे में
0: जी
1: गंगा पार, उनसे हमने जानकारी ली, बोले हमारे यहाँ 8 क्विंटल तक की मक्का का दाना दाना हो जाता है।
0: ओहो।
1: एक बीघा में
0: जी जी
1: मक्का का दाना दाना 8 क्विंटल तक
0: जी।
1: अब बोले 4-5 की तो मिनिमम हो ही जाएगी
0: जी,
1: इससे नीचे होती नहीं तो, अब बोले एक नराई लगा दो उसमें केवल।
0: तो आप मड़ुआ और मक्का
1: उरद
0: हाँ, और कुकनी
1: हाँ इसी चीज की ओर ज्यादा हम अग्रसर हो रहे हैं।
0: अच्छा,
1: मोटे अनाज
0: यही बोएंगे आप?
1: हाँ।
0: तो इसकी तैयारी कैसे करेंगे आप?
1: इसके लिए भी हमने खेत जुतवा के डाल दिया है मड़ुआ के लिए, और पॉपुलर का खेत है, हमें बताया गया, हम कृषक मीटिंग में भी जाते हैं।
0: अच्छा, बहुत
1: तो,
0: अच्छी
1: हाँ,
0: बात है।
1: वहाँ मझखाली गए थे अल्मोड़ा के पास, तो वहाँ उन्होंने बताया कि अगर आपका पॉपुलर का खेत है तो उसमें मड़ुआ हो जाएगा।
0: अच्छा
1: हाँ, और बोले मड़ुआ में गेहूं से 10 गुना अधिक कैल्शियम होता है।
0: जी जी जी,
1: इसलिए हम मड़ुआ बोएंगे एक एकड़।
0: आप एक जागरूक कृषक हैं। बात करें लागत की, तो लागत कितनी आ जाती है?
1: लागत इसमें मड़ुआ में कोई खास नहीं है।
0: अच्छा
1: हाँ, ये तो जैसे समा बो दिया।
0: क्या इनमें कोई बीमारी भी लगती है?
1: बीमा हम पहली बार कर रहे हैं।
0: अच्छा,
1: आप जब बोएंगे तो वो हमें बताएंगे ब्लॉक की तरफ से।
0: जी जी,
1: एग्रीकल्चर विभाग बताएगा कि इसमें क्या करना
0: जी है। सरकार बहुत ही प्रोत्साहन दे रही है मोटे अनाज के लिए।
1: हाँ,
0: तो ये बताइए, इसके जो मोटे अनाज जो विकास खंड हैं, कृषि प्रसार भवन है, वहाँ से बीज कैसे मिलते हैं?
1: कुछ बीज तो आधी आधी छूट पे मिलता है, जैसे ढेंचा
0: जी,
1: ये आधी छूट पे हमने लिया, एक एकड़ बो दिया।
0: जी जी,
1: और उरद जो है वो बिल्कुल भी फ्री मिलेगा आपको
0: जी,
1: पर अधिकारी जाके देखेंगे खेत पे कि आपने बोया भी है कि खाली दाल उसकी दल के खाली।
0: जी जी,
1: वो देखने जाएंगे खेत पे।
0: तो ये सारी चीजें, इन प्रजातियों के बीज हमारे भाई लें, जैसे मक्का, कुकनी और ज्वार, उर्द, तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों को करना क्या होगा?
1: इसमें सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन कराना पड़ेगा, और आपकी ज़मीन जो है एग्रीकल्चर विभाग में चढ़ जाएगी।
0: जी जी,
1: जब ऑनलाइन कराओगे तो जब ज़मीन चढ़ जाएगी तो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको कितना बीज आप मांग रहे हैं और कितना वो दे सकते हैं वो बता देंगे, इतना बीज हम आपको दे देंगे प्रति एकड़।
0: जी जी,
1: तो कुछ बीज छूट पे आता है पूरी तरह से, कुछ आधी छूट पे आता है, वो आधी छूट मिल जाएगा।
0: अच्छा, ये बताइए कि ये फसल आप बोएंगे और कुछ प्रजातियां आपने पहले मोटे अनाज की बोई हैं, तो इसमें क्या ये जानवर वगैरह भी नुकसान पहुंचाते हैं?
1: मक्का के लिए जानवर नहीं खाते हैं, एक सुअर है वो भुंटा खा सकता है, नीलगा भुंटा खा सकता है उसका।
0: अच्छा।
1: लेकिन उसके पेड़ को नहीं खाते ये।
0: जी जी,
1: कोई कोई पत्ती ऐसे टूंग लेते हैं, लेकिन इस पे कोई रूंसा होता है, इसकी वजह जानवर नहीं खाते इसे।
0: जी जी
1: हाँ।
0: अच्छा, उनके लिए क्या कहना चाहोगे जो लोग गेहूं धान की फसल करते हैं?
1: गेहूं धान की फसल जो है करना तो पड़ेगी, नहीं करोगे तो घर के खाओगे क्या।
0: जी,
1: पर हमारे यहाँ जमीन में पोटाश की कमी की वजह से गेहूं धान वही 2-2.5 क्विंटल की पैदावार देता है।
0: जी जी,
1: इसमें लागत बहुत आ जाती है, बचता कुछ नहीं।
0: जी,
1: तो गेहूं धान की जमीन जैसे आप इधर चले जाओ, इधर आपके किचा की तरफ कच्ची जमीन है, इधर आप जाओगे तो 5-5 क्विंटल का धान कट जाता है, 5-5 क्विंटल का गेहूं भी कट रहा है, तो उन्हें तो फायदा हो जाता है, हमारे यहाँ इसमें बचत नहीं हो रही है।
0: जी जी,
1: हमारे यहाँ दलहन है, तिलहन है, इनमें बचत हो जाएगी। अब कि हमने लेटा बोया था, एक एकड़ में 9 क्विंटल लेटा कटा हमारा।
0: जी,
1: हो 1.5 क्विंटल का हो गया।
0: अच्छा अच्छा,
1: अब कि हमने वो परहेल किया है और ढेंचा बोया है, और भी अच्छे ढंग से बोएंगे, अब कि 2 क्विंटल का भी काट सकते हैं।
0: जी, तो हाँ, तो हमारे किसान भाई ये मोटे अनाज की खेती करें तो अच्छा मुनाफा लेंगे।
1: हाँ हाँ, तो अच्छा मुनाफा लेंगे, ये सही है
0: जी। तो मोहन स्वरूप जी, आपने मोटे अनाज की खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी, किसान भाई हमारी आपकी बात को बहुत ही गौर से सुन पाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने ये भेंटवार्ता सुनी मोटे अनाज उत्पादक श्री मोहन स्वरूप से, हरद्वारी लाल वर्मा की, जो ग्राम बरीपुरा विकासखंड शेरगढ़ के निवासी हैं। हमें भी इनकी बातचीत को सुनकर अपने खेतों में मोटे अनाज की ओर ध्यान देना चाहिए। और आइए अब एक मधुर लोकगीत से करा देते हैं आपका मनोरंजन।
0: तो किसान भाइयों, सुनो ये मधुर लोकगीत।

0: इसी मधुर लोकगीत के साथ आज का कार्यक्रम ग्राम जगत यहीं पर संपन्न होता है। कार्यक्रम से अपने भैया धारा सिंह
1: और अपने भैया हरद्वारी लाल वर्मा को देव अनुमति। भैया बहनों राम राम।
2: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
3: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।

0: कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है आकाशवाणी के दीवाने। जी हाँ, आप अगर आकाशवाणी के दीवाने हैं, आप सब में दीवानगी है आकाशवाणी के प्रति, तो आप मोबाइल उठाइए, अपना वीडियो बनाइए और वीडियो में बताइए कि आपने पहली बार आकाशवाणी को कब सुना, और अपनी एक यात्रा के बारे में बताइए कि कब कब सुनते रहे, किन हालातों में सुने, रेडियो का कौन सा सेट आपने इस्तेमाल किया, और भी बहुत कुछ आप बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ड्यूरेशन आपके वीडियो की 2 मिनट होनी चाहिए। और जो लोग वीडियो नहीं बना पाए वो ऑडियो भी भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा तो माध्यम ही है रेडियो। तो आपकी जो वीडियोज़ हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ेंगे, जो भी चुनिंदा अच्छे अच्छे वीडियो होंगे। तो और कहाँ भेजना है ये भी नोट कर लीजिए, akashvanibareilly@gmail.com। आकाशवाणी में AKSHVANI, बरेली BAREILLY, akashvanibareilly@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आपको भेज देना है, मात्र 2 मिनट का वीडियो शूट करना है। सेल्फी ले सकते हैं या फिर किसी से रिकॉर्ड करवा लीजिए सामने से। तो जल्दी से जल्दी आप अपने वीडियो भेजिए।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। अब से कुछ ही देर में होंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्राम जगत, आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर।
1: आकाशवाणी के दीवानों के लिए एक हम छोटा सा

0: लोकायतन एवं खेती किसानी कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में समाचार प्रसारित होंगे।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में 516 करोड़ रुपए की 262 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बिना भेदभाव की सरकार पहुंचा रही है योजनाओं का लाभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया भर में छाई आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदला भारत। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। कहा, 12 वर्षों में देश में हुआ शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन। और वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने आज भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का किया भ्रमण। समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के अनुभव को बताया अविस्मरणीय। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा से कुल 516 करोड़ रुपए की लागत की 262 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें कटरा विधानसभा क्षेत्र में 256 करोड़ रुपए और करनैलगंज में 260 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 9 वर्ष

0: में डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का परिणाम है कि प्रदेश की नई पहचान बनी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास विजन के तहत सरकार बिना भेदभाव घर घर तक विकास योजनाएं पहुंचा रही है।
1: हर पात्र व्यक्ति को, वह किसी जाति का हो, किसी मत संप्रदाय का हो, अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसको योजना का लाभ दिया जाएगा। और यही तो मोदी जी ने कहा था, सबका साथ और सबका विकास।
0: इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने सुबह तुलसीपुर में देवी शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन किया और मां से सुखी, स्वस्थ और समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच 3 दिवसीय दौरे पर कल लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दौरे के दूसरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने हरदोई रोड स्थित मिलेनियम पैलेस में पश्चिम मंडल 2 के प्रबुद्ध नागरिकों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ संवाद बैठक की। केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकास तीर्थ कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज जिले में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। श्री चौधरी ने जनपद के प्राचार्य एवं शिक्षकों के साथ संवाद कार्यक्रम में सहभागिता भी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। नई शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, रोजगारपरक एवं तकनीक आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत तथा नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ प्रत्येक परिवार तक शीघ्रता से पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वाराणसी में आयोजित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री श्री शर्मा ने योजना की प्रगति, उपलब्धियों और आगामी कार्य योजना की विस्तार से समीक्षा की। एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और प्रोत्साहन से देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है।
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा और प्रोत्साहन से पूरे देश में सोलर रिवोल्यूशन हो रही है, सौर क्रांति हो रही है। उसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा लगभग 2 साल पहले की गई थी और उस योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में काम हो रहा है। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी हम लोग पीएम सूर्य घर को लेकर के प्रगति कर रहे हैं।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज बस्ती पहुंचे। मीडिया से बातचीत में श्री राजभर ने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करती है, इसलिए वो इतने लंबे समय तक शासन करने वाले प्रधानमंत्री बने हैं।
4: मोदी जी पर देश के 140 करोड़ जनता विश्वास कर रही और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाया। 10 जून को 12 साल कार्यकाल पूरा उनका होगा और देश में आजादी के बाद पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी होंगे जो लगातार लंबे समय तक देश में शासन करने वाले प्रधानमंत्री गिने जाएंगे।
0: प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा

0: 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार आज परीक्षा की तैयारियों का पूर्वाभ्यास किया गया। इसी क्रम में अमरोहा में आज जिलाधिकारी डॉ नितिन गौड़ एवं पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने परीक्षा की तैयारियों को परखा। कानपुर में प्रशासन ने व्यवस्थाओं को लेकर गोष्ठी आयोजित की। साथ ही रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिवहन निगम रियायती दरों पर परीक्षार्थियों को सेवा उपलब्ध कराएगा। वाराणसी में आयोजित दो दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के सफल समापन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने आज वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल का दौरा किया। सदस्यों ने यहां भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा की समृद्ध विरासत को दर्शाने वाले संग्रह को देखा। इससे पूर्व प्रतिनिधिमंडल ने भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का भ्रमण किया। बौद्ध तीर्थस्थल के दर्शन के दौरान प्रतिनिधि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित नजर आए। ब्राजील से आए प्रतिनिधि लुकास ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि ये अनुभव उनके लिए बेहद प्रेरणादायक और अविस्मरणीय रहेगा। प्रतिनिधियों ने बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर का भी भ्रमण किया। इस अवसर पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ अरविंद कुमार ने बताया कि इस भ्रमण का उद्देश्य विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की वास्तविक सांस्कृतिक धरोहरों और जीवंत परंपराओं से रूबरू कराना है।
1: ब्रिक्स मीटिंग, उसमें कई सारे ट्रैक्स होते हैं, उसमें ट्रेड है, एनवायरनमेंट है, कल्चर इज आल्सो वन ऑफ द ट्रैक ऑफ ब्रिक्स मीटिंग्स। तो कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट ट्रैक है और कल्चर के हम बातें तो करते हैं मीटिंग में, जब तक दिखाएंगे नहीं तो उनको शायद उतना समझ में नहीं आए। हम चाहते हैं कि हम जो भी कल्चर के बारे में बात करते हैं उसको हम दिखाएं भी।
0: अयोध्या के श्रीराम मंदिर परिसर में स्थित शेषावतार मंदिर के शिखर पर 23 जून को ध्वजा स्थापना होगी, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं।
2: प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य, उनके कर कमलों के द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम सम्पन्न और इसके लिए जो है कार्यक्रम की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। लोगों को निमंत्रित किया जा रहा है और यह संख्या भी जैसा बताया गया ट्रस्ट के द्वारा 3000 से ऊपर संख्या होगी और हम सब उसके साक्षी बनने जा रहे हैं, क्योंकि अब यह शेषावतार का जो मंदिर है, जो शिखर है, वह बहुत लंबे प्रतीक्षा के बाद अब उस पर ध्वजारोहण होने जा रहा है।
0: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज प्रयागराज में वाराणसी विंध्याचल एवं प्रयागराज मंडल की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026 का उद्घाटन किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज सर्वाधिक अनाज उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में आज मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में 516 करोड़ रुपए की 262 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बिना भेदभाव के सरकार पहुंचा रही है योजनाओं का लाभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया भर में छाई आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदलाव भारत। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। कहा, पिछले 12 वर्षों में देश में हुआ शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन। और वाराणसी में आयोजित दो दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने आज भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का किया भ्रमण। समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के अनुभव को बताया अविस्मरणीय। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
4: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। समय मिला ये 7:31:05 हुए हैं। लीजिए, आप प्रस्तुत है आपके स्वास्थ्य से जुड़ा कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
6: गंगवार हॉस्पिटल, निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
7: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज की

0: विशेष सुविधा
1: अविकसित फेफड़ों के उपचार के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी,
0: टेम्परेचर नियंत्रण के लिए विशेष इंक्यूबेटर जिराफ ओमनी बेड,
1: सांस नियंत्रण के लिए सीपैप वेंटिलेटर HFNC और ईयर वो मशीनें,
2: बच्चों के जन्म के समय होने वाली जटिलताओं के लिए बिना खून निकाले पीलिया की जाँच,
1: खास तरह के वेंटिलेटर HFO ऑक्सीलेटर, थेरेप्यूटिक हाइपोथेरेमिया बाय क्रिटिकूल,
0: ब्रेन मॉनिटरिंग के लिए CFM बेड साइड इको अल्ट्रासाउंड की सुविधा,
1: साथ ही बच्चों में पीलिया सेप्टिक इन्फेक्शन निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की विशेष सुविधा।
2: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक चैरिटेबल OPD,
1: बरेली का अत्याधुनिक बाल चिकित्सालय
0: गंगवार हॉस्पिटल,
1: निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली।
2: इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 9457096487।
3: रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, आज रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बरेली के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: सभी श्रोताओं को और पंडित जी आपको मेरा नमस्कार।
3: जी डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता हमेशा उत्सुक रहते हैं कि कब डॉक्टर साहब स्टूडियो में आए और कब उन्हें कोई नई जानकारी मिले। हालांकि विषय हमारा पुराना ही है आज भी, लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि हमारे श्रोता कुछ नया जान पाएंगे आज कार्यक्रम के माध्यम से। डॉक्टर साहब, आज का विषय हमने एक बार पुनः रखा है, समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की उपयोगिता। चूंकि समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की बात है, तो ये भी जान लेना बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब कि समय से पूर्व पैदा हुए बच्चे किन्हें कहा जाए।
4: जी देखिए, जो नॉर्मल गर्भा पीरियड है,
3: जी गर्भकाल है,
4: गर्भकाल है 37 वीक से,
3: यानी 37 सप्ताह से 42 सप्ताह का समय है।
4: हाँ जी, वो नॉर्मल एक गर्भकाल का इंसान का है
3: जी।
4: लेकिन जो 37 सप्ताह से पहले बच्चे पैदा हो जाते हैं,
3: अच्छा,
4: वो प्रीमेच्योर बच्चे कहलाते हैं
3: जी, जी।
4: तो प्रीमेच्योर में भी अलग अलग कैटेगरी है
3: जी,
4: जैसे कि लेट प्रीटर्म जो 37 से 32 सप्ताह के बीच में,
3: अच्छा,
4: जो 32 सप्ताह से और पहले पैदा हो जाते हैं वो प्रीटर्म,
3: अच्छा,
4: और जो मान लीजिए 28 वीक्स या उससे पहले पैदा हो जाते हैं वो वेरी प्रीमेच्योर।
3: तो क्या डॉक्टर साहब ये संभव है 28 सप्ताह से पहले जो बच्चा पैदा हो रहा है वो स्वस्थ जीवन जी पाएगा?
4: देखिए, इन बच्चों को जो परेशानी है वो इस वजह से है कि ये समय से पूर्व पैदा हुए
3: जी।
4: समय से पूर्व पैदा होने में क्या होता है, हमारे शरीर के जो अंग है
3: जी
4: वो उतने विकसित नहीं हो पाते जितने विकसित हो जाने चाहिए।
3: अच्छा अच्छा।
4: तो इसलिए हर अंग शरीर का अपने आप में एक कठिनाई पैदा करता है
3: जी, जी।
4: जो बच्चा समय से पूर्व पैदा है, जो सर्वाइवल संभव है आज की तारीख में
3: जी, अच्छा।
4: और वो बच्चे हमारे यहाँ बच जाते हैं 25 वीक्स एंड 26 वीक्स के
3: जी, जी।
4: तो उससे कम जो और पहले के पैदा हुए बच्चे हैं उनमें अभी परेशानी आती है, लेकिन कुछ जगह रिपोर्टेड है कि 24 वीक्स ऑनवर्ड्स बच्चे बच जाते हैं।
3: अच्छा डॉक्टर साहब, जो गर्भकाल 9 महीने का कहा जाता है, 9 महीने 9 दिन 10 दिन इस तरह से, उसकी जगह आप बता रहे हैं कि 6 महीने यानी जो 26-24
4: 9 महीने 7 दिन गर्भकाल नॉर्मल माना जाए,
3: नॉर्मल माना जाए। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो आप गर्भकाल बता रहे हैं तो 6 महीने 6.5 महीने
4: का ही बच्चा? जी जी जी, 6.5 महीने के जो बच्चे, 6 महीने के बच्चे जैसे 24-25 वीक्स के जो बच्चे पैदा होते हैं
3: जी,
4: तो उनमें एक तो सबसे अधिक जो कॉमन समस्या आती है कि लंग्स उतने मेच्योर नहीं होते,
3: अच्छा, फेफड़े उतने मजबूत नहीं,
4: हाँ मजबूत नहीं होते कि वो ऑक्सीजनेशन कर, जब तक बच्चा या प्रीटर्म बेबी माँ के गर्भ में
3: है
4: तो उसको ऑक्सीजन हुआ, बाकी सारी न्यूट्रिशनल सप्लाई हुई या जो कुछ भी उसको चाहिए वो सब माँ से मिलता है थ्रू ब्लड। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसको उसके लंग्स काम करना शुरू करते हैं और वो उसको ऑक्सीजन अपने आप उतनी बनानी पड़ती शरीर में कि जो उसका काम चल सके
3: जी, जी।
4: जब लंग्स इमेच्योर होते हैं, खासतौर से प्रीमेच्योर बच्चों के, जिसको कि हम लोग बोलते हैं हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज या नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम,
3: अच्छा,
4: तो नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो बच्चा प्रीमेच्योर पैदा होता है तो उसकी सांस तेज चलना शुरू करती है क्योंकि बच्चा कंपनसेट करने की कोशिश करता है उस प्रीमेच्योरिटी को या लंग की उस इनसफिशियंसी को जल्दी जल्दी सांस लेके,
3: यानी जो फेफड़े के सिकुड़ने और फैलने की क्षमता है वो नेचुरली कम,
4: क्षमता तो कम है ही
3: जी,
4: जिसको हम बोलते हैं कंप्लायंस कम है। दूसरा उस चीज को बच्चा पूरा करने की कोशिश करता है उसे जल्दी जल्दी टैकिपनिया करके,
3: अच्छा,
4: मतलब सांस की गति बढ़ा के
3: ऑक्सीजन की जो जरूरत
4: रिक्वायरमेंट पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर सर्फेक्टेंट कम है, जिसको कि बोलते हैं न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी NRDS या HMD हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज, अगर प्रीमेच्योर बच्चे में वो है तो आपको सर्फेक्टेंट एक दवाई होती है या एक पदार्थ या मटेरियल है जो कि आपको उसके फेफड़ों में डालना होता है, जिससे कि

0: वो जो उसकी कमी है उस सब्सटेंस की, उसको बाहर से पूरा किया जा सके।
1: डॉक्टर साहब, क्या कुदरती तौर पर ये फेफड़े में मौजूद होता है सल्फेक्टेंट?
0: ये सल्फेक्टेंट कुदरती तौर मौजूद होता है, लेकिन अच्छा। जब बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं तो
1: उनमें
0: उनका
1: उनमें
0: कम होता है।
1: अच्छा।
0: ये 28 वीक ऑनवर्ड्स बनना शुरू होता है अच्छे से।
1: अच्छा।
0: और जो बच्चे 30 वीक्स या 32 वीक्स के ऊपर निकल जाते हैं उनमें इतना जरूरत नहीं रहती।
1: जी जी।
0: लेकिन जो बच्चे 32 वीक्स हैं उनमें हमेशा एक डर रहता है। मतलब ये पता लग चुका है कि अगर इन मदर्स को, जिनके बच्चे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि समय से पूर्व पैदा होंगे, उनको एंटीनेटल स्टेरॉइड यानी बिटामेथासोन या डेक्सामेथासोन दिया जाए प्रॉपर
1: अच्छा।
0: डोजेज में
1: जी।
0: तो लंग्स की मेच्योरिटी बढ़ जाती है।
1: ये जो आप बता रहे हैं दवाइयां बिटामेथासोन या डेक्सामेथासोन, तो ये माँ को दी जाती है?
0: ये माँ को इंजेक्शन द्वारा दी जाती है। अगर जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसको ये अंदेशा होता है कि बच्चा समय से पूर्व पैदा हो सकता है, तो डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन इंजेक्शन 2 दिन का कोर्स है उसको करके, तो उसमें लंग्स की मेच्योरिटी बढ़ जाती है और इस बात के चांस कम हो जाते हैं कि बच्चे को एनआरडीएस यानी हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज हो या सर्फेक्टेंट की कमी पड़े।
1: यानी जो इस रोग विशेषज्ञ हैं वो ये फैसला लेती है?
0: वो फैसला लेती है।
1: अच्छा।
0: कि अगर उनको ये रहता है कि इसमें जल्दी डिलीवरी हो सकती है तो वो माँ को ये लगाते हैं।
1: अच्छा।
0: और इसके लगाने के एक तो फायदा है ही लंग्स की मेच्योरिटी, और भी फायदे हैं जैसे कि गट की मेच्योरिटी बढ़ती है और ब्रेन की भी मेच्योरिटी बढ़ती है। और ब्रेन पूरी तरह से मेच्योर नहीं होगा तो हमेशा एक डर रहेगा कि ब्रेन को इंसल्ट ना हो जाए। दूसरी चीज ब्रेन में हेमरेज होने का, जिसको बोलते हैं आईवीएच इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, वो होने का डर बहुत ज्यादा रहता है।
1: जी जी जी। डॉक्टर साहब, जो आप दवाइयां बता रहे हैं स्टेरॉइड कहा जाता है, और स्टेरॉइड ये कहा जाता है कि बहुत नुकसानदायक होता है?
0: नहीं, ये तो कोर्स ही ना, पर्टिकुलर डोजेस दी जाती है वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए।
1: अच्छा।
0: तो ऐसे जैसे स्टेरॉइड नुकसान करते हैं ब्लड प्रेशर में, शुगर में, लेकिन ये स्टेरॉइड बच्चे को आपको हेल्प करने जा रहे हैं। और अगर माँ को शुगर है या माँ को ब्लड प्रेशर है तब भी ये स्टेरॉइड दिया जा सकता है और देना चाहिए।
1: अच्छा।
0: जिससे कि बच्चे को फायदा दे सके।
1: यानी अगर स्त्री रोग विशेषज्ञ ये तय करती है कि जो गर्भवती माता है उसे स्टेरॉइड के रूप में बीटामेथासोन डेक्सामेथासोन दिया जाना है तो ये उचित है
0: जी।
1: ये बच्चे के हित में है।
0: अभी एक दवाई जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट
1: जी जी,
0: वो भी एक्लेम्सिया के मदर्स को पहले देते थे। अब जहाँ पे हमें सस्पेक्ट, हमें डाउट, अंदेशा रहता है कि बच्चे को ब्रेन इंसल्ट हो सकती है, बच्चे को बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है, या बच्चे को बर्थ एनोक्सिया हो सकता है, ये डर है कि बच्चा पैदा होने के बाद सांस लेने में कोई दिक्कत करे, तो उन मदर्स को मैग्नीशियम सल्फेट भी दिया जाता है, जिससे कि बच्चे में जब पैदाइश होती है तो उनके दिमाग को नुकसान कम होता है।
1: अच्छा। ये बर्थ एस्फिक्सिया और ये जो नाम आप ले रहे हैं डॉक्टर साहब, अगर हमारे श्रोता जानना चाहें इसका मतलब क्या होता है?
0: देखिए, बर्थ एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया का मतलब दम घुटना।
1: अच्छा।
0: है ना, तो बच्चा पैदा होते समय किसी कारण से अगर ठीक से सांस नहीं ले पाया, जैसे कि पैदाइश में ज्यादा टाइम लग गया
1: जी।
0: या गर्भ में वो एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया, पानी कम हो गया
1: जी।
0: या बच्चे ने कई बार पॉटी पेट में कर ली
1: जी,
0: लैट्रिन पेट में कर ली तो वो सांस में ले ली, या बच्चे को ब्लड सप्लाई कम हो गई, फीटल डिस्ट्रेस होने लगा
1: जी। डॉक्टर साहब, ये वाकई में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर हमारे श्रोता इस बात को ध्यान से सुन रहे होंगे तो कई ऐसी बातें हैं जो कि शिशु पैदा हुआ है उसे देख करके वो समझ सकते हैं इसकी आवश्यकता क्या है। और जहां तक इलाज की बात है, एक योग्य चिकित्सक ही इन परिस्थितियों में बच्चे की जान बचा सकता है। जहां तक डॉक्टर साहब चिकित्सा की या इलाज की बात है, तो माँ के पेट में जो बच्चे को माहौल मिलता है, जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं, ऐसी परिस्थितियां अगर इन बच्चों को नहीं मिलेंगी जो कि 24-25 सप्ताह में पैदा हो रहे हैं, तो क्या ये बाकी इनका जो विकास होना है, शारीरिक विकास होना है या अंगों का विकास होना है, वो संभव हो पाएगा? और अगर हो पाएगा तो किस तरह की मशीनों की आवश्यकता होती है, उनकी क्या भूमिका होती है?
0: जी, अब पंडित जी आपका ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कुदरत की बराबर इंसान तो नहीं कर सकते
1: जी।
0: जो माँ से देखभाल मिलती है एक नवजात शिशु या प्रीमेच्योर बच्चे को, वो मशीनों के द्वारा इंसान की कोशिश तो होती है, डॉक्टर्स की कोशिश होती है कि हम वैसा माहौल वो चीज दें
1: जी,
0: लेकिन नियर नॉर्मल पहुंच जाते हैं, एब्सोल्यूट तो उतना नहीं हो सकता। तो ये प्रीमेच्योर बच्चों को रखने के लिए जो हमें मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि जो इंक्यूबेटर्स हैं, जो ऐसी मशीन है जिनमें कि हम लोग केयर करते हैं, ह्यूमिडिफाई जो आद्रता है उसको कंट्रोल करते हैं और टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं,
1: जो नमी,
0: ह्यूमिडिटी, हाँ, नमी को और टेम्परेचर, तापमान को, दोनों को कंट्रोल करते हैं। और इंक्यूबेटर के बाद एक और दो मशीन है जिनमें डुअल सिस्टम होता है, जो एक पर्टिकुलर कंपनी

0: की जिसको ओमनीवेड बोलते हैं या जिराफ बोलते हैं, उसमें आप एज ए ओपन सिस्टम भी काम कर सकते हो, मतलब उसे खोल के भी और दूसरा उसको एज ए इंक्यूबेटर भी यूज कर लेते हैं।
1: जी आपने बताया डॉक्टर साहब कि जिराफ ओमनीवेड, ये शब्द सुना सुनाया सा हो गया हमारे श्रोताओं के लिए। जिराफ के विषय में ये कहा जाता है कि वो अपने बच्चे को अपने पेट में ही रख लेता है वापस, जो एक खाल सी होती है लटकती रहती है, शायद वही आशय होगा इस मशीन से भी।
0: जी जी बिल्कुल ठीक कहा है, और उसी तरह से जैसे कि जिराफ के अंदर एक पॉकेट होती है और उसमें बच्चे को वो अपने उसका जिराफ का बच्चा भी बहुत छोटा बच्चा होता है, बहुत प्रीमेच्योर बच्चा होता है, और उस थैली में बच्चा वो रहता है सुरक्षित, वहां उसको दूध पीता रहता है, उसका तापमान कंट्रोल रहता है और माँ उसका ध्यान रख पाती है।
1: जी जी
0: तो उसी को शायद ध्यान रखते हुए इस मशीन का इन्होंने नामकरण किया।
1: जी डॉक्टर साहब, चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, प्रयास आप बता रहे हैं कि किया जाता है, जैसा माँ के पेट में गर्भ में बच्चे को जो माहौल और जो वातावरण मिलता है वही वातावरण बच्चे को बाहर मिल पाए, ये प्रयास किया जाता है और प्रयास में सफलता भी मिलती है। एक श्रोता इसी बीच लाइन पर आ गए, डॉक्टर साहब इनकी बात सुन लेते हैं।
0: हेलो।
2: हेलो
1: जी, रेडियो हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, अपना परिचय देते हुए प्रश्न बताएं। जी जी, आकाशवाणी बरेली से आपकी बात हो रही है, डॉक्टर कुलदीप गंगवार हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। जी जी जी मुन्ना लाल जी, आपकी कॉल का इंतजार रहता है हमें भी और हमारे श्रोताओं को भी हमारे इस कार्यक्रम में।
0: बड़ा रेगुलर श्रोता है ये आपके?
1: जी
0: नियमित श्रोता।
1: जी जी, आज क्या प्रश्न है आपका?
2: हमारा सवाल ये था, जो प्रीमैच्योर जो बच्चा है वो किसे कहेंगे कि प्रीमैच्योर बच्चा है, पहली बात तो।
1: जी जी
0: जी, चलिए एक सवाल। दूसरा
2: दूसरा सवाल ये सर, प्रीमैच्योर बच्चों की देखभाल के लिए किन किन मशीनों की आवश्यकता पड़ती है?
0: अच्छा, इसके अलावा और कोई सवाल आपका?
2: सर एक और जानकारी लेना चाह रहे हैं, प्रीमैच्योर बच्चों में जो नाइट्रिक ऑक्साइड मशीन की आवश्यकता पड़ती है, कहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है?
0: चलिए चलिए, देखिए आपके तीन सवाल आपने पूछे। तो प्रीमेच्योर बच्चा कब कहते हैं? जब बच्चे का जो जन्म है वो अगर गेस्टेशनल टाइम है या गर्भा पीरियड है वो 37 वीक से यानी 37 वीक से कम का है तो उस बच्चे को प्रीमेच्योर यानी समय से पूर्व पैदा हुआ बच्चा कहते हैं। दूसरा सवाल था इनका पांडे जी कि क्या क्या समस्याएं आती हैं,
1: मशीन
0: जो मशीनें कौन सी आती हैं, वो था ही समस्याएं इन बच्चों को इसलिए आती हैं कि इनके जितने अंग हैं वो उतने विकसित नहीं हो पाते जितने समय के साथ हो जाने चाहिए। अब जब ये विकसित नहीं हो पाते तो हर अंग अपनी दिक्कत देता है, जैसे कि फेफड़ों में दिक्कत आती है सांस लेने में, जिसको कि HMD बोलते हैं। ब्रेन के अंदर दिक्कत आती है, कई बार हेमरेज होने का डर रहता है। ऐसे आंतों में दिक्कत आती है दूध पचाने में, खासतौर से अगर माँ का दूध ना दिया जाए, इन बच्चों को ऊपर का दूध दिया जाए तो NEC यानी नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस होने का डर रहता है। फिर इनको मॉनिटरिंग की जरूरत होती है और मॉनिटर्स चाहिए होते हैं। इसके बाद इनको अक्सर बच्चों को जॉन्डिस होता है तो जॉन्डिस के लिए फोटोथेरेपी वगैरह की जरूरत होती है। फिर बच्चों को इनको आपका अगर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है तो फिर वेंटिलेटर्स की जरूरत, वेंटिलेटर्स भी न्यूनेटल डेडिकेटेड वेंटिलेटर, मतलब जो सिर्फ नवजात शिशु में ही इस्तेमाल होते हैं, खासतौर से प्रीमेच्योर बच्चों में ही इस्तेमाल होते हैं, वही वेंटिलेटर्स इन बच्चों को प्रयोग में लाने चाहिए, जैसे कि बेबी लॉक वेंटिलेटर्स है, VN500 है, जिनमें कि 1 ML टाइडल वॉल्यूम आप नापते हो, क्योंकि जो बच्चा 600 ग्राम का पैदा हुआ है उसको टाइडल वॉल्यूम चाहिए आपको 2.5 ML 3 ML का, क्योंकि जो 6 ML पर KG के हिसाब से टाइडल, तो 2.5-3 ML एक्यूरेट एयर को नापना एक मशीन के लिए भी चैलेंज होता है। तो जो मशीन न्यू डेट्स में ही इस्तेमाल होती है वो मशीन की आवश्यकता होती है। फिर इन बच्चों को टेम्परेचर कंट्रोल करने स्पेशल वेंटिलेटर्स जो कि डेडिकेटेड है आपके न्यूनेटल केयर के लिए। और जहां तक आपने सवाल किया है, इनको सर्फेक्टेंट की जरूरत पड़ती है, कई बार आपका इकोकार्डियोग्राफी वो मशीन होना चाहिए बेड साइड, जिसमें कि इन बच्चों को अक्सर समस्या होती है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस की यानी PDA की, तो PDA हुआ, NEC हुआ। फिर अब बाद में इनको जरूरत पड़ती है आंखों के चेकअप के लिए या हियरिंग की जरूरत पड़ती है, हियरिंग इनकी स्क्रीनिंग होना चाहिए जिससे ये पता लगे कि इनकी हियरिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको आरोपी होने का डर रहता है, रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी। इनको खून की कमी होने का डर रहता है, इसको बोलते हैं एनीमिया और प्रीमेच्योरिटी। तो इस तरह की समस्याएं आती है इनको कि डिफरेंट मशीन। जहां आपने सवाल किया INO का, INO प्रीमेच्योर बच्चों में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये INO जो इस्तेमाल होती है नाइट्रिक ऑक्साइड थेरेपी, वो परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन एक कंडीशन होती है उसके लिए इस्तेमाल होती है, जो कि टर्म बेबी में खासतौर से उन बच्चों में जो इनकी पैदाइश मुश्किल से हो, जिसको हम बोलते हैं वर्थ एनोक्सिया वर्थ एस्फिक्सिया, उन बच्चों

0: जरूरत पड़ती है, या उन बच्चों में जो कि फेफड़ों में गंदा पानी ले लें, जिसको बोलते हैं मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। तो बर्थ एस्फिक्सिया और मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम के बच्चों में ये मशीन की जरूरत पड़ती है। तो परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन का जो नवजात शिशु वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि फ्लक्चुएटिंग होता है उसका ऑक्सीजन लेवल, आप उसे टच करो या उसका सैंपल लो तो उसके ऑक्सीजन गिरने लगती है, और उसको कई बार ऑक्सीजन उसका SpO2 लेवल मेंटेन करना मुश्किल होता है, क्योंकि जो लंग्स को ब्लड जा रहा है वो बहुत कम जाता है, लंग्स की तरफ इसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से लंग्स को ब्लड कम पहुंचता है तो शरीर को ऑक्सीजन कम मिल पाती। तो ये सिलेक्टिव पल्मोनरी वैसो डायलेटर है, मतलब ये लंग्स को जो ब्लड जा रहा है उन ब्लड वैसो उन धमनियों को उन नसों को चौड़ा कर देता है, जिससे कि लंग्स को ब्लड ज्यादा जाता है और बच्चों को ऑक्सीजन बढ़ाने में आसानी होती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड थेरेपी जो अक्सर प्रीमेच्योर बच्चों में कभी जरूरत पड़ती है, वरना ज्यादातर टर्म बेबी में और उन बच्चों में जो पैदा होने के समय जिनको मुश्किल आती है, या उन बच्चों में जो पैदा होने से पूर्व या पैदा होते समय फेफड़ों में गंदा पानी ले लेते हैं।
1: जी, और कोई प्रश्न है मुन्नालाल जी?
2: एक प्रश्न और है सर, जो अखबार में निकलता है ना बगैर खून लिए फ्लोरबेन का, तो वो सर कौन सी मशीन है जो बगैर खून लिए ही सीरम फ्लोरबेन हो जाता
0: है? वो उसके लिए एक मशीन आती है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्यूटेनियस बिलोनोमीटर। तो आपका स्किन से या फिर ईयर लोब्यूल से आप उसको अगर रीडिंग वहां से नाप सकते हैं, उससे आपको एक पीलिया कितना ये आइडिया लगता है, लेकिन उस मशीन से ये पता नहीं लगता है कि इसमें डायरेक्ट कितना है इनडायरेक्ट कितना है। अच्छा, और तो प्रीमेच्योर बच्चों की समस्याएं ये होती हैं, और एक बहुत बड़ी समस्या प्रीमेच्योर बच्चों में होती है इन्फेक्शन होने की, खासतौर से सेप्सिस होने का डर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इनकी जो प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो उसकी वजह से तरह तरह के इन्फेक्शन बड़ी जल्दी होते हैं, और कई बार इन बच्चों को फंगल इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है।
1: जी
0: ठीक है,
1: जानना है,
2: बहुत बहुत जानकारी लेने के लिए डॉक्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे प्रश्न हमेशा पूछते हैं जो एक साधारण व्यक्ति के शायद समझ से परे हों, लेकिन आप उनके उत्तर जान लेते हैं, प्रश्न भी बता देते हैं। डॉक्टर साहब, इसी बीच एक और श्रोता लाइन पर है, इनकी समस्या सुन लेते हैं।
0: जी,
1: रेडियो हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, अपना परिचय देते हुए अपना प्रश्न बताए।
0: हेलो,
3: रघुवर बिहार, हम राजपुर कला से बोल रहे हैं।
1: बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
3: जी, आज हम जानना चाह रहे हैं, जैसे हमने रेडियो पर सुनी है कि रेडियो हेल्पलाइन में समय से पहले पैदा भाई बच्चन के बारे में बताई जाएगी।
1: जी,
3: तो हम ये जानना चाह रहे हैं, जैसे एक बच्चा 8 या 7 महीना को जन्म हो जाए,
1: जी,
3: तो बाकी मतलब सही तरीका से घर पे ही जन्म हो है, और वो मतलब सही सांस वास सही ले रहे हो, लेकिन अच्छी तरीका से जैसे तंदुरुस्ती ना बच्चा एकदम बढ़वार पर सही हो रहा है ना खा रही है, तो जाके लिए अब हमें क्या करने हो, जो डॉक्टर साहब से थोड़ी सलाह लेना चाह रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब लाइन पर है, अगली आवाज डॉक्टर साहब की।
0: जी, ऐसे है, जो आप चाह रहे हो कि आपका बच्चा समय से पूर्व पैदा हो गया है, तो इसका वजन कितना कितना समय से पूर्व पैदा हुआ?
3: लगभग 8 महीना को जन्म है होगा।
0: और वजन कितना है इसका?
3: वजन तो ऐसी हो जा मेरी ना चाहे 120 के करीब।
0: देखो, जो बच्चे 1 किलो 600 ग्राम से कम वजन के होते हैं वो अपने आप दूध पीने में सक्षम नहीं होते हैं, तो इन बच्चों को दूध आपको पिलाना पड़ेगा या तो चम्मच कटोरी से, या फिर हम लोग कहते हैं एनजी फीडिंग यानी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से। तो तीसरा तरीका है कि इनको पलैदी से दूध पिला सकते हैं, तो माँ का दूध ही इनको पिलाना चाहिए, अगर ऊपर का दूध पिलाएंगे तो आप संकट में फंस जाएंगे। तो माँ का दूध अगर 1 किलो 1.25 किलो का बच्चा है, तो इसको आप करीब कितने दिन का हो गया?
3: लगभग
0: 22 दिन का हो गया, तो इसको करीब 1 किलो पे 160-180 ml दूध आपको पिलाना है 24 घंटे में, तो को करीब 20-22 ml दूध पिलाना है और डेली दूध बढ़ाना है। तो ये बच्चा अपने आप तो दूध पी नहीं पाएगा माँ से डायरेक्ट, तो आपको या तो दूध माँ का निकलवा के चम्मच कटोरी से पिलाना होगा या पलादी से, या आप किसी हॉस्पिटल में तो आपको एनजी डलवा के एनजी फीडिंग करा सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि आप एनजी इसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पढ़वा लीजिए और घर पे फीड करिए, बाकी इसके तापमान का ध्यान रखिए, इसको इन्फेक्शन ना होने पाए उसका ध्यान रखिए, और अगर 20-25 काल ले गया बच्चा तो बच्चे स्वस्थ हो जाना चाहिए।
3: डॉक्टर साहब, तब तो ठीक है, लेकिन जो गाँव में निप्पल ना आते प्लास्टिक वाली
0: ना, उससे दूध नहीं पिलाएंगे, निप्पल वाले आप दिक्कत में आ जाएंगे अगर उससे दूध पिलाएंगे तो।
3: शुरू में तो साल रुई से मतलब जो है घर में गांव में चाहे वो, अब वो निप्पल से

0: शुरू कर दो तो आप पी तो निकलो लेकिन समस्या जो आएगी वो उतनी तरीका से, जैसे ना बच्चा एकदम हिच को सोच चलवाता तंदुरुस्त उस तरीका की।
1: देखिए निप्पल से दूध पिलाएंगे तो दिक्कत ये आएगी, बच्चा निप्पल से दूध पीने में ताकत का इस्तेमाल करता है और जो अपनी ताकत वो दूध पीने में लगा देगा तो वो ताकत उसको वजन बढ़ाने के लिए नहीं मिलेगी। अगर आप नली से दूध पिलाएंगे या चम्मच के टूटी दूध पिलाएंगे तो उसकी वो ताकत बचेगी और वो ताकत भी उसको वजन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगी। तो आप अगर निप्पल से दूध पिलाएंगे तो कई खतरे हैं, एक तो बच्चे को इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा डर है, दूसरा उसको वजन बढ़ाने में दिक्कत आएगी।
0: तो साहब आपकी सलाह के अनुसार चलो दूध की बात जो होगी लेकिन बाघो सही तरीका से तंदुरुस्ती मिले जागे ले हमने कहा करने पड़ेगा।
1: देखिए दो तीन चीजें हैं, अगर बच्चे का वजन एक किलो आप कुछ बता रहे हैं तो एक तो उसको एक बार डॉक्टर दिखा के एक उसको विटामिन डी, कैल्शियम, फॉलिक एसिड और आयरन ये दवाइयाँ चलनी चाहिए। अच्छा पर्याप्त मात्रा में दूध पिलाना चाहिए। तीसरा उसके बच्चे का तापमान हमेशा आप अगर बच्चे को छुए तो बच्चा आपको गर्म लगना चाहिए, अगर बच्चे के हाथ पैर आपको छूने पर ठंडे लग रहे हैं तो बच्चे को मतलब तापमान कम हो रहा है, और बच्चे की अगर बॉडी भी ठंडी लग रही है आपको शरीर भी ठंडा लग रहा है तो इसका मतलब तो तापमान बहुत कम हो गया। तो इसके लिए एक तरीका ये भी करते हैं जिसको हम लोग कंगारू मदर केयर बोलते हैं, केएमसी केयर। तो माँ या घर में कोई और सदस्य है जो बच्चे को हमेशा अपनी छाती से बिना कपड़े के लगा के रखे, जैसे माँ गाउन पहन सकती है और अपने दोनों छातियों के बीच में बच्चे को लगा के रखे लगातार जितना ज्यादा से ज्यादा समय, तो माँ के तापमान से बच्चे का तापमान नियंत्रित रहता है। तो और दूसरा उसका एक दूसरा फायदा है कि माँ दूध पिलाने में भी उसको दूध कम नहीं होगा कभी। तीसरा आने वाले समय में माँ उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराने में आसानी रहेगी।
0: अरे साहब क्या आप जानना चाह रहे हैं जैसे अभी तो माँ के दूध के लिए और बाकी जो हलवा वगैरह आता है और ये मतलब भैंस को या बकरी को दूध है जो आगे चले कितने समय बाद हम बात चलाना शुरू करें?
1: छह सात महीने तक, छह महीने तक आप कुछ नहीं देंगे सिर्फ माँ का दूध, शहद गुट्टी पानी ऊपर का दूध बकरी का दूध शहद या गाय भैंस का दूध ये कुछ भी नहीं देंगे छह महीने तक आप।
0: अच्छा हाँ भाई जो पड़ोस में है जैसा कह रहे कि बकरी का दूध लेकर कोई बात ना है तो आप देंगे तो नुकसान दे
1: सकते। नहीं बकरी का दूध बकरी के बच्चे के लिए है, आपके बच्चे के लिए नहीं है।
2: जी
0: बिल्कुल सही बात है।
2: धन्यवाद कॉल करने के लिए आपका, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई है, छह महीने तक माँ के दूध की सिफारिश की जाती है, लेकिन एक बात और भी है डॉक्टर साहब, जब अस्पताल में किसी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के लिए माँ का दूध अमृत तुल्य है और
1: अमृत तुल्य है, अमृत है
2: जी हाँ। वो अमृत ही पिलाना चाहिए हाँ।
1: और हर माँ का दूध बच्चे के हिसाब से होता है, जिस माँ का बच्चा 26 वीक का है उसका दूध उसके बच्चे के हिसाब से।
2: अच्छा ये बात।
1: और अगर जिसका बच्चा टर्म बेबी है, जिसका फुल टर्म बेबी है, उस माँ का दूध अलग होता है। अच्छा। तो ये टेलर मेड होता है, जो नवजात शिशु है उसकी जरूरत के हिसाब से उसकी माँ को दूध होता है और उतना ही होता है जितना जरूरत होती है। तो आप ऊपर का जब दूध पिलाने की कोशिश करते तो माँ का दूध कम हो जाता है एक चीज, और इसलिए एक माँ दूसरे माँ को दूध अगर प्रीमेच्योर बच्चा है तो उसको उसी माँ का दूध चाहिए जो उसकी रियल में माँ है।
2: अच्छा,
1: या उसी उतने हफ्ते की डिलीवरी हुई है,
2: यानी जिसके गर्भ से बच्चा उत्पन्न हुआ है उसी माँ का दूध उसके।
1: हाँ वो टेलर मेड है, जैसे आप दर्जी के पास जाते हो तो आपके हिसाब से पैंट शर्ट बनाता है, रेडीमेड नहीं है ये, है ना
2: डॉक्टर साहब। ये और बताइएगा, कई बार महिलाएं कहती है जो प्रसव के उपरांत दूध नहीं आता माँ को, तो ये बात वाकई में सत्य है? विज्ञान क्या कहता है इस विषय में?
1: देखिए ये सिर्फ इंसानों की सोच है कि और कोई प्राणी तो ये सोचता ही नहीं है कि दूध कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, सब माँ के दूध पे पूरी कुदरत चल रही है, कोई ऊपर प्रकृति ने कोई कहीं छेड़छाड़ नहीं करता। इंसान थोड़ा समझदार हो गया वो छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, वो अपने फालतू सोचने की कोशिश करता है कि माँ को दूध नहीं हो रहा, कम हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, लेकिन माँ को दूध पर्याप्त होता है। हर माँ को, जिस माँ के दो बच्चे होते हैं उसको, उस माँ को दो बच्चे के हिसाब से दूध होता है
2: जी।
1: और जब बच्चे का जैसे शुरू का दूध अलग होता है तो बोलते हैं कि शुरू के सात आठ दिन जो दूध होता है वो अलग होता है
2: जी।
1: और शुरू के दो तीन दिन बिल्कुल दूध अलग होता है जिसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं
2: जी।
1: और बच्चा जब 15 दिन को जाता है तो वो दूध अलग हो जाता है।
2: अच्छा।
1: तो वो हर दिन के हिसाब से दूध का क्वालिटी बदलती जाती है, उसमें प्रोटीन कंटेंट, मिनरल कंटेंट, वो सब चेंज होते जाते हैं
2: बच्चे की आवश्यकता के
1: अनुसार। जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं उनकी माओ को दूध में प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा होती है क्योंकि उनको ग्रोथ करनी होती है, उनको विकसित होना होता है
2: जी। बिल्कुल डॉक्टर।

0: अब चूंकि अभी भी बातें बहुत सी ऐसी हैं जो कि हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते थे, लेकिन समय सीमा हमारे सामने है, फिर भी हम चाहेंगे आज के रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम के माध्यम से कोई खास संदेश, हालांकि कई ऐसे संदेश हैं जो हमारे श्रोताओं को आज जरूर मिले होंगे, फिर भी आप चलते चलते क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, मैं कहना चाहूंगा, एक तो जब भी कोई जो प्लानिंग हो आपकी गर्भ धारण करने की, तो इट शुड नॉट बी एक्सीडेंटल। ये नहीं कि साहब माँ गर्भ धारण कर लिया मैंने, आपकी एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। माता पिता दोनों को डॉक्टर से अपने मिलके प्लान करके बच्चे को आप लाएं दुनिया में। दूसरी चीज, माँ का रेगुलर चेकअप कराएं, अपने लेडी डॉक्टर को समय समय पर जब जब आपको बुलाए, माँ को समय से टीके लगवाए, माँ का ब्लड प्रेशर, माँ की यूरिन, माँ की शुगर, माँ का थायराइड और जो भी आवश्यक हो वो जांच कराए, है ना। फिर उसके बाद उसका जो जन्म है वो एक ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे आपको चाइल्ड स्पेशलिस्ट या पीडियाट्रिशियन तुरंत मिल जाए। बच्चा अगर प्रीमेच्योर पैदा होने का अंदेशा है तो माँ को स्टीरॉयड कोर्स के हिसाब से लगना चाहिए, बीटामेथासोन या डेक्सामेथासोन। और बच्चा अगर प्रीमेच्योर पैदा हो गया है, उसके बाद उसे देखभाल ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे उसे प्रॉपर उचित देखभाल मिल सके। सिर्फ नर्सरी में रख देने से किसी बच्चे की परवरिश नहीं होती, उस बच्चे को क्या दिया जा रहा है और उसको जब हम बचा के दे रहे हैं तो उसका सर्वाइवल इंटैक्ट है या नहीं, उसको हम बच्चा अगर जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट यानी कोई विकलांगता नहीं होनी चाहिए, बच्चा हमारी कान सही होना चाहिए, उसकी हियरिंग सुनने की क्षमता ठीक होनी चाहिए, उसकी देखने की क्षमता ठीक होनी चाहिए, उसका IQ सही होना चाहिए, वो फिजिकली मेंटली बिल्कुल फिट होना चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि आप एक ऐसी जगह एक ऐसे सेंटर पे इलाज कराएं जहाँ पे सारी सुविधाएं हों। आप अगर ये सोच के कि नर्सरी में हमने बच्चा रख दिया, सब जगह नर्सरी एक सी है, सब जगह एक सा इलाज होता है, ये गलत एक धारणा है, इस धारणा से बचें। तो और हर बच्चे को शुरू के 6 महीने सिर्फ माँ का दूध पिलाएं, समय से उसको टीके लगवाएं और उसकी सफाई का ध्यान रखें, और कोई घर में अगर किसी को खांसी बुखार है वो बच्चे से दूर रहे।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम शिक्षित हैं तो हमें शिक्षित होने का प्रमाण भी देना चाहिए। जो बातें आपने बताई हैं, अगर हमारे श्रोता ध्यान रखते हैं तो उनके नवजात शिशु एक अच्छे युवा, हम ये कहेंगे कि
1: देश के लिए एक अच्छे नागरिक,
0: देश के लिए अच्छे नागरिक बन करके आगे आएंगे।
1: और माँ का दूध पिलाएं तो 2-4 आइंस्टीन में पैदा होंगे देश में।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे श्रोताओं को समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की उपयोगिता के विषय में विस्तृत जानकारी दी। स्टूडियो में आने के लिए, जानकारी देने के लिए डॉक्टर कुलदीप गंगवार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
3: गंगवार हॉस्पिटल, निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
4: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज की विशेष सुविधा,
3: अविकसित फेफड़ों के उपचार के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी,
4: टेम्परेचर नियंत्रण के लिए विशेष इंक्यूबेटर जिराफ ओमनी बेड,
3: सांस नियंत्रण के लिए CPAP वेंटिलेटर, HFNC और ईयर वो मशीनें,
5: बच्चों के जन्म के समय होने वाली जटिलताओं के लिए बिना खून निकाले पीलिया की जांच,
3: खास तरह के वेंटिलेटर HFO ऑक्सीलेटर, थेरेप्यूटिक हाइपोथेरेमिया बाय क्रिटिकूल,
4: ब्रेन मॉनिटरिंग के लिए CFM बेड साइड इको अल्ट्रासाउंड की सुविधा,
3: साथ ही बच्चों में पीलिया, सेप्टिक इन्फेक्शन, निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की विशेष सुविधा।
5: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक चैरिटेबल OPD,
3: बरेली का अत्याधुनिक बाल चिकित्सालय
4: गंगवार हॉस्पिटल,
3: निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
5: इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 9457096487।
6: अभी आप सुन रहे थे रेडियो हेल्पलाइन, आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। अब आपको आगे के कार्यक्रमों के लिए चलते हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र।
7: दर्पण में विविध स्वरूप दिखाई देते हैं, उन स्वरूपों में कभी हम कविता देखते हैं, कभी कहानी देखते हैं, कभी समसामयिक लेख देखते हैं, बहुत सारी विधाएं उसमें समाहित हो जाती हैं जो हमारे समाज में साहित्यिक गतिविधियों को जोड़ते हुए हमें समृद्ध करने की और साथ ही साथ समाज को भी समृद्ध करने का एक प्रयत्न आगे बढ़ता चला जाता है। जहां साहित्य नहीं है वहां कहते हैं कि जीवन अधूरा होता है। आप कभी किसी जमाने में आकाशवाणी से या फिर पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से साहित्य को देखते रहे हैं, समझते रहे हैं और सुनते रहे हैं उसे, लेकिन समय बदलता चला गया है। साहित्य कितना बदला है या नहीं बदला है एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन आकाशवाणी के माध्यम से साहित्य जो आप तक पहुंचता था वह कितना बदला है, किस स्वरूप में है, इसको समझने बूझने के लिए हमारे बीच आज हैं नवीन जोशी साहब हैं, जो कि वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक है,

0: जोशी साहब, हम स्वागत करते हैं अपने
1: हाँ
0: स्टूडियो में।
1: नमस्कार।
0: जब कभी भी हम बात करते हैं साहित्य की, तो पुरानी बातें ही याद आती हैं।
1: जी
0: नए जमाने में साहित्य लगता है खो सा गया है, इसको समझेंगे, लेकिन पहले हम समझना चाह रहे हैं वो जमाना जो था साहित्य का, जब आप अखबारों में धुरंधर रूप से लिखते थे, तब की बात कर रहा हूँ।
1: असल में साहित्य, आपने बिल्कुल सही कहा कि समाज का दर्पण है। वो पहले भी था और आज भी है। जैसा समाज है वैसा साहित्य में हम उसे देख सकते हैं। जहाँ तक आकाशवाणी को केंद्र में रखकर अगर हम बात करें, तो आकाशवाणी की, उससे पहले कहिए कि ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जो शुरुआत हुई
0: जी
1: थी, उसका आधार ही सांस्कृतिक था पूरी तरह। अगर 1921 में एक निजी तौर पर बम्बई में प्रायोगिक प्रसारण शुरू हुआ
0: जी जी
1: था,
0: जी जी
1: कुछ देर के लिए, जो हिंदुस्तान में आकाशवाणी जो बाद में बना, उसकी शुरुआत भी वो एक संगीत का और साहित्य का कार्यक्रम था। तो आप समझिए
0: जी
1: कि जो जड़ है आकाशवाणी की, जो शुरुआत है, उसकी नींव में ही साहित्य की और संस्कृति की संपदा पड़ी हुई है, और वो वहाँ से बीज रूप में अंकुरित हुई, पल्लवित हुई, विकसित हुई। और अपने समय में आज तो हम ठीक ठीक नहीं कह सकते, क्योंकि अब प्रशासनिक और सामाजिक स्वरूप बदल गया है, लेकिन आज़ादी के तत्काल बाद और अगले 1-2-3 दशकों तक जितने भी हमारे साहित्यिक धुरंधर थे, हिंदी के ही नहीं, विभिन्न भारतीय
0: जी
1: भाषाओं के, चाहे वो मलयालम में हो, केरल में हो, बंगला में हो, हिंदी में हो, वो सब किसी न किसी रूप में आकाशवाणी से जुड़े हुए
0: जुड़ते
1: लोग
0: रहे।
1: थे। और कोई ऐसा दिन, मैं आकाशवाणी लखनऊ की अगर बात करूं, मैं तो जब 1970 में 9वीं क्लास में पढ़ता था, तब से यहाँ आ
0: अच्छा
1: रहा
0: अच्छा
1: हूँ, तो मैं यहाँ इलाचंद जोशी जी को देखता था, और ऐसा कोई साहित्यकार नहीं था। शिवानी जी यहाँ पर बाहर जाड़े में कुर्सी डाल के धूप में बैठी रहती थी अपनी रिकॉर्डिंग के बाद, और बहुत से लोग इस शहर के
0: जी
1: जितने थे, नागर जी, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, बहुत सारे लोग,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बाद की पीढ़ी तो हमने साथ में देखी। वो आकाशवाणी आने का मतलब होता था, आप किसी भी बड़े साहित्यकार से, संगीतकार से, किसी सांस्कृतिक पुरुष से आपकी मुलाकात होगी ही होगी।
0: जी जी जी
1: और ये सिर्फ लखनऊ के बारे में सच नहीं था, ये दिल्ली या आकाशवाणी के जितने भी केंद्र थे उनके बारे में ये सच
0: यही
1: था।
0: चलता था।
1: खूब लंबी लंबी वार्ताएं होती थी, इंटरव्यू, आप सोचिए कि 2-2, 3-3 घंटे के इंटरव्यू कई चरणों में
0: अच्छा,
1: होते थे।
0: तो
1: सी
0: ये
1: हूं
0: जो इंटरव्यू होते थे, क्या ये साहित्य से जुड़े होते थे या फिर व्यक्ति विशेष की कृतियों से जुड़े हुए होते थे?
1: जी, दोनों तरह की बात होती थी। जैसे मैं जिस प्रसंग का उल्लेख करना चाहता हूं वो ये है कि जी अमृतलाल नागर जी लखनऊ की
0: जी
1: हमारी साहित्यिक थे, एक पुरोधा थे, तो उनसे ठाकुर प्रसाद सिंह दूसरे साहित्यकार थे, जो संयोग से सूचना विभाग में निदेशक भी थे उन दिनों।
0: जी
1: तो ठाकुर प्रसाद जी और अमृतलाल नागर की समझिए 2-3 या 4 चरणों में, घंटे घंटे भर की बात, तो 3-4 घंटे की वो बातचीत, जिसमें उनका जन्म, मतलब वो गुजरात के
0: जी
1: थे
0: जी जी
1: मूलतः, तो गुजराती से लेकर के हिंदी तक की यात्रा, बंबई तक की यात्रा, खंजन नयन उनका उपन्यास उस वक्त आया था, और जो एक तरह से सूरदास की जीवनी पर केंद्रित है, तो खंजन नयन पर ही उनके आधे घंटे तक बातचीत होती रही कि कैसे लिखा,
0: जी
1: या उनका बूंद और समुद्र लखनऊ के इतिहास पर, उन्हें कैसे लखनऊ के टीलों की खुदाई करवाई, देखा लिखा। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, मुझे तो बड़ा गर्व होता है कि ये जो बातचीत होती थी आकाशवाणी से, कई दिन में प्रसारित होती थी और फिर उसका संकलन प्रकाशित होता था आकाशवाणी के। उन दिनों शायद मेरे ख्याल से जगदीश चंद माथुर जी महानिदेशक
0: जी
1: थे,
0: जी बिल्कुल सही।
1: उनके समय में बहुत काम हुआ इस तरह का सांस्कृतिक। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि आकाशवाणी के जो साहित्यिक प्रसारण होते हैं उनका, जो उसमें से भी जो बहुत मूल्यवान सामग्री है वो रिकॉर्डिंग प्रसारित होगी, फिर उसको पुस्तकाकार छापा जाएगा। तो विभिन्न भारतीय भाषाओं में 9 पुस्तकों की योजना बनी, जो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, मतलब नेशनल बुक ट्रस्ट के, उसमें छपी। हिंदी में वो आकाशवाणी नाम था, सारंग नाम था, आवाज नाम से उर्दू में था, और आकाशी करके असमिया में था, बंगला में उसका नाम बेतार जगत था, अंग्रेजी में इंडियन लिसनर था। तो ये
0: हर
1: भाषा में ये
0: भाषा में
1: छपते
0: था।
1: थे, और ये बहुत अच्छी किताबें हैं, आज भी वो मूल्यवान सामग्री है,
0: पठनीय है
1: जिसमें
0: आज भी।
1: उपेन्द्रनाथ अस्क से लेकर के विभूति भूषण गंगोपाध्याय तक, विभिन्न भारतीय भाषाओं के, एम टेकी वासुदेवन नायर, मलयालम के ज्ञानपीठ विजेता, ऐसे ऐसे लोगों की बातचीत प्रसारित हुई, फिर पुस्तकाकार छप

0: भी,
1: जी
0: और वो मुझे लगता है आकाशवाणी के पुस्तकालयों में वो जरूर संग्रह होंगे।
1: बिल्कुल संग्रह होंगी और धरोहर के ये हमारे आपके लिए भी है,
0: जी
1: सभी के लिए है। लेकिन इस धरोहर, जैसा कि आपने कहा ना कि आते थे बैठते थे आधा आधा घंटा के बाद धूप भी सेंकते थे, ये
0: जी
1: उत्सव था, तो ये एक साहित्य सृजन का माहौल होता है, या कहें कि वातावरण होता है। उस
0: जी
1: वातावरण में जब आप अपने को रखते हैं तब सृजनशीलता बढ़ती है या
0: बिल्कुल
1: सृजनात्मकता जो है
0: बिल्कुल
1: वह सामने आती है निखर करके। आज क्या इसी की कमी है कि वो दिन नहीं देखने को मिल रहे हैं या वो कृतियां नहीं देखने को मिल रही हैं?
0: देखिए, समय बदला है ना, समय के साथ बहुत सारी सामाजिक संरचना बदली, हमारी राजनीतिक संरचना बदली, आर्थिक संरचना बदल गई, रुचियां बदल गई। जैसे मैं अपने बचपन में पढ़ता था, पत्रिकाएं पढ़ता था, मेरे पास कोई डायवर्जन नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, कोई टीवी नहीं था, पुस्तकें थी, मैं पढ़ता था और लिखने वालों के प्रति आकर्षित होता था तो उनकी ओर जाता था। आज की जो नई पीढ़ी है उसके पास इतने ज्यादा डायवर्जन है, उसको 24 घंटे हाथ में मोबाइल चाहिए, उसको रील बनानी है, उसको सेल्फी खींच कर लगानी है, उसको टीवी देखना है, उसको सिनेमा देखना है, उसको मॉल में घूमना है। तो वक्त जो है साहित्य का वक्त कम होता चला गया।
1: अच्छा, इसको अगर हम दूसरे रूप में समझना चाहें, वो रील बना रहा है या लिख रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या जो भी अपने मन का गुबार ही लिख रहा है, तो इसको क्या बिगड़े हुए साहित्य के रूप में लेंगे या साहित्य नहीं है क्या?
0: दरअसल ना साहित्य के लिए एक चीज कही जाती है, जैसे पत्रकारिता भी तो साहित्य है,
1: जी
0: और ऐसा वैसा साहित्य नहीं, जिम्मेदार साहित्य, लेकिन पत्रकारिता के लिए कहा जाता है कि वो जल्दबाजी में लिखा गया साहित्य है
1: जी
0: ना, तो
1: जी
0: मोबाइल में और रील में तो वो तो और भी फटफटिया साहित्य है ना। तो
1: जी
0: उसमें कई ऐसा नहीं, सोशल मीडिया में कई बार गंभीर चीजें दिख जाती हैं लेकिन वो बड़ी एक झलक की तरह होता है, बाकी बेशुमार चीजें ऐसी होती जिनका कोई साहित्यिक मूल्य नहीं होता,
1: जी जी
0: ये मैं कहता।
1: बहुत अच्छी बात नवीन जी, लेकिन क्या करें, समय बिल्कुल सीमित सा हो गया है। अब ऐसे में फिर भी एक सवाल तो जरूर बनता है, वो छोटा सा उत्तर आपका चाहेंगे कि आकाशवाणी के माध्यम से जो साहित्य आप देखे हैं, समझे हैं, बूझे हैं या लोगों तक पहुंचा है, आज क्या कमी दिख रही है आपको?
0: देखिए, कमी हर क्षेत्र में है, सिर्फ साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं है। जो प्रशासनिक क्षेत्र बदला है हमारा, जैसे आकाशवाणी प्रसार भारती बना,
1: जी
0: प्रसार भारती की भूमिका बहुत व्यापक हुई, दूरदर्शन आया, उस जमाने में दूरदर्शन नहीं था। अब क्या हुआ कि दूसरा आर्थिक रूप से भी चीजों पर दबाव पड़े हैं, तो वो चीजें हमें लगता है हर क्षेत्र में, जैसे आज हम कहते
1: जी
0: हैं कि उतनी कृतियां अच्छी नहीं लिखी जा रही, तो मुझे लगता है जो वातावरण बदला है चीजों का, अच्छा साहित्य लिखा जा रहा है लेकिन उतनी प्रमुखता से वो सामने नहीं आता जितनी प्रमुखता से पहले आता
1: पहले
0: था,
1: आता।
0: पहले वो चीजें नहीं होती थी।
1: चलिए, बहुत सारी बातें हैं जोशी साहब, इसलिए अपनी वाणी को हम लोग विराम देते हैं, और जितने भी चीजें हैं, माहौल है, सारी चीजों को देखते समझते यही है कि जो आपने बताया कि सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं, उन
0: जी
1: गतिविधियों को ही हमें जरूर साथ लेकर के चलना है, तभी अपनी संस्कृति बचेगी और उस संस्कृति का अंश जो ये साहित्य है, यह भी और ज्यादा आगे बढ़ेगा या कहें कि सुधार के साथ बढ़ता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला स्टूडियो है।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्षों की यात्रा पर विशेष भेंट वार्ता। विषय था साहित्य, समाज और आकाशवाणी। इस विषय पर बातचीत कर रहे थे श्री नवीन जोशी और डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। इसी के साथ आज के हिंदी कार्यक्रम से अविनाश को अनुमति दीजिए। नमस्कार। हिंदी कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं सीतेश आलोक की रचना, डॉक्टर शिखा भदौरिया के स्वर।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार हैं डॉक्टर शिखा भदौरिया। आइए इनसे सुनते हैं डॉक्टर शक्ति जैन की ये रचना।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शिखा भदौरिया के स्वर में अटल बिहारी वाजपेयी की ये रचना। इसी के साथ सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडिया वेब पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म रिपोर्टर राजू से, आवाज मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की है, गीत अनजान का और संगीत एस मोहिंदर का।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: शब्द रचना शैलेंद्र की, संगीत शंकर जय किशन का, आवाज लता मंगेशकर और आशा भोसले की। फिल्म का नाम जिस देश में गंगा बहती है।

आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी को। फिल्म का नाम था पूजा के फूल। इसी के साथ चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित होंगे।

नमस्कार नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की, देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए, इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की, कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता, भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों

0: पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी।

0: वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में चौथे लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोज ग्लोबल। दो दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के दो दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
3: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुख में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
4: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
5: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्या

0: सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए।

फिल्म का नाम था घर। लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा था और आर डी बर्मन की तर्ज थी। आपके लिए प्रोग्राम में अगली पेशकश।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, तेरे घर के सामने। फिल्म का नाम था हसरत जयपुरी ने इसे लिखा था, एस डी बर्मन की तर्ज थी। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके लिए।

0: फिल्म था वक्त। आशा भोसले को आप सुन रहे थे। इस गीत में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और रवि की तर्ज थी।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके लिए।

लता मंगेशकर को और सखियों को आप सुन रहे थे मधुमति फिल्म के इस गीत में। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था और संगीतबद्ध किया था सलिल चौधरी ने।

प्रेम पर्वत इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, मीनू पुरुषोत्तम की आवाज में, जानिसार अख्तर ने इसे लिखा था और जयदेव का संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

राजेंद्र कृष्ण साहब का शुमार फिल्म जगत के बेहतरीन गीतकारों में होता है। उनकी कविता में नजाकत है, जज्बात की गहराई है और दिल को छू लेने वाला फन है।

वो चाहे अलसाई सी दोपहर हो, कोई हसीन शाम हो, या फिर कोई उदास अकेली रात। राजेंद्र कृष्ण के बोल उन पलों में कभी प्यार, कभी इकरार, कभी रुसवाई और कभी जिंदगी का कोई और दर्द इस तरह भर देते हैं कि उस दर्द से भी मोहब्बत हो जाए।

6 जून 1919 को शिमला में जन्म हुआ था अपने कलम से दिलकश नगमों को जन्म देने वाली इस गीतकार का। बहुत कम उम्र में ही राजेंद्र कृष्ण मोहित हो गए थे कविता पर। रोजी रोटी की जद्दोजहद में 1940 तक म्यूनिसिपल ऑफिस में क्लर्क की नौकरी की। उनकी इस नीरस नौकरी को रसीला बनाती रहीं फिराक गोरखपुरी, एहसान दानिश, सुमित्रा नंदन पंत और निराला जी की रचनाएं। 1940 के मध्य में राजेंद्र कृष्ण मुंबई आ गए। फिल्मों की दुनिया में बतौर लेखक और गीतकार अपनी प्रतिभा को आजमाने। संघर्ष की जंजीरें टूटी 1947 में जब फिल्म जंजीर के लिए उन्होंने लिखा अपना पहला गीत। 1947 में राजेंद्र कृष्ण ने लिखी फिल्म जनता की स्क्रिप्ट, लेकिन कामयाबी मिली 1948 में बने फिल्म आज की रात से। निराशा भरी रातें ढल चुकी थीं और राजेंद्र कृष्ण लगातार काम पाने लगे। 1949 में श्याम सुंदर के संगीत से सजी फिल्म लाहौर में उनके गीतों को बहुत लोकप्रियता मिली। उन्हीं में से एक था ये गीत।

लगभग तभी एक और फिल्म आई, बड़ी बहन, जिसके संगीतकार थे हुस्नलाल भगतराम। राजेंद्र कृष्ण के गीत एक बार फिर संगीत रसिकों के होठों पर थे।

तमिल के जानकार राजेंद्र कृष्ण उन दिनों के मद्रास के मशहूर बैनर एवीएम की पहली पसंद बन गए। वहां के अन्य निर्माताओं ने भी राजेंद्र कृष्ण की रचनात्मक प्रतिभा की कद्र की। एवीएम की लगभग सभी हिंदी फिल्मों की स्क्रिप्ट के अलावा उनके गीत लिखे राजेंद्र कृष्ण ने।

0: राजेंद्र कृष्ण ने अपने समकालीन लगभग सभी नामचीन संगीतकारों के लिए गीतों की रचना की। राजेंद्र कृष्ण ने करीब 100 फिल्मों की पटकथाएं लिखी और कोई 300 फिल्मों के लिए लिखे अपने अनूठे अलबेले गीत। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड बहुत देर बाद मिला 1965 में फिल्म खानदान के इस गीत के लिए।
1: तुम

सन 1988 में शब्दों का ये चितेरा हमारे होठों पर अपने गीतों की गुनगुनाहट छोड़कर शब्द ब्रह्म में ही विलीन हो गया।

0: अब अपने दोस्त कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई। इसके पश्चात उन्होंने डॉ. विकास कशालकर और पंडित यशवंत बुआ जोशी से 8 वर्षों तक ग्वालियर घराने के गायकी को बारीकियों से सीखा। इसके बाद ऋषिकेश जी ने आईटीसी संगीत रिसर्च अकादमी की प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति प्राप्त की और कलकत्ता में ग्वालियर, जयपुर, आगरा घराने के दिग्गज पंडित उल्लास कशालकर के सानिध्य में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 6 वर्षों तक गहन प्रशिक्षण लिया। उन्हें बनारस घराने की विदुषी गिरिजा देवी जी से ठुमरी, दादरा और कजरी जैसे उपशास्त्रीय रूपों को सीखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ।
1: बॉर्न इन टू अ म्यूजिक लविंग फैमिली इन पुणे, ऋषिकेश वॉज इनिशिएटेड इन टू वोकल म्यूजिक एट द टेंडर एज ऑफ 5 बाई हिज फादर श्री पुरुषोत्तम गांगुर्डे। He later received extensive training for 8 years from Dr. Vikas Kashalkar and Pandit Yashwant Bua Joshi, learning the intricacies of the Gwalior Gharana. Thereafter, Rishikesh received the prestigious ITC Sangeet Research Academy scholarship, coming under the tutelage of the stalwart Pandit Ullas Kashalkar. For 6 years, he underwent intense training in the pure Gharana Gayaki of the Gwalior, Jaipur and Agra traditions. He was also fortunate to learn semi-classical forms like Thumri and Dadra from the legendary Vidushi Girija Devi of the Banaras Gharana.
0: Rishikesh Gangurde Akashwani ke A shreni ke gayak kalakar hai. Unki gayaki mein sangeet ka saundarya, bhavyata aur madhurya jhalakta hai jo seedhe shrotaon ke man ko chhu leta hai aur yahi unke gayaki ki visheshta hai. गायन के साथ साथ वे एक कुशल तबला वादक भी है और उन्होंने कई कार्यक्रमों में अपने गुरु पंडित उल्लास कशालकर के साथ तबले पर संगत की है।

0: वर्तमान में वे भारतीय विद्यापीठ पुणे के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है।
1: ऋषिकेश गांगुर्डे इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड इज स्टेडिली कार्विंग अ निश फॉर हिमसेल्फ एज अ घरानेदार वोकलिस्ट हु ट्राइज टू गिव एक्सप्रेशन टू द ब्यूटी ग्रैंडर एंड स्वीटनेस ऑफ म्यूजिक सो एज टू टच द ह्यूमन हार्ट एंड दिस इज द हॉलमार्क ऑफ हिज सिंगिंग। बियॉन्ड हिज वोकल प्रोवेस He is an accomplished tabla player and has even accompanied his guru, Pandit Ullas Kashalkar, in various concerts. Currently, he serves as an assistant professor in the School of Performing Arts at Bharati Vidyapit, Pune.
0: आज के कार्यक्रम में ऋषिकेश गांगुर्डे जी को तबले पर संगत कर रहे हैं आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं मकरंद खरवंडीकर। अपने गायन का आरंभ वे कर रहे हैं राग बिहागड़ा से। विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध है, बोल है प्यारी पग होले होले। इसके पश्चात वे तीन ताल में ही दो द्रुत बंदिशें प्रस्तुत करेंगे, निरख छब देखत और रैन दिन कैसे कटेरी।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय श्री आशय कुलकर्णी एंड ऑन द हारमोनियम बाय श्री मकरंद खरवंडीकर। Rishikesh begins his vocal recital with Raag Bihagda. The Vilambit composition is set to Teen Taal. This will be followed by Druta compositions in Teen Taal.

0: यह था राग बिहागड़ा।
1: That was राग बिहागड़ा।
0: ऋषिकेश गांगुड़े अपने गायन का समापन राग बागेश्री से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल है लाल मनावे। गायन का समापन वे तीन ताल की द्रुत बंदिश पहरवा घर आओ से करेंगे।
1: नेक्स्ट ऋषिकेश गांगुड़े विल प्रेजेंट राग बागेश्री। द विलंबित ख्याल इज सेट टू तिलवाड़ा ताल। He concludes the raga with a drut composition in teen taal.

0: राग बागेश्री अभी आपने सुना।
1: दैट वॉज राग बागेश्री।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप ऋषिकेश गांगुलडे जी का शास्त्रीय गायन सुन रहे थे। उन्हें तबले पर श्री आशय कुलकर्णी और हारमोनियम

0: पर श्री मकरंद खरवंडेकर जी ने संगत की। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी पुणे केंद्र के स्टूडियो में किया गया और यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: You are listening to a classical vocal recital by Rishikesh Gangurde in the National Program of Music. He was accompanied on the tabla by Ashay Kulkarni and on the harmonium by Makaranda Kharvandikar. This program was recorded at the studios of Akashwani Pune, and this program was broadcast from Akashwani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security, our long and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति

0: भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम 500 ग्राम 1 से 5 किलो 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikant Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils including palm oil, palmolin, soybean oil, sunflower oil, mustard oil, groundnut oil, sesame oil and rice bran oil. The approved pack sizes are 200 gram, 500 gram, 1 to 5 kilograms, 15 kilograms and 20 kilograms. The ministry said this will also help consumers make more informed and transparent purchasing decisions. It added that the initiative will benefit the edible oil industry by bringing greater uniformity in packaging practices. Railway Minister Ashwini Vaishnaw has said that resolving long-pending railway projects in West Bengal will usher in a new era of railway infrastructure development in the state. Addressing a joint press conference with Chief Minister Suvendu Adhikari at Nabarna in Kolkata, Mr. Vaishnaw said that 14,205 crore rupees have been allocated to West Bengal in the railway project for 2026-27. He said 10 Amrit Bharat stations have already been completed in the state, while 9 Vande Bharat Express trains and several Amrit Bharat trains are currently in operation.
2: 60 new generation trains we are planning. In coming 4 to 5 years, these trains will be inducted and Kolkata Metro will get a totally new generation of trains. As the work gets completed on Chengrighatta area, other sections, a lot of improvement will happen in the mobility in Kolkata.
1: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said India and Nepal collaborate closely to maintain security along their long and uniquely